मगर मुस्कुरा कर नहीं। घर तो साथ होता है मगर दिल साथ नहीं होते, और इसीलिए आज की ये सुन्नत बहुत जरूरी है। एक और दिलचस्प बात, मुस्कुराहट सिर्फ सामने वाले पर असर नहीं डालती, खुद हम पर भी असर डालती है। जब इंसान मुस्कुराता है तो उसके अंदर की कैफियत भी बदलने लगती है, दिल हल्का महसूस होता है, गुस्सा कम होता है, तनाव कम हो जाता है। यानी इस्लाम ने जो सुन्नत हमें 1400 साल पहले सिखाई, आज साइकोलॉजी और इमोशनल वेलनेस भी इसी की अहमियत बता रही है। लेकिन अफसोस ये है कि आज मुस्कुराना भी कंडीशन बेस्ड हो गया है। लोग सिर्फ उनके सामने मुस्कुराते हैं जिनसे उन्हें फायदा हो, यहाँ पे सोशल मीडिया की पिक्चर्स के लिए। हालांकि सच्ची मुस्कुराहट तो वो है जो किसी थके हुए इंसान को राहत दे, किसी एंजस इंसान को सुकून दे, किसी लोनली इंसान को एहसास दिलाए कि दुनिया में अभी भी नरमी खुश इखलाकी बाकी है। और याद रखिए, बास लोग अपनी जिंदगी में खामोश जंगे लड़ रहे होते हैं, इतनी खामोश कि जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। हो सकता है आपकी एक अच्छी सी मुस्कुराहट उनके लिए एक उम्मीद बन जाए। इसीलिए आज के शो में हम सिर्फ मुस्कुराने की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक हैबिट बनाने की बात करेंगे, एक ऐसी आदत जो हमारे घरों को बेहतर करेगी, हमारे ताल्लुकात को नरम करेगी और हमारी शख्सियत को खूबसूरत बना देगी। आज के पूरे शो के दौरान आप खुद से एक सवाल पूछते रहिएगा, क्या मेरी मौजूदगी लोगों के लिए सुकून बनती है या फिर स्ट्रेस? क्योंकि मोमिन जहां जाता है वहां आसानी, नरमी और रोशनी लेके जाता है, और कभी कभी वो रोशनी सिर्फ एक मुस्कुराहट से शुरू होती है। जी, मैं हूं मैविश और आप सुन रहे हैं हदीस टू हैबिट। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो हमारी अहदीस हैं, इसको हम अपनी जिंदगी की फाउंडेशन बना सकते हैं। आज की हदीस, तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। ये हदीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलती है, और इसमें इस्लाम की वो खूबसूरती नजर आती है जो दीन को सिर्फ इबादात तक महदूद नहीं रखती, बल्कि इंसान के रवैये, इखलाक और रोजमर्रा के अंदाज को भी इबादत बना देती है। जरा गौर कीजिए, हम आम तौर पर सदका किस चीज को समझते हैं? अमूमन पैसे देना, किसी गरीब की मदद करना और सबसे बढ़कर खाना खिलाना। हाँ, और यकीनन ये सब बहुत बड़ी नेकियां हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि इस्लाम में सिर्फ माल खर्च करना ही सदका नहीं, बल्कि हर वो अमल सदका बन सकता है जिससे किसी दूसरे इंसान को खैर, सुकून या खुशी मिले। इसीलिए एक मुस्कुराहट जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें कोई खर्च नहीं आता, उसे भी सदका कहा गया है। इस्लाम की कितनी खूबसूरत टीचिंग है। इस हदीस का एक बहुत गहरा पैगाम ये भी है कि अल्लाह ताला इंसान के दिल और नियत को देखते हैं। बाज़ औक़ात एक इंसान के पास देने के लिए माल नहीं होता, लेकिन उसके पास अच्छा इखलाक होता है। वो लोगों से मोहब्बत से मिलता है, नर्म लहजे में बात करता है, मुस्कुरा कर सलाम करता है, और इस्लाम ऐसे इंसान को भी नेकियों का रास्ता देता है। यह हदीस हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों को इमोशनली कंफर्टेबल महसूस करवाना भी इबादत है। आज की दुनिया में इमोशनल स्ट्रेस

सोशल मीडिया ने भी हमारे जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको काफी हद तक बदल दिया है। हम ऑनलाइन तो बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन रियल लाइफ में हम बिल्कुल इम्पेशेंट हो चुके हैं। हम इमोजीज भेजते हैं, वो भी चेहरे को सख्त करके, लेकिन सामने वाले इंसान को देख के तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुराते। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाज़ औकात लोग घर वालों से ज्यादा स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छा रवैया रखते हैं। बाहर लोग पोलाइटली बात करते हैं, मुस्कुरा भी लेते हैं, लेकिन घर आके खामोश, इरिटेटेड, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। हालांकि इस्लाम में सबसे ज्यादा अच्छा अखलाक घर वालों के साथ अहम है। हम में से बहुत से लोग अननोइंगली अपने घर के माहौल को हैवी बना देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस की वजह से। कभी बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया होता लेकिन पेरेंट्स की मुसलसल संजीदगी उन्हें डरा देती है। कभी स्पाउस सिर्फ सॉफ्ट अटेंशन चाहता है लेकिन सामने वाला हमेशा स्ट्रेस मूड में होता है। आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगता है और ये डिस्टेंस हमेशा बड़ी लड़ाइयों की वजह से नहीं होता, कभी कभी छोटे छोटे कोल्ड बिहेवियर्स ही इसके लिए काफी होते हैं। यही वजह है कि आज मुस्कुराना सिर्फ एक सुन्नत नहीं बल्कि एक इमोशनल नीड बन चुका है, क्योंकि हर इंसान अंदर से चाहता है कि कोई उसे वार्मली ट्रीट करे, कोई उसे इम्पोर्टेंस दे, कोई उसे देखकर खुशी महसूस करे। कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत खूबसूरत होने के बावजूद अच्छे नहीं लग रहे होते, आपको पसंद नहीं होते, लेकिन कुछ लोग मामूली शक्ल सूरत के होते हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चेहरों पर सॉफ्टनेस होती है, उनकी स्माइल सिंसियर होती है और उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता। और कुछ लोग बहुत ही परफेक्ट होते हैं लेकिन उनके एक्सप्रेशन में इतनी सख्ती होती है कि खुद ब खुद डिस्टेंस आ जाता है। यकीनन अभी जब मैंने दोनों नक्शे खींचे हैं तो आपके जहन में कोई ना कोई ऐसा आया होगा जिसको शायद आप नाम से ना जानते हो लेकिन उसका चेहरा अचानक से एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आपके सामने आ गया होगा, जो आपसे जब भी मिला मुस्कुरा के सलाम किया। और वो भी आया होगा जो हर वक्त बहुत ही गुस्से में और जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं खड़ूस बन के घूम रहा होता है ना। तो असल खूबसूरती इखलाक की होती है और मुस्कुराहट इखलाक का पहला दरवाजा है। एक और अहम बात, कभी कभी हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि मेरा मूड ही नहीं था, मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैंने मुस्कुरा के नहीं देखा। लेकिन इस्लाम सिर्फ मूड बेस्ड कैरेक्टर नहीं सिखाता, इस्लाम कंसिस्टेंसी सिखाता है। यानी अगर आप थके हुए भी हो तब भी लोगों के लिए अच्छे अखलाक से और उनके लिए आसानी बनने की कोशिश करें। यहाँ ये मतलब नहीं है कि इंसान फेक खुशी दिखाए या अपने इमोशंस को डिनाई करे, बल्कि अगर इंसान अपसेट है तो वो अपसेट हो सकता है लेकिन परमानेंट हार्शनेस को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा ना बनने दें, क्योंकि कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता इमोशनली सख्त इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उन्हें खुद एहसास नहीं रहता कि उनके एक्सप्रेशंस लोगों को हर्ट करें और फिर ताल्लुकात कमजोर होने लगते हैं। आज एंजाइटी, डिप्रेशन, तन्हाई ये सिर्फ मेडिकल इश्यूज नहीं रहे, ये सोशल इश्यूज भी बन चुके हैं। लोगों के पास बात करने वाले कम हैं, समझने वाले कम हैं और सिंसियरली मुस्कुराकर बात करने वाले तो और भी कम हैं। इसीलिए आज अगर कोई शख्स वाकई दिल से लोगों के लिए नरमी लेकर आए तो वो सिर्फ अच्छा इंसान नहीं है, माशरे के लिए रहमत बन सकता है। एक छोटी सी मुस्कुराहट शायद दुनिया ना बदले लेकिन किसी एक इंसान का दिन जरूर बदल सकती है। और बाज औकात किसी का दिन बदलना ही बहुत बड़ी नेकी होती है। इस्लाम की खूबसूरती यह है जिसकी बहुत सी तालीमात वो हैं।

0: जिन्हें इंसान पहले सिर्फ रूहानी तौर पर समझता है और बाद में दुनिया भी उनकी विजडम को डिस्कवर करती है। मुस्कुराने की सुन्नत भी इन्हीं खूबसूरत तालीमात में से एक है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है, तो उस वक्त शायद लोगों ने इसे सिर्फ अच्छे अखलाक के तौर पे समझा। लेकिन आज इमोशनल वेलनेस, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज भी हमें ये बताते हैं कि मुस्कुराना सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि इंसानी जहन, दिल और ताल्लुकात पर गहरा असर डालती है। आज की दुनिया में स्ट्रेस बहुत आम हो चुका है। लोग सुबह से लेके रात तक मुसलसल मेंटल प्रेशर में रहते हैं। किसी को फाइनेंशियल वरीज हैं, किसी को एकेडमिक प्रेशर, किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और किसी को फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है। ऐसे में इंसान का नर्वस सिस्टम मुसलसल टेंशन में रहता है, चेहरा सख्त हो जाता है, लहजा हैवी हो जाता है, पेशेंस कम होने लगता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इंसान का चेहरा सिर्फ अंदर की कैफियत जाहिर नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात अंदर की कैफियत को इन्फ्लुएंस भी करता है। यानी जब इंसान सॉफ्ट एक्सप्रेशन रखता है, मुस्कुराता है, तो उसका इमोशनल स्टेट भी बहुत हद तक काम होने लगता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि बाज लोग जब मुसलसल गुस्से, इरिटेशन या फिर नेगेटिविटी में रहते हैं, तो उनके चेहरे पे एक परमानेंटली स्ट्रेस नजर आने लगता है। और कुछ लोग मुश्किलात के बावजूद नरम रहते हैं, उनके चेहरे पर सुकून महसूस होता है। ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, अंदर की तरबियत भी होती है। इंसान के चेहरे के ऊपर जो ये मुस्कुराहट है ना, ये उसके इमोशनल इन्वायरमेंट को बदल सकती है। जरा इमेजिन करें, आप किसी जगह दाखिल होते हैं जहाँ हर शख्स संजीदा है, अनॉयड है और कोल्ड हो, तो आप खुद भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्कुरा कर वॉर्म स्माइल के साथ आपको ग्रीट करे, तो फौरन से ना मतलब थोड़े रिलैक्स फील करते हैं। यही वजह है कि स्माइल सोशल कंफर्ट पैदा करती है। आज जहाँ लोग बहुत तन्हाई का शिकार हैं, वो लोगों के दरमियान होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ताल्लुकात में वो इमोशनल वॉर्म्थ नहीं रही। लोग प्रैक्टिकल तो हैं, लेकिन जेंटल नहीं और इमोशनली बिजी हैं, अवेलेबल नहीं। इसीलिए ये छोटे छोटे से सॉफ्ट जेस्टर्स बहुत अहम हो गए। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का शो, जिसमें हमने बात की कि अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह जाएगी। मैं आपको एक चैलेंज भी दे रही हूँ, 7 दिन के लिए स्माइल सुनना चैलेंज। जब भी कोई अच्छी बात आप सुनते हैं, तो सुन लेना आसान होता है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना असल चैलेंज होता है। तो आज हदीस टू हैबिट प्रोग्राम में आपका चैलेंज यह है कि इस हदीस को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। आने वाले कम से कम 1 हफ्ते में आप ये स्माइल सुनना चैलेंज को अपनी जिंदगी में शामिल करें। छोटे छोटे कॉन्शियस स्टेप लें, जिसमें आप लोगों से मुस्कुरा के बात करें, किसी से भी। वो आपका सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, ऑफिस का कोई कोलीग भी हो सकता है, क्लासमेट, शॉपकीपर, कोई भी। लेकिन उससे अच्छे स्माइल करके सिंसियर वे में बात करें। और जब भी बात करें, कोई अगर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हो, तो उसमें अपने आप को कंपोज करते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर, अगर डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है, तो इखलाक के साथ अगले बंदे को समझाएं। तो ये आपका इस हफ्ते का चैलेंज है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 1 हफ्ता अगर आपने इस तरह से गुजार लिया, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आप बहुत बेहतरी देखेंगे, तब्दीली देखेंगे, लोगों का अपने साथ बदलता हुआ रवैया महसूस करेंगे और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये था हमारा आज का शो। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक और अच्छी सी सुन्नत, एक और अच्छी सी हदीस के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: बूम कर शेकअप आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
3: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं एक एहसास है कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है
4: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस मेरे लिए है
3: कभी नए सपने दिखाता है मैं हूं आपकी ए फॉर अमृता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक हम बनेंगे आपकी आवाज डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास

इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम

किस्सा सुनाते हुए हाल के इंसान को समझने की बसीरत भी देती है। उसकी शायद सबसे हैरत अंगेज मिसाल खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की अहमियत और इसके अजीम अंजाम को महसूस किया और फौरन फरमाया, या बुनैया ला तक्सुस रुयाका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा। बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान न करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। यहाँ एक नुक्ता है, बारीक नुक्ता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अंदेशा दरअसल क्यों जाहिर किया था। इससे मालूम होता है कि वो अपने बेटों के मिजाज से वाकिफ थे, उनके दिलों में मौजूद कमजोरियों को जानते थे और उन्हें ये भी मालूम था कि कभी कभी नेमत हसद को जगा देती है। अब जरा इस मामले को अकल और मंतिक के जाविये से देखिए। अगर किसी खानदान के एक बच्चे को अल्लाह ताला कोई खास फजीलत दे, कोई खास मकाम अता करे, तो फितरी और मंतिकी रवैया ये होना चाहिए कि बाकी लोग खुश हों। आखिर वो उन्हीं का भाई है ना, उसकी इज्जत उनकी इज्जत है, उसकी कामयाबी उनके खानदान की कामयाबी है। लेकिन हसद मंतिक पर नहीं चलता। हसद कहता है लयूसुफ व अखूह अहब्ब इला अबीना मिन्ना, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब है। अब हसद के अंदर एक और मंतिक पैदा हो जाती है, यानी बजाय इसके कि हम भी अच्छे बन जाए, अपने वालिद के करीब हो जाए दूसरों की तरह, यानी दूसरे जो अपने अपने अच्छे किरदार की वजह से माँ बाप के करीब हैं, इस मंतिक के बजाय वो हसद एक और मंतिक पैदा कर देती है। वो है कि अगर ये न रहें तो मैदान हमारे लिए खाली हो जाए। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहते हैं उक्तुलु यूसुफ अव इत्रहु अर्दन यखलु लकुम वजहु अबीकुम, यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे कहीं दूर फेंक दो, तब तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी। जरा सोचिए बात कहां से शुरू हुई, हमें वालिद की मोहब्बत चाहिए और हल कहां पहुंचा, अपने भाई को कत्ल कर दो। यही इंसानी नफ्स की खतरनाक पेचीदगी है कि जब हसद गालिब आ जाए तो इंसान एक मामूली जज्बाती शिकायत से शुरू करके बड़े से बड़े जुर्म तक पहुंच सकता है। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इंसान जुर्म करने से पहले अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए अपने लिए एक मजहबी या अखलाकी जवाज भी तराश लेता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपस में एक दूसरे को कहने लगे, यानी जवाज तराशते हुए कि भाई उसे कत्ल कर दो, उसे फेंक दो, यानी और उसके बाद तुम नेक लोग बन जाना। तो यानी अभी एक गलती कर लेते फिर बाद में सालेह बन जाएंगे। तो ये इंसानी नफ्स की एक नहायत खतरनाक चाल है। इंसान कहता है बस ये काम कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, बस ये एक जुल्म हो जाए फिर मैं अच्छा बन जाऊंगा। हालांकि हकीकत बिल्कुल बरक्स है कि गुनाह को पहले से मंसूबा बनाकर ये कहना कि बाद में नेकी कर लेंगे, ये तक्वा नहीं बल्कि नफ्स का धोखा है। अल्लाह ताला ने उनके एक भाई के जरिए इस बड़े जुर्म को किसी कदर रोका कि उसने कहा ला तक्तुलु यूसुफ व अल्कूहु फी गयाबतिल जुब यल्तकितहु बादु सय्यारति इन कुंतुम फाइलीन, यूसुफ को कत्ल न करो बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो, कोई काफिला उसे उठा लेगा अगर तुम्हें कुछ करना ही है। यानी कत्ल से तो मामला हट गया, लेकिन एक छोटे बच्चे को अपने खानदान से जुदा करना, उसे कुएं में फेंकना, अजनबियों के रहम और करम पर छोड़ देना, ये भी कितना बड़ा जुल्म था। अब सामने किराम, कुरानी तरबियत में एक और बड़ी बात यह भी है कि कुरान ये भी चाहता है कि बंदा इंसान बसीरत रखने वाला हो, लोगों की बातों से धोखा न खाए, मीठी जबान के पीछे छुपे हुए इरादों को पहचानने की सलाहियत पैदा करे। तो सिलसिले में काफ़ी सारी कुरानी आयात हैं जो हमें इस पर मुतनब्बे करती है, इस अम्र अज़ीम पर। कुरान में एक मकाम पर इरशाद होता है وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुनियावी गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आती है, जबान बड़ी खूबसूरत, लहजा बहुत मुअस्सर, यहाँ तक कि अपने दिल की सच्चाई पर अल्लाह को गवाह भी बनाते हैं, लेकिन हकीकत में वो सख्त झगड़ालू और बदतरीन मुखालिफ होते हैं। इन्हीं जबान की मिठास हमेशा दिल की पाकिजगी की जमानत नहीं होती। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद के पास आते हैं और अल्फाज कितने नरम हैं, लहजा कितना मासूम है, या अबाना मालिक ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून, अब्बा जान आपको क्या हुआ है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर इत्तमाद नहीं करते, हम तो उसके खैर खा हैं। इससे आगे बढ़कर वो मजीद कहते हैं अरसिलहु मअना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिज़ून, उसे कल हमारे साथ भेज दीजिए, वो खूब खेलेगा, खुश होगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो देखिए अल्फाज पर जरा गौर कीजिए, ये जो मीठी जबान है कि हम उसके खैर खा हैं, हम उसकी हिफाजत करेंगे, उसे

0: खुश होने दीजिए, उसे हमारे साथ भेज दीजिए। लेकिन दिल दिल में मंसूबा कुछ और है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु अज़्ज़िबु व अंतुम अन्हु ग़ाफ़िलून। मुझे ये बात गमगीन करती है कि तुम उसे ले जाओ और मुझे अंदेशा है कि कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए जबकि तुम उससे गाफिल हो। वो फौरन जवाब देते हैं, लेकिन अकलहु अज़्ज़िबु व नहनु उस्बा इन्ना इज़न लख़ासिरून। हम इतने लोग मौजूद हों, उसे भेड़िया खा जाए, फिर तो हम बड़े ही नाकाम लोग होंगे। तो जाहिर में कितना एतमाद, कितनी जिम्मेदारी, कितनी खुद एतमादी। लेकिन फिर कुरान कहता है, फलम्मा ज़हबू बिही व अजमाउ अन यजअलूहु फी ग़ियाबतिल जुब। जब वो उसे ले गए तो सबने फैसला कर लिया कि उसे कुएं की तारीकी में डाल दें। और फिर किस्सा मुकम्मल करने के लिए अदाकारी भी जरूरी थी। शाम के वक्त वो अपने वालिद के पास आए, रोना भी था, कहानी भी थी, तफसील भी थी और अपने दिफा का जुमला भी। कहने लगे, अब्बा जान, हम दौड़ के मुकाबले में लग गए थे। इन्ना ज़हबना नस्तबिक। यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया, वो तरकना यूसुफ आइंदा मत आईना। फअकलहु अज़्ज़िब, फिर उसे भेड़िया खा गया। और आप तो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ومن تؤمن لنا ولو كنا صادقين, चाहे हम सच्चे ही क्यों ना हों। सभी कराम, ओवरऑल यहाँ कुरान हमें एक निहायत अहम इंसानी सबक देता है कि झूठ हमेशा बदसूरत अल्फाज में नहीं आता, धोखा हमेशा सख्त लहजे में नहीं आता। बाज़ औक़ात झूठ आंसुओं के साथ आता है, खैरख्वाही के उनवान के साथ आता है, खूबसूरत दलील के साथ आता है, और बाज़ औक़ात कस्मों और नेक नियति के दावों के साथ भी आता है। इसलिए कुरान मोमिन को होशमंद बनाता है। कुरान हमें ये नहीं सिखाता कि हर शख्स पर बदगुमानी करो, बदगुमानी भी दीन का मिजाज नहीं। लेकिन कुरान ये ज़रूर सिखाता है कि सिर्फ अल्फाज से मुतासर होकर फैसला न करो, किरदार को देखो, कराइन को देखो, साबिका रवैये को देखो और बात के पीछे मौजूद हकीकत को समझने की कोशिश करो। तो सूरह यूसुफ में ये इंसानी नफसियात बड़ी गहराई से सामने आती है। एक तरफ हसद है जो भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर देता है, एक तरफ नफ्स का जवाज है जो कहता है कभी जुर्म कर लो बाद में साले बन जाना, एक तरफ मीठी जबान है जो कहती है वइन्ना लहू लनासिहून, हम तो उसके खैर खां हैं, फिर वइन्ना लहू लहाफिज़ून, हम उसकी हिफाजत करेंगे। और कुछ ही देर बाद वही बच्चा कुएं में होता है। तो यहाँ से हमारे लिए बहुत कीमती ये मोती हमें मिलता है कि हर खूबसूरत नारा हकीकत नहीं होता, हर मीठी गुफ्तगू खैरख्वाही नहीं होती, और हर रोती हुई आंख सच की गवाही नहीं देती। और शायद सूरह यूसुफ के इंसानी किरदारों का एक बड़ा सबक ये है कि लोगों को सिर्फ उनके अल्फाज से नहीं, उनके किरदार, फैसलों और आमाल से पहचानिए। क्योंकि कभी कभी जबान कहती है हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, मगर अमल बताता है कि हकीकत कुछ और थी। और कुरान हमें वो निगाह देना चाहता है जो बात के पीछे मौजूद हकीकत को भी समझती है। और यही बसीरत सूरह यूसुफ का एक अहम मोती है जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, ताल्लुकात और फैसलों को समझने के लिए भी हमारे साथ रह सकता है। प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: हेलो एवरीबॉडी, हेलो गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग. वो क्या है कि प्रोफेसर साहब अभी भी शाम में जी रहे हैं. एवरीबॉडी टेक आउट योर बुक्स एंड पेंस एंड पेंसिल एंड व्हाट्सएप ऑल्सो. 666-22-107 इज द नंबर. प्लीज आप मैसेज करें एंड जो भी लंच बॉक्स लाए वो मेरी टेबल पे रख दीजिए. स्पेशली वो लंच बॉक्स जिसमें पराठे वगैरह हो. प्लीज आइए, उड़ जाते हैं.

0: Wake up. Hey, do hawala mein kabir.
1: Yehi kahunga. Subah subah.
0: Wake up.
2: हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी का डाजिर है. अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे. और भाई आली हम भी सुबह सुबह, अब आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी. कल थोड़ी बैटरी कम थी, आज जो है 85% पे है. तो 15% doesn't really matter. 85 is a very good number. तो 6:03, very good morning. उठ गए आप या अभी तक आंख मल रहे हैं? जो लोग आंख मलते हुए भी जा रहे हैं, हाई फाइव ब्रो, हाई फाइव. आई कैन फेल यू. एक मैसेज है खादर अब्दुल आदि भाई का, वालेकुम सलाम लिखते हैं. एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड ऑन ड्यूटी, आई एम प्रेजेंट सर. बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार मेरे भाई को. एक मैसेज, कैसे हो भाई, सुबह हो गई. हम तो क्या है, कुछ लिए ही नहीं, हमें पता है मास्टर जी खा जाते हैं. ये देखिए मेरे बिल दाम. मोहसिन बजे आप डायरी में लिखवाइए, घर से साइन करा के लेके आइएगा. भाई जी, जिसके टिफिन में परांठे हैं जरा रख दो इधर. आज सुबह सुबह पता आने का एक और फायदा और नुकसान दोनों ही है. इसमें क्या है, मेरे को सुबह सुबह मन कर जाता भाई परांठे शरांठे मिल जाए, मजा आ जाएंगे. और आज भाई का मैसेज, वालेकुम सलाम, आपकी बैटरी ऑलवेज 100% रहती है ब्रो. भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से. बहुत प्यार भाई को. जुनैद भाई वालेकुम अस्सलाम. और मैसेज क्या सुभाष भाई ने, गुड मॉर्निंग, नींद तो पूरी हो गई ना भाई? एकदम बढ़िया नींद पूरी हो गई भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभाष भाई. और एक मैसेज आया, हाय हाय जी, कैसे हैं आप, बढ़िया. और एक भाई ने मुझे मैसेज किया कल, स्टोरी ब्रो. भाई मैंने वो चैनल किस लिए बनाया, इसलिए तो बनाया भाई. उस पर आलिया करो थोड़ा सा. और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम प्रेजेंट, ये अंसारी जुल्फिकर साहब, वालेकुम अस्सलाम मेरे जान, थैंक यू सो मच. आपके पास भी वो रील्स आ रही है क्या, वो देखा आपने कि उसमें वो जानवरों के AI बनाए हैं और फिर वो कहते हैं टाइगर का सिलेक्शन हो गया है दिल्ली में. फिर टाइगर कहता है कि पापा मुझे दिल्ली से इंटरव्यू के लिए कॉल आई है. और फिर पापा पूछते हैं, टाइगर बेटा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो बोलता है 10,000 रुपीज़. ये अब मेरे फीड पे आने लगा है. मेरा हर रोज़ एल्गोरिथम अजीब और गरीब चीज़ें मुझे दिखा रहा है. आई जस्ट डोंट नो क्या हो रहा है. जो भी है, एक्सेप्टेड. बट बेहतर है बहुत सारे लोगों के एल्गोरिथम से, इतना मुझे पता है. एक मैसेज, भाई कितने अलार्म बजने के बाद उठे? भाई मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं 7 अलार्म लगा रहा हूं. मैं, मेरे अलार्म शुरू होता है, मैं आपको देख के बताता हूं. एक है 4:30 पे, एक है 4:45 का, एक है 4:50 का, एक है 5 का, एक है 5:10 का, एक है 5:15 का. इतने हैं भाई मेरे पास. 15 तक के अलार्म लगा रखे मैंने. 5:15 वाला अलार्म बिल्कुल इमरजेंसी है भाई वो. क्यों, मे डे तो बिल्कुल आखिरी है. उसमें अगर 5:15 तक भी आदमी सोया रहे तो उसके बाद फिर भाई यूं समझ लेना कि ये बिना

0: जैसी परेशानियां होती हैं पता नहीं था भाई सुभाष भाई मेरी दुनिया में आके कहानी ढूंढ के देखो सही बता रहा हूँ स्वाद आ जाएगा। एक मैसेज है फैसल भाई का, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? गुड मॉर्निंग भाई। मैं तो अलार्म क्या ई अलार्म लगाता हूँ। अब ये ई अलार्म क्या होता है भाई मुझे पता नहीं कौन से अलार्म की बात चल रही है। और एक मैसेज है भाई, आप 5:15 तक अलार्म लगाते हैं? जी भाई 5:15 तक अलार्म लगाता हूँ। मोहसिन भाई कह रहे हैं एक अलार्म में उठ जाते हैं आप? भाई आप, ये सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं कर सकता। एक अलार्म में तो मैं नहीं जग सकता, इट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको सच्ची में लिख के बता रहा हूं, अगर मुझे एक बार नींद आ गई भाई तो आप मेरे कानों के पास में बाहर JCB चला लो, जनरेटर चला लो उसके साथ साथ, और बढ़िया लोगों को नचवा लो और बारात को भी जाने दो, मैं नहीं उठने वाला। मुझे उठाना इतना आसान नहीं है भाई, पूरी आप पूरा कारवां ले जाओ, बट एक अलार्म में तो नहीं उठ सकता। तो आप अगर एक अलार्म में उठ रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो। और जो लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ बैक टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे भी स्कूलों में जा रहे हैं वापस आफ्टर देयर समर ब्रेक्स, तो उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार एंड ऑल द बेस्ट। और उन माँ बाप को मैं सलूट करना चाहता हूँ जो बच्चों को सुबह सुबह तैयार कर रहे हैं। आई नो अब इन्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ रहा होगा भाई, स्पेशली वो जो नए माँ बाप है। एक मैसेज है, आज सुबह की शिफ्ट, अच्छा बोए अभी आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है हम लोगों को मिल। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है आसिफ भाई, दैट इज़ सो ट्रू। मैं बताइए कहता नहीं हूँ लाउडली कहीं नजर ना लग जाए, मगर आपने नोटिस किया हो सुबह 3 घंटे मिलते हैं भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक मैसेज है, नहीं वो अलार्म ही कह रहे हैं, हाँ सुभाष भाई। एक मैसेज है, 5 अलार्म लगा रहता है भाई मेरा। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल करीम भाई, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, यही सेम है, मैं 7-8 लगाता हूँ। लास्ट है बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक वाला। वो गाड़ी एकदम पास में नहीं आ जाती, जब आपको समझ भी नहीं आता क्या करना है, ब्रेक मारते हैं, बम्पर टच होते होते रह जाता है, ये वो वाला अलार्म है 5:15 वाला। तो ऑन दैट नोट, सुबह के अधिकार के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। 6622107 नंबर है, 6622107। मिलते हैं एग्जैक्ट 10:33 के बाद, जाना नहीं है, स्टे ट्यून्ड। अभी तो उठे हैं भाई हम।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अलार्म पे नहीं चल रही है भाई, ना ना ना अलार्म पे नहीं चल रही है, मैं रूममेट्स की कहानी पूछ रहा हूँ। आपका भी रूममेट्स के साथ रहे यहाँ पे कतर में?
1: मैं चार आदमी हूँ एक रूम में।
0: अच्छा अभी भी
1: जी?
0: तो चारों में से, चारों में से सबसे एक्टिव कौन है और सबसे आलसी कौन है भाई?
1: सबसे एक्टिव मेरा है बुजुर्ग, अच्छा बोलूं या बड़े भाई बोलूं?
0: हाँ
1: वो बहुत फास्ट है उठने में, बोले तो एक अलार्म में उठ जाता है वो।
0: हाँ
1: वो अलार्म लगाया है 1:05 का।
0: अच्छा
1: रात का?
0: हाँ
1: मैं लगाया हूँ 1:30 का।
0: हाँ
1: 1:40 का, 1:50 का, मैंने 1:30 से काट के 1:40 का भी उठ जाता हूँ।
0: क्या बात है।
1: फिर एक आदमी हूँ 1:45 का, उसका अलार्म कितना भी बोलो उठने का चांस नहीं, बोले ड्यूटी छुट्टी है।
0: या तो उन्हीं को कह दिया करो वो उठा देंगे, फिर इतना अलार्म आपको लगाने की जरूरत क्या, उन्हीं को बोल दो भाई उठा देना, उठ जाओ। तो
1: मैं बोला मेरे को मत टच करो, मैं खुद अपना नींद पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपना अलार्म से उठ जा रहा, मेरा अलार्म इतना साइलेंट है कि बगल वाला भी नहीं जानता है।
0: ये अलार्म थोड़ी हुआ भाई, क्या मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ चिड़िया की आवाज लगा रखी है क्या? इतना इतना इतना छोटा अलार्म कौन सा?
1: किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, वो क्या पता मेरा लोग में ऐसे है ना सर कि किसका कौन सा दिन डे ऑफ है किसी को पता नहीं चलता है।
0: अरे तो ये तो डिस्कस कर लिया करो यार, चार लोग हो तो थोड़ा तो मतलब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मतलब कमाल है यार,
1: कंपनी सब किसका डे ऑफ कर दे, जैसे अभी जाऊंगा शाम को बोलेगा नूर
0: अच्छा
1: नहीं आओ।
0: अच्छा वैसा, ओके अब मैं अभी अभी समझा, मैं अभी समझा। नहीं यार वेरी गुड यार, तो चारों लोगों में दोस्त, चारों लोगों में दोस्ती है या नहीं है?
1: नहीं चारों लोगों में दोस्ती है, एक तो बस 2:30 बजे उठता है, वो तो ड्राइवर है उसका कोई टेंशन नहीं है।
0: अच्छा ओके, ओके।
1: जो हम लोग 1:30 बजे उठता है ना,
0: हाँ
1: हाँ, तो उस टाइम 11 बजे तक नींद आता है।
0: हाँ
1: और 1:30 बजे उठने में इतना कष्ट होता है ना।
0: अरे रे रे बेचारे
1: यार, बहुत मुश्किल
0: यार। तो जरा नाम ले दो, तीनों के नाम ले दो, तो आपके साथ है ना उन तीनों के नाम दे दो यार, उनको भी बेचारों को शॉर्ट आउट दे दो।
1: एक तो है मेरा चाचा जो बोलेगा या बड़े भाई बोलेगा, मोहम्मद
0: ठीक है,
1: पुरन कवारी
0: ठीक है,
1: और मेरा नाम है नूर मोहम्मद मंसूर
0: ठीक है,
1: का है मोहम्मद इम्ताज।
0: क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी, और आपके सारे रूममेट्स को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से मेरी जान, थैंक यू सो मच। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। तो नूर मोहम्मद साहब के बाद एक मैसेज आया है, कबीर भाई हम लोग रहते हैं रूम में चार आदमी, पाकिस्तानी, एक बंगाली और एक क्या है, एक ऋतु भी है, सबसे सबसे क्या, एक सेकंड, सबसे आलसी, अच्छा सबसे आलसी भी। आलसियों को होना जरूरी है भाई। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आपका नाम?
2: आरिफ
0: अंसारी। आरिफ भाई क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार शानदार शानदार। हाँ तो भाई बताओ, रूममेट की कहानी सुनाओ यार।
2: अभी तो आप सुबह में आ गए।
0: हाँ भाई सुबह में आ गए, हाथ से बता के थोड़ी होते।
2: बस हो जाते हैं,
0: बस हो जाते हैं भाई, बता के नहीं होते भाई, ऐसे ही सीन है। तो बताओ आरिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब बढ़िया। नहीं भाई नाश्ता कहाँ, 6 बजे नाश्ता करा रहे हो, 9 बजे करेंगे भाई शो वो खत्म करके।
2: भाई आ जाओ भाई, मैं करा दे रहा हूँ।
0: अरे भाई आपकी मोहब्बत है मेरी जान, कोई बात नहीं 9 बजे हम कर लेंगे मेरे भाई, अभी कहाँ से उठ के आ जाऊँ। कहा जैसा होता पोर्टेबल रेडियो, रास्ते भर शो करता हो जाता मैं मंसूरा तक। क्या टेंशन थी तो। अरे भाई बताओ यार, आपके रूममेट्स में रहे हो कभी, रूममेट्स के साथ रहे हो कभी?
2: भाई पहले तो नया था तो रूममेट में तो रहा हूँ, तो ज्यादातर रूममेट में साथ नहीं रहते, तीन चार बंदे हो गए।
0: अच्छा
2: मैं 10-10 बंदे के साथ रहता हूँ।
0: 10-10 बंदों के साथ रूम में रुके हैं आप?
2: एक महीना में अभी आया था इससे पहले अभी।
0: हाँ तो कहीं पे भाई, तो कहीं पे कैदी वैदी थे, मतलब 10 लोग तो बहुत ज्यादा हो गए भाई।
2: नहीं भाई मैं आया था तो मेरे पास जॉब नहीं था, मैंने रिजाइन करके गया था पहले वाले काम।
0: अच्छा ओके,
2: तो रूम ढूंढ रहा था तो रूम को उस टाइम पे अब नहीं रहा था उतना अच्छा था, एक मिला।
0: हाँ
2: पहले रूम में 10 बंदे और 10 वो इतने मतलब कि वो बस अब कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले बंदे कैसे होंगे।
0: अच्छा
2: समझ सकते हो, किसी का टाइम 12 बजे है, किसी का टाइम 2 बजे है रात को, किसी का टाइम 10 बजे दिन में, किसी का 2 बजे फिर रहता था। वो रूम में मैंने लिया था एक महीने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काम मिल गया, 15-20 दिन में ही काम मिल गया था
0: भाई। लेकिन 10 लोगों में खाना पीना कैसे कर रहे थे, मतलब साथ में कर रहे थे कोई अलग बना?
2: भाई मैं होटल में खा रहा था भाई।
0: अच्छा

0: भाई वो उधर तो इतना खटमल था, तो वो मेरे को सोने में इतना तकलीफ हुआ था, और उसके बाद जल्दी काम मिल गया उसे।
1: अरे यार भाई सलूट है भाई, सलूट है भाई। मैंने ये मेरे ख्याल में जिंदगी में दूसरी मरतबा सुना है कोई बंदा 10 लोगों के साथ रहा है। एक तो मैंने जेल की कहानी सुनाई थी, तब कोई बंदा 10 लोगों के साथ, और आज सुना है भाई। बढ़िया भाई,
0: भाई सलूट। अभी भी 10 बंदे रहते हैं भाई।
1: भाई उन सबको मेरा सलाम है, वो एक दूसरे को कैसे समझ रहे हैं बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है भाई।
0: अल्हम्दुलिल्लाह चार बंदे हम लोग रहते थे, तो एक तो अभी चेंज ले लिया कंपनी से, तीन अच्छा, बंदे हैं। रात को मैं 2 बजे तक मोबाइल गेमिंग करता हूँ, फिर भी उन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों बस फोन में लगे रहते हैं, एक इधर बात करके, मतलब वो आप घूम जाएंगे ना वो लोग किसी ना किसी से फोन पे लगे रहेंगे।
1: क्या बात है भाई, तो ये एसटीडी और पीसीओ वालों के साथ रह रहे हैं हम, कोई टेंशन ही नहीं है भाई।
0: मेरे को उन लोगों से मतलब नहीं है, किधर बात कर रहे हैं वहाँ पर, अलहमदुल्ला अच्छे से हम लोग बात करते हैं।
1: एक सच्ची बात बताओ, उनकी बातें सुनते हो कभी कभी ध्यान लगा के बताओ?
0: नहीं भैया, मैं क्या बात है ना कि मैं अपना क्या, या तो मैं गेम खेलता हूँ या फिर मैं सो जाता हूँ।
1: अच्छा ठीक है, सही है भाई, सही है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो दोनों से दोस्ती है या नहीं है? बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है।
0: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दोस्ती है दोनों।
1: अच्छा फिर ठीक,
0: मतलब हम लोग कंपनी खाना देती है, पर कभी हम लोग को खुद से खाना, मेरे को अकेला मन कर दिया कुछ बना के खाने का, मैं उन लोगों को फोन करूंगा, मैं ये लेके आ रहा हूँ बना के खाएंगे, वो लोग बोलेंगे ओके।
1: मेरे
0: को खाना भी बनाने के लिए नहीं आता है, तो एक बंदे को बोलता हूँ भाई तू बना।
1: तो सारे एक कंट्री के
0: दे रहा हूँ तू बना,
1: सारे एक कंट्री के, अलग अलग कंट्री के?
0: हाँ सारे एक ही कंट्री के, मतलब बॉर्डर साइड से है बिहार का।
1: अरे तो फिर तो बढ़िया, अरे बिहार से और ये यूपी से तो अलग ही बैठ
0: है। नेपाल से पर बिहार का बॉर्डर,
1: मैं समझ गया, हाँ बॉर्डर लगता होगा, वो तो ठीक है, उतना तो चलता है, मैं वो मेंटेनेबल है, ठीक है। अच्छा है,
0: जब आता हूँ ऐसा, मतलब मैं कुछ भी खाने का दिलो मेरे पास बोलता हूँ लेके आ रहा हूँ बनाना है, वो बोलता है लेके आ।
1: बढ़िया भाई, आपके रूममेट्स को मेरा सलाम और प्यार मेरे भाई, थैंक यू सो मच कि आपने ये शेयर किया।
0: लोग भी कुछ नहीं बोलते, मैं 12 बजे 2 बजे 3 बजे गेमिंग करता हूँ, कुछ नहीं बोलते, वो भी बिना हेडफोन का बिना कुछ फुल साउंड में।
1: अरे तो करते क्यों भाई ऐसा? आदमी खुद ही धनिया वो दे रहा है उनकी जिंदगी में, कह रहा है कुछ बोलते थोड़ी है ये भाई, हो सकता है शर्म के बारे में बोल रहे हो दो भाई। तो
0: अब एक 2 बजे तक बात करता है, मैं बोलता हूँ भाई किधर इतना बात करते हो, बोलता है कहाँ बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैं इतना खुद का बीवी से बात नहीं करता, तुम इधर कितना बात कर रहे हो, बात कर रहे हो मालूम नहीं।
1: अरे छोड़ दो बेचारों को, जिंदगी जीने दो, हेडफोन ले लो मेरे भाई, क्यों उनके ऐसे ऐसे कर रहे हो भाई।
0: नहीं कभी कभी थोड़ा टांग खींचता रहता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं खुद का बीवी से इतना बात नहीं कर रहा, तुम कितना इधर बात कर रहे हो।
1: हाँ तो उनकी भी शादी हो जाना तो वो भी नहीं करेंगे, क्या टेंशन है।
0: एक शादी हो जाए भाई।
1: अच्छा ऐसा है क्या? ओ
0: एक है एक नहीं है।
1: अच्छा अच्छा, मैं समझ, इतनी तो हमें भी समझ है भाई, इतने तो हम भी बालक नहीं है, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने शेयर किया, आपके वजह से बहुत सारे मैसेज और भी आए, जजाक अल्लाह मेरे भाई, थैंक यू सो मच, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई जो भाई ने अपना किस्सा शेयर किया ना, ये मैं ये कमाल का है यार, भाई हेडफोन ले लो, मेरी इतनी गुजारिश है। एक मैसेज अलीना का, उन मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, टुडे इज एंडियास बर्थडे, शी इज टर्निंग 30, आ यू लव एंडिया, बहुत बढ़िया, विशिंग हर हैप्पी बर्थडे, जीरो फर्क पड़ता मगर ठीक है, फॉर अलीना, ओनली फॉर अलीना। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, कैसे हैं आप। एंड देन एक मैसेज किया है अफजल उस्मानी भाई ने, और इनके बाद एक मैसेज किया है अजहर हुसैनी भाई ने, अरे दोनों के सरनेम ओके। लतीफ़ भाई ने मैसेज किया, लतीफ़ भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है भाई, सबसे आलसी, अच्छा आपके कमरे में कह रहे हैं एक सूडान से हैं वो सबसे आलसी हैं, बाकी एक बंगाली हैं, एक पाकिस्तानी हैं, एक रितु भी, रितु यूसुफ भाई क्या नाम बता रहे हैं, जगह का नाम बता रहे हैं। एक मैसेज है कमालुद्दीन शेख साहब का, वालेकुम अस्सलाम, और एक मैसेज है गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बलिया, आई एंड माई फ्रेंड्स ऑलवेज लिसन टू यू फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यू शो brings us happiness every day and we feel connected to home because of you, thank you for your wonderful energy. Bala bhai ko bahut sara pyar hai yaar, I'm really happy. Bala bhai jo hain wo Saudi Arab se sunte hain, Uttar Pradesh se hain aur unke sare dost sunte hain, how sweet of him, unhone itni dur se message kiya, thank you so much bhai, bahut sara pyar bhai ko. Sumul one message karti hai, my roommate my husband, apni ammi ka bigda hua bachcha. अरे अरे सुम्बुल बहन क्या बोलूँ मैं, इस पे मैं निशब्द हूँ, आई के नॉट कॉमेंट ऑन दिस। आरे वंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम भाई, थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज है, ये मैसेज है गुड मॉर्निंग फ्रॉम लीना ज़ारा एंड, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, लीना ज़ारा एंड, क्या बात है यार, मुझे लगा तीनों ने एक तरीके की अभी

0: बालों का स्टाइल कर रखा है, बट रियली नाइस. कितनी प्रॉपर यूनिफॉर्म है इस स्कूल की, माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, भर भर के. और ड्राइव कौन कर रहा है गाड़ी, मुझे मुना जी ये बताएं आप, ड्राइव कौन कर रहा है गाड़ी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, कॉल आ गई. हाय, हेलो हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक ठाक हूँ. सुंबल बहन, क्या चल रहा है?
1: कुछ भी नहीं चल रहा है.
0: कुछ भी नहीं चल रहा है. आपको हाई फाइव दिया है तबस्सुम ने, तबस्सुम बहन, उन्होंने भेजा हाई फाइव टू यू. वो शायद इसलिए कहा है तुम, क्योंकि आपने कहा ना कि मेरे हस्बैंड में बिगड़ा हुआ बच्चा है.
1: एग्जैक्टली. आप रूममेट की बात करो, सोलमेट की बात करो ना, इनके साथ रहना कितना मुश्किल होता.
0: बहुत भारी टॉपिक हो जाएगा.
1: कहीं भी नहीं जा सकता, मतलब आपके चारों तरफ खाई है.
0: मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा झूठ सा सुनाई दे रहा है. चलती तो आपकी होगी भाई, वो क्या कर लगा बंदा बेचारा?
1: क्या मतलब चलती मेरी?
0: और क्या?
1: चलती तो ऑब्वियस मेरी है.
0: तो फिर
1: मैं सुधार सुधार के थक गई हूँ.
0: ये बिल्कुल वैसा है, जेलर साहब कह रहे हैं ये वाला कैदी मुझे बहुत परेशान करता. कैदी बेचारा सलाखों की दूसरी तरफ है, वो कैसे परेशान करेगा ये बताइए.
1: आप खुद ही पता है.
0: मैं तो क्या बताऊँ, मैं खुद कैदी हूँ.
1: मैं आपसे ये सुनना चाह रही थी.
0: दे बिल्कुल, मैं जेलर साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता भाई, मेरे को रोटी खानी होती है. क्या बोलूंगा. तो मैं निशब्द
1: हूं. मतलब हाँ. रूममेट के साथ पता है आप तब भी गुजारा कर लेते हैं.
0: अच्छा.
1: जब हॉस्टल में रहा करती थी तो मतलब इट्स रियली अमेजिंग टाइम. और वो कैटल में मैगी बनाना, मतलब एक बहुत अलग. और सबसे वर्स्ट काम होता था कि वॉशरूम कौन क्लीन करेगा.
0: पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ इस बात पे कि जब फीमेल्स का ऐसा रहता है जब उनकी रूममेट्स होती हैं तो क्या ज्यादा लड़ाई होती है फीमेल्स में एज रूममेट्स, बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो.
1: मैं आपको क्या
0: मुझे बताइए, मुझे लड़ाई जाननी है. मेरे को आज गॉसिप चाहिए.
1: मतलब बहुत सारी चीजें होती है.
0: अच्छा.
1: गर्ल्स अगर हॉस्टल्स में रहती हैं या रूममेट्स होती हैं तो उनके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. लड़ाई ऐसी लड़ाई कि एक दूसरे की चोटी पकड़ पड़
0: रही, उसमें तो मजा है.
1: वीडियो बना रही होती.
0: यही तो जानना है मुझे, इसीलिए तो मैं रेडियो जॉकी बना हूं.
1: सामान क्यों पड़ा है, तूने मेरी चीज क्यों ली. और एक बार ऐसा हुआ ना कि हम वो कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल होता है ना परफ्यूम का, एक बंदे ने वो ऑयल निकाल के उसके अंदर पानी भर दिया. तो भाई पूरे हॉस्टल में हंगामा है कि ये पानी किसने डाला है इसमें.
0: वाह.
1: तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है कि मेरा परफ्यूम किसने यूज किया, मेरा मेकअप किसने यूज किया, ये वो. तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है.
0: लड़के आपको पता है एक परफ्यूम की अगर स्प्रे बॉटल होगी ना, वो पांच लोग शेयर करके चुपचाप ही यूज कर रहे होंगे उसे.
1: हाँ, यही
0: ये है लो मेंटेनेंस हम लोगों का, ये आपको बताना चाह रहा हूँ.
1: खाना निकाल, अगर किसी ने फ्रिज में खाना बना के रखा है तो खाना निकाल लो, क्योंकि भाई लड़कियां हैं उनको नहीं पसंद है खाना बनाना. मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा बना लेते हैं.
0: तो आप कितने कितने टाइम तक रही हैं, मतलब हॉस्टल में कितने टाइम तक रही, कितने टाइम तक आप रही हैं?
1: दो साल
0: रही हैं. तो आपकी खुद की कोई पर्सनल कभी जाती प्रॉब्लम हुई, लड़ाई वड़ाई हुई? नहीं हुई.
1: नहीं, मैं वो उस टाइप की बंदी नहीं हूँ कि वो भाई लड़ी भरी.
0: तो आप मतलब शुरुआत से ही जेलर है, जेलर मेंटेलिटी शुरुआत से.
1: भाई मेरी चीज है, टच मत करो, लॉक डाल के रखूंगी.
0: क्या बात है, क्या बात है. तो सोचिए आप इतने ज्यादा माशाल्लाह तेज तर्रार हैं, उसके बाद आप बेचारे घर पे जो
1: क्या है? मतलब तेज तर्रार हूँ आपका कहना.
0: नहीं, तेज तर्रार ना, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव.
1: आपने मुझे टैगलाइन दिया है कि मैं तेज तर्रार,
0: पॉजिटिव वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे. मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ समझदार, वो डिक्शनरी पलट गई, पेज दूसरा आ गया. तो ये कहना चाह रहा हूँ, समझ गए आप.
1: और फिर नाइट आउट करना, बंक करना, तो ये सब बहुत एंजॉयबल था.
0: क्या बात है,
1: माशाल्लाह. लेकिन अब हाँ. सोलमेट के साथ रूममेट बन गई हो तो अल्लाह ही बचाए.
0: तो आपके जो सोलमेट है वो बंक कर पाते हैं, नहीं कर पाते हो?
1: मैं बंक करवा लेती हूँ.
0: आप करवा लेती हूँ, वेरी नाइस. तो चल तो इवेंचुअली आपकी रही है.
1: मैं रात के 12 बजे की मूवी की टिकट बुक करती हूँ, मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ मैं उनको. अच्छा, वो समझ जाते हैं कि भाई आज बंदी ने मुझे टाइम से पहले खाना दे दिया.
0: Very
1: बच्चे good. छोड़े उनकी खालाओं के पास. मैंने कहा आज भाई मेरा मूवी डे है, मैं रात के 12 बजे की टिकट बुक. मैं मेरे हस्बैंड को पूछा चलो ना आज एक ड्राइव करके आते हैं, चाय पी के आते हैं. और कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा बस जा रही हूँ, थोड़ा सा आगे जा रही हूँ. ये तो मूवी टिकट हॉल आ गए हम लोग,
0: माशाल्लाह. तो यानी अगर 8 बजे के करीब खाना या 6 बजे के करीब लग गई है प्लेट, तो रात में जाना ही
1: है. कुछ प्लान है? हाँ बिल्कुल,
0: माशाल्लाह. और आप कंप्लेन उस मासूम पे कर रही है, कितना मासूम है वो आदमी यार.
1: मतलब आपको मुझे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए।
0: नहीं मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे ही रहा हूँ।
1: आप ये बोलना चाहिए।

0: ऐसी बनो
1: ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए मुझे. ठीक है, मैं मुझे भी घर जाना है तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कीप इट अप.
0: अच्छा हाँ, समझ गई मैं.
1: नहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिया है अपना, और मैं हमेशा से ये जानना चाहता था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब लड़के रूममेट्स होते हैं तो उनके झगड़े ऐसे होते नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है.
0: नहीं होते यार, लड़के रूममेट्स होते हैं वो कहाँ से झगड़े करेंगे, बेचारों को आशिकी से फुर्सत नहीं मिलती है.
1: नहीं अब ऐसा, ये तो आप मतलब
0: मैं अगर इन सेंस में कह रही हूँ तो लड़कियां भी लगी होती है.
1: हाँ वो ठीक है,
0: जो इस तरीके के होते हैं ना तो फिर तो मोस्टली बॉयज जो रहते हैं तो उनका ये होता है, उनमें लड़ाई भिड़ाई नहीं होती. हाँ भाई एक चीज लाया तो सारे रूममेट यूज कर रहे हैं.
1: और क्या,
0: तू ले आया नेक्स्ट टाइम से मैं लेकर आऊंगा.
1: लड़कों में होता है अगर एक
0: शेयर कर दे भाई,
1: एक अगर एक परफ्यूम की बॉटल अगर चार रूममेट है एक बंदा ले आया ना तो उसका मतलब ये है कि सबके सब लगाएंगे.
0: एग्जैक्टली, आई नो, लेकिन ये हमारे अंदर फीलिंग नहीं है, हम नहीं कर सकते.
1: दिल को इतना पत्थर मत बनाइए. पर शुक्रिया आपने कॉल करी. थैंक यू सो मच.
0: मैं चट्टान बना लूं, पत्थर की बात कर रहे हैं.
1: शाबाश 6 नो से कह रहा के संबोल जी की कॉल आई थी. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: ओके थैंक यू, बाय बाय.
1: वालेकुम सलाम. तो अब कोई आगे बोल सकता है क्या, टीचर के आगे कोई बोल सकता है क्या. एक मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग चॉकलेट भाई. मेरा भाई मुझे चॉकलेट भाई कहता है. इकरम साहब का मैसेज है, होप यू डूइंग वेल. देखो कौन आया प्रा. और लिखते हैं आयशा इकरम सेइंग यू दिल से देसी अंकल कबीर. आयशा इकरम को बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार. एंड आज आयशा गई स्कूल प्रॉपरली, मतलब आज तो उन्होंने शिकायत सुबह नहीं करी. और माज भाई इज़ ड्राइविंग, तो माज भाई थैंक यू सो मच, क्यूट फोटो ली यार आपने, थैंक यू. फरद भाई ने मैसेज किया है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सुबह कल से ही स्टार्ट हो गया, कैसा लग रहा है भाई आपको सुबह आके. सूरज निकलने से पहले आ गया था भाई, मैं प्रॉपरली सूरज भी नहीं उठा था, वो बिस्तरे से उठा था, कंबल में था, तब मैं पहुंच गया. कह रहा कैसे कह दिया आपने, मैं वही तो हूँ, सॉरी बोल दिया मैंने भाई. और एक मैसेज है, हम तीन रूममेट हैं लेकिन सब मज़े में. वेरी गुड यार, ये रूममेट के साथ अगर बॉन्ड बन जाए ना तो जीत है भाई, जीत है मोहसिन भाई. और फराज भाई कह रहे हैं सलाम भाई, वालेकुम सलाम. गर्ल्स के आपस की टॉक में हमेशा थर्ड अनअवेलेबल पर्सन की बुराई होती है. मैं कमेंट नहीं करूंगा वराज भाई, आप मुझे फंसाना चाह रहे हो भाई. एक मैसेज है, सब लड़कियां तबस्सुम बहन जैसी है. मैं समझा नहीं मोहम्मद इमरान भाई, इस पर थोड़ा एलेबोरेट करें. इंजीनियर मोहम्मद फैजान साहब कहते हैं, मेरी सफा की तरफ से गुड मॉर्निंग कबीर भाई. अरे माशाल्लाह भाई, म्यूजिक रुको, इतना प्यारा फोटो खींचा है इन्होंने, अजन का नाम अपने सफा रखा है माशाल्लाह, और सर पे एक बोटाई भी लगाई है, प्यारी सी ग्रीन ड्रेस भी है, माशाल्लाह वेरी नाइस भाई, बहुत प्यारी फोटो क्लिक करिए. सुबह सेट कर दिया आपने माशाल्लाह, कितने साल की हो गई हैं ये. और एक मैसेज है, टीचर साहिबा से बच के रहना भाई. बिल्कुल भाई, मैं तो साइड में हो लिया. बहस को नहीं करता भाई मैं. एक मैसेज हो रहा है मेरे पास, ये अतीक भाई का मैसेज. अतीक भाई कह रहे हैं, कबीर भाई मेरे तीन रूममेट्स हैं और तीनों के तीनों हम आपस में परफ्यूम बॉटल से लेकर शैम्पू से लेकर हर एक चीज़ शेयर करते हैं. वेरी गुड. और कह रहे हैं, हमारी ड्यूटी असाइन होती है, हम में से सिर्फ एक बंदा है जो हर टाइम खाना बनाता है, बाकी दो खाते हैं, और हम तीनों में से बर्तन की ड्यूटी बारी बारी लगती है, तो हम बहुत ही सॉर्टेड तरीके से रहते हैं. यही तो अचीवमेंट भाई, ये कोई हल्की बात नहीं है, आपने हल्के में कह दी. अगर ऐसे रूममेट्स हैं ना जिनमें ड्यूटी डिवाइडेड है और सब अपन अपना काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है भाई. और परफ्यूम शेयर करना लड़कों में चलता है, कोई टेंशन नहीं. एंड थैंक यू सो मच इंजीनियर फैजान साहब, ये आपने मुझे फ़ोटो भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग. ये मैसेज किया है अज़हर हुसैनी भाई ने, थैंक यू भाई. और क्या मैसेज आया मेरे पास, एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, टीचर साहिबा ने एकदम सही कहा है. आपको कैसे पता टीचर साहिबा ने सही कहा है? ये सुमुल भाई ने आपने वकील भी रखी हुई है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. एक बार जी कबीर भाई, फुर्सत मिल गई तो मेरे को थोड़ा कॉल करना, थोड़ी सी कॉल करूँगा फिर मैं. रुको मैं इनको थोड़ी सी कॉल कर लूँ, मैं थोड़ी सी कॉल की जाए. ये नाम है यूसुफ भाई कॉल कर रहे हैं हम. एक सेकेंड, कॉल उठाओ यूसुफ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी. शाबाश. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
1: सलाम.
2: कैसा है भैया, खैरियत है?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खैरियत भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
2: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप बहुत खुश है मैं देख रहे भाई.
1: भाई मैं तो डेली खुश होता हूँ भाई,
2: इसलिए आपको रेडियो में दिखा रहा ना.
1: मैं तो भाई कभी रोते हुए मैंने शो किया ही नहीं. कभी ऐसा सुना नहीं होगा आपने. मैं तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता हूँ, स्पेशली जब शो के टाइम भी. भाई आप कहाँ निकले हैं, कहाँ की सवारी है आज?

0: आज वाला भाई मेरा ड्यूटी है भाई, ड्यूटी कर रहे हैं।
1: ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ पर हैं? रस्ते में हैं, ड्यूटी पे पहुंच गए हैं?
0: शाहनिया पे भाई,
1: शाहनिया पे,
0: शाहनिया पे।
1: अच्छा अच्छा, ओके। तो यूसुफ भाई, अब रूममेट का सिस्टम है आपके यहाँ? आप रूममेट्स के साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं या कभी रहे हो?
0: भाई हम लोग का जो रूम है तो बदू का है ना।
1: अच्छा, ओके ओके ओके।
0: हम लोग यहाँ पर रूम पे चार आदमी रहता है।
1: अच्छा हाँ, तो आपने बताया कि आप कहाँ से हैं वैसे?
0: मैं बांग्लादेश से।
1: आप बांग्लादेश से, तो आपका एक बांग्लादेशी रूममेट है, एक पाकिस्तान से, राइट?
0: जी।
1: तो आपस में बनती है सबकी या फिर बस अपने काम से काम?
0: नहीं नहीं, आपस में अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सेट है, पूरा दिन इसलिए वाईफाई लगा हुआ है, काम खलास है, बस मोबाइल हर कोई जोर से चालू है।
1: तो आपस में बात नहीं कर रहे? सब सेट है, वाईफाई लगा हुआ है, सब सेट है, मेरे को मतलब ही नहीं। ये सही है भाई।
0: नहीं नहीं, कोई कोई किसी के ऊपर शिकायत नहीं है। कि इथियोपिया का है, आप इथियोपिया का नहीं समझा? हफ्शी बोलते इसको।
1: हाँ हाँ हाँ, भाई भाई थोड़ा, अरे मेरी जान थोड़ा जुबान पे काबू रखो यार, तुम तो ऐसे बात करो ऐसे मैं तुमसे सड़क पे मिलके बात कर रहा हूँ। रिलैक्स मेरे भाई, थोड़ा सा काबू में रखो अपनी जुबान को यूसुफ भाई।
0: चलो भाई, जुबान को लगाम दे दिया।
1: हाँ लगाम दे के रखो भाई, थोड़ा सा काबू में आ जाओ, इतना ओपनली मत जाओ, ठीक है? पर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी, ये बताया, और थैंक यू सो मच। ओके मेरा भाई, ओके भाई। तो इनके बाद जो है मैसेज पढ़ देता हूँ। ये मैसेज है माज भाई का, कह रहे हैं परफ्यूम, डियो, कार, बाइक और कंसोल, लैपटॉप, समटाइम्स कपड़े इंक्लूडिंग, हाँ वो तो है ऑब्वियसली, साबुन, शैम्पू, सो ऑन। माज भाई एकदम सही कह रहे हैं माज भाई, दैट इज़ हाउ शेयरिंग इज केयरिंग। और एक मैसेज है भाई, मेरे रूम में हैं 20 बंदे, क्या बात करो? कह रहे भाई मेरे रूम में 20 बंदे रहते थे, लेकिन खाना 5 जगह बनता है, 5 जगह बनता है, ओके। हमें अगर भूख लगी तो किसी के बर्तन से निकाल के खा लूँ। अपने खाने के बर्तन में कुछ लोग मार्क लगा के भी रखते हैं। 9 महीने साथ में रहा हूँ उन लोगों के। 20 लोग भाई, क्या हॉल में रहते? मुझे प्लीज एक्सप्लेन करें, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, प्लीज। एंड आयशा इज ऑन द वे टू स्कूल, बच्चे ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मैं टीचर साहिबा के हस्बैंड का रूममेट हुआ करता था। अरे ये क्या जावेद इकबाल साहब ने कहाँ से घुमा क्या, एकदम बढ़िया। ये कह रहे हैं, मैं टीचर साहिबा के हस्बैंड का रूममेट हुआ करता था व्हेन वी वर बैचलर। कभी मेजर लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, लड़कों में कहाँ रूममेट में लड़ाई होती है, बड़े मासूम किस्म के रहते हैं उन्होंने। अच्छा, हमें ये लगता है कि क्यों ही लड़ें, समझ रहे हैं आप? और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई, हम चार रूममेट हैं, हम मिल बांट के काम करते हैं, खाना बनाते हैं, जो फ्री हो जाएगा वो पहले रूम में आएगा और खाना बनाएगा। तो सबको खाना बनाना आता होगा ना भाई? इमरान भाई मैं तो फंस गया था भाई, मुझे आता नहीं था खाना बनाना, और मेरा रूममेट ऐसा था वो कहीं का मसाला कहीं भी डालता था भाई, वो मटन का मसाला वो नूडल में डाल रहा होता था, तो ऐसा भी जीवन काटा है मैंने। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम टू मॉर्निंग, इकबाल नेपाली साहब का मैसेज है। और एक भाई कह रहे हैं, प्लीज़ कॉल मी, ओके। ये सैयद हैदर अली शाह साहब का मैसेज है, इधर भाई मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, एक सेकेंड ना, इतने सारे 7 हैं आपके नंबर में कि मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, एक सेकेंड रुको, ये गई कॉल, ओके। इनके बाद 20 लोग, हाँ 20 लोग, मास भाई सही सुना आपने, कह रहे जॉइंट फैमिली। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल अकबीर भाई?
1: मैं बढ़िया भाई, आप सुनाइए, आपके क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, वेलकम बैक इन द मॉर्निंग।
1: थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं तो लोगों से वही करता, मेरे नाम की किसने गुड़िया बनाई है जो सुबह बुला लेते हैं बार बार।
2: इस सुबह भी लोग जो उठते हैं उनकी आपको तकलीफ का एहसास होगा थोड़ा सा वैसे।
1: थैंक यू सो मच भाई, ये एहसास मुझे शाम में बात करके बता देते यार। सुबह बुलाना की जरूरी था, पर थैंक यू सो मच।
2: आप भी मेरे जैसे नाइट पर्सन हो तो इस वजह से सुबह में अच्छा शायद ना लगे आप।
1: हाँ अभी धीरे धीरे, जब तक आदत पड़ जाती है ना तब तक फिर इवनिंग शो जाता है, समझ रहे हो? तो मेरे साथ कहानी ऐसी है। आप बताइए भाई कैसे है, सब बढ़िया?
2: एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक आपने, इसमें बहुत सारी यादें लोगों की जुड़ी होंगी, चाहे वो कॉलेज से हो चाहे वो जॉब की हो, तो बड़ा अच्छा सुन के लगा, मैंने कहा मैं आपको मैसेज करूं।
1: प्लीज बताइए, आपका क्या सीन है भाई, आपका क्या कहानी है?
2: भाई लिटरली मैं अगर आपको बताऊँ, 2007 से लेके अब तक मैंने बैचलर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन जब पढ़ने शुरू किया, बाहर गया, इवन के थोड़ा सा टाइम मैंने इंग्लैंड में गुजारा, तब से लेके अब तक और शेयरिंग में और दोस्तों के साथ रहा हूँ, अब तक भी वही चल रहा है।
1: अरे वाह,
2: तो
1: अच्छा।
2: इतने ज्यादा किस्से हैं कि ना पूछे आप।
1: कोई ऐसा चुनिंदा जो आप बताना चाहें?
2: चुनिंदा में कुछ अभी, क्योंकि रिसेंट वाकरा में फीफा के टाइम से थोड़ा सा पहले हम लोग वाकरा में शिफ्ट हुए, तो हम लोगों ने बड़ा घर ले लिया, हम लोग 8 दोस्त थे, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते थे, खाने की भी टेंशन नहीं थी, मोस्टली मैं ही बना लेता था।

0: था।
1: अच्छा।
0: यहाँ हमारी वो दावत सजती थी जुमे को, मेरे दोस्त हैं लखविया में पुलिस में, सब वो आ जाते थे, 15-20 लोग हम इकट्ठे होते थे। तो उसमें तो तीन चार आठ लोगों में जो तीन चार लोग थे वो सब रात को या सोते टाइम बातें करते थे।
1: अरे अच्छा, सारे के सारे
0: एक तो नहीं, तीन चार आठ में से आप सोचो कि मैं अगर लेटा हूँ, एक तो कुछ लोग आपने कुछ बोल दिया, वो एक तो उसमें पूरी पूरी स्टोरी सुना देता था सोते हुए।
1: अरे ये भाई कौन से गोले के लोग थे? तो आपस में बात कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं या अपने नींद में बात कर रहे हैं?
0: नहीं, सोते हुए नींद में बात कर रहे हैं।
1: बेहतरीन भाई साहब।
0: और ये कुछ हम लोग तंग नहीं होते थे, मजा आता था। शुरू में मुझे लगा एक दफा, मैं एक दफा लोग सो रहा था तो मुझे जिस तरह मेरा आवाज लिया तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा अब ये कुछ बोलेगा। हाँ, मुझे कुछ बताएगा। हाँ, 10 मिनट इंतजार करता रहा, को बोला ही नहीं कुछ। मैं ये तो सो रहा है यार।
1: तो खर्राटे कोई लेता तो उनमें से सब बातें करते हुए निकल जाते थे, कोई होता
0: नहीं? वो नहीं, खराटे वाला जो आदमी था दसम से बताया कि बड़ा घर था तो वो, लेकिन इतना ज्यादा खराटे वाला मामला नहीं था। हम लोग तंग नहीं होते थे एक दूसरे से, मजे में रहते थे।
1: अरे यार वेरी नाइस यार, यही तो बॉन्ड है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब ये लड़कों का रहता है ना, ये साथ में रूममेट के रहना, तो सेटल हो ही जाता है एंड ऑफ द डे, चल ही जाता है।
0: एंड ऑफ द डे नहीं, बस शुरू से ही ना हम लोगों ने एक रूल बना दिया था। मैं थोड़ा एसी ज्यादा भी था उनसे, मैंने कहा कि जब देखें जब तक हम रहेंगे ना, अगर तो आपने दिल से किया सब कुछ तो किसी पे बोझ नहीं लगेगा लगेगा। अगर आपने सोचा यार कि वो कर रहे हैं ना, मैं बाद में आऊंगा, वो कर लेगा, मैं क्यों करूं, तो फिर जो है ना वो मजा खत्म हो जाएगा और हम लोग रह भी नहीं पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक रहे हैं ना, मैं घर में आया हूं, कुछ बना रहे हैं, मैंने कहा साइड पे हो जाओ, मैं बना लेता हूं। कोई आया है बर्तन धो रहा है, तुम जाओ यार बैठो, मैं करता हूं। इस तरह बड़े मजे से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने टाइम गुजारा है, अभी भी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आपको क्या, वैसे मुझे लगता है लीडरशिप क्वालिटी बड़ी जरूरी है रूममेट में भी ना, कि एक ना एक लीडर होना चाहिए, वरना मामला खराब हो जाता है।
0: मैंने काम किया था, हां सॉरी, मैं आपको बताता हूं, एक मैंने काम किया था, बड़ा फनी स्टोरी। देखिए मेरे अलावा ना मेरे सब दोस्त जो ना सिगरेट पीते थे, ठीक है?
1: अच्छा।
0: जब जुमेल्दीन सब आ जाते थे, जैसा बताया, वो सब मतलब के ऑफिशियल सरकारी मुलाजिम थे, तकरीबन 10-15 लोग मैं बिरयानी बनाता था आ जाते थे।
1: अच्छा।
0: अब सोचो कि मेरे अलावा 14 लोग सिगरेट पीते हैं, इनके पास 14 डिब्बियां हैं और लाइटर भी है। मैं क्या करता था, मैं लाइटर निकाल के छुपाना शुरू कर देता।
1: अच्छा।
0: मैंने ऐसा ऐसा करके लाइटर गायब करना शुरू किए। वो बेचारे मतलब कि वो सोचते थे यार ये लाइटर कहाँ जाते हैं, आप सोचें कि उन्होंने चूल्हों पे सिगरेट जलाए हैं, लाइटर नहीं मिले लोगों। और एक दफा दोस्त ने देख लिया ना, किसी ने तो तकरीबन दूसरे तीसरे हफ्ते मुझे देख लिया। वो छोटा सा एक बैग होता है पाउच सा, उसने वो अलमारी के ऊपर से निकाला तो सारे मुझे पैसे शाहजी कहते हैं, कहते हैं शाह जी, मैंने कहा जी, कहते हैं हम लोगों ने बैग में से 32 लाइटर निकाल लिए।
1: भाई तो ये तो आपका फायदा तो हुआ ही नहीं, आपने लाइटर जमा करे वो चूल्हे पे चले गए।
0: नहीं, हाँ। नहीं फायदा नहीं था इसमें, सिर्फ ये था कि वो जो हल्का फुल्का मजाक और आपस में जो फन चलता है,
1: हाँ, वो तो होना
0: चाहिए। इनके रिएक्शन देख रहा होता था कि यार लोग देख रहे हैं, यार अभी लाइटर लेके आए थे, लाइटर गायब हो रहे हैं, जिन ने हमारे कमरे में।
1: पर आप यूके में भी रहे, आपने बताया बाहर भी रहे ना?
0: जी मैं 6 साल वहाँ पे रहा हूँ, वहाँ पे तो अलहमदुल्ला वो स्टूडेंट लाइफ थी और बहुत अच्छी, बहुत तंग किया हम लोग ने एक दूसरे को।
1: तो सारे सेम कंट्री के थे या अलग थे? सेम कंट्री के थे, कैसा था वहाँ पे?
0: नहीं वहाँ पे अलग भी थे, यहाँ पे भी कुछ टाइम लग रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना हम लोग यहाँ पे तो अभी जो सारे रह रहे हैं वो पाकिस्तान से हैं। हाँ। लेकिन बांग्लादेश से भी रूममेट रहे हैं और इंडिया से भी रूममेट रहे हैं। हम लोग पढ़े भी इकट्ठे हैं, हम लोगों ने जॉब भी इकट्ठे की है, हम लोगों ने खाने भी इकट्ठे खाए हैं, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे भी इकट्ठे मनाया।
1: फर्क क्या रहता है मतलब वहाँ पे और यहाँ के रूममेट होने में, क्या फर्क है आपको, क्या नजर आता है, क्या व्हाट इज बेसिक डिफरेंस?
0: बेसिकली देखिए, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हो ना, तब तक आप वो टीनेज में गुजार रहे हो।
1: हाँ।
0: तब तक हर चीज प्योरली और बहुत अच्छे से और फन से हो रही है। जॉब लाइफ में आके ना तो फिर वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ता है। हाँ, हाँ। कि आप फॉर एग्जाम्पल वही सेम दोस्त चलते आ रहे हो एज ऑफ ग्रुप और बाद में आप इकट्ठे हो गए,
1: नए दोस्तों के साथ
0: नया सीन जो है ना वो थोड़ा और हो जाता है, क्योंकि किसी ने जाना है, किसी ने मतलब कि रुकना है, किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने टाइम से उठना है। आप सोचें अभी जो हम लोग इकट्ठे हैं उसमें कुछ लड़के नए भी आए हैं, यंग लड़के पाकिस्तान से आए हैं।
1: अच्छा।
0: हम लोग डेली एक समझ लें कि हफ्ते में एक दो दिन नया रूल वो चार्ट हमारे इशराज भाई हैं वो बनाते हैं, प्रिंट करके लाते हैं कि बात नहीं करनी रूम में, 10 बजे के बाद लाइट बंद होनी है, और हर रोज नया बनाते हैं, हर रोज ही कोई उस पर अमल भी नहीं करता।
1: अरे भाई चार्ट बना बना के ला रहे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी।
0: तो वो नहीं, वो देखना एज अ फन है, वो कुछ सीरियस नहीं है। आप चार्ट बना के लाए हैं और दिल करे कि हम लोगों ने शिराज भी 10 बजे सोते हैं। हाँ। हम लोग ने शिराज भाई को उठा के 3 बजे तक जगा के बिठा के रखा हो। ये भी
1: बहुत, शिराज भाई को मेरा अलग से सलाम और सलूट भाई, उनको शिराज भाई को मेरा प्यार।
0: जी जी,
1: बहुत शुक्रिया,
0: इंशाल्लाह
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शेयर किया, मुझे सच में अच्छा लगा इस बारे में आपसे बात करके।
0: मैं कहता हूँ इतनी

0: स्टोरी है कि हमारा वीकेंड के दो एपिसोड कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा इतना से तो कम से कम शेयर करें ताकि लोगों का मूड चेंज हो जाए।
1: बिल्कुल भाई,
0: सुबह सुबह थोड़े से जरा अच्छा मूड में आ जाए लोग।
1: डेफिनेटली भाई, और आए भाई, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत की, आपने इतने दिल से शेयर किया।
0: और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, वो जो मेरी बहन ने कॉल की थी कि वो जो रूममेट है उनके बच्चे, उसमें ये है कि मैं कहूंगा देखें, रूममेट के साथ बंदा रूम चेंज कर सकता है, आप कहीं और चले जाओगे। हाँ। आप रूम मेट मतलब चेंज कर लोगे, किसी और को ले आओगे, वो बेचारी फंस गई है ना, वो रूम चेंज कर सकती है ना वो रूममेट चेंज कर सकती है।
1: वहाँ तो मामला अलग हो गया भाई, वहाँ पे तो कुछ रूल वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। डेफिनेटली
0: अल्लाह पाक खुश रखे आपको भी, सबको भी, सबको बहुत बहुत दुआ,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: भाई, ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की।
1: नो प्रॉब्लम भाई, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई ने इस हिसाब से सबको शेयर किया है, ये जान के बड़ा अच्छा लगा है। हर रूममेट की अलग अलग कहानी भाई, कहीं पर रूल चल रहे हैं, कहीं पर रूल होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: और ये नदीम भाई, क्या चल रहा भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मौत डाल दे रहे भाई, मौत डाल दे
1: एकदम भाई, एकदम धनिया कूट के भाई। तो नदीम भाई, क्या
2: किसका किसका प्लान था ये, जो इतनी मेहनत से बढ़ाए हुए बाल पूरे उड़ गए
1: है ना? ये देखो, मैंने कहा बहुत हो गया यार, मैं 15 साल से एक बैंडाना पहने में माथे पे घूम रहा था, मगर फाइनली थोड़ा सुकून लाते हैं और लुक चेंज करते हैं,
2: एकदम लुक चेंज हो गया।
1: थैंक यू भाई, यही तो करने का प्लान था, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए तो मैं जी रहा हूँ, थैंक यू भाई। तो नदीम भाई, क्या सीन है फिर, आप कभी रहे रूममेट्स के साथ? नहीं, नेवर
2: रहे ना यार, आए तो बैचलर, मतलब शादी तो हो गई थी लेकिन आया तो बैचलर अकोमोडेशन में ही था।
1: अच्छा, तो क्या सीन था?
2: हम तो विले में रहते थे।
1: अच्छा,
2: तो जैसे मैं तो मतलब भाई का रूम था तो मैं उनके साथ था, फिर बाकी सब दूसरे रूम्स में रहते थे अपने कंपनी वाले। तो हम लोग ने तो मतलब बहुत एंजॉय किया, मतलब गुड ओल्ड डेज,
1: वेरी नाइस यार। आप लेकिन आपके भाई के साथ थे आप?
2: हाँ, भाई के साथ था रूम में, बट मैं मतलब भाई रहते ही नहीं थे समझ लो, पूरा टाइम बाहर ही होते थे,
1: वही
2: तो
1: मुझे
2: मैं
1: लगा।
2: रूम में अकेले ही होता था। वो तो मैंने आपको बताया भी है एक दो बार कि मैं तो बंद करके सो गया और भाई को गाड़ी में या सोफे में सोना पड़ा बाहर कितनी बार।
1: अरे भाई, तो नहीं, पर मुझे लगा कि भाई के साथ है तो शायद उसमें दिक्कत होती होगी आपको, बट रियली नाइस।
2: नहीं नहीं, कभी भाई रहते ही नहीं थे, वो सिर्फ रात में सोने ही आते थे। मैं आपको अभी पता है, पप्पू घर में बैठने वाले बंदे है, भाई बाहर रहते हैं ज्यादातर, वो फैमिली के साथ भी बाहर ही रहते हैं अभी भी।
1: हाँ, ओके ओके।
2: तो थे अपने सब बहुत दोस्त, और फिर बाद में जब अकोमोडेशन चेंज हुआ तो भाई फिर अपनी मतलब कंपनी के पास चले गए और मैं इन लोग के साथ दूसरे अकोमोडेशन चले गए अपने कंपनी, मतलब हमारी सिस्टर कंपनी का ही अकोमोडेशन था पूरा।
1: ओके।
2: तो हम लोग का फिर चेंज हो गया था, तो फिर जब साथ में रहे तो हम लोग गए थे, तभी गाँव होता है इरदान 32।
1: ओके।
2: मतलब कुछ भी नहीं, सुनसान जंगल और वो कंपाउंड। तो वहां से हम लोग रोटी लेने के लिए खाली बरवा मिलने जाते थे।
1: अरे भाई साहब, ये तो, अरे तो आप में से बनाने वाला कौन था? खाना बनाने वाले सब थे या फिर मतलब होता ना
2: कुक रखे, नेपाल से बुला के कुक रखे थे हमने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा।
1: अलग नवाबी है भाई,
2: आशीर्वादी,
1: अलग नवाबी।
2: हाँ, तो वो टाइम हमारा था ऐसे, मतलब हम लोग फिर बैडमिंटन वॉक पे निकल जाना। हाँ। सबने साइकिल लेके रखी थी, साइकिल चलाने चले आना, PS4 था। हाँ। तो वो हॉल में ही पड़ा रहता था, जिसको खेलना आके बैठ के खेल ले, तो वो वैसा वाला था। उससे पहले वाले अकोमोडेशन में जब रहते थे ना, तो वहाँ पे कुछ साउथ के भी लोग थे भाई।
1: अच्छा। हाँ।
2: तो वो लोग खाना बनाते नारियल तेल में।
1: हाँ, हाँ।
2: तो वो जो कभी कभी सीन हो जाता था ना भाई, वो पूरा पूरा विला स्मेल मार रहा नारियल तेल का।
1: वो आदत नहीं होती ना, क्या मैं जब भी कुछ रूममेट्स में सोचता हूँ, जब अलग अलग अलग अलग कंट्रीज या फिर सेक्शंस के होते हैं ना, तो वहाँ पे कई मरतबा माहौल बहुत अच्छा भी हो सकता है और कई मरतबा बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। तो ये फैमिली ड्रामा ही है, अलग किस्म का फैमिली ड्रामा है।
2: किसे एक बार वो कोकन साइड के अगर होंगे तो वो लोग अगर बोमबिल लेके आ गए वो एक अलग माहौल बन जाता है, क्रेजी सीन हो जाते हैं एकदम।
1: वो माहौल में जानता हूँ भाई, वो बॉम्बिल वाला।
2: हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसा था कि मेरे मतलब ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तान के थे ने? और बाकी इंडियंस थे।
1: ओके।
2: और बाहर का कोई नहीं था, लेकिन हम लोग ऐसे रहते थे कि सब सेम, मतलब किसी को कुछ टेंशन नहीं है, सब एक दूसरे से बैठ के बातें कर रहे, मतलब मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं होता था, मेरे को तो कभी भी जो भी आ रहा होता था घर वो बोलता था चला रहा है, टाइम हो गया है, बैठ जाता था उसकी गाड़ी में।
1: यार बड़ा लो मेंटेनेंस है ये तो, अच्छी बात है। मैं भी काफी लो मेंटेनेंस।

0: जहां मर्जी फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है।
1: हाँ, मेरे को तो रोज अलग अलग लोग लेने, और कभी कभी तो एक तो बेचारे सब सेल्स वाले थे और मैं था ऑफिस में बैठने वाला अकाउंट्स का, तो वो लोग कभी साइड पे बाहर होते थे तो वो बेचारे एक दूसरे को कॉल करके भाई नदीम को पिक कर लेना ऑफिस से, तो अगर कोई बाहर या मतलब ऑफिस के करीब होगा तो वो मेरे को लेने आ जाता था, फिर वो मेरे को लेके आता।
0: आज भाई को सब याद आ रहा है, ये क्लियरली नजर आ रहा है मुझे नदीम भाई।
1: नहीं यार, बहुत बहुत अच्छे दिन थे। अभी भी मतलब ऐसा अपना अपन घर में, आपको पता है मेरे घर में कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरा टाइम गेमिंग वेमिंग करता रहता हूँ, कोई बोलने वाला है नहीं।
0: नहीं बस, वेरी नाइस भाई, और ये अच्छी बात है कि आपका, आपने हमेशा से इस तरह से मेंटेन करके रखा है, तो आप साइलेंट मोड पर रहते हैं इससे सब कुछ आपका मैनेज हो जाता है। वेरी नाइस, कुडोस टू यू मेरा भाई।
1: पर बहुत मजे किए, गुड गुड ओल्ड डेज सब याद आ गया।
0: डेफिनेटली आज सुनना भाई कहानी, मैं सुनाता हूँ कुछ दिन में, ठीक है?
1: डन डन, कल भी सुना था मैंने।
0: अच्छा,
1: फिर कॉल करने नहीं मिला मेरे को, लेट हो गया था, बट कहानी तो पूरी सुन ली थी भाई।
0: डन है, फिर आज सुनना मेरे भाई। चलो, जिंगल टाइम हो जाता है आपकी कॉल के साथ ही।
1: हाँ, जिंगल टाइम हो गया वापस,
0: ठीक है मेरा।
1: वो मैं बेटे को छोड़ के निकलता हूँ तो टाइम यही हो जाता है।
0: नहीं, बहुत सारा प्यार नदीम भाई, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी भाई।
1: ओके
0: मेरे भाई, लाफिस। और जिंगल के बाद बाकी कॉल्स करेंगे, बाकी हो चुके हैं 7:02, और आप भी मेरा 7:02। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू से एवरी सिंगल डे। मैं मानू को नहीं भाई,

0: FM 107. Time check.
1: चेक चेक चेक मैं दोहा वाला कभी 7:03 ओनली ऑन एफएम ओनली ऑन क्या हो गया मेरी इंग्लिश को इंग्लिश को इंग्लिश को ओनली ऑन एफएम 107 7 ऑलमोस्ट 4 बाय द क्लॉक एंड दिस इज व्हाट वी मेड स्टार्टिंग के लिए तो वेक अप लेट्स गो

हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आज बहुत सारी बातें हो रही हैं. एक भाई ने जो मुझे मैसेज किया, सबसे पहले तो मैं उनका रिप्लाई देना चाहता हूँ. गुलरेज भाई कह रहे हैं, देव तुम आ गए? हाँ मैं आ गया. और मुझे सबसे कमाल का जो मैसेज एक भाई का लगा, जिन्होंने बताया उनके वो 20 लोगों के साथ रहे हैं रूममेट के तौर पे. तो फैसल भाई ने लिखा कि भाई इनके रूम में 20 लोग हुआ करते थे. और नाम पता है ग्रुप का क्या था? नाम था जनरल वार्ड रूम स्पेशल क्लीनिंग ग्रुप. ये क्या है भाई, 20 लोग. और आगे इन्होंने एक और चीज़ लिखी है, कहते हैं भाई मेरे रूम में 20 बंदे रहते थे लेकिन खाना 5 जगह बनता था. ये तो उन्होंने बताया. और क्या मुझसे मिस हो गया? हाँ ये मिस हुआ. कई लोगों का दूसरा रूम ट्रांसफ़र हो गया है भाई, लेकिन एक बात है, मज़ा बहुत आता है. हमारे सुपरवाइज़र हमारे रूम में आता है, रात 2:30 बजे तक हंसी मजाक करके चल रहा होता है. बढ़िया भाई. कहते भाई बिरयानी खाओगे आज? अरे भाई आप बस पिल्ला करें, बट थैंक यू सो मच. रियाज भाई ने मैसेज किया, वालेकुम सलाम रियाज भाई, बहुत टाइम के बाद आपको कल सुबह सुन रहा था, कल मैसेज नहीं कर पाया था. नो प्रॉब्लम भाई, आज कर लिया आपने, मेरी

होगी प्यार की जीत। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वैसे शेयरिंग पे तो नहीं रहता बट 2005 में 2 मंथ्स के लिए अकेले था पाकिस्तान में, तो हर वक्त मोहल्ले के दोस्त मेरे ही घर पे रहते थे। खैर हुआ ये कि सर्दी

0: बट शुरुआत में उनको भी एआई लगाई। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत प्यार है शाम साहब को, वालेकुम अस्सलाम। और एक कॉल आ रही, फिर मैं कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई की?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ
0: जी भाई।
1: कबीर भाई, आपने ना जो मैं जब कतर में आया था
0: जी भाई,
1: तो वो पूरा माहौल ना अभी वापस से रिवाइंड हो रहा है मेरे आंखों
0: भाई, मुझे बहुत कुछ याद आया भाई, बहुत कुछ याद आया मुझे इसलिए। तो क्या सीन था आपका?
1: तो भाई ऐसा था कि मैं जब 2012 के आसपास कतर को पहली बार आया था ना, तो हम बेसिकली उससे थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। हम लोग बचपन के सारे दोस्त थे, फिर जैसे बड़े बड़े हुए सब लोग अलग अलग हो गए थे वगैरह। तो मैं वाहिद ऐसा शख्स मुझे लगता है कि ऐसा हूँ जो मुझे बचपन दोबारा जीने का मौका मिला।
0: अच्छा।
1: तो 2012 में भाई जब मैं इधर आया ना कतर, तो जिस रूम में हम रह रहे थे, मैं आके देखा, मैं शॉक में रह गया कि सारे मेरे जितने बचपन के दोस्त है ना, एक ही मोहल्ले के सारे इधर ही हैं, एक ही रूम में।
0: ये कैसे भाई, आप पकड़ के ले गए या वो इत्तफाकन हुआ ये सब?
1: नहीं, जो बेसिकली जो हमारे भैया लोग ने जिसे जो हमें रेफर करके बुलाया इधर वगैरह ना।
0: अच्छा।
1: तो हम सभी को बुलाया ही था, तो सब लोग एक ही विला में रह रहे थे।
0: आपके तो पिकनिक चल रही है, ये तो भाई दो अलग ही सीन है।
1: अरे उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 21 या 22 लोग थे।
0: अच्छा।
1: तो हम सारे बचपन के दोस्त भाई, सारे के सारे एक ही मोहल्ले के, मतलब आस पड़ोस सभी
0: भाई। ये तो बहुत ही रेयर किस्मत
1: है, मजा किया है ना हमने।
0: ऑफ कोर्स, ये तो बहुत रेयर किस्मत वाले का सीन है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी सबके सब ये, अच्छा मुझे ये जानना बहुत जरूरी है, सारे बचपन के दोस्त साथ में रहना तो चलो बहुत ही अच्छी बात है, पर कभी स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बिल्कुल ही अलग, एकदम आउट ऑफ द ब्लू अलग लोग रह रहे हैं? हमेशा ऐसे ही रहे आप दोस्तों के साथ ही?
1: मतलब हम जिधर रह रहे थे ना, हम लोग कुछ 21 लोग थे और साथ में दूसरे भी लोग थे, जैसे कुछ केरला के लोग थे, फिर पाकिस्तानी भाई थे, वो मतलब अलग अलग रूम था उनका विला में।
0: अच्छा, okay.
1: बट हम जो थे ना वो सारे एक ही फ्लोर में, सारे एक साथ थे, तो हम सबके साथ बैठे उठे हैं, ऐसी बात नहीं।
0: क्या बात है।
1: और कभी भी ऐसे मतलब डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज या कभी भी कल्चर का ऐसा कोई लफड़ा कभी भी आया नहीं।
0: हाँ वेरी नाइस यार, ये तो आपका तो बहुत चिल्ड आउट रहा है मोल भाई, बहुत चिल्ड आउट रहा है
1: भाई, जबरदस्त। जो हमने मजा किया है ना रात रात भर, लोगों को जगाना, रात में पानी डाल देना,
0: तो अभी
1: ऐसा जो बचपना होता है ना भाई, हमने जिया है वो वापस से।
0: वेरी नाइस यार, ये तो मैं नहीं मानता किसी के साथ ऐसा
1: हुआ। अभी वापस से वही हो गया,
0: वापस से वही
1: सब अलग अलग हो गए,
0: अब तो
1: सब अलग अलग हो गए,
0: तो
1: शादी हो गई ना फिर।
0: हाँ, तो अभी मिलना नहीं होता, परमिशन नहीं मिलती घर से बाहर निकलने की, क्या सीन है
1: भाई साहब? शादी होने के बाद परमिशन।
0: बस रोना मत, बस रोना मत भाई, बस रोना मत।
1: आप समझ गए?
0: मैं बिल्कुल भाई, मैं क्या बोलूं, मैं खुश रहिए भाई।
1: भाई ये सीन समझ में नहीं जाता है भाई, आज भी ना हमारे दोस्तों का बगैर बोले हम समझ जाते हैं, बट ये लेडीज का मुझे चक्कर समझ में नहीं जाता है।
0: भाई मुझे घर जाना, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये भाई ने कमेंट किया है भाई। साफ सीधी बात नहीं यार, मैं
1: भाभी लोग में नहीं बनता है तो फिर हमें भी नहीं मिलने को मिलता है यार।
0: ये तो दोस्ती करवानी पड़ती है ना लड़कों को कि यार प्लीज इससे मिला, दोस्ती कर ले, दोस्ती कर ले, ताकि हमारी दोस्ती कंटिन्यू रह सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, आई एम प्रीटी श्योर इसका रिस्पांस जरूर आएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मुझे भी आपके चक्कर में बहुत कुछ याद आया, वो भी मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार
1: भाई,
0: यू टू मेरे भाई। तो इनके बाद जो है एक और कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम तबीर भाई, इरफान बात कर रहा हूँ, क्या हाल है?
0: मैं कॉल लगा नहीं जा रहा था, मैंने कहा मैंने मिसिंग रिपोर्ट तो लिखवा दी इरफान भाई की, बीच बीच में खो जाते हैं इरफान भाई। कैसे इरफान भाई?
2: कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जैसा आप छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसे ही हूँ भाई, बस लुक बदला है थोड़ा सा।
2: कैसे सुबह सुबह आपने ये जो नया टॉपिक छेड़ा है और फिर उसके बाद जो वॉइस क्रिएट हुई है लोगों की कॉल्स वगैरह, जबरदस्त किस्म की चीजें सामने आ रही हैं
0: भाई। आज लड़के इमोशनल हो रहे हैं, सुबह सुबह कह रहे भाई क्या कह दिया ये। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इरफान भाई, आप कभी रहे रूममेट सिस्टम में रहे कभी आप?
2: एग्जैक्टली मैंने काफी अर्सा हमारे पड़ोसी गल्फ कंट्री में टाइम गुजारा है, लेकिन कबीर भाई ये भी एक परदेश में रहने की कल हकीकत है कि ये जो 20 लोग एक साथ रहते हैं और ये एक फैक्ट है, कतर फिर भी बेटर है, लेकिन मैं खुद दुबई में रहा हूँ और 14 लोगों के साथ एग्जीक्यूटिव बैचलर हम रहे हैं, जिसमें सारे हाईली क्वालिफाइड लोग जो कि ACSE कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट डिग्रीज ले रहे थे उस जमाने में। तो ये एक है परदेश में रहने का, ये कुछ है, लेकिन कुछ चीजें बाजाहिर नजर नहीं आती लेकिन ऐसा होता है। और मैं जहाँ रह रहा था, इवन पढ़े लिखे लोग, हम लोग, एक किस्सा मैं आपको बताऊं कि एक बार और सारे सुस्त लड़के

0: थे और टॉपिक कर रहे थे पर इंतहाई सुस्त. मैं खुद भी मैं उसे भी ये भी बता रहा हूँ आपको.
1: अच्छा ओके.
0: तो अब उसने तू सफाई कर और मैं सफाई कर में 15 दिन तक किसी ने कोई सफाई नहीं की किचन की. इवन किचन में एक कप पड़ा हुआ था मुझे आज भी याद है उसमें थोड़ा सा ऑयल था. उस ऑयल के साथ यू डोंट बिलीव कि छोटे छोटे कॉकरोच जमा हो गए थे वो कप में. सीरियसली. और जब एक बार 15 दिन के बाद सबको जुनून चढ़ा के चलो आओ मिलके सफाई करते हैं तो फिर जब वो कप उठाया तो उसके अंदर लिटरली ऑयल के साथ छोटे छोटे कॉकरोच थे. और जब हमने अक्सर लोग आपने देखा होगा अगर आप बैचलर लाइफ आपने गुजारी हो
1: गुजारी
0: तो वो अपने कपड़े धोने के लिए बकेट में कुछ कपड़े छोड़ देते हैं और फिर वो एक हफ्ते तक या 3 दिन तक भूल जाते हैं कि कल कर लूंगा कल कर लूंगा. उसमें भी जो पानी है ना वो भी एक ऑयल की टाइप का हो गया था और उसके अंदर भी छोटे छोटे सांप हो गए थे. मैं तो उसका सांप ही कहूंगा छोटे छोटे कीड़े थे पता नहीं क्या था सांप जैसे ही लग रहे थे मुझे तो.
1: ये कौन सी दुनिया में भाई ये तो बिल्कुल ही साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं क्या हो रहा है इस हद तक.
0: बिल्कुल ऐसा हुआ बिल्कुल ऐसा हुआ. और फिर वो एक जुनून चढ़ता था कि आज के बाद हम सब मिलकर सफाई करेंगे और तेरी बारी है और मेरी बारी है. उसके बाद 3 दिन के बाद चल छोड़ ना यार कल कर लेंगे ना यार अभी सुस्ती हो रही है कल कर लेंगे.
1: ये वो वाली बात है ना इस लेवल के बर्तन छोड़ रखे हैं भी आपस में बात करे कह रही है मैं नहीं जाऊंगी बहन उस तरफ वो कुछ ज्यादा ही गंदा है.
0: अच्छा इवन एक और भी मैं आपको चीज बताऊं कि है ना आपने वो उर्दू में तो पता नहीं उसे वो खटमल कहते हैं आएगा.
1: हाँ खटमल. हाँ
0: इवन के इतनी गंदगी के बाद ब्लैंकेट्स में और कंफर्टर्स में खटमल जमा जाते हैं और वो बंदों को काट रहे होते थे लेकिन मजा ले कि उनको ड्राई क्लीन में वो दें. तो अच्छा ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं. मैंने कहा ना एग्जीक्यूटिव थे लेकिन वो कहते हैं सुस्ती हो रही नीचे धोबी के पास कौन जाएगा यार अभी छोड़ना यार अभी कौन जाएगा. तो ये चीजें बड़ी मैंने फेस की हैं. और जारी बात है जब आप बैचलर रहते हैं तो आपको कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है
1: भाई. ये तो अलग लेवल का कॉम्प्रोमाइज चल रहा है. ये कौन सा कॉम्प्रोमाइज है. अच्छा
0: लिटरली मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ आज भी मैं उस दिन याद करता हूँ. तो लेकिन अब तो ये कि अब जमाना थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब लोग और जैसे एक भाई ने कहा था ना कि वो पोस्टर लगा देते हैं बाथरूम के क्लीनिंग की टाइमिंग दिए हैं और बाथरूम साफ रखें और मॉप करें. वो सिर्फ बड़ा नाम पोस्टर होता है कुछ भी नहीं होता. और वो बंदा जो पोस्टर लगाता है ना वो खुद भी नहीं करता वो खुद डेढ़ साल दिखा रहा होता है पोस्टर लगा देता है.
1: मैंने तो भाई एक पोस्टर देखा है वो हमारे पहले यहाँ पे मैं रहता था जो रूममेट के साथ उसने लगा रखा था बकायदा सामान रखा था सामान के ऊपर पोस्टर था उस पर लिखा था अल्लाह सब देख रहा है तो कोई उठाता नहीं था. तो मैंने ये भी देखा भाई.
0: अच्छा इवन कि मैं एक बैचलर लाइफ मैंने गुजारी है शारजा में. वो एक आंटी थी उनका एक फ्लैट था तो वो आंटी ने एक रूम मुझे दिया हुआ था और मैं वहाँ पे वो रहता था. तो वो आंटी खुद तो बड़ी माशाल्लाह खातून थी और वो भी कहती थी बड़ा सफाई का ख्याल रखती थी. तो मुझे तो अपना बेटा बनाया हुआ था लेकिन मैं भी तो कुछ कम नहीं था. मैं भी तो कभी गोली वोली मार देता था सफाई में मॉप वॉप मैं पानी गिरा के आ जाता था थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सिर्फ मॉप के मॉप थोड़ा सा चले ऐसा लगे कि थोड़ा सा बाथरूम नहीं है जैसे मैंने सफाई किया हो. तो इस तरीके से मैं करता था. तो ये हमारे बैचलर लाइफ के किस्से हैं और आई रियली मिस दोस डेज.
1: अरे यार अभी इरफान भाई कैसा सीन रहता है फिर अभी तो आप सुधरे हैं या फिर जस्ट दैट संभाल लिया गया है आपको.
0: मैं तो अभी ऐसा हालत हो गई है सारी बातें फैमिली है मैं तो उठ के पानी नहीं पीता.
1: अरे रे रे राजा बाबू क्या
0: तो अब तो ऐसा लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल रखता हूँ थोड़ा सा हाइजीन का. सारी बातें फैमिली है बच्चे हैं तो अब वक्त के साथ साथ बंदा थोड़ा सीख लेता है. सारी बातें वाइफ का डंडा भी होता है ना
1: भाई
0: ये उठाओ वो उठाओ ये उठाओ.
1: ये जानवर से जान बनने का जो सफर होता है ये हर किसी को तय करना पड़ता है. वेरी गुड इरफान भाई आपने
0: अच्छा लगा काफी अच्छे बाद आपसे बात करके अपना ख्याल रखिएगा.
1: जज़ाकअल्लाह इरफान भाई बहुत प्यारा आपको तो आ जाए करें भाई सुबह सुबह.
0: थैंक यू
1: सो मच भाई. ओके भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़. इरफान भाई की बात कुछ मैसेज पढ़ने पड़ेंगे मुझे. फरद भाई कह रहे हैं भाई इतने आलसी लोग बोलते बिल्कुल भाई मैं आज खुद सुन के हैरान हो गया. अच्छा कॉम्प्रोमाइज खुद कर लेता भाई आपको देखकर दूसरे भी स्टार्ट कर देते. ये बात तो है एक बंदे को स्टार्ट करने की जरूरत है एक बंदे को. और ऐसा ही हम सभी कहते हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अच्छा टाइम गुजारा यूएई में. यहाँ तो फैमिली साथ आ गई थी पर आई सॉ माय कंपनी हाइजीन मैनेजर का फ्लैट ही सबसे ज्यादा गंदा था. ये आयरनी बहुत जगह है भाई बहुत जगह है. आज भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भाई मेरे रूम में भी सेम प्रॉब्लम है. एक साल था जिसके साथ भी था उसने हद पार कर रखी थी समझ सकता हूँ. एक मैसेज और है नहीं तो भाई ये मैं पढ़ भी नहीं सकता जो आपने मैसेज कर दिया. रदीम भाई कहते हैं कबीर भाई आपकी कोविड के टाइम की आइसोलेशन वाली स्टोरी याद आ गई मुझे. भाई मैंने कमरे से जो किया है भाई कमरे से. एक कॉल आ रही है लास्ट उठाते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम

या कि डिसइंफेक्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट आप करिएगा जरूर भाई, आई वुड लव टू नो। बाकी भाई मैं खबरें पढ़ दूं एक गाने के बाद, बहुत जरूरी है। 25 साल पुराना परफ्यूम भाई हिला के रख दिया भाई ने, मुझे नहीं पता 25 साल पुराना परफ्यूम अब क्या होगा। तला भाई ने तो सजेशन दिया, वो कह रहे हैं भाई इसको फ्लोर साफ करो इससे छिड़क छिड़क के थोड़ा सा डांडा भाई गाना आ रहा भाई फॉर एवर। गुड मॉर्निंग।

भाई घना सूत्रा गाना भाई, मौज आ जा भाई ऐसा गाने से, जवां जहज बन जाता है सो भाई। और मैं जी आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर हूँ भाई साहब। एक न्यूज पढ़ का मैं कॉल लगा रहा हूँ, क्योंकि दो लोगों ने कही मेरे से कॉल करने को, और कहानी का टाइम भी आ रहा करीब। बाकी आपने यो जिंगल नहीं सुना भाई, अगर सुन लिया तो बहुत बढ़िया है, आपने बताना चाहिए कि ये कैसा है। और ये पहली मरतबा सुन रहे हैं तो ये लीजिए, ये हमने सुबह के लिए स्पेशल तैयार किया था। सो वेक अप

0: रूम कर शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर
1: कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: सबसे पहले तो जो खबर है वो कतर के माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में है, और हर साल ये जो खबर आती है तो मुझे लगता है भाई लोग चलो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सेंसिटिव हैं। सो कतर माइग्रेटरी बर्ड हंटिंग सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि शुरू हो चुका है, इनफैक्ट कल से शुरू हुआ है, और ये फरवरी की 15 तारीख तक रहेगा, अगले साल की, हाँ अगले साल की 2027 तक। तो क्योंकि हंटिंग एंथूजियास्ट अभी बाहर आएंगे एंड फैल्कनर्स भी हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ट्रेडिशनल जो तौर तरीके उनको फॉलो करें और अपना वक्त जो है उसमें लगाएं, वाइल अधेरिंग टू रेगुलेशंस, जो रूल्स बनाए गए हैं उन कानूनों को, उन कानून के हर एक चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। और मकसद ही होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। एक इसके अलावा वर्ल्ड इनोवेशन समिट की तरफ से खबर आई है, सो द वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर हेल्थ, विच इज शॉर्ट फॉर्म में विश, एक कतर फाउंडेशन ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव है जो कि अनाउंस हो चुका है, और 8th समिट होने वाला है जो कि नवंबर की 29 और 30 तारीख को होगा, दो दिन इस साल के नवंबर की 29 और 30 तारीख को। दिस विल हैपन एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, यानी

0: की शॉर्ट फॉर्म QNCC. यहाँ भाई कभी आपने पार्किंग करी है? गाड़ी खो जाती है भाई अगर आपका वो पार्किंग के बटन दबा के चुचू ऐसी आवाज नहीं आती ना चुचू, तो बहुत मुश्किल है QNCC में गाड़ी ढूंढना। कला है भाई, फोटो खींच लिया करो। तो यहाँ पे नवंबर की 29-30 तारीख को ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। इसके अलावा ये जो समिट है विल टेक प्लेस इन कतर एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल कॉन्वर्सेशन, एंड अंग्रेजी में कहा गया है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग हेल्थ क्वेश्चंस ऑफ आवर टाइम, जिसका मकसद है एक सवाल उठाना, हाउ टू इंश्योर दैट लॉन्गर लाइव्स आर आल्सो हेल्दियर। लंबी जिंदगी चलो किसी की है, बट इट शुड बी हेल्दियर। दैट इज वॉट द प्लान इज, और इस बार इसी बारे में डिस्कशन होगा। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट सेंटर नामा की तरफ से खबर आई है, जो कि वन ऑफ द सेंटर्स ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। दे ऑपरेट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कतर फाउंडेशन ऑफ सोशल वर्क। उन्होंने लॉन्च किया है तीसरा एडिशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स। रीअफर्म करते हुए उनकी कमिटमेंट इस बार भी जारी है, वो सपोर्ट करना चाहते हैं इनोवेटिव आइडियाज को, उन प्रोजेक्ट्स को जो एड्रेस करते हैं कम्युनिटी के चैलेंजेस को और एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ते हैं। एंड टारगेट ऑडियंस जो है बेसिकली वो यंग लोग ही हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो ओनर्स हैं जो सोशल एंटरप्राइजेज और आइडियाज़ को आगे ला रहे हैं और प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये जो अवार्ड फंक्शंस होंगे, बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया एंड बेस्ट एग्जिस्टिंग सोशल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू हैपन रियल सून। इसके अलावा कतर यूनिवर्सिटी से खबर है, कतर यूनिवर्सिटी विल होस्ट द चैरिटी फेस्टिवल, जो कि उनका इस बार 6th of September को ही है, तो आज 2 तारीख होती है, 4 दिन बाद 6th to 10th September उनके कैंपस पर ही होने वाला है। एंड दिस विल ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, तो उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है। एंड नॉट सरप्राइजिंगली इनफ, बिकॉज ये ऑब्वियसली बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ उनका कैंपेन है, एंड दिस इज टू प्रमोट द कल्चर ऑफ गिविंग एंड रेज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर यूथ स्टूडेंट सपोर्ट फंड। तो ये जो थी खबरें थी, और एक मैसेज आया है फरद भाई का, कह रहे हैं भाई दोहा फेस्टिवल में जाओ गाड़ी घूमती है ना भाई, उसका कोई जवाब नहीं भाई। DFC में गाड़ी घुमाते रहने का अलग मजा भाई, वो भी अलग मजा है, मगर मैं तो गाड़ी अपनी जहाँ पे खोई है वो QNCC की पार्किंग में खोई है भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। वो अलग ही फील आ गई थी। बाकी मुझे कॉल करनी, क्योंकि भाई ने मुझसे बोला था और काफ़ी टाइम से मैंने कॉल नहीं करी थी, जो अभी कॉल कर रहे हैं भाई थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक हमारे भाई वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, हम उनको कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉल लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? हम आपसे 2 गुना लगा लेगा। लग जा भाई कॉल, फिर कहानी की तरफ भी बढ़ना है। ओके सो ये हमने लगाई है कॉल उस्मान भाई को, उस्मान भाई अगर कॉल उठा लेते हैं तो बात हो जाएगी। उस्मान भाई फोन तो चक्को, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं
0: भाई साहब? आज तो आवाज बहुत भारी हो रही है माशाल्लाह, है क्या बात है?
1: वो भारी आवाज भाई, बारे लोगों से बात करके।
0: अरे माशाल्लाह भाई साहब, आपने तो धरती हिला दी।
1: कैसे आप? ठीक है?
0: एकदम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुना आपका टॉपिक तो मैं पर टाइम नहीं लेता ज्यादा।
0: नहीं नहीं, आप प्लीज बताइए भाई, मेरी तरफ से माजरत भाई, मैंने कॉल नहीं करवाया आपको टाइम, बताइए भाई।
1: कोई बात नहीं, मैं उस टाइम गाड़ी में था
0: जी
1: भाई। ये आप रूममेट की बात कर रहे हैं ना?
0: जी जी जी।
1: तो हम लोग 2005 में आए थे ऐसे इधर दुबई में।
0: अच्छा, ओके।
1: तो माशाल्लाह से स्टूडियो एक छोटा सा था, तो 9 बंदे रहते थे।
0: अच्छा।
1: किसी का ख्वाब किसी को आ रहा होता था, किसी का ख्वाब किसी को आ रहा होता था।
0: इंसेप्शन चल रहा है।
1: हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा टाइम था, बहुत ज्यादा नहीं कमाते थे, थोड़ा ही कमाते थे। लेकिन इसमें मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बंदा था हमारे साथ, हमारा अपना ही लड़का था, तो वो नया ही आया था। हमारे कुछ ऐसा नहीं था कि कोई सब पैसे देंगे, आपको पता जैसे बैचलर रहते हैं
0: ये
1: सबका वो खाने का पैसा होता है, रेंट का होता है। तो हमारे रूम में हमेशा 3-4 लोग ऐसे रहते थे बेचारे, जिनके पास जॉब नहीं होती थी और रहने के पैसे खाने के नहीं होते, मैनेज करते थे हम मिलकर उसको। तो एक लड़का आया ऐसा था, तो किसी को ऐसे कोई प्रेशर नहीं था। वो हमें बाद में पता चला वो बेचारा, उसके पास शुरू में जॉब नहीं थी, जब जॉब मिली तो बहुत नॉर्मल सी दिहाड़ी पे जाता था, आता था, खाता था।
0: ठीक है।
1: तो अब मेरी ड्यूटी ऐसी रहती थी, सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब। मैं जब आता था रूम में तो वो सो रहा होता था अक्सर, तो बाकी सब खाना खाते थे बैठ के। तो पूछता था वो, बोलता ये खा के आया, बोलता मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं उठाना।
0: अच्छा।
1: फिर हम खाना खा के सब अपने काम में लग जाते या सो जाते, सुबह उठते तो वो नहीं होता जब आता। वो बाद में पता चला वो बेचारा, उसके पास पैसे नहीं थे और वो किसी को बोलता नहीं था, और हम लोग जो खाना खा के जो बचता था रखते थे, जो थोड़ा बहुत रोटी के टुकड़े या बचा हुआ सालन, वो बेचारा उठ के खाता था जब हम सब सो जाते थे।
0: अरे यार।

0: आपने क्या कर दिया सुबह सुबह यार।
1: ओ बहुत बहुत दुख भाई, जितना आपको भी तकलीफ हो रही है इससे कितनी ज्यादा हम लोग को हुई जब हमें पता चला जो ऐसे।
0: ये कैसे पता लगा आपको? पता कैसे लगा? लेकिन
1: वो उसने बाद में किसी को बताया, किसी से उसने ये बात शेयर की।
0: अच्छा ओके।
1: कि मैं ऐसा टाइम भी मैंने गुजारा, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, तीन चार लोग ऐसे ही हमेशा रहते थे जिनको कुछ नहीं होता था, हम लोग नहीं पूछते थे खाना वाना। तो वो पता नहीं क्या उसकी खुददारी थी या क्या थी। मेरे हिसाब से इस आज के दौर में इस तरह की खुददारी होना ये कोई अकलमंदी नहीं है, बेवकूफी है ऐसा काम करना।
0: होता है भाई, वो क्या होता है ना, थोड़ा सा आदमी झिझक जाता है ये सब ऐसे ना सामने से बोलने से या फिर करने से, तो होता ही है कुछ लोगों में होता है, क्या कर सकते हैं ये चीज। तो उस टाइम पे पता लगा आपको? ये बहुत बाद में पता लगा जब आप मतलब?
1: नहीं, बहुत बाद में पता चला, उस टाइम पे पता नहीं। और एक मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, शायद लोग इसको कैसे लें, अपने आसपास लोगों को नोटिस करें।
0: हाँ वो जरूर
1: ध्यान रखें, मतलब नोटिस उस तरह का नहीं कि ये क्या कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, उठ रहा है, जैसे कि पता नहीं यार इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या है। आप कुछ दे नहीं सकते, कुछ नहीं, थोड़ा सा उसको हौसला दे दो, तसल्ली दे दो बात करके।
0: नहीं मैं भाई ये चीज मैंने नोटिस करी है। और ये पहला किस्सा नहीं है, बहुत सारे जितने भी लोग साथ में रहते हैं, दो लोग रहते हैं, तीन लोग, चार लोग, व्हाटएवर, बट ये होता है भाई। कोई ना कोई एक ऐसा होता है, आप नोटिस करोगे ना थोड़ा सा तो पता लगेगा ये आदमी के अंदर बहुत ही बढ़िया सुनामी चल रही है। तो ये जो आपने बताया ये तो आपको बाद में पता लगा, तो मैं सोच भी नहीं सकता आपको कितना बुरा लगा होगा उस टाइम।
1: बिल्कुल बिल्कुल है ना। और हमारे मेरे असल में बड़े भाई थे, हम लोग किसी टाइम तंग आ जाते थे, यार तू क्या लोगों को ले आता है इतने इतने, तो उसका दिल ऐसा था, वो कहता था यार चुप कर जा, बस आने दो, जो है रहने दो, जब काम लग जाएगा हो जाएगा सही। हम किसी टाइम होते थे यार के तीन तीन चार चार बंदों का लोड हमारे पे आया हुआ है, तो वो बड़ा भाई बहुत वो उसका था, किसी को कोई आया शाम में, उसने पूछना सबको खाना खाया, हाँ खाया, घर पे कॉल की, बोला बैलेंस नहीं, अपना फोन खोल के देना, ले घर का बात कर फैमिली से, तब ये नहीं होता था व्हाट्सएप, ये फ्री की कॉल नहीं होती थी। तो दूसरा वो होते थे कॉल कार्ड अपलोड करते थे 20 दिरहम का, 25 दिरहम का।
0: भाई आपने तो यार सुबह सुबह सीन ही बदल दिया यार, ये बता कितने लोगों को ट्रिगर हो गए भाई। ये आपने अच्छा किया आपने शेयर किया, वही मैं कह रहा हूँ, अच्छा किया आपने शेयर किया।
1: अच्छा मैंने बात और करनी थी, ये वाइफ पे बात करनी थी, मैंने बहुत दिन से फंसी हुई है, लेकिन जिस दिन आपका टॉपिक हुआ था उससे बात करूँ।
0: नहीं पर अच्छा किया आपने ये बात करी, बिकॉज ये एक्चुअली मैं चाहता था कि ऐसी एंड हो इस चीज का, तो ये टॉपिक का एंड ऐसे होना इज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड भाई। तो ये मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बात छेड़ी। सो
1: थैंक यू भाई, इंशाल्लाह मैं बहुत पहले भी देखता हूं आपसे, ये कभी मैंने कॉल पे नहीं आया, मैसेज पे बात आपको पता है होती रहती है, तो मैंने सोचा ये आज थोड़ा सा
0: अपने नहीं, बहुत बढ़िया बात, मतलब मैं आपको अप्रिशिएट इसलिए भी करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई और ये बात बता रहा होता ना, तो कुछ लोग इसको बहुत ज्ञान की तरीके से बताते हैं, आपने ज्ञान की तरीके से नहीं बताया, आपने जिस तरीके से बताया ना वो जेन्युइन लग रही है, तो ऐसे असली बात करने वाले बहुत बढ़िया लगते हैं लोग मुझे, तो उसके लिए आपको भाई
1: फोन है ही ऐसे बनाना है। तो अब मैं अभी वो तो हो गया सीन, अभी मैं सोचता हूँ यार और कितनी जगह कई जगह हमने नोटिस ही नहीं किया अपने लाइफ में, मस्त लोग कैसे कैसे जी रहे थे, या उनके अंदर क्या चीज चल रही थी, मांगते भी नहीं यार, इतने शर्म करते लोग।
0: तो आती है ना भाई, वो तो देखो ऑब्वियसली इंसान का ये है, अब उसके लिए वो उस लेवल का विश्रम बनने के लिए भी आपके पास कुछ तो होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो आज की तारीख में अगर आपको बिल्कुल शर्म खोनी है तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो आपको शर्म आएगी भाई। दैट इज
1: मुझे दो तीन चीजें लगती है, एक तरह से जो उसने किया, एक तरह से गलत भी लगता है, क्योंकि जब कोई किसी को खिलाता ना भाई, फिर वो उस नजर से देखता नहीं है उसको।
0: हाँ वो तो है, वो तो भाई वो तो देखो उसकी कोई गारंटी नहीं है,
1: उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
0: उसकी कोई गारंटी नहीं भाई। मैं आज अगर किसी को दूंगा मैं अपने आप पे काबू कर सकता हूँ कुछ हद तक, आफ्टर अवाइल मुझे लोगों को बताओ यार मैंने इसके लिए ये बताओ कैसे मुड़ रहा है, तो वो वाला सीन रहता है भाई, तो उसमें उसकी गलती नहीं है।
1: हम लोग भी ऐसे है, मतलब आज ये सीन ना हुआ था तो मैं शायद आज इस बारे में बात भी ना कर रहा था, अगर उस वो हमारे साथ बैठ के खा रहा होता या नॉर्मल रहता तो मैं ये जिक्र भी ना करता, मुझे भी लगता कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये सीन हुआ तो वो मुझे बहुत क्लिक हो गया, वो आज भी 2005 की बात है, आज भी मुझे वो
0: थैंक यू सो मच कि आपने शेयर किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी बात पहुंच जाए जहां पे जरूरी है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू भाई,
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एंड एंडिंग दिस टॉपिक विद द लास्ट कॉल, और ये जो है ये हम कॉल, बस ये बहुत मेजर इशू है भाई, मैं बताऊं ज्ञान व्यान देता नहीं भाई, मानता भी नहीं मैं ज्ञान व्यान, मेरे कहने से कुछ बदलने वाला, पर इतना है कि अगर आपको ऐसा पता लगे ना तो कुछ कर, एक्शन वैक्शन ले लेना, मतलब एक्शन इज इन, ट्राई टू बी ह्यूमन इनफ, और तो क्या भाई, बाकी तो मेरे कहने से कौन सा बदल रहा, मुझसे बड़े माशाल्लाह जहीन है, तो ज्ञान कोई नहीं देगा। बट उस्मान भाई ने ऐसे बताया, उस्मान भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अगली कॉल जो है हम लगा रहे हैं, एक सेकंड, कॉल लगी क्या? हाँ लग गई कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या
0: कौन तला, कौन तला रैप है लिया तो जॉन तला कैसे तला
2: भाई? आगे आगे बोल दूंगा ना, बहुत भयंकर उसकी रिलेशन मतलब
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मसला मसाले को छोड़ते तला भाई, क्या चल रहा है
2: भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बस आपकी कॉल का वेट हो रहा है, आप बिजी चल रहे हैं आज?
0: नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये बिजी चलता रहें दो भाई, ये तो अच्छी बात है, ये तो बरकत है काम की
2: रोजी रोजी चल रही
0: है, रोजी और रूटी चल रही है। तला भाई वैसे आप रहे कभी रूममेट्स में?
2: हाँ हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या सीन रहा आपका? तो बहुत अलग सीन रहता होगा, क्या सीन रहता था आपका?
2: भाई मैं गया इराक गया, तो क्या कहते हैं, मैं सीनियर इंजीनियर अपॉइंट हुआ था वहाँ पे, तो क्या कहते हैं मेरे पास वहाँ पे अकोमोडेशन के इश्यूज चल रहे थे उसका।
0: ओके,
2: तो भाई उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, दो पाकिस्तानी थे और दो इंडियन लड़के थे, मतलब वो पोजीशन वाइज जूनियर थे लेकिन कंपनी में सीनियर थे मुझसे। अब वो सर सर कह रहे हैं, नहीं नहीं सर कोई मसला नहीं, को हम कर लेंगे। मैंने नहीं यार मैं कर लूंगा भाई, मसला नहीं है, मुझे काम बता दो, क्या करूं मैं, किसको खाऊं?
0: अच्छा,
2: तो वो उन्होंने भाई वो करा के, मैंने कहा भाई खाने वाने का सीन है, मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं कर लूंगा भाई, वो एक बंदा समझो मैं शेफ हूँ।
0: ओके,
2: नहीं नहीं एक दो मैंने ना कुछ वो चिकन वगैरह बना दिया था वो नॉर्मल रेसिपी थी, तो भाई उनको अच्छा लगा, चखा रहे था इंडिया वाले लड़कों को ना, बिहार के थे दोनों।
0: अच्छा,
2: तो वो उन्होंने कहा नहीं आप जो ना थोड़ा खाने का हिस्सा कर लिया, हम तो राइस तो जरूर खाते हैं। मैंने चलो ठीक है, अब भाई रोज ना बॉइल्ड राइस बन रहे हैं भाई, यकीन कर 17-18 दिन मैंने उनको रोज बॉइल्ड राइस खिलाया, उसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था उस टाइम के, और मैं बता भी नहीं पाया उनको कि मुझे उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, यहाँ तक मुझे नूडल्स बनाने भी नहीं आते थे उस टाइम पे।
0: उनके मन में, उनके मन में कौन कौन सी गजलें और नज़में चल रही होंगी आपको पता नहीं है
2: भाई, कसम खुदा की आखिर में तो 17-18 दिन था रोज खिलाया ना, एक ना तो मेरे सामने हाथ जोड़ ले, चला पहला भाई सच्चाई बताया एक बार, मैंने कहा चला आपको इसके अलावा कुछ आता है? मैंने कहा कसम खुदा की ये भी यहाँ के सीखा है, चला शुरू के एक हफ्ते मुझे अंदाजा हो गया कि ये आपने पहले तो हम पे ट्राई कर ली एक्सपेरिमेंट, किसी ने नमक ज्यादा किसी ने नमक कम,
0: बहुत इज्जत से बता दिया आपको, तो तला भाई अब रुक जा भाई अब नहीं हो
2: पाएगा भाई, वो कसम खुदा की एक तो कह रहा भाई यकीन करो मुझे फॉर्म में चावल के दाने दिख रहे पड़े हुए, देखिए क्या कर रहा तला भाई, मैंने कहा भाई ऐसा ही है, मैंने कहा सफाई स्कूल में करूंगा नहीं, खाना मुझे आता बनाना नहीं, ठीक है बिस्तर समेट लूंगा मैं वो भी अपना, कहला भाई तू काम कर भाई, कसम खुदा की उन्होंने रिक्वेस्ट कर करके ना मेरा अलग रूम सेपरेट करवाया, मेरा एक दोस्त है वो साथ रहता था मेरा शुरू शुरू में जब मैं आया था ना 3-4 महीने हम साथ एक ही रूम में ना, अब उसी का हमारे टाइमिंग सेम, तो मगर के वक्त हमने उठना नमाज के लिए ना, नमाज के लिए उठना ना भाई, शुरू के महीने शुरू के 2-3 दिन हफ्ता समझो कि मैं आपका मोमिन ना, अब वो अजान जैसे वक्त ठक्कर के उठ गया आपसे मिलता हुआ, ठीक है भाई फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हुई, अल्लाह ताला से माफी तलाशी हुई, थोड़ा सा पैचअप की सिचुएशन में तो भाई वो लाते मार के गिर गया, आखिर में चप्पल पड़ी है मेरे मुंह पे, चप्पल पड़ी मेरे मुंह पे
0: ये तो मेहरबानी है भाई, हाँ ये तो मेहरबानी
2: है, मैंने कहा ये तो हॉस्टल लाइफ वाली सिचुएशन आ गई, हॉस्टल में होता था ऐसा, ये तो ये चप्पल पड़ रही है उसको, बेचारा मतलब क्लियर पोजीशन पे आने का चप्पल खा रहा हूँ,
0: तो ये तो बढ़िया है भाई, नहीं
2: बट बड़ा सीन था।
0: और आपके लिए मैसेज भी आया भाई, आपके लिए मैसेज भी आया, फरद भाई कह रहे हैं एकदम से मूड चेंज करवा दिया तला भाई ने, जी भाई अच्छा हुआ मूड
2: भाई, ये तो भाई वो तो शोक की सिचुएशन में ले गए थे ना, मैं तो एक इनका तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी मैंने।
0: और आपके लिए एक सवाल भी आया, सवाल है आसिफ भाई कह रहे हैं भाई प्लीज पूछो ना तला भाई से, तो इसमें ग्रेविटी कहाँ है, ये क्या सवाल है? हाँ यही सवाल
2: है, आसिफ भाई ने पूछा है,
0: आसिफ भाई ने पूछा है,
2: आसिफ भाई उल्टे लटके हो क्या?
0: अरे भाई साहब
2: थैंक यू सो मच, बैक बैक टू होम, बैक बैक टू होम वाला सवाल किया,
0: अरे बाप रे ठीक है, अब मूड बदलने आ गया तला भाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी हंस रहे हैं अभी, अभी मैं कहानी सुनाऊंगा तो सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है
2: भाई? करेंगे बिल्कुल करेंगे, कोशिश लाजमी करेंगे।
0: बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। गाबा जी ने कहा आई स्टिल डिडंट रीड, गाबा भाई मैं रीड कर दिया, मैंने एक मैसेज हैप्पी बर्थडे टू माय सिस्टर आबिदा जावेद भाई। अब वो एक्चुअली में उस टाइम पे मैं आगे बढ़ गया ना गाबा भाई, तो आपका मैसेज मुझसे पीछे छूट गया भाई, और दिक्कत को नहीं, एक मैसेज मूड ऑन कर दिया भाई, उल्टा लट गया क्या। एक गाना है उसके बाद सीधा कहानी पे आ रहे हैं, मैं कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, इसमें मुझे नाम और नहीं जगह तो सेम रहेगी, बट मुझे नाम चेंज करना पड़ रहा है फॉर अ वेरी रीज़न, कि इस बंदी की आइडेंटिटी छुपाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिज फैमिली, सो आई हैव टू चेंज द नेम, बट मैं स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा बिकॉज ये बहुत ही रेयर केस है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह के लिए, सो गेट रेडी फॉर अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी और आपको मजा आ जाएगा, इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई मिल रहे हैं एक गाने के बाद, 2 मिनट और 56 सेकंड का गाना है एग्जैक्ट, इसके बाद मिल रहे हैं एंड मिलते हैं। क्या है ये भी म्यूट कर दिया भाई, क्या म्यूट कर दिया? हैप्पी बर्थडे वाजवा सर आपकी लाडली को। अरे भाई मुझे विलन क्यों बना रहे हो? मैंने कोई म्यूट नहीं किया, मैं लगातार कॉल पर था इसलिए मैं कॉल मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा था, बट आई एम प्रीटी श्योर उनको ये मैसेज मिल गया होगा। नाजिमन लिखा वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग खादिम साहब, वालेकुम अस्सलाम। Alright, so, मिल रहे हैं एक गाने के बाद। एक मैसेज आया है अहमद भाई का, वो कह रहे हैं ऑटो करेक्टेड हो गया होगा, ग्रेविटी नहीं ग्रेवी पूछ रहे हो, ग्रेवी पूछ रहे होंगे। हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट। थैंक यू सो मच नाज़िम, गुड टू हियर इन द मॉर्निंग, जज़ाकअल्लाह।

Let's go. Karan Aujla. For a reason. और अब वक्त है स्टोरी सुनाने का आपको, तो मैं जल्दी से बता दूं जो आज की स्टोरी है. ये कहानी में सिर्फ मैंने नाम चेंज किया बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज़ ऐसी कि उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, मगर बाकी चीज़ें विल रिमेन सेम. तो आप ज़रा जो सुन रहे हैं लाइव मुझे बता दीजिए कौन कौन लाइव सुन रहा है अभी, सो दैट आई नो. एंड मैं शुरू कर रहा हूँ, तो सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने. सो डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है, फिर उन्हें सेवन किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन

भूल जाए। तो उसने मजाक करके इसको कवर अप कर लिया। सारे हंसने भी लगे, लेकिन माइकल की वाइफ एलिना, जो उनके लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेज से खड़ी हुई थी, उनको ये बड़ा ऑड सा लगा कि माइकल ऐसे तो नहीं कर सकता, मतलब दिस लुक्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर वो जोक भी मारता है माइकल, तो उसका ऐसा नहीं है कि वो भरी महफिल में एक अजीब सा जोक मारेगा, अपनी नेफ्यू की शादी में नेफ्यू का ही नाम भूल जाएगा। दिस इज वेरी नॉट माइकल टाइप ऑफ सिचुएशन। बहरहाल बात आगे बढ़ी, अलीना ने भी इस खूब बात को श्रग ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं देखी जाएगी, आई थिंक थका हुआ होगा। ये जो रात थी, शादी का फंक्शन वगैरह जल्दी खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद जब ये लोग गए नींद खींचने के लिए, तो माइकल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कई सालों बाद रात में जल्दी नहीं सोया, उसे 2 बजे जाकर नींद आई। और ऐसा कभी एलिना ने देखा नहीं। और एलिना ने पूछा कि आर यू ओके माइकल? बोला हाँ, वो शादी का माहौल है ना, तो चलता है आई थिंक, उस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, बट मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मैं सो जाऊँगा। एंड माइकल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2 बजे सोया। देखो, जो लोग अगर मेरे जैसे हैं, या बहुत लोगों के जो रात में जगने के आदी होते हैं, हम लोगों के साथ उल्टा है। अगर हम लोग 10 बजे सो जाएं, तो हमारे घर वाले हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा क्या हो गया कि ये कैसे सो गया इतनी जल्दी। बिल्कुल वैसा ही माइकल के साथ था। जो बंदा शार्प 10:30-11 मैक्सिमम सो जाता है, वो अगर 2:30 बजे तक जगा हुआ है, तो बहुत ही अजीब बात है। इसलिए अलीना को थोड़ा सा अजीब सा लगा। बहरहाल उसने शादी का माहौल और तमाम बातें करके उसे टाल दिया। ये पैटर्न रात के 2 बजे तक जगने का हफ्ते भर चला। हफ्ते भर ये चलते चलते नींद माइकल की घट के, जो 8 घंटे की हुआ करती थी, वो 5 घंटे की हो गई। मगर फिर भी माइकल ने अपने आप को बताया कि यार ये रेस्टोरों संभालना कोई आसान काम तो है नहीं, स्टाफ्स की परेशानी है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, नॉर्मल स्ट्रेस है शायद इसी वजह से। लेकिन वीक 2nd, 3rd, 4th नींद वो जो 8 घंटे से 5 घंटे की हुई थी, अब वो 3 से 4 घंटे की हो चुकी थी। नाउ दिस इज सीरियस। और अलीना ने ये जब देखा, जो उन्होंने अपनी शादी के 27 सालों में नहीं देखा था, तो वो डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने ब्लड वर्क किया, थायराइड चेक किया, ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक किया, और सब कुछ नॉर्मल आया, एकदम नॉर्मल। देखिए, आप में से कुछ लोग बोलेंगे, भाई हम भी तो सोते हैं 5 घंटे 4 घंटे, हमारा चल जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी यूज टू है। मगर जो बंदा जिंदगी भर एक प्रॉपर नींद लेता आ रहा हो, और वो अचानक से 1-2 हफ्ते के अंदर 2-3 घंटे सोने लग जाए, इट्स नॉट नॉर्मल। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई देखो, तुम 50 से ऊपर हो चुकी है तुम्हारी उम्र, तुम एक बिजनेस ओनर हो, तो स्ट्रेस होता है, तुम मेलाटोनिन ट्राई करो, जो कि अक्सर इस केस में दी जाती है, तो मेलाटोनिन ट्राई करो। माइकल ने ट्राई करी मेलाटोनिन, कुछ नहीं हुआ। साथ में मेडिटेशन, वाइट नॉइस का सहारा लिया, फिर उसे एम्बियन जैसी दवाइयाँ, लोनेस्ता जैसी दवाइयाँ, ये सब बताई गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। इनफैक्ट माइकल ने अपने दोस्त डॉक्टर से बात करके वो सेरेटिव्स लिए, वो तक गोलियां खाई जिससे एक घोड़ा तक बेहोश हो जाए और ना उठे घंटों तक। उस तक का असर नहीं हो रहा था माइकल पर। हो ये रहा था कि आंखें तो बंद कर रहा है माइकल, लेकिन नींद नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं है। इट्स लाइक आपने बस आंखें बंद कर ली और अपने आईलिड्स के पीछे को देख रहे हैं, बस नथिंग एल्स, फुली अवेयर। डॉक्टर्स को ये शुरुआत में लग रहा था कि ये क्रॉनिक इंसोम्निया है, मतलब नींद बिल्कुल ना आना, बेचैनी होना, ये सब। पर कुछ नहीं काम कर रहा था ये प्रॉब्लम। मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऐसी है कि आप समझ रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर इशू है, लेकिन ये हार्डवेयर इशू है। मैं बताऊंगा आगे कहानी में कैसे। 8वां जब हफ्ता शुरू हुआ ना, तो इस वक्त माइकल की नींद, वो माइकल जो 8-8 घंटे सोता था, वो अभी 1.5 घंटे की नींद ले रहा था। और ये नींद कभी डीप स्लीप नहीं थी, टुकड़ों में ही थी नींद। कहीं 15 मिनट सो लिए, आंख खुल गई, 5 मिनट सो गया, 10 मिनट सो गया, जिसकी वजह से इसका सीधा सीधा असर उसके काम पे नजर आ रहा था। वो अपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर्स भूल रहा था, एम्प्लॉयज के नाम गलत बोल रहा था। एक दिन तो हद ही

ये हो गई कि उसकी वाइफ एलिना रेस्टोरेंट में खड़ी हुई थी और गेट पे थी और वेट कर रही थी कब वो आएगा, और उसने बोला मैं तैयार होके आता हूं, मगर वो अपने ही रेस्टोरेंट के सामने से 3 चक्कर लगा चुका था और चौथी मरतबा एलिना ने जब गाड़ी के सामने खड़े होने का फैसला किया कि ये कर क्या रहा है, तब उसे याद आया कि उसका रेस्टोरेंट यहां पर है जहां वो पिछले 30 सालों से जा रहा था, और ऐसा लगातार होता गया। एलिना ने जिद करी कि अब हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो बहुत कंसर्न थी कि आखिर अचानक क्या हो रहा है। जब एक स्पेशलिस्ट को, एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मॉनिटर से हुक इन किया कि जरा चेक किया जाए, रीड किया जाए कि आखिर क्या चल रहा है। सो ब्रेन की जो वेव्स होती हैं उनको देखा गया तो ब्रेन की वेव सारी की सारी नॉर्मल थी। वो उसकी जब भी आंखें भारी होती थी तो दिमाग उसका एक हिस्सा जो हम सब में होता है डीप डाउन, जिसे थैलेमस कहते हैं, मैं आपको इसके एंड में ब्रेन के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है थैलेमस, इस नाम से उसे जाना जाता है, और इस हिस्से का काम क्या होता है, ये एक्टिविटीज में बहुत इफेक्ट करता है, स्पेशली हमें सुलाने में और जगाने में और कुछ चीजों पे नजर रखने में। डॉक्टर्स ने आज तक ऐसा नहीं देखा था उस दौर के एटलीस्ट जो थैलेमस का फंक्शन माइकल के साथ हो रहा था। ब्रेन उल्टा उसको जगा रहा था, जब उसकी आंखें बंद हो रही थी तो ब्रेन उसको झटके देके जगा रहा था कि उठो उठो, जैसे एज इफ कोई सोना चाह रहा हो उसको बार बार आप परेशान करके उठाए कि उठो उठो उठो उठो उठो उठो, एंड दिस वाज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने डायग्नोसिस लिखना शुरू कर दिया, क्रॉनिक इंसोम्निया विद प्रोबेबल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एक साइकेट्रिस्ट ने पूछा कि भाई आपकी फैमिली में कुछ ऐसा कुछ है क्या, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रही है, कोई डिजीज, कोई डिमेंशिया समथिंग। एंड माइकल उस टाइम पे चुप रही है क्योंकि माइकल को एक चीज याद आई जो उसकी मां ने बताई थी, वो बात जो किसी को नहीं बतानी है, वो बात थी उसके बाप से जुड़ी हुई। माइकल ने ये सबसे छुपा रखा था इनफैक्ट अपने बीवी बच्चों से कि उसके जो फादर थे एंटोनियो वो 1991 में दुनिया से चले गए थे। उनके साथ भी नींद की परेशानी थी, स्ट्रेस डिप्रेशन था, अर्ली अल्जाइमर था, सब कुछ था, मगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंटोनियो जागते रहे, हार्ट उनका, दिल तेज धड़कने लगा, पसीना होता गया और वो आंखें खुले खुले दुनिया से चले गए। उस टाइम डॉक्टर्स ने कह दिया कि नर्वस ब्रेकडाउन है, नथिंग एल्स। और ये सेम परेशानी उनके दादा, उनके कजन्स, इन सब में हल्की फुल्की देखी गई है। तो ये जेनेटिक बीमारियों का सिलसिला अलग तरीके से चलता आ रहा था। माइकल ने डॉक्टर्स के सामने ये बयान दिया और उसके बाद अपने कजन मार्कोन को कॉल लगाई जो कि वेनिस में था, इटली में, और मार्कोन ने कहा कि मैं समझ गया कि तूने क्यों कॉल करी है। ऐसा था जैसे वो इंतजार कर रहा था कि कब एक दिन आएगा कि माइकल उसे कॉल करेगा। और ये डिटेक्शन, इसको पकड़ने के लिए, दिमाग की इस प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए कुछ काम नहीं आता। पेट स्कैन वगैरह आपको स्पेसिफिकली थैलेमस का करना होता है, वरना एमआरआई में या सीटी स्कैन में ये पकड़ा भी नहीं जाता है। लेकिन डॉक्टर्स अमूमन इसके लिए कहते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता नहीं है कैसा हुआ होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब इतना रेयर है कि अगर कोई डॉक्टर इस चीज के लिए देख भी रहे हैं तो वो शायद आपको सीधा ना बोल देंगे पेट स्कैन करा लो, वो एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, नहीं निकला तो हो सकता है बोल देंगे कुछ भी नहीं है। पर एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया, एंड शी वॉज राइट। उन्होंने जब पेट स्कैन कराया थैलेमस का स्पेशली, तो ब्रेन का वो हिस्सा जिसे थैलेमस कहते हैं, वहां पे ऐसा था जैसे बिल्कुल अंधेरा, कोई एक्टिविटी नहीं। माइकल को जो हुआ वो बहुत ही रेयर परेशानी है, इसे कहते हैं फेटल फेमिलियल इंसोम्निया। दिमाग का वो सेंटर, वो डीप डीप हिस्सा थैलेमस, ये हमारे दिमाग का ऑन ऑफ स्विच है। जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो ये सारे साउंड को, जैसे कि हेडफोन्स होते हैं ना, नॉइस कैंसिलेशन, तो ये सारे के सारे साउंड्स को कैंसिल कर देता है। जैसे कि आप सोने से पहले कमरे की बत्ती बुझाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही आपके दिमाग के लिए सारे स्विच ऑफ करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है। नॉइज जाएगी, आंखें भारी होंगी, आप धीरे धीरे नींद में चले जाएंगे। इसके बिना
बायोलॉजिकली नींद लेना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। और माइकल का थैलेमस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसको अटैक करने के लिए कोई वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं था, उसकी खुद की बॉडी के प्रोटीन्स का चेन रिएक्शन था जो उसे उसके बाप दादा से मिले थे। उनके जनरेशन में किसी एक पॉइंट पे कोई म्यूटेशन हुआ और ये चलता आ रहा था। अगर किसी में ये माँ बाप में होता है तो डॉक्टर्स ने कहा ये 50% कैरी फॉरवर्ड होता है और उनके बच्चों को चांसेस होते हैं 50% होने के। 1986 में तक उस वक्त 70 फैमिलीज को था और उसके बाद ऐसे 300 केसेस पूरी दुनिया में अभी तक हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है सैडली, और कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। और माइकल इस बीच इन्हीं सारे फैक्ट्स के साथ जी रहा था। 4 महीने हो चुके थे और माइकल अभी एक अलग जोन में था, सोना तो वो छोड़ ही चुका था, उसका ब्रेन रिजेक्ट कर रहा था, थैलेमस वॉज डैमेज्ड। जब हम अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं या जानबूझ के जबरदस्ती अपने आप को जगा के रखते हैं फॉर वट एवर रीजन, तो ब्रेन के टॉक्सिन्स जा नहीं पाते क्योंकि ब्रेन उन्हें साफ नहीं कर पाता, हटा नहीं पाता। और दूसरा इफेक्ट होता है मेमोरी पे। आपके दिमाग में जो एक हार्ड डिस्क है, जैसे आपके फोन में है या आपके लैपटॉप्स और पीसीज में है, वो याददाश्त इधर की उधर हो जाती। जैसे हम कंप्यूटर में ढूंढते हैं ना कि यार ये मैंने इस ड्राइव में सेव किया था, उस फोल्डर में था, दिमाग वैसे ही जगल करने लग जाता है एंड आपकी याददाश्त बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। और वही माइकल के साथ हो रहा था। और तीसरा, क्योंकि अब आपकी मेमोरी जगल हो चुकी है तो आपके इमोशंस, गुस्सा, खुशी, बात करना, मूड बनना, किसी के साथ भी बैठ के कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना इज इम्पॉसिबल। माइकल को इसका भी अक्यूट हो चुका था, मतलब और भी बड़े लेवल की परेशानी थी। 3 दिन में हलूसिनेशन उसे चालू हो गया था। हालत ये थी कि माइकल रात को 3 बजे अपने डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाता था और एलिना सोचती थी कि ये क्या करने जा रहा है। एंड जब उसने पीछा किया तो उसने देखा कि वो किचन में डाइनिंग टेबल पे 8 लोगों के लिए खाना लगा के बैठा हुआ है। वहां पे उसने टेबल पे प्लेट्स लगा दी हैं और बोले जा रहा है, कह रहे सब आते होंगे अभी, तुम क्या तैयार हो जाओ जल्दी से, अभी खाना लगा देता हूं मैं। एलिना वॉज लाइक कि वो रोए कि वो क्या बोले, वो चिल्ला नहीं सकती पर क्या करे। और ऐसा नहीं कि वो जिद कर रहा है किसी चीज की, मगर उससे हो नहीं पा रहा है। वो जब सॉस बनाने की कोशिश कर रहा था, वो सॉस जिसकी रेसिपी को उसने 6 साल में मास्टर किया, जो उसको एक एक चीज याद थी, वो भी खड़ा हुआ सॉस को बनाने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ बर्तनों को देखे जा रहा था। ही कुड नॉट मूव। बच्चे माइकल के उससे दूर होने लगे थे बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। माइकल अपनी बीवी एलिना तक को भूल रहा था। और ये जो बेंडेड प्रोटीन है, जो खराब प्रोटीन हो चुके थे, ये थैलेमस से कॉर्टेक्स में एंटर कर रहे थे। ये बिल्कुल पुरानी पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं बिल्कुल वैसा था। उसके सेंटेंसेस, जो फुल सेंटेंसेस जो बोल रहा था, वो एक दो वर्ड्स में बदल गए थे। फिर उसकी वॉकिंग चली गई, चलना भूल गया, उठना बैठना भूल गया एंड आंखें उसकी खुली रहती थी। एलिना ने बहुत कोशिश करी, तमाम तरीके की ड्रॉप्स उसकी आंखों में डाल के कि वो जग सके या सो सके, कुछ प्रॉपरली कर सके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड देन केम द संडे, वो संडे जब डिनर तैयार करता ही करता है माइकल, जो इतने टाइम से नहीं कर पा रहा है। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रेशर दिया अपने आप को, जैसे वो अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा है और वापस सुलाने की कोशिश कर रहा है, बट नथिंग रियली हैपेंड। अब बच्चे डरने लगे क्योंकि इजाबेला और मरिया जो कि बड़ी हो चुकी थी, उन्हें डर था कि उनके फादर में ये चीज है तो उनमें भी ये आने वाली है। मरिया ने तो चेक करने से ही मना कर दिया क्योंकि इट्स लाइक कि आपको पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं किस तरीके से इस दुनिया से जाऊंगा या जाऊंगी। फैमिली के पास ही चॉइस थी कि वो पता कर लें कि वो कैसे इस दुनिया से जाएंगे एंड
दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि नहीं मुझे नहीं जानना। हम लोग जो

बाद सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन माइकल ने अपने ब्रेन को लेबोरेटरीज में दे दिया है, डोनेट कर दिया है, और आज भी इस बात पे काम चल रहा है कि किस तरीके से इस चीज़ से डील किया जाए, बिकॉज अपेरेंटली देर इज़ नथिंग जो इस चीज़ को ठीक कर सके। तो अगर एक स्लीपिंग पैटर्न है, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत मशहूर मिस्टर गैल्विन, तो मैं उन्होंने जो इस केस पे बताया वो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है एज इन कि आपको नींद नहीं आ रही है, एंड यू आर लाइक यार मुझे तो नींद नहीं आती, मैं जग लेता हूँ रात को, एंड आप वॉलेंट्री नहीं कर रहे हैं, ये इनवॉलेंट्री हो रहा है, कहने का मतलब ये, एक होता है जानबूझ के जगना, एक होता है कि आपको नींद ही नहीं आ रही है, इन दोनों में जरा सा फर्क है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बॉडी आप कुछ भी खा रहे हैं, पतले हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, लेकिन आपके दिमाग को आप कैसे लेके चल रहे हैं इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो चीज है ना, इसका इलाज नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है कि आपकी खुदा ना खासा किसी को ये चीज होती है तो वो क्या होता है, बीमारी में रेस्ट करते हैं ना, ये बीमारी ऐसी कि आपको रेस्ट ही नहीं करने दे रही है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ माइकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक पूरी जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए खुद के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो और हम सबको खुश होना चाहिए कि दिमाग रात में नींद के दरवाजे बंद करना भूलता नहीं है, टाइम से बंद कर देता है, दैट इज वो मोर इम्पॉर्टेंट। तो सुबह जगना ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, मगर टाइम पे अगर आप सो जा रहे हैं ना, या आप लेट रहे हैं और सो जा रहे हैं, इस बात पे भी उतना ही खुश होने की ज़रूरत है। सो या दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माइकल। आप क्या कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, स्टोरी आपके हवाले। 666-22107 नंबर है, 666-22107, और आपके मैसेजेस के इंतज़ार में मैं दोहा वाला कबीर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिएगा। इन कहानियों को ढूंढने में बहुत टाइम जाता है, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके रिस्पॉन्स आते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई 8:11 हो लिए। जो लोग इस कहानी के बारे में सोच रहे हैं, आई नो सोचने की जरूरत भी है, तो मैं तो खुद डर गया था कहानी सुन के। आपको क्या जो बताऊं, मैं एक कॉल उठा लेता हूं, उसके बाद आई विल प्ले द ट्रैक एंड फिर मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: अरे वाह भाई, क्या हाल है भाई के? माई गॉड, थैंक यू सो मच। कैसे लगी आपको कहानी?
3: ये तो हम लोगों को समझने वाली बात है कि इंसान जब किसी हालत में भी पूरा चल रहा हो ना, हर चीज आपकी काम कर रही हो, बॉडी का हर पार्ट नॉर्मल तरीके से, उतना ही शुक्र है।
2: हाँ, ऑब्वियसली
3: नींद आना ना आना, मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे साथ जो सॉरी से दोबारा बोलना पड़ेगा, जो लोग ट्रिप पे गए थे मेरे साथ उसमें से एक आदम जो बंदा मेरा ट्रिप पे गया था वो बेड पे लेटा था, उसको 5

0: मेंटली लगते से नींद आ रही थी मैं कहता हूं बहुत खुशकिस्मत इंसान है भाई
1: हां हां ऑब्वियसली भाई ऑब्वियसली मैं तो कह रहा हूं
0: बहुत मुझे फौरन नींद नहीं आती मुझे भी मुझे आधा घंटा लग जाता है आधा आधा घंटा लेकिन फौरन नींद आ जाती तो बहुत खुशकिस्मत है भाई
1: हां नहीं इसमें ये भी है ना कि इसमें ये भी बताया गया अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो ये लाइट प्रॉब्लम नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत हल्के मिले हैं और कुछ लोग हमारे यहाँ क्या देसी जनता बहुत प्राउडली बताते हैं ना अरे हमें तो भाई जग लेते हैं वो टेंशन को नहीं भाई रात में आराम से जग लेते इट्स नॉट दैट ग्रेट बस अच्छी बताओ तो
0: ये सिर्फ इस प्रॉब्लम का मसला नहीं है ये हमारे पूरे आजकल लोगों का मसला है कि अगर आपके को बच्चे प्रॉब्लम है या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है ना हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं यार ऐसा कैसे होता है मेरे बच्चे को ये मसला हो यार मेरे बच्चा कभी हो ही सकता ही हो और भाई हर चीज का इलाज है अगर टाइम से उसको ट्रीट किया जाएगा तो बच्चों की डिलेक्सिया हर चीज सही हो जाती है
1: ठीक
0: है लेकिन अगर आप उसको ये रिजेक्ट पे रखेंगे और बच्चों को नॉर्मल चीजों के साथ रखेंगे तो वो कभी कॉप अप ही नहीं कर सकेगा और अपने आप को एहसास कमतरी में चला जाएगा
1: बेशक बेशक बहुत अच्छा पॉइंट किया
0: ये तो बहुत नॉर्मल मैंने देखा हुआ है ये बहुत ज्यादा है हमारे देशियों में सबसे ज्यादा है हम लोग नहीं मानते यार मेरे बच्चे में ये मसला ना भाई
1: ऐसा हो ही नहीं सकता जी हीरा हीरा
0: मैं तो छह पतंगे काट देता था लेकिन ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है भाई वो कैसे ये हो सकता है अरे भाई कोई बात नहीं नॉर्मल चीज है कोई बात नहीं अल्लाह ताला खुद को सही करेगा लेकिन आपको ये समझने की बात है एक्सेप्ट करनी है तो आधी बीमारियां तो इंसान की इसलिए हमें हो जाती है कि हम मानते ही नहीं भाई हमें
1: हाँ पहले एक्सेप्टेंस ही नहीं इलाज तक पहुंचेंगे कहाँ से पहली बात तो ये है पहुंचेंगे कहाँ से पहली चीज क्लियर नहीं हो रही भाई फंसे हुए उसी में
0: कई लोग बताओ आपको ब्लड टेस्ट और पूरे स्कैन नहीं कराते कि यार ये ना कोई बीमारी निकले
1: हाँ ये है अरे नहीं ये बहुत फैक्टर है भाई बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि मैंने भी उसे लोग देखे हम चेक नहीं कराएंगे क्योंकि भाई क्या पता कुछ बीमारी निकला है फिर टेंशन हो जाएगी खामखा की एंड ये जो साइकोलॉजी है बड़ी अजीब है हमारे यहाँ ये मेरे घर में भी है भाई मैं और को क्या बोलूँ मेरे घर में भी क्या है कौन चेक कराऊं हाँ मेरे घर में भी है भाई हम क्यों दिखाएं जाए दिखाने पता लगा एक दो चीज बता दी डॉक्टर साहब ने फिर तो हो गई परेशानी तो ये ऐसा है भाई एंड इट रियली स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि आप पहले एक्सेप्ट करें जो ये नींद वाली कहानी तो मैं खुद पढ़ के डर गया मैं कहा यार ये भी होता है तो इसलिए
0: मैंने कहानी पढ़ी नहीं थी लेकिन मैंने इसके बारे में जरूर सुना था आप सो नहीं सकते बस दैट्स इट और आप चाहो भी तो नहीं सो सकते
1: हाँ चाहो के भी तो नहीं सो सकते वो वाला सीन है जैसी बीमारी के साथ वो अल्लाह करे भाई किसी को ना बस यही
0: दुआ ये तो है और सुना नाश्ता कर लिया
1: बा भाई 9 बजे करेंगे नाश्ता फवाद भाई बढ़िया करके ठीक है भाई
0: अरे
1: आप बड़े लोग हैं यार आपकी बात दूसरी है फवाद भाई हमारी बात दूसरी है भाई
0: 15 केजी और कम करना भाई
1: 15 केजी और कम करना है क्या जीरो साइज की तरफ जा रहे हैं आप ऐसा कुछ है अच्छा तो ऑल द बेस्ट फवाद भाई इफ यू कैन अचीव इट एटलीस्ट मैं आधा तो इंस्पिरेशन ले लूंगा आपसे इंशाल्लाह ये नौजवान लड़का कौन है ये नौजवान लड़का कौन है
0: एक बंदा साथ से गुजर गया और कहता कि पहले मुझे समझ नहीं है कि आप ही हैं कोई और है
1: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे मैं तो आप जरा 15 किलो और कम कीजिए लेकिन उससे बीच में एक बार मिल लीजिएगा पता लगा मुझे पहचान में नहीं आ रहे और मैं पहचानने से आपके मुंह पे इनकार कर दूं अरे जा रहे डुप्लीकेट तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ऑल द बेस्ट फवाद भाई बहुत सारा प्यार आपको हमेशा की तरह मेरे भाई ओके मेरे भाई अल्लाह डन भाई अभी तो एक गाना लगाया वो लगाएंगे उसके बाद लगाएंगे बढ़िया सा ठीक है भाई थैंक यू सो मच तो फवाद भाई के बाद मैं एक गाना चलाऊंगा उसके बाद मैसेजेस पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं एंड दिस स्टोरी डिड समथिंग जो मुझे उम्मीद थी इससे हाँ जी करण निकिता गांधी और ऋषि अर्जुन 8:16 जी 16 मिनट हो लिए हेलो मैनू मैसेज कर दो ड्रॉप कर दो जी व्हाट्सएप पे एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी प्रोफेसर साहब मैसेज चेक कर रहे हैं आप भी अपनी कॉपी रख दीजिए 666-221-07 पे

0: हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे। कुछ मैसेज जो है कहानी पर आए हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। जैस भाई जब भी कॉल कर रहे हैं मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। जैस भाई कल ना मैं उठा लूंगा भाई, सॉरी भाई सॉरी। मजर भाई ने मैसेज किया, मजर दिन भाई लिखते हैं। अच्छा काफी इन्होंने मैसेज बड़ा डीप एनालिसिस लिखा है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, टुडे स्टोरी वाज रियली टेरिफाइंग एंड मेडिकली डिस्टर्बिंग। इट वाज अबाउट सच अ सीवियर इलनेस दैट एज फार एज आई स्टूड हैज नो डेफिनेटिव क्योर। नहीं भाई कोई इलाज को नहीं भाई इसका। पहले हम जैस भाई कॉल उठा लेते हैं उसके बाद मैसेज आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: भाई क्या चल रहा है
1: भाई? कम से कम तो दे रहा भाई को।
0: अरे
1: ये तो भाई सब गाना मुझे एक ही याद आ रहा, दगाबाज
0: रे। हाय दगाबाज रे। अरे जैसू कैसे हो? कैसे चल रहा मेरा भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया यार,
0: बढ़िया चल रहा
1: है। आप बताइए।
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब चंगा भाई, एकदम बढ़िया।
1: ऐसे ही रहना चाहिए। अरे मैं कल रात को बड़ा ढूंढ रहा था, मैंने कहा यार कहाँ है भाई, मिल ही रहा
0: है? कहाँ है भाई, कहाँ ढूंढ रहे थे?
1: अब मुझे पता, हमें नहीं पता था ना कि तुम शिफ्ट कर गए भाई साहब।
0: अरे भैया इतना मैंने चीख चिल्ला के बताया है शाम में, मतलब इतना तो ढिंडोरा कोई नहीं पीटता होगा जितना मैंने पीटा है। मैंने तो बताया भी था मैं सुबह आऊंगा ना।
1: तो हमारे लोकी भिंडी टिंडे चल रहे थे तो वहाँ पे भी बता देते।
0: भाई तो मैं तो शिफ्ट हो लिया भाई, ये सुबह वाला घर ले लिया। दो घर है ना मेरे, सुबह और शाम वाले, तो अभी सुबह वाले में हूँ। छाप रहा है लड़का, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह छपेंगे, छप आएंगे, छपना शुरू हो गए भाई।
0: बिल्कुल भाई इंशाल्लाह भाई एकदम। और बताइए कहानी सुनी आपने आज की?
1: नहीं कहानी नहीं सुना आपने
0: भाई, आज की सुननी चाहिए थी भाई, आपके लिए थी भाई।
1: अरे क्या बात
0: है। हाँ भाई आपके लिए थी भाई, बिल्कुल आपके लिए।
1: स्टार्टिंग सुना था कि आठ घंटे सो जाता था बंदा, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
0: हाँ भाई बात की सुनते ना
1: यार, ये तो मुझसे रिलेटेड।
0: आठ घंटे की नींद तो सुन ली आपने, एंडिंग नहीं सुनी, पता लग जाती है। अरे मैं दूंगा ना आपको कहानी, फिर आराम से सुन के मुझे बताना फिर ठीक है।
1: बिल्कुल बताऊंगा बड़े भाई, जरूर बताऊंगा।
0: और बताइए जैस भाई सब बढ़िया बाकी?
1: हाँ अब तो इंशाल्लाह सुबह सुबह तो रोज मिलेंगे भाई सब, टेंशन मत लो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है भाई।
1: मैंने चलो यार भाई ने ये तो काम बढ़िया कर लिया कि हमारा स्कूल चालू हुआ तो भाई भी चालू हो गए सुबह सुबह, बढ़िया।
0: थैंक यू सो मच जैस भाई, पर सुनेगा जरूर, मैं भेजता हूँ गुजर में ठीक है। वेरी शॉकिंग भाई, शॉकिंग स्टोरी तो सुनाने के पैसे हैं भाई, इसलिए तो मैं सुनाया करता हूँ। और अभी मैं मजर भाई का पूरा मैसेज पढ़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज आती थी, ये क्या लिखा उन्होंने मैं समझ नहीं पाया, क्या बोला आपने? एक भाई ने मैसेज किया, नाम भी नहीं लिखा तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा।

0: रहा हूँ। एक कॉल और आ रही है आसिफ भाई की, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, गुड मॉर्निंग।
0: क्या आसिफ भाई, गुड मॉर्निंग। क्या भाई, क्या चल रहा भाई?
1: एक नंबर भाई, एक नंबर। माइकल भाई लाइक जॉनी नेवर भूला
0: भूला तो वो क्या बोलता है
1: ओ भाई, ओ माइकल भाई इतना मतलब भूलते जा रहा, भूलते जा रहा है। डेढ़ घंटा सोने लगा, मैं बोला ये तो भाई अभी लगता है एक घंटा भी नहीं सो पाएगा इसके बदले में।
0: यार ये आपने प्रेडिक्शन जो कर रखी है मेरी कहानी पे, जो अभी शर्तें लगा रहे हैं, ये कमाल है भाई आसिफ भाई। लेकिन आपको लगा कैसी कहानी, कैसे लगी ये बताएं
1: भाई? कहानी बोले तो भाई जबरदस्त, क्योंकि ये सीन हम लोग के साथ भी हो चुका है, इतना नहीं हुआ जितना माइकल भाई के साथ में हुआ।
0: माइकल भाई तो भाई, माइकल भाई की तो बैंड बज गई माइकल भाई की। यार बड़ा अफसोस हुआ मुझे उनका जान के भाई।
1: अच्छा भाई, एक चीज और पूछना चाहता हूँ भाई, मैं कबीर भाई दो चीज पूछूंगा, पहले एक चीज पूछता हूँ। ये जो जितनी भी स्टोरी आती है आपकी, इसमें सब माइकल भाई, जॉनी भाई, ये सब भाई नाम रहते हैं, कभी कोई अपने ऐसा कोई नाम हम मिलता कि नहीं भाई लोगों को
0: इतने? अच्छा देसी नाम कह रहे हो, देसी नाम भाई, देसी कहानियां भाई बड़ी खतरनाक है, वो मैं सुबह सुना नहीं सकता
1: भाई। मैं चाहता हूँ एक बार देसी कहानी बजा दो भाई, सुना दो भाई।
0: अच्छा चलो मैं देसी कहानी ढूंढता हूँ फिर, मैं कोई ना कोई देसी कहानी।
1: एक और सवाल, इसमें ग्रेविटी कहाँ गई
0: भाई? अभी देखो उन्होंने बोला था कह रहे उल्टे लटके हुए क्या
1: तला भाई ने जैसी है वर्ड बोला ना भाई, मैं तो बोला भाई ये क्या सीन बोल दिया भाई, गुड है यार, एक नंबर तला भाई,
0: पंच लाइन, पंच लाइन भाई, लॉट्स ऑफ लव भाई, ऐसे होना चाहिए भाई, चलो ऑन टॉप भाई। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके भाई,
0: ओके भाई। तो आसिफ भाई की बात जो है, मैं तेरा मैसेज पूरा कर देता हूँ। मजहर भाई का, मजहर भाई ने लिखा था, एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड्स सफर्स फ्रॉम अ सिमिलर हेरिडिटरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, टेंशन वाज अपेरेंटली पास डाउन फ्रॉम हिज फादर। ओके, व्हेनेवर ही गोज विदाउट स्लीप फॉर सेवरल डेज, हिज सिम्पटम्स द सिम्पटम्स बिकम्स एक्सट्रीमली सिवियर। इफ ही डजंट स्लीप फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज, बाय द फोर्थ डे हिज आईज बिकम वाइड एंड ब्लड शॉट। अच्छा, एंड ही डेवलप्ड एक्सट्रीम irritability, okay, agitation and aggressive behavior. He also became paranoid and starts perceiving everyone around him as an enemy. भाई तभी तो आधी चीज़ है ना मूड की भाई, ये सब ये भेजेस है भाई। लिखते हैं, his mental state deteriorated to the point where it became very difficult for the family to manage him, and he may even sometimes become physically violent or try to attack people. Okay. एंड लास्ट का पढ़ देता हूँ, बीच में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और ऑनेस्टली इट्स रियली स्केयर्स मी, मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस फ्रॉम सच इनक्यूरेबल इलनेस, कीप अस हेल्दी एंड सेफ गार्ड एवरीवन फ्रॉम सच डिफिकल्टीज। आमीन आमीन सुम्मा आमीन मेरे भाई, वेरी वेल सेड। एंड ये जो आपने किस्सा मुझे बताया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, इट टेक्स अ लॉट मैन, थैंक यू सो मच जी आपने शेयर किया। यूसुफ भाई लिखते हैं कि स्टोरी सुना कबीर, अच्छी लगी, ख़राब भी लगा वो बेचारे के लिए, वो बंदा डेली रूटीन यानी सही टाइम पे सोता था, सही टाइम पे जग भी रहा था, तो उसकी बीमारी कैसे हो गई? वो जेनेटिकली थी। और आगे लिखा उन्होंने, अल्लाह ताला हम सब पे रहमत, अल्लाह ताला की हम सब पे रहमत है, यही निज़ाम है, इसमें कुछ भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाए तो बहुत बहुत परेशानी होती है। बेशक मेरे भाई, लिखते हैं कबीर भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप क्या आप रात में ज्यादा ना जाए, अब तो नहीं भाई, मैं बिल्कुल 11:30 बजे कल भी ऐसे सो गया था मैं, नींद अच्छी भर के करें, इसमें सेहत है। थैंक यू सो मच भाई, आपने कंसर्न दिखाया, मेरे लिए बड़ी बात है। और लिखते हैं, जैसे आप सभी को कहते हैं डेली आप बेहद जरूरी हैं, ये आप भी लागू होता है मेरा भाई यार, हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। और लिखते हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़ी हयात दे, जिंदगी की सारी खुशियां नसीब करे, आमीन, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई। आसिफ भाई कह रहे हैं इंग्लिश समझ में नहीं आई, भाई वो ये कह रहे थे मजहर भाई कि उनके दोस्त के एक फादर है जिनके साथ सेम परेशानी थी, उनको भी नींद जो है वो आ नहीं रही थी, और ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पर नींद ना आने की वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही थी, तो आंखें लाल हो रही हैं, झगड़े कर रहे हैं, वो सब हो रहा था, तो उन्होंने भी एक ऐसा किस्सा शेयर किया। एक भाई कह रहे हैं, भाई 11:30 भी लेट है भाई, मेरे लिए बहुत जल्दी है 11:30, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन स्लीप, मतलब अगर मैंने दिमाग को कह देना भाई मेरे को आ रही है नींद, एकदम सो जाऊंगा मैं। और एक मैसेज है, कबीर भाई कैसे हैं? मैं बढ़िया भाई, लिखते हैं स्टोरी सुनकर लगता है मेरा ब्रेन स्विच ऑफ नहीं होगा आज। अरे ऐसा मत बोलो भाई काशिफ भाई, ब्रेन का भी स्विच ऑन स्विच ऑफ होना जरूरी है। फयाज भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यार, एंड देन इसके मैसेज प्लीज शेयर द स्टोरी। फिर वकास भाई ने लिखा है, वेटिंग फॉर द स्टोरी नाउ, सुन के शॉकिंग थी, अभी बैंक जाने के लिए निकला हूँ अच्छा अनरिलेटेड मगर ठीक है। अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं, भाई एक बार सो जाता हूँ ना, अलार्म नहीं बजता, बजा था तब तक नहीं उठता, वेरी गुड। मोहसिन भाई कहते हैं, हमारी फैमिली की एक लेडी थी, उनको भी नींद नहीं आती थी, वो शोर करती थी बहुत, फिर वो जानबूझ के करती होंगी भाई. गुड मॉर्निंग, यू हैव अ वंडरफुल डे कबीर, थैंक यू सो मच. ये मैसेज क्या है राज भाई ने, राज भाई थैंक यू. तला भाई कह रहे हैं कि भाई किसी को तो बचा लो आखिर में, भाई मेरी गलती थोड़ी है. और एक भाई कह रहे हैं सुबह सुबह, जी भाई सुबह सुबह. हैदर भाई ने मैसेज किया, हैदर भाई थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव. भाई हैदर भाई ने अपनी फोटो भी खींच के भेजी मुझे, उसके लिए बहुत सारा प्यार. और हैदर भाई लिखते हैं कि ड्यूटी स्टार्ट टाइम 11 बजे, आई एम इन द कार विद कड़क 7:30 बजे, लव यू ब्रदर, ओनली फॉर अप्रिसिएशन. बहुत सारा प्यार भाई को. एंड देन मैसेज किया है गाबा जी ने, गाबा जी थैंक यू, और गुड इन्फॉर्मेशन स्टोरी फॉर एवरी वन, थैंक यू सो मच. ये मोहम्मद अरफतुल इस्लाम साहब का मैसेज है. एंड देन फरद भाई ने भी मैसेज किया है, क्या कहते हैं, मैं वाईफाई करें, अच्छा आप नहीं सुन पाए, मैं भेज दूंगा भाई, नॉट एन इशू. और एक भाई कह रहे हैं 7:30 बजे स्टार्ट कर दिया करें, ठीक है जी. एक मैसेज है, गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ माइनर सिचुएशन, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप एंड लेटर इट इज गेटिंग वर्स एक्चुअली, यू फील स्ट्रेंज पीपल अराउंड यू, अबाउट पीपल अराउंड यू, बट अल्हम्दुलिल्लाह के आई कम ओवर. भाई थैंकफुली उस्मान भाई अब आप ठीक हैं, कह रहे हैं मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर. तबसुम मैंने मैसेज किया है, रात में ज़रूरत पड़ने पर जागना इज़ फ्रॉम माय कॉलेज डेज, क्योंकि रात भर पढ़ाई करना ऐसा पैटर्न हो चुकी थी कि और जगना जाग अच्छा, लेकिन डर भी लग रहा है ये सुन के. दिन में तो कुछ घंटे नींद पूरी होती है मेरी, लेकिन रात में नींद नहीं आती है. इट्स लाइक माइंड इज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन एंड आई स्लीप ओनली आफ्टर और इन द आफ्टरनून. बस दुआ करती हूँ मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं होगी इंशाल्लाह ताला. एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव स्लीप पैटर्न इंशाल्लाह. एंड यस अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ज़रूरत है जिनको लेट ते ही नींद आ जाती है. नाइस इन्फॉर्मेटिव स्टोरी, जज़ाकअल्लाह बहन. मैं ये कहना, इट्स वेरी इनफैक्ट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एक कॉल उठा लेता हूँ मैं, फिर गाना चलाते. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: भाई, क्या हाल है?
2: बस हाल तो ठीक है कबीर भाई. मैं सोचा कल भी एक को मार दिए, आज भी एक को लगता, जब आपने बोला ना कि इसका कोई इलाज नहीं, मौला अल्लाह बंदा गया.
0: अरे नहीं नहीं,
2: बहुत सैड स्टोरी भाई.
0: भाई
2: इलाज नहीं है. हाँ अब सोचिए कि जो है आदमी को पता चल जाए कि उसका इलाज नहीं है और जीते जी मरने लगता है.
0: ऑफ कोर्स भाई, ये चीज ऐसी ना, और ये लगती है बहुत बेसिक चीज, लेकिन ये है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है भाई. अब किसी के साथ हो रहा है उसी को पता है भाई.
2: वो तो है भाई. अब अभी आप ही है, कोई भी हो जिसको ये कह दिया जाए तो मालूम है वो इतने सदमे में रहता है कि भाई अब आप नहीं बचोगे, नहीं बचोगे. अब हम सबको मालूम है कि एक दिन मरना है, लेकिन अब उसको पता चल जाए नहीं मरना है तो बहुत सारी स्टोरी हो जाती है. अचानक जो होती है मौत, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये वाली वाकई में दुख वाली कहानी थी भाई.
0: हाँ, पर वो
2: अच्छी है, सबक है एक.
0: और इससे पता भी लगता है कि नींद का जो है ना पैटर्न सिर्फ ये नहीं कि सुबह टाइम पे उठने का तो फक्र आपको करना भी चाहिए कि अरे माशाल्लाह भाई मैं टाइम पे बिना अलार्म लगे उठ जाता हूँ, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप सो कब जाते हैं.
2: सोने को भाई मैं अगर कुर्सी बैठ के 5 मिनट अगर मोबाइल देखा तो सो जाता हूँ कुर्सी बैठे बैठे.
0: बहुत बढ़िया कमाल भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, इस बात पे तो मुबारकबाद बनती है भाई. सेट है भाई आपका मामला. थैंक यू सो मच भाई कि आपने कॉल करी, एंड मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है, क्योंकि थोड़ा सुबह की कहानियां थोड़ी सी अलग होती हैं, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग समथिंग एल्स, और भी कुछ लेके आऊंगा.
2: ठीक है कबीर भाई, थोड़ी अच्छी कहानी है, अभी तो अच्छी कहानी है, और भी लेके आइए.
0: डन मेरा भाई.
2: आजकल दो दिन से आप जो है, 2-3 दिन से समझ लो कि हफ्ते भर से मैं देख रहा हूँ आजकल दिमाग से ही आप खेल रहे हैं.
0: हाय
2: कहानी दिमाग की
0: सही पकड़े हैं. थैंक यू भाई, बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच. ओके भाई, अल्लाह हाफिज़. और मुझे एक बड़ा ही शॉकिंग मैसेज आया, मुझे पता नहीं था भाई ये, मतलब मुझे पता था या आपने शेयर किया है इससे पहले, आई डोंट नो. अली मकसूद भाई ने मैसेज किया, थैंक यू फॉर शेयरिंग एज आई एम अ बिग फैन ऑफ यू फ्रॉम लखनऊ. क्या बात कर रहे हो भाई, को डायलॉग भी याद है. अरे भाई मेरे को शॉक दे रहे हो भाई, थैंक यू सो मच भाई, लखनऊ के टाइम से सुन रहे हो भाई. ये तो कमाल हो गया. अच्छा आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता अली भाई, लखनऊ से बेटर है, आवाज़ में कुछ बदलाव कुछ है, ये आप बताओ क्योंकि आप अच्छे से बता सकते हो. आसिफ भाई कह रहे हैं, गलती से भाई अगर ब्रेन स्विच ऑफ हो गया ना तो भाई मैडम या अल्लाह ओपन बोलते बोलते थक जाएगा. अच्छा भाई आप 4 घंटे ड्यूटी करते हो, मुझे लगता है आपका हार्डवर्क है भाई, कंटिन्यू आप माइक पर बोलते रहते हो, सल्यूट है भाई तुमको. थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार. और खादिम भाई का बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया. क्या खादिम भाई कहाँ गए, अभी तो मैसेज किया था ना उन्होंने. हाँ ये ओके खादिम भाई कह रहे हैं, रिसर्चिंग दीज स्टोरीज इज नॉट ओनली डिफिकल्ट, इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू टेल. वी सल्यूट यू कबीर भाई, यू आर वेरी करेजियस, जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. आरिफ भाई कह रहे हैं, लेकिन जब दोपहर में 2-3 बजे तक अगर सो गया तो एक बार सुबह उठता हूँ, वो भी अगर ड्यूटी हो तो. भाई मैं तो कभी 4 घंटे भी सोता हूँ, कभी 20 घंटे भी सोता हूँ. उसे सोना थोड़ी कहते हैं, हाइबरनेशन है भाई वो. कहते हैं भोलू बाबा का स्टोरी था आज का. ये भाई कह रहे हैं, और खादिर भाई कहते हैं गुड स्टोरी वे.

When there is incomplete sleep, it leads to many psychological disorders and leads to seek assistance from physiotherapy. भाई यही सीन है भाई. बाकी तो जी मैं गाना चला रहा हूँ बटियाला, इसके बाद मिलते हैं. 8:32 हो लिया भाई, ये लो. शुभ FM 107 पे, let's go. और एक मैसेज भाई, 5 मिनट में सो लेता हूँ. एक प्रॉब्लम है, मेरी नींद बहुत सेंसिटिव है. मेरी सेंसिटिव नहीं भाई, JCB चला दो भाई, आपका भाई उठता कौन नहीं भाई. और भाई कह रहे हैं एनीवेयर आई कैन स्लीप. बहुत बढ़िया, मुबारकबाद मकसूद भाई.

0: वेक अप। और भाई ने भाई क्या तारीफ करी यार, थैंक यू सो मच भाई, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। भाई कह रहे हैं भाई फॉर्मेट ठीक है, गाना चलता ना बोर हो जाता हूँ, आप बोलिए करो। थैंक यू भाई, दैट इज सच अ ग्रेट ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू मी। आज मैं भाई ये फोटो खींच घर ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, टन्स ऑफ लव टू यू। और जो भाई मुझे लखनऊ से सुनते हुए आ रहे हैं भाई, मैं आई एम रियली ऑनर्ड कि आप लखनऊ से सुनते हुए आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नाउ यू आर मोर फेमिलियर एंड नेचुरल। थैंक यू सो मच भाई, वहाँ तो आपने नहीं बोला मुझे ऐसा नहीं, पर थैंक यू सो मच। वहाँ पे ना एक डायलॉग बोला करता था मैं, वो डायलॉग ऐसा था जैसे यहाँ बोलता हूँ ना कि आप बेहद ज़रूरी हैं, तो वहाँ पे हुआ करता था, मुझे भी याद नहीं रहा, याद आ गया, शतरंज में वजीर और बातों में कबीर, कभी भी मात दे सकते हैं। भाई क्या याद दिला दिया तुमने यार, क्या याद दिला दिया। और कुछ मैसेज पढ़ देता हूँ मैं, लव यू भाई, थैंक यू सो मच। फरहत भाई को बहुत सारा प्यार। एक मैसेज है, हमारे घर में ये कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा जागता है ये क्या बात हुई भाई सैयद इस्लाम साहब, वालेकुम अस्सलाम। और तबस्सुम बहन कह रही है जो 20-20 घंटे सो रहे हैं भाई, थोड़ी सी नींद उधार दे दो। एक काम करो भाई, हमारी बहन की तरफ नींद ट्रांसफ़र कर दो 4-5 घंटे, और हमें भी 4-5 घंटे दे दो। एक मैसेज है, भाई आपका गाना एकदम मस्त, हर बार गाना चलाते वक्त नाम बोल देना। भाई बहुत सारा प्यार आपको भी, थैंक यू सो मच। एंड इनके बाद खादिम भाई कहते हैं, भाई जो आपकी तारीफ़ करते हैं वो मेरा वज़न 100 किलो बढ़ता है खुशी से, लव यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। और एक भाई हैं जिन्होंने मुझे कल का टॉपिक दे दिया है, शकील अहमद भाई। तो शकील भाई ने जो आज डिस्कशन किया है वो मेरे उनके बीच में है अभी व्हाट्सएप पर ये डिस्कशन जो है ये कल टॉपिक भी होगा, अभी मैं कुछ नहीं बताना चाहता इसके बारे में। एक मैसेज है, भाई एब्सोल्यूट बैंगर, थैंक यू सो मच भाई। कबीर भाई आपकी प्लेलिस्ट इज द बेस्ट, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साद भाई, ओके तो यूसुफ भाई कह रहे हैं कैसे कंपटीशन है नींद जागने का ये कौन लोग है बेचारे हमारे यूसुफ भाई डर गए, अरे कौन हो कंपटीशन कर रहे हो, ये कैसा कंपटीशन है। अच्छा आज कुछ इंटरनेशनली मार्क्ड दिन होते हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, कॉल पहले मैं उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी भाई, जी भाई आपका नाम भाई?
1: जी शमशीर से।
0: शमशीर भाई आपका तो नाम ही एकदम औरा है भाई आपके नाम में। शमशीर भाई बताइए कैसे हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी भाई कहिए क्या कहना चाह रहे थे आप?
1: गाने के साथ मेकअप भी हो गया सबका
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच।
1: जी जी माशाल्लाह जबरदस्त, एकदम अच्छी थी कहानी कबीर भाई।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू,
1: बहुत एकदम मस्त थी। और मेरा भी यही मसला है कि अल्हम्दुलिल्लाह सो जाता हूँ बिल्कुल, यानी ये नहीं है तो 5-10 मिनट में बस सो जाता हूँ और टाइम से उठ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कुछ नहीं कि थोड़े लोग रहते हैं सो गए तो बस सो ही गए, ऐसा नहीं है कि मैं जब मुल्क में था सो जाता हूँ, कभी कुछ बच्चों से या कुछ यानी उठ के वो कुछ उनको चाहिए तो वो फटाक से उठ जाता हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि सोया ही पड़ा है, ऐसा नहीं है
0: भाई। इस बात में मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं तो आपको, ये तो बहुत माशाल्लाह अच्छी बात है भाई, अच्छी आदत है ये, इसको मेंटेन करो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़े लोग रहते हैं कबीर भाई, आप भी सुने होंगे, जगह बदलने से हमको नींद नहीं आती है वो लाइट रहेगा तो नींद नहीं आती है, हाँ कोई डिस्टर्बेंस रहेगा तो नींद नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नींद के मसले में तो ये बात सही है कबीर भाई, ये जो ब्राइन के मसले हैं बहुत है। मैं एक मेरे खाला के लड़के को देखा हूँ, वो भी हमारी एज का रहता है यानी के 30+ 36-37 का, उसको यही मसला था कि नींद का, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। उसको बहुत सारे डॉक्टरों के पास इधर उधर सब कुछ दिखाए, बाद में उसका रिपोर्ट ये निकला कबीर भाई, मैं भी सुन के शॉक हो गया।
0: क्या निकला?
1: यानी उनको उनको इतना टेंशन था, इतना टेंशन था, उनका ब्राइन ना छोटा हो गया, यानी जैसे 60 के एज में जो आदमी को रहता है,
0: हाँ, हाँ, श्रिंक हो जाता है, बहुत सारे हिस्से हैं,
1: वो साइज का हो गया। मैं तो सुन के ब्राइन छोटा भी हो जा रहा है, मैं तो सुन के शॉक हो गया
0: भाई। ये होता है भाई, आजकल जो है ना लोग जरूर ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उस चक्कर में और भी होता है, इसलिए मैं कहता हूँ टेंशन फ्री। मैं तो अपने शो में लोगों को बिल्कुल

0: मैं कहता हूँ मुझसे हेट कर लो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ज्ञान वाली बातें मत क्या करो, ना किसी से क्या करो ना मेरे से क्या करो, खुश रहो भाई, सीधी सीधी बात है।
1: अगर कुछ भी बोलेंगे ना उसको हाँ। दूसरा और तीसरा मसाला लगा के उसको टेंशन बढ़ा के
0: बस यही भाई,
1: और दिमाग खराब हो गया। यानी समझो मेरा ये मसला है आईडी का यार, इसे क्या करूं। अरे उसको क्या, वैसे जा ऐसे जा, वो कर दे ये कर दे, और बड़ा चढ़ा के
0: ये मसला हो गया। मैं भाई एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूं जो लोग कतर में है, रादर देन दूसरों से एडवाइस लेने का, कि आपको लग रहा होगा सामने वाला 20 साल से यार, तो मैं पूछ लेता हूं भाई अपने तरीके से करोगे ना जाके सब हो जाएगा भाई, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच शमशेर भाई, जज़ाकअल्लाह शमशेर भाई, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, नाम है शमशेर, समझ रहे हैं आप। कुछ मैसेज पढ़ता हूँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। आई एम फ्रॉम लखनऊ मोहम्मद रफ़ी भाई, बास्केट चाट खाने का दिल कर रहा है, हज़रतगंज कब चल रहे हैं। अरे मेरा भाई यार, क्या याद दिला दिया यार आपने, हज़रतगंज याद नहीं दिलाना था भाई। लखनऊ बेहद खूबसूरत शहर है, मैं वहाँ का हूँ नहीं लेकिन मुझे लखनऊ बहुत पसंद है। डिंग कहते हैं भाई हज़रतगंज में चलने को, मुझे भाई को 6 महीने के बच्चे के साथ नींद सो के दिखाए मान जाऊँगा। कह रहे 6 महीने के बच्चे के साथ नींद पूरी करके दिखाऊँ मान जाऊँगा तुम्हें ये ये कैसा चैलेंज है भाई ये कौन सा चैलेंज है। इन सब बातों को बाद हो जाए करण ओजला गाना ये भाई मेरे घर से मैसेज आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। एक मैसेज है स्टोरी कल की और आज की, लॉन्ग टाइम नो वेट, ओके जी भेज दूंगा मैं, कोई टेंशन को नहीं भाई। और मैसेज क्या है मोहसिन भाई ने, मोहसिन भाई मैं गाना देखता हूँ अभी। और एक मैसेज है, मैं और मेरा छोटा भाई ईद में क्या कॉम्पिटिशन लगता है कौन ज़्यादा। भाई ये क्या कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, कैसी बात है। फरद भाई कह रहे हैं लॉट्स ऑफ लव भाई, थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकअल्लाह। और एक मैसेज है भाई, मैं भी लखनऊ से हूँ और आपको बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, आई हैव बीन अ साइलेंट लिसनर लेकिन लगता है आज ज़रूरत है बताने की। इम्तियाज़ भाई, इम्तियाज़ भाई थैंक यू सो मच भाई, लखनऊ से सुन रहे हो आप भी भाई, आज तो कमाल ही हो गया। नईमुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम, एक लास्ट कॉल उठा लेते हैं फिर गाना चलाते हैं। एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: मेरे भाई का नाम क्या है।
2: गाने तो बहुत बढ़िया था भाई।
0: अरे अरे अरे, सीधा मतलब एक्सटेम्पोर भाई का कह रहे हेलो हेलो यार, तेल लेने भाई नहीं नहीं भाई, थैंक यू सो मच भाई। हाँ तो आपका नाम बता दो, नाम बता दो।
2: आरिफ।
0: हाँ अब बताओ आरिफ भाई, क्या क्या स्टोरी का तो ठीक है आपको अच्छी लगी, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। आपकी खुद की नींद कैसी है भाई।
2: भाई मैंने मैसेज किया था, मैं 20-20 घंटे भी सोता हूँ भाई।
0: 20? अच्छा हाँ 20 घंटे वाले हो आप। अरे भाई इधर हो यार, साइड में हो, चेल लेवल के। आज भाई ये 20 घंटे का क्या चक्कर है यार, इतना कैसे सुकून है, हमें दे तो थोड़ा सा, क्या चक्कर क्या है ये
2: भाई। देखो क्या होता है ना कि वैसे ड्यूटी तो हम लोग का 10-12 घंटा होता है,
0: ठीक है,
2: तो खाने और खाना कंपनी देती है पर वो हजम नहीं होता, तो इधर वैसे कभी होटल में खा लिया कभी कंपनी में खा लिया
0: भाई। मैं 2-3 घंटे मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा, मैंने जो सवाल पूछा उससे जुड़ा हुआ मुझे लग नहीं रहा ये जवाब।
2: नहीं लग रहा है आपको, मैं बता दे रहा हूँ।
0: अच्छा
2: उधर लेके मैं जैसे आप कनेक्ट करते हो ना किसी चीज में, कनेक्ट कर दूंगा तो मतलब मिला जुला के पूरा हफ्ते 5-6 घंटे 7 घंटे सोता हूँ, तो फ्राइडे का दिन मतलब जुमे रात को आराम से सोता हूँ एकदम 18-20 घंटे से।
0: अच्छा भाई 20 घंटे के बीच में कोई कॉल वॉल घर वालों को कुछ पड़ी नहीं होती आपकी, भूखे प्यासे
2: भाई कैसे? कॉल मैं कल कॉल आता है तो उठा लेता हूँ फिर सो जाता हूँ, क्योंकि जो उठ सो के उठो और फिर सो उसमें मजा ही अलग होता है
0: भाई। देखो मैं तो समझ रहा हूँ इंसानों में एक बड़ी नेचुरल चीज होती है उसे भूख कहते हैं ये कोई ऊंट ऊंट से अब हम पंप लेके आए क्या, प्यास प्यास नहीं लग रही, ये कैसे हो पा रहा है ये 20 घंटे भाई। मतलब
2: भाई अब मेरे को भी मालूम नहीं भाई कैसे हो जाता है, पर मैं सो लेता हूँ 20-18 घंटे कंपनी में। मेरे रूम 2 रूममेट हैं, अभी एक को चला गया, 2 बच्चे हैं, वो बोलते हैं भाई तुम इतना कैसे सो लेते हो। मैं बोलता हूँ मेरे को भी मालूम, बस कोई होगा नेचुरल टैलेंट
0: भाई। अगर मेरा रूममेट 20 घंटे सोए ना भाई मैं एम्बुलेंस बुला लूँ उस बात पे, समझ
2: भाई भाई कहानी में ही मारो भाई, नहीं
0: मैं भाई भी मेरी तो हालत टाइट कर दिया आपने 20 घंटे बता के भाई
2: भाई कहानी में ही सही है भाई
0: अल्लाह ताला वो सेहत मंद रखे, बस मेरी यही दुआ है। अच्छा लगा कि आपने मुझे शेयर किया, थैंक यू आरिफ भाई, बहुत प्यार भाई को।
2: क्यों पूरे हफ्ते हम लोग ड्यूटी थोड़ा टेंशन भी रहता है, स्ट्रेस वाला काम है ना इसीलिए।
0: आपको स्ट्रेस रहता है 20 घंटे वाला बोल रहा है, ये स्ट्रेस रहता है भाई, रहने दो भाई। अरे रहने दो भाई,
2: वो भी कभी कभार मतलब ज्यादातर वो क्यों पूरा हफ्ते 4-5 घंटे 6 घंटे
0: भाई। आपने हमारा दिल रखने के लिए बोला है आपको स्ट्रेस होता है, मुझे लगता को नहीं भाई आपको स्ट्रेस होता है सही है भाई, ऐसे स्ट्रेस फ्री रहे।

0: भाई,
1: रहता हूँ वो स्ट्रेस खाली वाली काम अलग है, अपना जिंदगी जियो बस।
0: मतलब वो तो आपको आप नहीं भी कहते ना ये बात, तो मुझे पता था आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, मुझे पता लग गया भाई। बहुत बढ़िया भाई, जीते रहो।
1: पकड़ने लगा भाई।
0: सोच रहा हूँ मेरा भाई, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कैसा है, ख्याल रखिए भाई। तो भाई ने जो रिकॉर्ड तोड़ बातें करी हैं, इनके लिए तो मैं ट्रॉफी बनवाऊंगा तांबे की। एक मैसेज आया, अरे भाई मेरा एक छोटा भाई है, घर में कुछ भी हो रहा हो उसे कुछ नहीं पड़ता, वो मैं ही हूँ। तो बस मैंने सल्यूट लगा के भेजा है। मैं कह तो रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ सीन ही बहुत अलग है भाई, बहुत सीन अलग है लोगों का। आपको क्या लग रहा है, आप नींद के लिए जो परेशान हो रहे हैं औरों का सुन लेंगे ना किससे, हैं? समझ भी नहीं आएगी, सारी नॉलेज जो है इधर की उधर कर देंगे लोग भाई। 20 घंटे सो रहे भाई, कह रहा थोड़ा स्ट्रेस होता है मुझे।

Do you hear me? Dishan Wine message kya hai? Welcome back to morning bro. Bas yahi wali beat chahiye morning mein. Jazakallah mere bhai. और अरबाज भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर सर. थैंक यू सो मच भाई. और इकराम भाई ने मैसेज किया कबीर भाई आपको तो बोलना चाहिए भाई, अवार्ड को नहीं चाहिए भाई, मोहब्बत जी मोहब्बत. इश्क बॉय

सा आएगी एनर्जी लगे जोर से आलस भी भाग देगा खुशियों के शोर से कतर दिखा दूं पूरा स्टूडियो के स्कोप से गाड़ी भी नाचेगी बैठी है ना फोर से नींद पड़े हर प्लान से को

0: wake up. Ey, do hawala mein kabir.
1: Yehi kahunga, subah subah.
0: Wake up.
2: वेकअप जी, वेकअप. 8:50 हो चुके. उम्मीद है कि मैंने सुबह आपको अच्छे से जगा दिया होगा. मेरा काम हुआ भाई. 8:51 ऑन द क्लॉक बाइट नाउ. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड. भाई साहब, एग्जिट लेने का वक्त आ लिया. तो सोशल मीडिया FM 107 कतर, FM 107 कतर इस नाम से जी हमारी जगह मौजूद है. एक मैसेज है, और भाई जाट पैदा होया सिर्फ चौण वास्ते. तेरे वास्ते नहीं, चौण वास्ते है भाई वो. मगर बहुत प्यार भाई को एक मैसेज है. गुड मॉर्निंग भाई, आपको सुबह सुबह सुनकर दिन बन जाता. थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. अरे वह कह रहे हैं भाई, एक बात बोलना ही भूल गया. आप डॉक्टर क्या है, सलूट लगने लगे हो न्यू हेयर स्टाइल में. अरे भाई सलूखे, ये कौन मैच कराओ जरा. खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ज़रूर भाई, मैंने खादिम भाई को चीज़ भेजी नहीं. खादिम भाई मैं सेंड करता हूँ. और कबीर भाई, आपके आने से रेडियो का माहौल बदल जाता है. थैंक यू सो मच भाई. सैयद इस्लाम भाई, बहुत सारा प्यार भाई को. ऐसे तो भाई चाहिए भाई. अरे डॉक्टर CID वाला. थैंक यू भाई, लॉट्स ऑफ लव. ऑन दैट नोट, सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर इस नाम से हमारे मौजूद है. प्लीज़ गेट इन टच. सोशल मीडिया के हर मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे. इंशाल्लाह आप सुबह दोगी. एंड मैं तो भाई जब से मॉर्निंग करने लगा दिन का हिसाब किताब नहीं है. आज क्या वेंसडे है? हाँ वेंसडे भाई. ये दिन में सब बदल गया मेरा. तो कल वीकेंड पे मिलते हैं इंशाल्लाह. सुबह को और भी बढ़िया एकदम हाई वोल्टेज बना देंगे. करंट छूटेगा भाई गाड़ी में से, ऐसा कर देंगे. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा. 9 बजे न्यूज बुलेटिन. और याद रखिए कि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मां सलामा.

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
4: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: शैतान इंसान का मुसलसल दुश्मन है जो हर हाल और हर मौके पर उसको बहकाने की कोशिश करता है। और जब बंदा इस दुआ को अपनी आदत बना ले तो हर शर से महफूज और हर खैर के करीब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस शख्स के लिए जो नींद से घबरा उठे उसके लिए इस दुआ की तलकीन की है, أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون। तो ये आखिरी दो जुमला वही है जिसका जिक्र हमने आज किया है। तो सिर्फ आज की दुआ में हम उसी जुज का जिक्र करेंगे, رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون। तो समीन ये थी हमारी आज की दुआ, इंशाल्लाह कल मजीद एक नई दुआ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107Qatar। दिल से देसी।
2: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
4: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द लीडिंग विमेन टेनिस प्लेयर ड्यूरिंग हर टाइम, स्टेफी ग्राफ। या दोस्तों, विमेन्स टेनिस की दुनिया में अगर कंसिस्टेंसी, डोमिनेंस और एक्सीलेंस की बात की जाए तो एक नाम सबसे अलग नजर आता है, स्टेफी ग्राफ। एक ऐसी टेनिस चैंपियन जिन्होंने सिर्फ ग्रैंड स्लैम टाइटल्स नहीं जीते बल्कि दुनिया की नंबर वन रैंकिंग पर भी अपनी जबरदस्त हुक्मरानी साबित की। स्टेफी ग्राफ के नाम टेनिस हिस्ट्री में वर्ल्ड नंबर वन रहने का सबसे ज्यादा हफ्तों का रिकॉर्ड है। ये सुन लीजिए, दोबारा आप लोगों से मैं ये बता देता हूँ कि स्टेफी ग्राफ वॉज द ओनली प्लेयर जिनके नाम सबसे ज्यादा हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर वन रहने का एक रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन टेनिस स्टार ने अपने करियर के दौरान 377 हफ्ते दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी के तौर पर गुजरे। ऐसा मैसिव रिकॉर्ड। जी हाँ।

377 weeks at world number one. मुश्किल होता है आज के डेट में तो हफ्ता क्या मतलब, मैं तो कहता हूँ कि दो तीन दिन में ही वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग जो है कोई ना कोई लेके चला जाता है, लेकिन 377 वीक्स ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं दोस्तों, बल्कि ग्राफ की कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ और कोर्ट पर लगातार एक्सीलेंस की कहानी है। सोचिए एक एथलीट का दुनिया में नंबर वन बनना ही कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन नंबर वन पोजीशन को सिर्फ कुछ हफ्तों या चंद महीनों तक मेंटेन करना अलग बात है। और स्टेफी ग्राफ ने यह मकाम 377 हफ्तों तक संभाल कर रखा, यानी तकरीबन 7 साल और 3 महीने दुनिया की टॉप रैंक प्लेयर रहना। ग्राफ पहली मरतबा अगस्त 1987 में वर्ल्ड नंबर वन बनी। उस वक्त वो सिर्फ एक टैलेंटेड यंग प्लेयर नहीं रही थी, वो वर्ल्ड टेनिस की सबसे बड़ी फोर्स बन चुकी थी। उनकी स्पीड, पावरफुल फोरहैंड, कोर्ट कवरेज और एग्रेसिव स्टाइल ने ओपोनेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। ग्राफ की सबसे बड़ी खूबी उनकी वर्सेटिलिटी थी। वो सिर्फ एक सरफेस पर कामयाब नहीं थी, ग्रास हो, क्ले हो या हार्ड कोर्ट, ग्राफ ने मुख्तलिफ सर्फेसिस पर अपनी क्वालिटी साबित की और इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में लंबी मुद्दत तक टॉप पर बनाए रखा। लेकिन दोस्तों स्टेफी ग्राफ की कहानी सिर्फ वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग तक महदूद नहीं, उनका ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड भी उनकी ग्रेटनेस का सबूत है। ग्राफ ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, चारों मेजर टूर्नामेंट्स में उन्होंने चैंपियनशिप ट्रॉफीज उठाई। लेकिन उनके करियर का सबसे हिस्टोरिक अचीवमेंट 1988 का सीजन था और उसी साल स्टेफी ग्राफ ने कैलेंडर गोल्डन स्लैम हासिल किया, यानी एक ही साल में उन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। टेनिस हिस्ट्री में ये अचीवमेंट आज भी बेमिसाल समझी जाती है। 1988 में ग्राफ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और फिर यूएस ओपन, और जब सोल ओलंपिक्स में उन्होंने विमेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता तो उनका नाम टेनिस हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक खास मकाम पर लिखा गया। स्टेफी ग्राफ का 377 वीक वर्ल्ड नंबर वन रिकॉर्ड भी उन्हीं अचीवमेंट्स में से एक है। यह रिकॉर्ड हमें बताता है कि ग्रेटनेस सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतने का नाम नहीं, ग्रेटनेस का मतलब है सालों तक अपने स्पोर्ट के हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करना, प्रेशर के बावजूद टॉप पर टिके रहना और हर नए चैलेंज के सामने अपनी क्वालिटी साबित करना। स्टेफी ग्राफ ने ये सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने टेनिस कोर्ट पर सिर्फ ट्रॉफीज नहीं जीती, उन्होंने एक एरा को डिफाइन किया और जब भी टेनिस हिस्ट्री में डोमिनेंस, कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस की मिसाल दी जाएगी, स्टेफी ग्राफ का नाम जरूर याद किया जाएगा। 377 हफ्ते वर्ल्ड नंबर वन, एक नंबर जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं एक लेगेसी है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपका टैकी, नहीं ये थोड़ा सा क्लीशे लग रहा है, तो मैं जी दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। और टैक अपडेट में, आज की अपडेट में मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है, स्पेशली वो लोग जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं। आजकल वीडियो बनाना भी महंगा है और वीडियो एडिट कराना उससे भी थोड़ा सा एक लेवल महंगा हो जाता है, मगर अगर आप खुद को सिखाना चाहें तो बहुत आसान है। एक जगह बताता हूं जहां पे आप जा सकते हैं, नहीं वैसे नहीं, मैप पे लगा

नहीं, एक वेबसाइट जहां पर आप जाएंगे और आपको पूरा का पूरा वीडियो एडिटर ऐसे ही मिल जाएगा एकदम फ्री, सो दैट यू कैन एडिट योर वीडियोस। और अगर एडिट करना नहीं भी आता है तो आप एटलीस्ट खुद को इस वेबसाइट के जरिए सिखा सकते हैं, एक्सट्रीमली इजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सुनिए वेबसाइट का नाम, videosoftdev.com, videosoftdev.com। मैं एक बार स्पेल आउट कर देता हूं, सो VIDEO वीडियो, बिना स्पेस ये लिखना है आपको, सॉफ्ट SOFT, फिर बिना स्पेस ये लिखना है आपको DEV, डेवलपमेंट का डेव, तो videosoftdev.com। आप जब इसे ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो एडिटर आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। आई नो कि कुछ लोग अभी कैप कट और बहुत सारे और भी ऑप्शंस रखते हैं अपने पास, मगर दिस वन इज क्वाइट इजियर। इसकी ट्रिक्स भी आपको ये खुद ही सिखा देगा और आपको इसमें खुद को सिखाने के साथ साथ एडिटिंग करने में काफी आसानी होगी। आई एम प्रिटी श्योर ये जो है लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आप फोन में एडिटिंग कर रहे हैं तब तो इसे ना यूज करें, बिकॉज इट माइट टेक अ लिटिल टाइम। लेकिन अगर आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए एक बढ़िया वीडियो एडिटर चाहिए तो भाई इससे बढ़िया तो मैं आपको फ्री में बता नहीं सकता, ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अगला है genial.ly, genial.ly। अब ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको नजर आएगी जो अक्सर बहुत बहुत खर्चा करवाती है, और वो है इंटरैक्टिव वीडियोस। कभी कभार हमें बच्चों को सिखाने के लिए कुछ चाहिए होता है, हम उसके लिए टॉयज खरीदते हैं या इंटरैक्टिव वीडियोस को डाउनलोड करते हैं या उन्हें यूट्यूब पर दिखाते हैं। बट वंस यू गेट होल्ड ऑन टू दिस वेबसाइट आपके लिए आसानी हो जाएगी। कुछ भी प्रेजेंटेशन या बच्चों को दिखाना है या ऑफिस के लिए बनानी है या किसी भी चीज के लिए कुछ फैंसी सा करना है किसी बर्थडे के लिए, आप इस वेबसाइट को यूज कीजिए एंड यू कैन मेक वो इंटरैक्टिव वीडियोस। बहुत फैंसी, बहुत कूल लगता है और फ्री में बन जाते हैं भाई, इससे बढ़िया चीज नहीं बता सकता मैं आपको। लेट मी रिपीट द नेम, इसका नाम है genial.ly, यूं करके समझ लीजिए इसका नाम और आपको मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो कोई भी अगर आपको हेल्प लगे तो बाद में पूछ लीजिएगा हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे FM 107 कतर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी गुड रिव्यू ऑफ समथिंग रियली रियली गुड। हाँ तो जी, अंग्रेजी इधर के उधर हो गई लेकिन रिव्यू करने वाला हूँ, समझ गए होंगे। तो मैं आज रिव्यू करना चाहता हूँ नथिंग के हेडफोन्स के बारे में। नथिंग के हेडफोन्स अमेजिंग है भाई, मुझे कभी नहीं लगा था कि एप्पल के वो जो इतने ज्यादा महंगे उन्होंने हेडफोन्स निकाले उनको कोई टक्कर देने की सोचेगा या फिर ख्यालों में भी आएगा, क्योंकि अगर आपको अल्टरनेट आइडियाज आते तो आप सोचते हैं सोनी का ले लूंगा यार, नहीं तो मैं JBL का ले लूंगा यार, और बहुत सारे स्टूडियो हेडफोन्स जो होते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं लोग उनकी तरफ जाते हैं। मगर नथिंग जो कंपनी है उसने एक बीच का पाथ पकड़ा है और अपने हेडफोन्स लॉन्च किए हैं। अब दो चीजें हैं मेनली, एक होता है डिजाइन जिस पे फोकस जाता ही जाता है एंड नथिंग हैज बीन नोन फॉर इट। उनके डिजाइन चाहे वो फोन के हो, चाहे उनके एयरपॉड्स के हो, चाहे उनके हेडफोन्स के हो, सब टॉप नॉच है। अगर आपको कोई तीसरी कंपनी नजर आती है जो कि एंड्रॉयड और iOS के अलावा भी कोई ऑप्शन देती है तो या तो वो गूगल पिक्सल है या फिर नथिंग की प्रोडक्ट्स हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ है इतने टेक जायंट्स के बीच में खड़ा होना। तो हेडफोन्स बहुत क्रिस्प हैं, बहुत बढ़िया हैं। महंगे हेडफोन्स की जगह अगर आपको कूल दिखने वाले और नॉइस कैंसिलेशन के साथ वाले क्लियर क्वालिटी के साथ चाहिए तो गो फॉर इट। और काफी बजट में, मैं प्राइसिंग यहाँ पे नहीं बता सकता मगर आप अगर देखेंगे तो काफी जगहों पर अलग अलग प्राइसेस आपको मिल सकते हैं। अमेजोन पे इट्स ऑन अ डिफरेंट प्राइस और हो सकता है लोकली भी कतर में आपको इजीली मिल जाए। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेडफोन जो कि मिड रेंज में आ जाए और आपको अच्छा भी दिखे और एप्पल को टक्कर देनी है और लोग भी पूछें कि ये क्या है भाई, तो फिर आपको ये लेना चाहिए। एक्सलेंट चॉइस फॉर हेडफोन्स और वो भी उस बजट में जो लगता है कि हाँ इस लायक तो है। मगर डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो हेडफोन आपको उस लेवल के नॉइस कैंसिलेशन सब कुछ देगा, थोड़ा सा साउंड लीक है मगर दैट इज फाइन, वो नेग्लिजिबल है। अब उसमें आप निट पिक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिस इज माय रिव्यू फॉर अ वेरी स्मॉल रिव्यू ऑफ द हेडफोन्स बाय नथिंग कंपनी। एंड भाई मैं इनकी तरफ झुकाव जा रहा है मेरा तो फोन पे भी दिल आ गया क्योंकि रिसेंटली दे हैव प्लानिंग टू लॉन्च देयर थ्री नथिंग फोन 3, तो उस पर भी नजर बना के रखिएगा, मैं भी नजर बना के रखूंगा, फिर आपको उसका भी रिव्यू मिलेगा FM 107 पर। ये थी टेक अपडेट्स।

0: एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट फ्रॉड अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर से इस्तकबाल है दोस्तों। मेरा नाम है फजील और ये शो फ्रॉड अवेयरनेस जहां पर नए जमाने के नए स्कैम से बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं। वेल, दोस्तों आजकल जिस तरह से स्कैम बढ़ रहे हैं ऐसे में आपको बेहद होशियार होने की जरूरत है। कई बार जो होशियार होते भी हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, जिनको एक्चुअली में पता होता है कि ये यानी कि उनके पास जो मैसेज आया है या उनके कंप्यूटर पे जो पॉपअप्स आए हैं वो स्कैम है, लेकिन फिर भी कई बार वो फंस जाते हैं। कई बार ओवर स्मार्टनेस में हमारे से गलती जो है वो हो जाती है। लेकिन इस नए जमाने के नए फ्रॉड में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इवन कई लोगों को पता है कि कैसे इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं। और आज एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। एक बेहद गंभीर ऑनलाइन क्राइम है ये, जहां कोई अनजान शख्स आपकी परमिशन के बिना आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का इस्तेमाल करके खरीदारी यानी कि शॉपिंग करता है और इस फ्रॉड से लोगों को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इसके तरीके और बचाव के सॉल्यूशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये फ्रॉड काम कैसे करता है सबसे पहले ये जान लेते हैं और फिर हम सॉल्यूशंस पर भी आएंगे। जो चोर होते हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने के लिए फिजिकल कार्ड की जरूरत उनको नहीं होती है। वो बगैर फिजिकल कार्ड के भी आपकी डिटेल्स क्रेडिट कार्ड की चुरा सकते हैं। वो अलग अलग तरीकों से आपका कार्ड या कहें आपका डेटा चुराते हैं। सबसे पहले है कार्ड स्कीमर्स। गैस पंप्स और एटीएम्स पर लगाए गए हिडन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि स्कीमर्स के जरिए कार्ड स्वाइप करते हुए डेटा कॉपी हो जाता है। ये आपने बहुत पहले इस तरह की वीडियोस भी देखी होंगी कि आप जब किसी एटीएम में कार्ड डालते हैं, खास तौर पे ये कई अलग अलग मुल्कों में होता है कि जब आप कार्ड डालते हैं तो ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो हिडन होता है, वो सारी डिटेल नोटिस कर रहा होता है और वो इतना शार्प कैमरा होता है कि वो सारी डिटेल्स आपके कार्ड की नोट कर लेता है। इवन CVV भी वो नोट कर लेता है। नीचे भी कैमरा है, ऊपर भी कैमरा है, 16 डिजिट के जो नंबर है वो भी आपकी डिटेल्स जो है वो ले लेता है और फिर जो आपने पिन डाला उससे भी उनको डेटा मिल जाता है। तो ऐसे में बहुत होशियार रहने की यहां पर भी जरूरत है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमने तो कहीं डिटेल्स दी ही नहीं, फिर मेरे साथ ये स्कैम कैसे हुआ। तो ये जो परेशानी है ये छोटी छोटी इन्हीं चीजों को नोटिस ना करने पर जरूर आती है। डेटा ब्रीच भी होता है। बड़े स्टोर्स या कंपनीज के ऑनलाइन डेटाबेस हैक होने पर लाखों कस्टमर्स के कार्ड नंबर्स डार्क वेब पर लीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन किसी बहुत ही लेजिट वेबसाइट से आपने शॉपिंग करी हो, लेकिन अगर वो वेबसाइट हैक कर ली हैकर्स ने तो आपकी डिटेल्स लीक हो जाती है। फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स के जरिए आपसे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV मंगवाया जाता है और इससे भी लोग आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इस पे नजर डालें तो हमारा काम आसान हो सकता है और हम किसी भी तरह के फ्रॉड से, कार्ड फ्रॉड से हम बच सकते हैं। सबसे पहले आप इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट को सेट करें अपने बैंक अकाउंट के जरिए। अपने बैंक

0: अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर इमीडिएट एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशंस एक्टिवेट करें। हर एक छोटे बड़े ट्रांजैक्शन का अलर्ट आपके फोन पर तुरंत आना चाहिए ताकि कोई भी अनजान एक्टिविटी आपसे छुपी ना रहे। सबसे पहला फर्ज आपका यही होना चाहिए। दूसरा, अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करें। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड की ऐप खोलकर स्टेटमेंट चेक जरूर करें। अगर आपको कोई भी ऐसा चार्ज या पैसा कटना दिख रहा है जो आपने नहीं किया है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार जो स्कैमर्स होते हैं वो छोटा अमाउंट कट करते हैं और आपने इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट सेट नहीं किया होता और ये छोटे अमाउंट जो कट रहे होते हैं ये आपकी जेब से खाली होते रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट से खाली होते हैं। और हमेशा जब भी आप कहीं पर स्वाइप करें अपना कार्ड तो स्कैमर्स का ध्यान रखें। किसी भी लोकल एटीएम या गैस स्टेशन पर कार्ड लगाने से पहले स्लॉट को ध्यान से देखें। अगर स्लॉट ढीला लग रहा है या आसपास ऐसे कैमरे नहीं है जो हिडन है तो आप वहां पर आसानी से एटीएम अपना डाल सकते हैं। जब भी आपके साथ फ्रॉड हो इमीडिएटली एक्ट करें। जैसे ही आपको किसी अनरिकॉग्नाइज्ड चार्ज या फ्रॉड का पता चले तुरंत अपने बैंक को कॉल करें। बैंक से कहें कि आपका कार्ड ब्लॉक करें और उस ट्रांजैक्शन के खिलाफ डिस्प्यूट चार्ज क्लेम फाइल करें। ज्यादातर बैंक्स फ्रॉड ट्रांजैक्शंस का पैसा वापस रिफंड कर देते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो और आपने इमीडिएटली एक्शन लिया हो। और हमेशा वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल करें। सेफ ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट का ही यूज करें। अगर पॉसिबल हो तो बैंक्स की तरफ से मिलने वाले वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या टेम्पररी कार्ड नंबर्स का यूज करें जो सिर्फ एक बार एक ट्रांजैक्शन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट को सेटअप करें। अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करें। स्कीमर्स पर ध्यान रखें। इमीडिएटली एक्ट करें अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है। और साथ ही आपको वर्चुअल कार्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फ्रॉड अवेयरनेस के, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम जानेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। Where should your money go? ये सोचना है। बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एकदम अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सेविंग का मतलब है पैसा सिक्योर रखना, और इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसा ग्रो करना। अगर आप 1000 कतरी रियाल बैंक अकाउंट में रखते हैं तो वो सेविंग है, और अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है या बिजनेस में लगाते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। सेविंग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो बेस्ट है, जैसे इमरजेंसी फंड हो, वेकेशंस है, नई गाड़ी है, एजुकेशन फीस है। लेकिन हाँ, ये सेविंग्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नहीं अच्छे होते। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स ही हैं। फिर चाहे आपका रिटायरमेंट हो, चाहे वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे चिल्ड्रंस एजुकेशन हो, चाहे प्रॉपर्टी परचेज हो, ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट से पूरी होती हैं। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हर महीने 1000 कतरी रियाल आप सेव कर रहे हैं, 10 साल तक आपने सेव किए टोटल अमाउंट अगर देखे जाए तो 1 to 0 यानी 1,20,000 कतरी रियाल। अब दूसरी तरफ आपके दोस्त ने 1,000 कतरी रियाल मंथली इन्वेस्ट किए, जहां उसे एवरेज रिटर्न मिला 8%। अब 10 साल के बाद उसके पास अमाउंट आपसे ज्यादा है, आपके पास है 1,20,000 जो आपने सेविंग से बचाए, और उसने इन्वेस्ट किया तो उसके पास 10 साल के बाद अमाउंट है 1,80,000। यहाँ कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक काम करता है। दोस्तों, कंपाउंड ग्रोथ मतलब प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट मिलना। यही तो एल्बर्ट ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का एक पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट

उसके बाद मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए जाओ। जैसे अगर आपकी मंथली इनकम है 15,000 कतरी रियाल, सेविंग्स है 1,500 कतरी रियाल, तो इन्वेस्टमेंट्स 1,000 कतरी रियाल। देखिए आजकल इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है। पहले थोड़ा सा मुश्किल आती थी लेकिन अब नहीं है। अब आप म्यूचुअल फंड्स लीजिए, ETFs लीजिए, स्टॉक मार्केट्स लीजिए, रियल एस्टेट फंड्स लीजिए या रिटायरमेंट प्लान्स हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास नॉलेज जरूर होनी चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं रिस्क के साथ आता है और एक कॉमन मिस्टेक कई बार लोगों को भारी पड़ जाती है। और ये मिस्टेक लोग करते हैं कि लोग ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड किया, मार्केट ऐसा है, ये बड़ी ही डेंजरस अप्रोच है। दोस्तों हमेशा अपना फाइनेंशियल गोल खुद डिफाइन कीजिए। अगर गोल 2 साल का है तो सेविंग ज्यादा सूटेबल है, और अगर आपका गोल 15 साल का है तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। एक छोटा सा फॉर्मूला ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं देन सेविंग इज अ गुड ऑप्शन, और अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं देन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट लोग दोनों करते हैं, सेविंग सिक्योरिटी देती है और इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ, तो दोनों में गुड बैलेंस क्रिएट करना आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है। बस फिलहाल के लिए तो मैं तो यही कहूंगी आपसे कि दोनों में गुड बैलेंस क्रिएट करें और लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती और मिलती हैं उन्हें ग्रैब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check.
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है 10:01 और सफ़ा और माविश के साथ टाइम हो चला है यू मैटर का।
3: बिल्कुल जी, और आपको ये भी बताते चलें कि 10:01 हमारा और आपका साथ है 11 तक, और बहुत ही मुकाबला मुझे सख्त महसूस हो रहा है आज।
2: देखो ऐसा लग रहा है मैराथन में भागने आए। exactly. मैं तो आजकल जो ना मैं जॉगर पहन के घूम रही हूँ, तभी तो इसे एक घंटे के अंदर हमने सब कुछ करना है, आपके साथ बातें भी करनी है,
3: गाने भी चलाने हैं और सब कुछ करना है,
2: टॉपिक भी शेयर करना है, और आपको भाई टिप्स और टैक्स भी देने हैं कि जिंदगी के साथ कैसे डील किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर भाई मोटिवेशन का डोज लेकर आ चुके हैं माविश और सफा। और भाई माविश ये भी बता दें कि हमें रीच आउट कैसे किया जा सकता है।
3: हाँ, हमें आप कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ 6622107 पे मैसेज भेजेगा। दोनों काम जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि वही है कि वक्त कम है मुकाबला सख्त है, तो जितनी जल्दी आप मैसेज भेजेंगे आपके मैसेज जल्दी हम शामिल कर लेंगे।
2: अच्छा, ये आवाज़ मुझे ही मेरी आवाज़ आ रही है या पीछे से हमारा अंडर ले कहीं गुम हो गया है?
3: नहीं, अंडर ले है तो
2: हाँ ये है। हाँ, अब आ रही है आवाज़, अब आ रही है। ठीक है, क्योंकि जब खाली पीली आवाज़ आती है ना तो ऐसे मज़ा नहीं आता। अच्छा भाई बताओ, भाई पहले तो ये बताओ कि किस किस का ट्यूसडे मेरी तरह गुम हो गया है। मैं आज जब उठी हूँ तो मुझे ऐसा लगा ऐसे मेरा ट्यूसडे कहीं गुम हो गया है।
3: क्यों?
2: क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि आज वेडनेसडे।
3: अच्छा, मतलब ये तुम ट्यूसडे तुम्हें पता ही नहीं चल सका?
2: मुझे नहीं पता। हाँ, फिर मुझे घर वाले कह रहे आज तो वेनसडे है, वेनसडे है।
3: अच्छा, वैसे मुझे भी नहीं लग रहा था कि कल जो है वो वीकेंड है, मुझे भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका रीजन पता है क्या है कि हम लोगों ने दो दिन कुछ और शोज किए हैं, फिर हम इधर शिफ्ट हुए हैं,
2: रैंडम हो गया।
3: तो डेफिनेटली
2: मैंने कहा, घर वाले कह रहे नहीं आज ट्यूसडे नहीं है। मैंने कहा तो फिर ट्यूसडे कहाँ गया? कहते हैं आज वेनसडे तो ट्यूसडे तो नहीं है, ट्यूसडे कहाँ गया? फिर कहते हैं ट्यूसडे कल था। मैंने कहा तो फिर ये हमारा मंडे कहाँ गया?
3: मतलब उन्होंने कहा होगा कि बहन तुम सदा की हो कुछ, अब मैं क्या बोलूं?
2: गजनी, गजनी।
3: तो इसलिए रहने दो इस बात को, आगे बढ़ो, आज बस वेंसडे है।
2: तो भाई देखो कभी कभी ऐसा भी होता है गोभी दिया, फिर लो आ जाओ जरा खुशबू लगा के अटेंडेंस लगवाओ। और हमें जो है ना पहले कॉलर आ गए हैं इनके साथ।
3: पहले कॉलर से पहले ये तो बताते चले कि हमारा टॉपिक क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
2: चले भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें वो इंसान, हमारे अंदर की जो शख्सियत है जो सो गई है दूसरों को खुश करते करते, हमें वो बनना चाहिए। बिकमिंग द पर्सन यू वांट टू बी।
3: ओके, मतलब वो इंसान बनना चाहिए जो दूसरों
2: positive,
3: को
2: देखो
3: खुश करते करते खो गई है।
2: हाँ, वो इंसान बनना चाहिए जो दूसरों को खुश करते करते कहीं खुद खो गया
3: गई है, खुद की तरह। ओके, हाँ, अब समझिए
2: ट्यूसडे की तरह कहीं खो गए हैं,
3: खो गई है वो। ठीक है,
2: क्योंकि बाकी चीजों के पीछे भागते भागते अक्सर औकात जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे लिए जो खुद के लिए इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, वो कहीं गुम हो जाती है। चाहे
3: मतलब आप कुछ करना चाह रहे थे लेकिन लोगों ने आपको वो करने नहीं दिया, लोग चाह रहे थे कि आप कुछ और करें और आप कुछ और करना चाह रहे थे।
2: बेसिक लाइफ की जो चीजें होती हैं, कभी कभी हमारे दिल में आता है कि हम अपनी लिमिटेशन सेट करें, कभी कभी हमारे दिल में आता है कि हम अपना डिसिप्लिन सेट करें, कभी कभी हमारे दिल में आता है कि भाई जो चीज मुझे खुशी देती है ना, फिर चाहे वो किसी को बुरी लगती है अच्छी लगती है, आई डोंट केयर। अगर वो एक इंसानी मेंटालिटी देखी जाए कि वो नॉर्मल चीज है, पॉजिटिव चीज है, तो मैं वो करूँ।
3: अच्छा, पता है होता क्या है कि जहाँ पे करने नहीं दिया जा रहा होता वहाँ पे इंसान वो कर तो नहीं पा रहा होता, लेकिन अंदर से कहीं वो बगावत जो है ना वो बीच बीच में कहीं आ रही होती है,
2: वो आ रही होती है, वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रही होती है, और यही मेन वजह होती है कि लोगों के दिलों में ना एक दूसरे से कड़वाहट पैदा होती है।
3: बिल्कुल
2: एक दूसरे से, वो मेरे अब्बा कहते हैं ना, कहते हैं बेटा अपना ईमान इंसान का ना खराब होता है जब दूसरों के लिए बोझ रखे ना। हाँ, तो अपना ईमान खराब, लेकिन बोझ आता भी कहाँ से
3: आता? बाजू का इसी तरह
2: कंपैरिजन भी आ जाता है। हाँ, देखो exactly. फलाने की लाइफ देखो ऐसी चल रही है, वो देखो उसको तो जिम जाने का टाइम मिलता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फलाने को देखो उसके पास जो है ना पानी का टम्बलर है, मेरे पास तो है ही नहीं। फलाने के पास शॉपिंग का टाइम है। तो भाई आप करो ना अपने लिए। देखो आइडियल लाइफ किसी की नहीं होती, परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती, खुशी का कोई मैं कह लूं को कोई वो कीमियाई केमिस्ट्री नहीं होती खुशी की। कोई खुशी की केमिस्ट्री ये होती है कि आप अगर पॉजिटिव कोई चीज अपने लिए सोच रहे हो ना, वो कर लो भाई।
3: Exactly.
2: अगर आपकी जेब
3: इसी नोट पे हम ले लेते हैं पहली कॉल। हाँ, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। अगर हम

0: नहीं बोलते रहेंगे तो फिर हम कॉल नहीं दे पाएंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अब मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ.
2: क्या आदाब भाई, होशियार हाल है
1: आज? सफा मैम गोभी दे फूले नहीं बोले.
0: बोले ना, बोले भाई, बोले
2: आप. शहजाद साहब आपने सुना नहीं?
1: जी जी, वो तो पुराना सब मैम ही से. इनको मैंने बोला सफा बाजी को कि हर दफा गोभी के फूलों, गोभी के फूलों, कभी बैगन, कद्दू, आलू.
2: नहीं, मैं बेवफाई नहीं करती, मैं बहुत लॉयल हूँ. मेरी लॉयल्टी जो है ना गोभी,
0: गोभी के साथ जो है वो बहुत ज्यादा ही है. कुछ
2: वो कहते हैं ना, गोभी का सालन हो, गोभी गोभी का पराठा हो, सब कुछ, बस गोभी का चाहिए मुझे.
1: सारी सब्जियां है बेचारे, कितने सब लोग बेचारे नर्वस हो जाते हैं कि सफा बाजी वो कब हमारा नाम आएगा. ये गोभी को लेके बैठे हैं बेचारे, बिजली बेचारी परेशान हो जाती है, कद्दू परेशान हो जाते हैं.
2: देखिए वो उन चीजों को मैंने आपके लिए छोड़ा, बस गोभी अपने लिए रख ली मैंने. उसके अंदर मुझे कोई भी बर्दाश्त नहीं होगा ऐसा वाला मामला. अच्छा भाई ये बताएं, सरासरी में आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आप जैसी लाइफ अपने लिए इमेजिन करते थे, क्या कहीं ना कहीं आपने अपने आप को, हम कहते हैं ना, त्याग दिया है, कुर्बान कर दिया है लोगों के लिए?
1: बिल्कुल.
2: कभी ऐसा बिल्कुल, ऐसा फील हुआ है आपको कि आपको भी अपनी जिंदगी जी लेनी चाहिए थी?
1: बिल्कुल. आपकी ये टॉपिक

0: आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, कम पड़ ही जाता है। तो भाई आप कितना कर लोगे, आप करते करते अपने आप को गवा दोगे, तो फिर आपके लिए क्या बच जाता है?
1: उसी में खुशी है ना, उसी में ढूंढो, उसी में खुशी है। अभी किसी को मैं तो ना मजाक करके किसी को तंग क्या करे ना, बेचारा कड़की में आता गिला, फिर उसमें जाके मैं बोलता है मैं भी एक हूँ तेरे इसमें से शेयर कर लेता हूँ, बेचारा ऐसे ही वो अंदर अंदर रोता जा रहा है यार इतना सा सालन है और ये बीच में कहाँ से आ गया। वो मुझे उसमें ही है ना, मैं वो बेचारा जितना दुखी होता है मैं उतना खुशी हो जाता। तो उस तरह से मैं हाँ अपने आप को हाँ मैं किसी में ना डालने की वो कर लेता हूँ भी मिलता है।
2: अच्छा पता है क्या, मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करें, लेकिन जैसे शहर सलीम जो कर रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं करें कि दूसरे खुश हों, ये इसलिए करें क्योंकि इनकी नेचर का हिस्सा है,
0: खुद को
2: इनकी नेचर का हिस्सा है, और इनको खुशी उसी चीज में मिलती है जब ये कुछ दूसरों के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पे ना बंदा ठीक होता है, मतलब उसकी नेचर है भाई दूसरों के लिए करना, वो पीपल प्लीजर नहीं है, वो अपने आप को खुशी देना चाह रहा है किसी दूसरे के लिए कुछ करके।
0: अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ, सवाल ये कि अगर दुनिया के तमाम लोग आपको जज करना बंद कर देते ना, आपको ये पता होता है कि मुझे जज नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप जिंदगी में क्या बदल देते, अपनी जिंदगी में ऐसा क्या चेंज लाते आप, अगर आपको लोगों का प्रेशर नहीं होता तो कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आते?
1: इंसान की जो फितरत, इंसान की जो अपनी पर्सनालिटी ना, अपनी है ना, उससे किसी का और किसी का कभी भी अख्तियार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान हर इंसान अपना खुद मुख्तार है ना, अपने मर्जी का मुख्तार मालिक है अपने मर्जी का ना, तो भले वो किसी का दिल रखने के लिए हामी भर दे, भले और कुछ मतलब सब्जेक्ट कर ले, थोड़ा वो वक्त ही होता है,
2: इनका कहने का मकसद है कि जो अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं ना कि भाई हम यूं बन गए, हम कुछ और बन सकते थे, वो सारे के सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो खुद से, तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी अम्मा ने नहीं करने दिया, अब्बा ने नहीं करने दिया, बेसिकली आपकी काहली आड़े में आ जाती है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये होता है इमोशनल प्रेशर नाम की भी एक चीज होती है। मैं
2: ये शहजादा सलीम ये कह रहे हैं। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को ऐसा होना चाहिए जो ये शहजादा सलीम बात कर रहे हैं ना, कि आप अपने फेलियर का किसी और को इल्जाम क्यों दें?
0: ये मैच्योरिटी का नेक्स्ट लेवल होता है मावेश, ये बहुत देर में जाकर समझ में आती है बात।
2: हाय अल्लाह,
1: एग्जाम्पल सफा में आप एक दस्तरखान पे बैठे हो, आपको खाना खाना नोश फरमा रहे हो, और कहीं से दो तीन है ना नई वेराइटी पार्सल आती ना, तो आप पहले वाले को भूल जाते हो, तो नाइट में
2: दूसरे ही प्लेट में
1: क्या पूरा नए पे होता है क्या भाई, मैं इसको तो टेस्ट करूंगा ये अभी आ गया है, तो मैं तो यही बोलूंगा की इंसान अपनी मर्जी का खुद मालिक है, खुद दुखियार है, तो वो अपना आपको उसी में ना डालने की कोशिश करता है, किसी भी माहौल किसी भी क्या किसी भी वक्त में बस अपने आपको मतलब बेटर से बेटर
2: तो अच्छी अप्रोच थी वैसे, मतलब ये बाकी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए।
0: बहुत लंबे अरसे बात समझ आते, मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी, मैं ना कुछ इस्लामिक लिटरेचर वगैरह पढ़ रही थी, उसके अंदर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी किताब थी, तो उसके अंदर मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी चीज एक बात पढ़ी कि इंसान जो है ना 40 इयर्स की एज में जाकर जो है ना उसका ये जो इसको क्या कहते हैं फ्रंटल लोब जो होता है ना, जो डिसीजन मेकिंग का, जिसके से हम कहते हैं मैच्योरिटी, ये वो टाइम होता है जब वो इंसान 40 इयर्स तक पहुंचता है ना, तब जाके उसके अंदर ये मैच्योरिटी आती है कि वो इन बातों को समझना शुरू होता है। मावेश लिटरली ये जो हम लोग कहते हैं ना अपनी लिमिटेशंस को, हम कहते हैं नहीं, अक्सर औकात दुनिया कहेगी आप लेजी हो, अक्सर औकात दुनिया कहेगी आप मीन हो, अक्सर औकात दुनिया कहेगी कि नहीं तुम बेटर वर्जन होते अगर वो अगर तुमने हमारी बात सुन ली होती, बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन होता ये है कि हम लोग जब वो ये चीज छोड़ देते हैं कि लोग क्या
2: कर रहे होते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करके आप अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा मतलब देखते हो, हर चीज करके देखते हो, ये इंसान की ना नेचर में होता है, खासतौर पे जब वो बच्चा होता है और लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो वो मुख्तलिफ चीजें करता है, और मुख्तलिफ चीजें करके उसको फिर मतलब कहीं बाय द टाइम ये समझ में आता है कि भाई ये भी गलत है।

0: ये भी गलत है, ये सही है. तो exactly. वो एक पूरा प्रोसेस होता है
1: और वो लर्निंग का प्रोसेस. लोग कहते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर. वो आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बड़े खामोश तबीयत के होते चले जाते हैं.
0: बहुत से ऐसे भी होते हैं
1: जो नहीं होते,
0: जो नहीं होते तो ये उनके लिए कहा जाता है.
1: चलिए आपका मेरी तरफ तो इशारा नहीं हो रहा है.
0: मैं 40 तक नहीं पहुंची अभी, अभी बोलूं क्या, अब मैं बोलूं क्या?
1: नहीं नहीं मैं नहीं पहुंची 40 तक,
0: रहने दो. मतलब तुम्हारे आसार 50 में भी नहीं है. चले जी, तो इस वक्त हम करते हैं प्ले एक आपके लिए सॉन्ग. आप साथ रहें, सुनते रहें और आपके मैसेज शामिल करेंगे इसके बाद. तो इंजॉय कीजिए ट्रैक.

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: राइट, हम आ गए एक दफा फिर आप लोगों के साथ यू मैटर्स और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। और आज का टॉपिक एक दफा फिर रिपीट कर दो सफा।
3: तो भाई आज का हमारा टॉपिक ये है कि जरा बताएं कि आप जो हैं, आर यू बिकमिंग द पर्सन यू वांट टू बी, या आप उस शख्स के अंदर तब्दील हो गए जिस दुनिया आपको देखना चाहती है। अपना आप आपके अंदर बाकी है या अभी भी दूसरों की लेंस से ही देख रहे हो भाई अपने आप को। तो भाई गोविंद यहाँ फुल्लो आ जाओ, जरा खुशबू लगा के मैसेज करें।
2: अहमद का मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, कैसे हैं आप दोनों? तो
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
2: और इसके साथ ही थी मोहम्मद यूसुफ खान ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, गुड मॉर्निंग मुझे और तुम्हें दोनों को कह दिए, कैसे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग।
3: आपको भी ढेर सारी वेंसडे मॉर्निंग। अच्छा, मैसेज का नंबर बता देती हूँ, 666-22-107 पे आप मैसेज कर सकते हैं, 666-22-107 पर। और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, जो कि एक कॉल आ गई है, कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: जी कौन है हमारे साथ?
4: पहचान लिया मुझे।
2: जी जी बिल्कुल पहचान लिया। क्या हाल चाल है भाई?
4: जी भाई हमको भी बता दीजिएगा फिर, मेरी मुझे पहचान नहीं गई। सफा मैडम
3: मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये हैदराबाद से गई।
2: सैयद भाई।
4: अच्छा
3: सैयद भाई कैसे हैं?
4: हैदराबाद आ रहा हूँ। हैदराबाद और अफगानिस्तान दोनों से ताल्लुक है।
3: हाँ, अच्छा हाँ, सैयद भाई याद आ गए क्योंकि सैयद भाई ने मुझे पहले भी एक दफा बताया था, ये कॉमो मुझे एक कॉम्बो याद रहता है अफगानिस्तान और हैदराबाद का। कैसे हैं आप सैयद भाई, ठीक ठाक हैं?
4: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों कैसे हैं? माशाल्लाह क्या कॉम्बिनेशन बना रहे 107 वाले। एक दिन नादिया मैडम और महविश खान साहब जो आ गए वेकेशन से वापस, दोनों आए थे साथ, उसके बाद फिर आप आगे जुड़ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह।
3: जी जी जी जी। तो बस ऐसे देखें, ऐसे कमाल धमाल हम करते रहते हैं। तो सैयद भाई आपसे सवाल है, ठीक है? आपसे सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वाकई में वो इंसान बन रहे हैं या बन चुके हैं जो आप बनना चाहते थे, या आप वो इंसान हैं जो दूसरों ने आपसे बनने की उम्मीद की है कभी,
2: या दूसरों ने जो आपको बना दिया।
3: हाँ
4: क्वेश्चन सुन रहा था जब से, और से और आप लोग अपने अपने वो भी दे रहे हैं और जो भी अपना एक्सपीरियंस है बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा इस पे, लंबा टॉपिक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरेशन के मैं आपको एलोबरेट करके बताता हूँ दो मिनट में। आप जो बोल रहे हैं कि एलोबरेट करना एक चीज में है कि जनरेशन में भी गैप आ गया है। जैसा आप आपके वालदेन को उठा के देख रहे हैं, वालदेन से आप जैसा दादा दादी नाना नानी का जमाना, वो जमाने में आप और आपके वालदेन के जमाने में और अब जमाने में बहुत फर्क है। तो कैसा बोलते हो, अभी आप कभी भी देखेंगे कि कोई बोलते हैं हमारे माँ बाप हम तो जिंदगी उनके लिए जी लिए भाई, हम तो ये सुन लिया, हम तो वो सुन लिया, पूरा कॉम्पिटिशन ही था, समझ रहे आप? अगर आजकल जो हम तो जिंदगी में नहीं आते, शायद जिंदगी जो है जेंजी बोरे नहीं भाई, अपना अपने को ना पहले, समझ रहे? कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन का तेल लेने,
3: ये क्या बुरी बात है ये सोचना कि नहीं मैं मेरी अपनी खुशी भी मैटर करती है। जिंदगी तो सबको एक ही दफा मिलती है भाई, तो उस जिंदगी को पॉजिटिव वे में अपने तरीके से जीना, क्या ये बुरी बात है क्या?
2: अच्छा तो हम सैयद भाई
4: पेचीदगी है।
2: हाँ हम ना वो जनरेशन है जिन्होंने पहले सुनी है, अब भी सुन रहे
3: पहले अपने अम्मा पास सुनी, अब अपने बच्चों से सुन रहे,
2: अपने बच्चों की सुन रहे हैं।
4: सही बात है। तो अभी बिल्कुल हमारे वाइफ की याद दिलाती, अल्लाह सलामत रखे मेरी प्यारी, तो उन्होंने फिर वही आपका कभी कभी मेरे को बोलते कि भाई आप भी हम तो यही बोलते रहते हैं, माँ बाप से हम पहले सुनते थे, अब आप फिर आपके बेटियों की तो बोलते मुझे। बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, सुनिए आप समझिए कि जनरेशन गैप है, थोड़ा मोहब्बत से चल के चलने का जमाना है आजकल, पहले का अलग था, तो इसमें पेचीदगी बहुत ज्यादा है। देखिए आप जैसा दादा दादी का जमाना था उसमें क्या बोलते लोग भाई, अरे भाई मतलब पूरा हर कुछ हम आपके हम कोऑपरेट कर दिए, उन्होंने बोलते थे भाई हमारी हमारे माँ बाप तो हमको इतना सता है, हमारे साथ तो इतना सता है, हम तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो हमारी जिंदगी सर्फ कर दिया पूरी, समझ रहे
3: हैं? ये टिपिकल देसी माँ बाप का डायलॉग है
4: जी।
3: लेकिन
4: माँ बाप के जमाने में थोड़ा हो गया, अब थोड़ा हो गया तो क्या है वो अब बिल्कुल कम हो रहा, तो जनरली बोल समझ गया ना आप, हमारे इंडिया में जो चल रहा है आजकल का जो जनरेशन है 2000 के, वो बहुत और शार्प और माशाल्लाह और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, तो वो बोलते हैं भाई साहब हमारा हमारे को जीने दो, सबर करो थोड़ा।
3: और मुझे मैं उनके साथ हूँ, मैं बेशक उनकी कैटेगरी की नहीं हूँ लेकिन मैं उनके साथ हूँ। میرا سوال آپ سے کیا کیا آپ وہ انسان بن گئے کیا اپنے اندر جب آپ جھانک کر دیکھتے ہیں, کیونکہ جیسا میرا سب میں نے کہا کہ بھائی زندگی سب کو ایک دفعہ ملتی ہے بھائی, تو آپ نے کیا وہ زندگی جی ہے جو آپ جینا چاہتے تھے, یا آپ نے اپنے آپ کو بھائی ٹانگ دیا انہیں اصولوں کے چکروں میں اور انہیں ایموشنل بلیک میلنگ کے چکر میں؟
4: جی جی بہت سفر ہوا ہوں, اور آپ جیسا بولے 40 کے بعد یا مطلب 40 سے پہلے الگ سمجھ رہے تھے, 40 کے بعد الگ رہی تھی, تو سمجھیے آپ کے سفر تو بہت کچھ ہوئے ہیں, ایموشنل اتیاچار بولتے ہیں کیا بولتے آپ, تو ایموشنل سے جو لوگ پلے کرتے ہیں, اور مطلب بولنے کا بھی بھائی مطلب ہر چیز بھائی کوپریٹ کرو اور وہ کر دو قربان قربانی قربان کر دو قربان کر دو بولو, تو بہت لوگوں کی آئیڈینٹی کھو گئی ہے اس کے اندر, تو سمجھ رہے ہیں میں اتنا کھل کے نہیں بول سکتا, مگر میں بھی افیکٹ ہوا اس سے اور میری طرف سے کچھ لوگ بھی افیکٹ ہوئے, اسی لیے آج میں وہ بھی گلٹ کرتا ہوں, میں گلٹ میں ہوں کہ بھائی میں اب افیکٹ کیوں کیا ہوگا کہ بھائی ان کے اوپر بھی زبردستی کی میں نے, تو یہ بات غلط ہے, اپنی پہچان ہے صحیح بات ہے, اور اس کا بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپل لینا چاہیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, لیے تو اس کا آنسر مل سکتا, سمجھ رہے ہیں آپ, تو کیونکہ میں ایک جگہ سنا کہ صدقہ دینے کے بارے میں بات آئی, تو صدقہ دینے کے بارے میں بتا ان کو دے دو ان کو دے دو, پہلے پہلے اس کا حق ہے پھر اس کا حق ہے, تو صبح پہلے ایک بار رہے حدیث میں سنا کہ بھائی تمہاری نفس تمہاری جان کا تمہارے اوپر پہلے تمہارا کہ تم نیوالا کھاؤ پہلے اپنا نیوالا تو کھاؤ, سمجھ رہے ہیں, تو مگر اپنا جو جنریشن ماں باپ کا جو جنریشن تھا ان لوگ نہیں بھائی مطلب پورا کوپریشن نہیں کرو بولتے,
3: پہلے وہ کہتے اپنے آپ کو اینڈ میں رکھو وہ لسٹ میں نا بالکل نیچے سے اپنے آپ کو شروع کرو, سیدھی سی بات ہے جو انسان اپنا نہیں کرے گا وہ دوسروں کا کیا ہی کرے گا,
4: جی تو اب آپ کے جسم کا بھی آپ جو حق ہے تو وہ چیز جو سنت سے ثابت ہے وہ تو اپنا جو جنریشن پہلے گیا وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے, بولتے بھائی اس کے بھائی نے اس کے بہن کے لیے اتنا کر دیا, اس کے بیٹے نے اس کے ماں باپ کے لیے اتنا کر دیا, تم کیا کر رہے ہو بھائی,
3: وہ ان شارٹ ورڈ استعمال کیا جاتا تھا سیلفش,
4: جی بالکل
3: تم بہت زیادہ وہ کیا اسے کہتے ہیں خود سیلفش, کیا کہتے ہیں اردو میں بھائی وہ
2: خود غرض
3: انسان ہے یہ بہت,
4: جی جی تو یہ مکس ہونا چاہیے, میں آخری میں آنسر یہ دوں گا کہ مکس ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو لینا چاہیے کہ آپ نے کب کب اپنے لیے کوئی چیز استعمال کی ہے اور دوسروں کے لیے کب کب دیکھا ہے کس کس کا حق دیا ہے, تو بیسٹ آف دا بیسٹ آنسر وہاں سے ہی مل سکتا آپ نے, وہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا, دیا
2: بالکل صحیح بالکل ٹھیک,
3: چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر,
2: تھینک یو سید بھائی, تھینک یو سو مچ, بہت عرصے کی بات بات ہوئی آپ سے, بہت اچھا لگا
4: ماشاء اللہ, میں امید کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہترین آپ کا ویکیشن گزرا ہوگا,
2: جی جی بالکل الحمد للہ بہت اچھی گزری,
4: مطلب اتنا تو مشہور ہوں گے انڈیا پاکستان تو نہیں گئے دنیا کے کوئی حصے میں گئے تھے, مجھے پتا ہے,
2: یہ صحیح سمجھے آپ, اچھا جی تو ابھی جو کہہ رہے تھے سید بھائی کہ جین زی جو ہے نا وہ اپنی لائف جی رہی ہے, تو میں اس معاملے میں اپنے آپ کو شامل کر سکتی ہوں, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے اوپر کسی کا پریشر تھا, میرے ماں باپ بہت ہی کول رہے ہیں بھائی اس معاملے میں, انہوں نے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا کچھ نہیں ڈالا, تو میں نے اپنی زندگی جو جیسی جی ہے وہ اپنے طور پہ اپنے حساب سے جی ہے,
3: اچھا میرا فلکچویٹڈ معاملہ تھا کچھ کچھ لیول پر, اماں ابا جیسے پڑھائی کے معاملے میں کہتے نہیں بھائی تم ڈاکٹر ہی بنو گے, تو اس کے اندر بہت زندگی ٹسل رہی, اس کے اندر بڑی ٹسل رہی
2: تو اپنی نا کی تو اپنی,
3: تو پھر آخر میں لیکن وہ جب اتنی ہمت آئی نا کہ بھائی جب نہ کر سکو, وہ ایک جنریشن بالکل صحیح کہا کہ جنریشن ایک ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ایموشنلی نا ڈیمیج کر دیتی ہے, پھر جب آپ اپنے ایک میچورٹی پر آتے ہو لیول پر تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ماوش, اٹس ناٹ دیٹ ٹو مچ لیٹ لیکن لیٹ ہو چکا ہوتا ہے, پھر آپ اپنے آپ کو دھکا لگاتے ہو, پھر ایک نیو اسٹارٹ کرتے ہو, کیونکہ اب آپ اتنے خود مختار ہوتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو خود ایک نئی ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہوتے ہو, لیکن اگر یہی چیز پہلے کی جاتی ہوتی تو زندگی کے وہ سال برباد نہیں ہوتے نا, دیر آر ڈفرنٹ تھنگس, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی جو کہا جاتا ہے نا یہ جین الفا جین زیز کے بارے میں کہ یہ بہت بہت سیلفش ہیں, بہت منہ پھٹ ہیں,
2: ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, جیسے میں اپنے ماں باپ کی بات کر رہی ہوں, میرے اماں باپ کا بالکل بھی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ سختی کریں کچھ بھی, انہوں نے بالکل چھوڑا ہوا تھا, میں کہتی تھی یہ کرنا ہے ہاں ڈاکٹر بننا ہاں بن جاؤ, یہ کرنا ہے نہیں ڈاکٹر نہیں بننا یہ کرنا ہے تو اچھا چلو یہ کر لو, مطلب یہ والا معاملہ تھا وہ مجھ پہ مطلب بالکل چھوڑا ہوا تھا میری زندگی کو بھی, بلکہ انہوں نے تو اپنی زندگی بھی میرے حساب سے مطلب وہ پوچھ رہے ہوتے تھے, ڈیسیشنز لے رہے ہوتے تھے کہ بھائی تم بتاؤ تم فیصلہ کرو, میں وش جو کہے گی وہ ہوگا, تو یہ ہاں ایگزیکٹلی
3: بڑا اچھا سین آپ گھر میں گھر کی, ہاں بس یہ میری بہن والا سین ہے کہ وہ جو آج بھی وہ جو کہتی ہے وہی ہوتا ہے بھائی, جو بڑا بچہ ہوتا ہے پریویلیج,
2: ہو سکتا ہے چھوٹے والے یہی کہتے ہوں جو تم کہہ رہی नहीं हूँ कुछ पता नहीं। फिर जी कॉल उठाएं,
3: कॉल लेते हैं भाई हमारे साथ, देखते हैं कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
4: साहिल
3: आजमी। साहिल, साहिल भाई है। साहिल भाई कैसे हैं?
2: साहिल पूरा नाम क्या?
4: साहिल आजमी।
3: साहिल
2: आजमी, ओके जी, क्या हाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल, साहिल भाई आप बताएं, आपसे अगर ये सवाल किया जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, देखिए नो लेक्चर नो नथिंग, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी की सिर्फ एक चीज़ बदलनी हो तो वो क्या होगी और क्यों होगी, और वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दूसरों के इमोशनल अत्याचार की वजह से ना हो, ये इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से ना, जो आपको लगता है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी ना ऐसी होनी चाहिए थी, मैंने दूसरों की वजह से मोल्ड कर दी।
4: ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें चेंज करनी चाहिए, बट इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसमें क्या चेंज किया जाए।
3: अच्छा अच्छा, ये बताएं, ये बताएं, आपका ऐसा कोई वर्जन है जो आप जीना चाहते थे, एग्जिस्ट करना चाहते थे, जिस वर्जन में आप जैसा बनना चाहते थे आप वैसे बन गए हैं, या आप कहते हैं कि भाई लोगों की वजह से मुझे अपने आप को ना बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ा?
4: हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जब मैं बीबीसी में था तो फिर फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वहां से मैं चेंज किया, फिर दुबई आ गया, तो मेरा जैसे हमेशा से एक सपना था कि मैं जो ये यतीम बच्चे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, तो वहां पे मैंने अच्छी सैलरी पे काम किया दुबई में, तो मैं हमेशा, मेरी आदत थी कंटिन्यू 5 ईयर तक मैंने एक मदरसे को, उसका नाम मैं नहीं ले सकता,
3: बेहतर नाम ना ले,
4: वो बहुत सीक्रेट होता है, मैं 30% सैलरी कंटिन्यू 5 ईयर तक मैंने डोनेट किया, 30%। और एक चीज बताता हूँ, जैसे आप कहते हैं कि अपने लिए भी हमको जीना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हमारे अराउंड है कि हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता,
3: सही,
4: तो क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब तक सारी चीजें मेरे अराउंड जो है वो सारे लोग जो है, जैसे अकेले में बड़ा इमोशनली भी होता हूँ मैं, कोई इस तरह की वीडियो देखता हूँ तो बहुत टची फील होता है, और इस तरह से, और बहुत सारे लोगों की लाइफ जो चेंजिंग चेंज करने के लिए भी मोमेंट आया लाइफ में, और किया भी है, और कभी कभी मैं फॉलोअप भी लेता हूँ लोगों का। जैसे मैं आपको एक कहानी बताऊँ, छोटी सी कहानी, अगर आप लोग सुनेंगे तो
3: सही सही
4: ऑप्शो के अच्छा लगेगा। जैसे एक बच्चा जो है वो दिया बेच रहा था दिवाली के एक दिन पहले, तो उसका छोटा बच्चा था, 7 साल का बच्चा था, तो वो पुलिस वाले आए और कहे कि नहीं सारी दुकानें हटाओ यहाँ से, जो रोड साइड में लगी सबको हटाओ, तो बच्चा बोला कि अंकल ये नहीं भी
2: मेरी भी,
4: तो पुलिस वाले ने क्या किया कि उसने 10 रुपए का दिया खरीद लिया और लोगों से अपील भी की कि आप लोग भी खरीद लीजिए, तो जो उनके साथ पुलिस वाले थे, और जब पुलिस का SHO जो है वो अपील कर रहा है तो सारे लोगों ने दिया खरीद लिया, तो अराउंड 400 समथिंग का वो हो गया, और उसने अपने जेब से कुछ 200-500 मिला के उसको 1000 रुपए दे दिया। अब ये मोमेंट आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, मैं दुबई में था और मैंने जब देखा तो मैंने कॉल किया उस SHO को, मैंने कहा इतना आपका नाम हो गया है, आप वायरल हो गए हो कि आपने इस तरह किया है, तो आपको चाहिए कि उसके लिए कुछ किया जाए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि जब ये पता चल गया कि बच्चे का बाप नहीं है, बच्चा ननिहाल में है और दिया बना के लोग बेचते, बड़ी गरीबी है, नाना जो है बूढ़े हो चुके हैं, माँ है बीमार रहती है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं 50,000 देता हूँ इंडियन रुपीज, और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करिए, और आप तो SHO है, आप एरिया में अगर सारे जो मानिंद लोग हैं उनसे कहेंगे तो अच्छा खासा एक अमाउंट हो जाएगा, और उनका क्यों ना एडमिशन करा के बच्चों का लाइफ चेंज की जाए, और कुछ उनको सिक्योर भी किया जाए। तो SHO ने वो बोला कि हाँ यार मेरे मायने तो ऐसा नहीं था, चलिए ठीक, अगर इस तरह मैं वायरल हुआ हूँ तो मैं वो करता हूँ, और उस टाइम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो 4 लाख और कुछ रुपए तक वो पहुंचा नाम,
3: सही,
4: बच्चों का जिस स्कूल में एडमिशन कराया गया उसने कहा कि हम जब तक ये पढ़ना चाहें हम कोई फीस नहीं लेंगे,
3: सही सही,
4: तो
3: सही।
4: एक अच्छा हो गया, बस एक सकून मिलता है।
3: हाँ, आपने मतलब तो आपने अपना वो वर्जन जिया, ये नहीं, क्योंकि अक्सर औकात लोग ये कहते हैं ना कि भाई क्या ही तुम्हारे एक करने से क्या हो जाएगा, तुम एक करोगे तो कौन सा कोई इनकलाब ले आओगे या तुम्हारे, हाँ, तो आपने अपना वो वर्जन जिया है, बेस्ट वर्जन जो आप चाहते थे जिंदगी में करना, आपको अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और आपने
2: दूसरों के लिए करना चाहते थे और आप दूसरों के लिए कर पा रहे
4: हैं। हम लोग आजमगढ़ से हैं तो वो बड़ी पोएट्री प्लेस है, सारे लोग वहाँ के बड़े बड़े शायर जैसे कैफी साहब आए और सकीन साहब हैं, रिसेंट में शबाना आजमी से वहीं से हैं, हम लोग बड़े करीबी हैं सब लोग। तो वहाँ पे जैसे हम लोगों के शायरी के हिसाब से कहा जाता है कि सब हवाएं चुप रही, सब आंधियां खामोश थी।
3: सही,
4: सब हवाएं चुप रही, सब आंधियां खामोश थी, एक तितली ने सारे गुलशन को हिला के रख दिया।
3: वाह वाह, अपने बारे में बात कर रहे हैं, एक तितली।
2: साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास कॉल्स भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, टाइम हमारे पास बहुत मुख्तसर है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी आपकी कॉल के लिए। तो सफा हमारे पास रियाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम, मुझे और तुम्हें कहा है, बहुत दिनों के बाद मैसेज कर रहा हूँ और आपको दोबारा से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो लोगों के हिसाब से पूरी जिंदगी गुजार दी, अपना कुछ नहीं रहा, और मैंने तो अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है कि हम लोगों को ना नो बोले बोलना नहीं आता हम लोगों को, और अगर इसी चक्कर में लोग हमारा फायदा उठाते हैं तो दूसरों के लिए भी करें, लेकिन अपने आप को नहीं भूलें। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अभी एक भाई ने कहा कि मैं उसी में मेरी खुशी है, नहीं कोई खुशी नहीं, आराम से बैठिए, दूसरों के लिए करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को भूलना गलत है। ना कहना सीखिए, जब आपको लगे कि नो बोलना है तो नो बोला करें। सही जी। अच्छा जी, इसके साथ मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा कि नहीं, मैंने जो सोचा था मैं तो वही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा तो नहीं हूँ, मेरे अपने चाहते थे वही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो अपने चाहते थे वही हैं और जो खुद चाहते थे वही
3: है। ये क्या हो रहा है, ऐसा हो ना सकता। देखो ये देखो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हेड्स भी हो और टेल्स भी हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है भाई।
2: ये बताएं भाई, इस कंफ्यूजन को दूर करें, और अगर हमारे पास कोई कॉल है तो जल्दी से झटपट कॉल ले लेते हैं, वरना फिर म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलें तो फिर हम एक गाना सुन के वापस आते हैं। आप सुनते रहे FM 107
3: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: आप सुन रहे हैं यू मैटर
4: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
3: FM 107 पर दिल से देसी
5: तो भाई वेलकम बैक आप सुन रहे हैं FM 107 पर हमारे शो का नाम है यानी कि हम यानी कि माविश और सफा और भाई आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 6622107 पे मैसेज कर द नंबर फॉर मैसेजिंग इज 6622107 और कॉलिंग के लिए नंबर है 4434377 4434377 और आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो बड़ा सिंपल सा है देखो भाई सीधी सी एक बात है एक वर्जन हमारा एक शख्सियत हमारी वो होती है जो हमारे अपने लिए होती है हम एक अलग ही पर्सनालिटी होते हैं अपने लिए और एक पर्सनालिटी हमारी होती है जो दूसरों के लिए होती है पीपल प्लीजर होती है और वो सबके अंदर होती है कोई माने नहीं माने लोग धड़ल्ले से कहते हैं नहीं भाई हमने तो कभी किसी
6: यार मैं मानना नहीं चाह रही हूँ मैं भी वही हूँ जो नहीं मानना चाह रही क्योंकि नहीं रहा है ऐसा सीरियसली नहीं रहा है ऐसा
5: अब हमने वो चेंज देखा है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं माविश 50% से ऊपर का रेशियो ऐसा है जो अभी भी पीपल प्लीजर बन के जी रहा है इवैल्यूएशन
6: लोग जैसे कह रहे हैं ना जैसे लोग कह रहे हैं कि एक एज आई उसके बाद फिर लेकिन अपना सीन ये है हाँ नहीं कि मेरा सीन ये है कि मैं बहुत शुरू से ऐसी हूँ जिस बात पे नो कहना है कह दिया
5: ये बहुत कम लोगों का होता है ये बहुत कम लोगों का होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे एक भाई ने मैसेज किया कि मुझसे कभी नो नहीं बोला गया मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं लोगों को सुनने में और मैं बड़ी डिफरेंट पर्सनालिटी लगती हूँ लेकिन मैंने ये चीज बहुत टाइम बाद सीखी कि नो कैसे कहा जाता है क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता था कि अगर आप किसी को जैसे मैं ऑफ एयर भी कह रही थी अगर आप किसी को ना कर दोगे तो आपने गुनाह कबीरा कर दिया आपने किसी का दिल तोड़ दिया आपने किसी की फीलिंग्स हर्ट कर दी ये पता ही नहीं था कि जो इंसान खुद अंदर से खुश नहीं होता वो दूसरों को क्या ही खुश करेगा दूसरों को खुश करते करते आप खुद गल सड़ जाते हो अंदर से
6: ना,
5: फिर आपको ख्याल आता है कि अरे मैं भी कोई हूँ
6: फिर मैंने देखा है ऐसे लोग जिंदगी भर पछताते हैं हाँ, ये पछतावा नहीं होना चाहिए
5: जो आखिरी वक्त तक भी ना इस चीज में जीते हैं जिनको एज के साथ एक लिमिट आ जाती है सीख जाते हैं अब वो लिमिट सीख
6: ली है क्या सीन क्या होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते तो अपने माँ बाप से सीख जाते हैं और क्योंकि आपके माँ बाप ऐसे रहे हो जैसे मैं वो वाली बात है तो मेरे घर पे ये बहुत ज्यादा था कि मेरे घर वाले सबको खुश करने में लगे हुए हैं तो मैंने पहले ही सोच लिया था बचपन से
5: दो टाइप के लोग होते हैं ना दो टाइप के लोग होते हैं कि एक वो कहते हैं जो हो रहा है हम उसकी चेन ब्रेक करेंगे जो हो रहा है उसके साथ हम चलेंगे
6: एग्जैक्टली तो कॉल ले लेते हैं
5: कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम
7: वालेकुम अस्सलाम
5: जी कौन है हमारे साथ
7: अमानुल्लाह
5: भाई कैसे हैं
6: कैसे हैं
7: अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों कैसे हैं
5: अल्हम्दुलिल्लाह अमान भाई आपका
7: माशाल्लाह दोनों की बातें बहुत खूबसूरत है
5: थैंक यू अमान भाई
7: हमने भी ट्राई किया कि कॉल करें ले लेते हैं कि नहीं
5: देखिए भाई हमने तो आपकी कॉल उठा ली अमान भाई आप बताएं आपको क्या लगता है कि आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं
6: जैसे आप जीना चाहते
5: आप जीना चाहते या आप लोगों के दबाव में आकर इमोशनल प्रेशर में आकर कुछ
7: मैं तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता
5: नहीं
7: खाली इतना बोलेगा कि जो लोग चाहते थे हमने उसकी कोशिश की है वो भी नहीं हुआ और जो हम चाहते थे वो भी नहीं हुआ दोनों
5: ये इसीलिए होता है क्योंकि आप जब इमोशनली स्टेबल नहीं हो पा रहे होते ना हमें कुछ कहीं ना कहीं ये गिल्ट खा जाता है कि हम दूसरों का दिल ना दुखा दें और फिर एक तरफ से ये भी पर्सनैलिटी हमें धक्का दे रही होती है कि देखो तुम वो क्यों नहीं बन रहे जो तुम बनना चाहते हो वो एक किस्म की जंग होती है
6: उलझन में रहे पूरी जिंदगी राइट
5: नहीं नहीं मैं कह रही हूँ भाई मेरे भाई देखो अभी भी जिंदगी माशाल्लाह बहुत पड़ी है अमान भाई बहुत बहुत जिंदगी बाकी है अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे अभी भी वक्त है अभी भी वक्त है आप अपनी जिंदगी भी सुधारें अपने बच्चों की भी सुधारें अपने इर्द गिर्द वालों की भी सुधारें अभी बहुत वक्त है अल्लाह ताला ने ये तो नहीं बताया
7: कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बाकी अल्लाह की मर्जी है क्या
5: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
6: जरूर होगा आप कोशिश करें जरूर पूरी होती है कोशिश
7: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
5: और बस
7: एक मैडम कॉल लेने के और आप लोगों को सुनते हैं
5: शुक्रिया
7: टाइम कॉल किया आप लोगों को
6: बहुत शुक्रिया भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू आइंदा भी जरूर कॉल कीजिएगा ठीक है थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह
5: हाफिज़। अमान भाई का ना वो वाला हिसाब है कि जो है ना जो कुछ साल पहले मेरा था,
6: अच्छा
5: कंफ्यूजन में दो कश्ती में सवार होता है ना इंसान कि मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, मैं अगर ऐसा बनूंगा तो फलाने का दिल टूट जाएगा, मैं अगर ऐसा करूंगा तो लोगों से मुझे कत्ता ताल्लुक होना पड़ेगा, टॉक्सिक लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों को जवाब दे देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे मेरे एक साइकेट्रिस्ट ने कहा था और बहुत सही कहा था, आप एक दफा बुरे बन जाओ ना कि शुगर कोटेड करके आप दूसरों को खिलाओ और खुद जहर पीते रहो, आप एक दफा करके खत्म करो ये मामला, ताकि आप वो जैसे हमारे एक भाई ने कहा था कि आपकी अपनी जान का भी कर्ज है आपके ऊपर, अल्लाह ताला इसका हिसाब सबसे पहले आपसे आपका हिसाब होगा,
6: हिसाब होगा बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमर और वापस जी, अच्छा नहीं मैं वो उमर वापस जीना चाहता हूँ, 19 से 21 साल की अभी मेरी उम्र जो है वो 22 साल है, चले जी टाइम थोड़ी गुजरा है, 3 साल ही है। और बास खान का मैसेज था,
5: अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
8: मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
5: मुदस्सिर भाई कैसे हैं? हाल
8: है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है
5: अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं मुदस्सिर भाई, आप क्या सोच रहे हैं और क्या क्या चाह रहे हैं, मतलब बताना कि अपने बारे में कि आप किस किस्म की जो है ना वो शख्सियत हैं, लोगों के जैसे बन गए जैसा लोग चाहते थे या वैसे हैं जैसा आपने अपने बारे में भाई किया था डिसीजन कि नहीं मैं ऐसा ही रहूँगा?
8: नहीं, मैंने अपने बारे में जैसा सोच रहा था मैं वैसा ही हूँ, जो लोग बोलते थे उसका तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया ना सुनता हूँ, लेकिन एक बात यही है कि जो दूसरे के लिए जीता है ना वो सबसे अच्छी बात है।
5: देखिए दूसरे के लिए जिए लेकिन उसके अंदर भी एक लिमिट होती है ना मुदस्सिर भाई, कुछ लोग जो है ना बहुत ज्यादा मीठे हो जाते हैं, इतने वो एक कहावत है ना कि इतना मीठा भी ना बनो कि आप गल सड़ जाओ, कुछ लोग
8: वो बात आपकी सही है,
5: आप लिमिट में रहकर करो जितना कर सकते हो।
8: वो भी तो दो बात है ना, एक इसमें ओवररेटिंग भी आती है ना, वो नहीं करो जो लिमिट में तुम करते हो ना वाला, उसमें जितना मजा है ना वो किस चीज में नहीं है, ये तो आप दूसरे के लिए जीते हो ना
5: लिमिट में रहकर आप करो ना, लिमिट में रहकर करो ना। तो
8: जो जितने एक भाई ने बोला था ना कि वो हमने तो डोनेशन किया ये करता था वो करता था,
5: हाँ,
8: ना?
5: हाँ, हाँ.
8: मैं उन लोगों के ये बोलता हूँ ना जो लोग ये करता है ना
5: सही,
8: ये दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं।
5: हाँ, ये अपनी इस्तेआत के मुताबिक जो कर सकता
6: है। यहाँ पे ना एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो मुझे लग रही है, मतलब आप अगर दूसरों के लिए कुछ करते हैं और दूसरों के लिए जीना चाहते हैं तो वो आप ही जीना चाहते हैं, तो मतलब वो आप वो ही जिंदगी गुजार रहे हैं जो आपने अपने लिए प्लान की है। हम बात क्या कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप अगर समझे चैरिटी करते हैं लेकिन आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अब्बा या मामू ने किसी ने प्रेशराइज करके रखा था कि देखो सारे पैसे चैरिटी में दे देना, तो फिर आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। लेकिन अगर अपनी विल से आप चैरिटी कर रहे हैं, अपने विल से आप दूसरों के लिए मदद कर रहे हैं, तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं।
8: जी, जो जो आप बोल रहे हैं ना कि माँ बाप, जैसे महवेश ने बोला कि माँ बाप ने बोला जैसा आप करना है ना, तो हमको भी माँ बाप ने बोला आपकी जिंदगी जैसे गुजारनी गुजारो
6: गुजारो,
8: तो आप जिस तरह जिंदगी गुजारने गुजारो, जिस तरह मैं गुजारता, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ना पढ़ा। मेरा भाई बोल रहा था कि मैं डॉक्टर बनेगा, तो वो डॉक्टर बने, अपना मर्जी से हम लोगों ने लाइफ जिया है। लेकिन बात ऐसे है, लेकिन वो अपनी मर्जी से लाइफ नहीं जीता है, किसी के ऊपर चाचू है, किसी के ऊपर मामू है, किसी के ऊपर अब्बा है, तो फिर उसका बीच में जिंदगी भी खराब हो जाती है।
5: हाँ, वो ऐसा
8: होता है वो दूसरे रास्ते से निकल जाता है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, सही सही सही सही
8: जैसा। लेकिन आजकल तुम देखो ना जो बच्चे जो है ना इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं करता है।
6: बिल्कुल,
8: तो हमारे 19 की जो है 19 के ऊपर ये बात बहुत ज्यादा होती थी, तुम वो करो तुम ये करो तुम वो करो, वो भी नहीं किया वो, लेकिन वो ने दूसरा रास्ता कर लिया।
6: सही सही,
8: तो अंजाम तो बुरा होता है।
6: हाँ हाँ, सही सही। चले जी मुदस्सिर भाई, जबरदस्त, मतलब आप अपनी पसंद की ही जिंदगी जी रहे हैं और इसी तरीके से जीते रहे, ठीक है।
8: थैंक यू। एक बात नहीं है कि आप लोगों का एक घंटा है, एक घंटे में म्यूजिक नहीं चलाओ,
6: ये हमने सोचा था लेकिन चलाना पड़ेगा।
5: अरे हर चीज हमारी मर्जी से तो ना, जिंदगी हम अपनी मर्जी से ना जी रहे भाई, हमारे पूरी
8: एंजॉयमेंट होता है ना, ये एंजॉयमेंट के लिए लोग ऐसे लोग भी है कि काम छोड़ के
5: बात करते हैं। सही, ये आपकी मोहब्बत है भाई,
6: कह रहे हैं अपनी मर्जी की जिंदगी जियो, हम खुद नहीं जी पा रहे।
5: हाँ जी
8: महेश बयान
5: जी, जी जी जी
8: मेरा एक दोस्त है वो अभी भी सुन रहा होगा
5: जी जी,
8: आप लोग उसको बोलो इमरान नाम है, उसको बोलो कि फोन इधर करो, वो फोन नहीं करते, फिर मुझे बोलता है तुमने ऐसा बोला तुमने वैसा बोला, मैंने सुना, आप भी फोन करो इमरान,
6: इमरान भाई कॉल करो, क्यों नहीं करते आप कॉल?
8: वो कॉल नहीं करता है, बस सिर्फ सुनता है।
6: नहीं इमरान भाई कॉल तो करना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, करना पड़ेगा।
5: चले भाई मुदस्सिर भाई थैंक यू सो मच, इमरान भाई को भी हमने बोल दिया है कि इमरान भाई कॉल करें फटाफट।
6: थैंक यू जी। अच्छा जी एक कॉल और है, और हमारा मसला ये है कि गाने हमें चलाना पड़ेंगे, तो प्लीज इस बात पे हमें पेशगी तौर पे माजरत माफी।
5: चले जी कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कोई है जी, कौन है हमारे साथ?
9: मैं मुस्तफा बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल किया है
6: जी। कैसे हैं
5: मुस्तफा भाई? आपका नाम बड़ा जबरदस्त किस्म का, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट नेम्स है भाई, इसका नाम इस नाम का जो है ना बनता है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम। कैसे हैं मुस्तफा भाई?
9: अल्हम्दुलिल्लाह।
5: अच्छा रेडियो की आवाज थोड़ी सी कम कीजिएगा
6: जी। चलें जी जी मुस्तफा, तो क्या कहना चाहेंगे भाई, अपनी पसंद की जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर वो गुजार रहे हैं जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते थे?
9: इस बारे में तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है।
5: जिंदगी गुजर रही है, हम गुजार रहे हैं। नहीं गुजर रही, हम गुजार रहे हैं।
9: अपने भाई के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे हम समझते हैं वो वैसे ही है, यानी कि कोई भी चीज उससे मांगे बड़े भाई इसी को दे देते
5: हैं। अरे बड़े बहन भाई ऐसे ही होते हैं,
9: कभी इनकार नहीं करता, कुछ ना भी हो तो वो कह देता है कि क्या चाहिए।
6: सही
9: तो अभी भी मैंने वीजा चेंज करना है तो मुझे 3500 रियाल चाहिए। अगर वो ना भी दे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब वो कहते हैं मसला नहीं है, करने करने टेंशन नहीं, आपने मैं हूँ आपके साथ, यही बात जो है ना सबसे बड़ी है।
5: अरे भाई ये
6: रेडियो सुन तो नहीं रहा भाई, कहीं उसको मैसेज तो नहीं दे रहे?
9: नहीं,
6: इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है वो भाई।
5: नहीं मुस्तफा भाई वैसे एक बात है, ये जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, जिसके पास हो ना सिर्फ उसी को पता है उसका मजा क्या है। मुझसे पूछे, मेरे भी बड़े बहन भाई हैं तो मैं भी धड़ल्ले से कहती हूं भाई,
6: मेरे नहीं है।
5: आप खुद बड़ी है ना, तो मैं कहती हूँ वाकई में बड़े बहन भाई जो होते हैं ना वो माँ बाप के क्या कह लें शेडो होते हैं, या माँ बाप की तरह होते हैं, वाकई में ऐसे होते हैं। जो बड़े बहन भाई जिनके होते हैं ना वो बड़े धड़ल्ले से घूमते हैं जमीन के ऊपर।
6: सही है जी।
9: हमें पाला है, मेरा वाले साहब बहुत हो गया था, हम छोटे थे बहुत।
5: सही।
9: वो उसको तकरीबन 12-14 साल हो गए दुबई में।
5: उन्होंने तो फिर
9: सबको सेट भी किया है, हमें पाला भी है, सब सिस्टरों की शादी भी की है।
6: माशाल्लाह चलें गुड
9: जन्नत।
6: बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग भी ना बहन भाई भी कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं, क्योंकि बड़े बहन भाई बेचारे करते हैं सब कुछ है, लेकिन होता उनके साथ ना कुछ उल्टा ही है, तो इसलिए भूलिएगा नहीं कभी भी, याद रखिएगा हमेशा इस चीज को।
5: अच्छा ये बताएं ये सवाल हमारा सवाल रह गया ये बताएं कि
6: पूछा था हमने
5: पूछा
6: था उन्होंने कहा मेरा भाई अपनी जिंदगी नहीं जिया।
5: अच्छा भाई ने नहीं जी, हाँ इन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता कैसी चल रही है, लेकिन भाई ने नहीं जी।
6: सही अच्छा, है मुस्तफा भाई।
5: चले जी अल्लाह ताला आपके भाई को भी खुश रखे, आपको भी खुश रखे।
6: थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। तो मुस्तफा भाई जो हैं वो उनके भाई बहुत अच्छी इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं जो दूसरों के लिए गुजार रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा
5: ये पता नहीं ये एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना वो थ्रिलर ट्विस्ट टाइप कोई मूवी होती है। मुझे ऐसा लगता है बड़े बहन भाइयों का मामला यही होता है कि वो छोटे बहन भाइयों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं।
6: हाँ ऐसे ही
5: कुछ है प्रॉब्लम, कुछ जो है ना वो गिज सर्किट जो है ना बड़े बहन भाइयों के ऐसे कर दिए जाते हैं।
6: कहा भी ना जाए तो फिर भी इसी तरह का मामला रहता है।
5: वो इतने डिफेंसिव और इतने प्रोटेक्टिव होते हैं छोटों को लेकर कि वो अगर ना भी कुछ ना भी करें तो वो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट ऐसा चक्कर चल रहा होता है कि अब जैसे मैं हूं ना, मेरी बड़ी बहन या मेरे बड़े भाई को जरा सा भी अगर भनक भी लग जाए ना कि मैं परेशान हूँ या कुछ हूँ, तो भाई क्या दुनिया और क्या माल और क्या पैसा, वो मैं पहुंचूं ना पहुंचूं वो पहले पहुंच जाएंगे।
6: ऐसे
5: ये होता है, ये पता नहीं ये क्या कैलकुलेशन है, मुझे नहीं आज तक समझ में आई, लेकिन है
6: ऐसे ही होता है और होना भी चाहिए, मतलब जिम्मेदारी बनती
5: है। बिल्कुल,
6: اور وہی والی چیز ہے نا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا اس بات کو کہ لازمی نہیں ہے آپ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنی زندگی نہیں جی. دیکھو اب تمہارے بھائی بہن کرتے ہیں اپنی خوشی سے کرتے ہیں,
5: کوئی پریشرائز نہیں کرتا, وہ بائی ڈیفالٹ ان کے اندر ہے وہ.
6: ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا جی السلام علیکم, اور میں کافی بار کال کر رہا ہوں بٹ اللہ کی مرضی کے آگے تھوڑی چلتی ہے, بعد میں کرنا ہی پڑتا ہے. کال کرنے پہ سمجھ میں
5: ایک کال آ رہی ہے ہمیں, جلدی سے ایک کال لے لیتے ہیں. آخری کال لیں گے بھائی, آخری کال.
6: کال نہیں لیتے میرا خیال ہے,
5: کال نہیں لیں گے. کال اٹھا لیے میں نے لیکن بس دو منٹ ہی بات کریں گے. السلام علیکم.
10: ہیلو, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
5: وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟

0: जी मेरा नाम गुलवेज है।
1: गुलवेज भाई, कैसे हैं गुलवेज?
2: बहुत जल्दी में हैं आज हम, बहुत जल्दी में। तो ये बताएं, आप जल्दी से ये बता दें कि आपका क्या मामला है भाई, जिंदगी का, जिंदगी का क्या मामला चल रहा है?
0: मामला जो है वो बिल्कुल फुल स्टॉप ही है। बड़ा मैंने आपको भी कॉल किया जब आपने जिक्र किया लाइक फैमिली का, भाइयों का, बहनों का, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत हुआ कि मैं लिटरली ऑन कॉल अपनी बहन को, अपने भाई को कह सकूं, मैं भी सुन रहे हो मुझे वो, कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, हर वक्त मेरा के खड़े हुए हैं, मैं चाहे बुखार में हूँ, चाहे मुझे फ्लू हो, चाहे जो मर्जी हो, मुझसे पहले मेडिसिन पहुंची थी, मेरी बहन ने मेरा बड़ा ख्याल रखा।
2: सही।
0: तो बस उसके लिए तो कॉल थी, मेरे ख्याल से कहीं वो बाहर है, मेरी से बात नहीं हो रही, पर वो सुनती बहुत शौक से शौक आप दोनों का।
2: अच्छा चले जी, अच्छा अच्छी बात, सलाम कहिएगा उनको।
0: अक्सर मैं लिटरली पकड़ा भी गया हूँ, जो कबीर भाई है ना, उनसे बात करता हूँ ना, अपनी दिल की बात शेयर करता हूँ, तो वो सुन लेते हैं। तो हमसे नहीं शेयर की, हमसे नहीं शेयर की, उनसे कुछ नहीं है, तो बस ये।
2: सही सही, चले जी, गुड, जबरदस्त।
0: टाइम जाया नहीं करूंगा, आप लोग बस अपना ख्याल रखिए, गुलवीर
2: इंशाल्लाह फिर आगे जरूर बात करते हैं आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को भी सलाम कहिएगा, कहिएगा कॉल भी कर लेंगे अभी, ठीक है? अच्छा जल्दी से बस मैं नाम लेती चलूं, मुबीन बुखारी और मोहम्मद अशफाक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों के मैसेजेस हैं, हम पढ़ नहीं सकते लेकिन मैंने पढ़ लिए।
1: चले भाई, जाते जाते आप लोगों से ये कहूंगी कि देखें, साइकेट्रिस्ट भी जो माने हुए, ये मैं नहीं कह रही, साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप देखें, एक दिन में अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, अपने छोटे छोटे डिसीजन से, अपनी चॉइसेस से आप अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, और वही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शख्सियत को बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ पे ना ना बोलें, आप किसी का, आप ये सोचें कि भाई मुझे गिल्ट होगा कि मैंने किसी को ना बोल दिया है, मैंने अपनी कोई लिमिटेशन सेट कर ली। जब तक आप अपनी शख्सियत को नहीं संवारेंगे, तब तक आप दूसरों को भी कुछ दे नहीं सकते, अपने
2: नहीं दे सकते। बिल्कुल एक्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही अपना सोचें, उसके बाद फिर आप दूसरे के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, तो पहले अपना सोचें।
1: वो वाली बात हो गई, जब खुदा ना खास्ता जहाज के अंदर कोई मसला होता है ना, तो ऑक्सीजन का मामला, खुद को एक ऑक्सीजन लगाएंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। बस इस बस छोटी सी मिसाल को दिमाग में रखें और अपनी जिंदगी जिए, लिमिट में रहकर, जिसके लिए जितना कर सकते हो ना भाई, उतना करो, जितना कर सकते हो, जितनी खुशी मिलेगी ना
2: खुशी से करो, जितना कर सकते हो उतनी खुशी से करो, जब वो बोझ लगने लगे तो ना करो। चलिए इसी के साथ हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप से मुलाकात होती है कल, सेम टाइम सेम स्टेशन, तो आप जरूर इंतजार कीजिएगा हमारी तरफ से,
1: अल्लाह हाफिज़। 107 दिल से देसी।

कायम करता है और साथ ही दिल पर भी असरअंदाज होता है। सूरह मोमिनून हमें बताती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। मजीद ये भी बताती है कि हक को कबूल करने का अंजाम क्या है और उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या निकलता है। ये सूरत बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी कुदरत और उन निशानियों को सामने लाती है जो इंसान को बड़ी हकीकतों तक पहुंचाती है। फिर ये बताती है कि जो शख्स इन हकायक को पहचान ले, उसका तर्ज जिंदगी कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन सी सिफात पैदा होनी चाहिए और बिलाखिर उसका अंजाम क्या होगा। और इस अंजाम को कुरान एक निहायत जामे लफ्ज में बयान करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون يقينا أهل إيمان فلاح پا گئے۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ فلاح آ جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، گویا سورت شروع ہوتے ہی قاری کے ذہن میں ایک بنیادی سوال رکھ دیا گیا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور کامیاب کون ہے۔ پھر پوری سورت اسی سوال کے مختلف پہلو کھولتی चली जाती है। यहाँ ईमान है, इबादत है, खुशू है, पाकीजगी है, अमानत है, अहद की पासदारी है, नमाजों की हिफाजत है और उन सब के सामने एक नतीजा रखा जाता है, फलाह। फिर दूसरी तरफ गफलत है, लहू है, हक से एराज है, आखिरत से बेएतनाई, तफर्रुक और अल्लाह की निशानियों से मुंह मोड़ना है और उसके सामने दूसरा अंजाम आता है, खसारा। यानी सूरह मोमिनून में बहस सिर्फ अकीदे की सेहत तक महदूद नहीं रहती। ये सूरत हमें ये भी बताती है कि अकीदा जिंदगी की सिमत मुतय्यन करता है और सिमत अंजाम मुतय्यन करती है। इसीलिए अगर सूरत का आगाज है कद अफलहल मोमिनून, तो सूरत के आखिरी हिस्से में हम उसके बिल्कुल मुकाबिल ये ऐलान सुनते हैं, इन्नहुम ला युफलहुल काफिरून, यकीनन काफिर फलाह नहीं पाते, यानी वो नामुराद हैं। समीर कराम, क्या खूबसूरत तकाबुल है। इब्तिदा में मोमिन फला पा गए और इख्तिताम के करीब काफिर और कुफर का रास्ता इख्तियार करने वाले फलाह नहीं पाते। गोया पूरी सूरत दो रास्तों को हमारे सामने रख देती है, एक रास्ता फलाह का और दूसरा अदम फलाह और खसारे का। और ये माना सूरत के दरमियान बार बार मुख्तलिफ अल्फाज में सामने आता है। क़यामत का मंजर बयान करते हुए फरमाया, फमन थकुलत मवाज़ीनुहु फाउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, बस जिनके आमाल के पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाने वाले हैं। और फौरन उसके मुकाबिल, वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फाउलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून, और जिनके मीज़ान हल्के होंगे यही वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने आप को खसारे में डाल दिया, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। यहाँ एक बहुत गहरा कुरानी तसव्वुर सामने आता है कि आमतौर पर हम खसारे का लफ्ज माल, तिजारत, मनसब या दुनियावी मौके के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि सबसे बड़ा खसारा ये नहीं कि इंसान ने कोई चीज खो दी, बल्कि ये है कि इंसान अपने आप को खो दे। खसिरू अनफुसहुम, उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया। और उसके मुकाबिल सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि दुनिया में किसी का नाम बुलंद हो गया, माल बढ़ गया या इख्तियार मिल गया, बल्कि हकीकी फलाह ये है कि क़यामत के दिन मीज़ान भारी हो और इंसान अल्लाह के सामने कामयाब ठहरे। सूरत के आखिर में एक ऐसा मंजर आता है जो इस पूरे माने को इंतहाई मुअस्सर अंदाज में समेट देता है। जहन्नम में गिरफ्तार लोग अर्ज करते हैं, रब्बना गलबत अलैना शक्वतुना वकुन्ना कौमन दालीन, रब्बना अखरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। ए हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी और हम गुमराह लोग थे। ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे, फिर अगर हम दोबारा वही करें तो हम यकीनन जालिम होंगे। लेकिन जवाब आता है, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, इसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। ये खसारे की इंतहा है। और फिर इसी मंजर में अल्लाह ताला उन्हें उन मोमिन बंदों की याद दिलाते हैं जिनका वो दुनिया में मजाक उड़ाया करते थे। इरशाद होता है, إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا

0: तमस्खुर तान और गफलत से भरी हो वो हक सामने आने के बावजूद उसे पहचान नहीं पाता। इसी सूरत में फरमाया गया बल अतैना हुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदूना, यानी हम उनके पास वो चीज लेकर आए जिसमें खुद उनका जिक्र इज्जत और शरफ था मगर वो उसी से मुंह मोड़ गए। यहाँ ज़िक्रिहिम का मफहूम सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि उनके लिए इज्जत शरफ और बुलंदी का जरिया भी है। कुरान उनके लिए सिर्फ आखिरत की फलाह नहीं लाया था, वो दुनिया में भी उनके लिए एक अजीम शरफ था, लेकिन मसला ये था कि दिल बड़ी हकीकतों के लिए तैयार नहीं थे। जब जहन मुसलसल लगू में मसरूफ हो जाए, जब दिल गफलत में डूब जाए, जब इंसान का जौक सिर्फ तमस्खुर तान और सतही मशगूलियात का आदि हो जाए तो फिर बड़ी हकीकत भी सामने आ जाए तो वो उसे बड़ी हकीकत के तौर पर देख ही नहीं पाता। और ये मामला सिर्फ मक्का के मुनकरीन तक महदूद नहीं था। कुरान हमें बार बार बताता है कि मुकज़्ज़िबीन के दिलों में एक तरह की मुमासलत होती है, इसीलिए उनके जुमले, उनके एतराज़ात, उनके रवैये भी नस्ल दर नस्ल दोहराए जाते हैं। सबने किराम कुरान पिछली कौमों के एतराज़ात सुनाता है तो हमें ये बात महसूस होती है कि यही एतराज़ात मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ नामों से फिर दोबारा सामने आते हैं। सूरह ज़ारियात में फरमाया कذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون, इसी तरह उनसे पहले जिस कौम के पास भी कोई रसूल आया उन्होंने यही कहा ये जादूगर है या दीवाना। जमाना बदलता रहा, रसूल बदलते रहे, कौमें बदलती रहीं, लेकिन रद्द अमल वही रहा। क्यों? क्योंकि दिलों की बीमारी एक जैसी थी। इसीलिए कुरान ये इंसानी नफ्स को समझने की भी अजीम तरीन किताब है। अगर इंसान मुतकब्बिर, जाहिल, मुनकिर, जालिम और तागी जहन की नफ्सियात समझना चाहे तो कुरान उसे बार बार इन नफूस के अंदरूनी साख दिखाता है। सामने कराम सूरह मोमिनून का खुलासा। और ओवरऑल अगर हम ये सवाल पूछें कि अहले ईमान की पहचान क्या है तो एक जुमले में हम यूं कह सकते हैं वल्लज़ीनहुम अनिल लघ्वि मुअरिदून, वो लोगों से अपना दामन बचाते हैं ताकि उनके दिल बड़ी हकीकतों के लिए जिंदा रहें। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गफलत, तमस्खुर, लघू, जिद और ख्वाहिशात में उलझते जाते हैं यहाँ तक कि जब खुद उनका जिक्र, शरफ और नजात उनके पास आती है तो वो उसे पहचानने से कासिर रहते हैं। शायद यही सूरह मोमिनून का हमारे लिए एक निहायत अहम पर्ल ऑफ विजडम है। दिल की हिफाजत सिर्फ गुनाहों से नहीं लगों से भी करना पड़ती है, क्योंकि हर बेफायदा मशगूलियत बेजरर नहीं होती। कभी लगू जहन को छोटा कर देता है, कभी तमस्खुर दिल को सख्त कर देता है, कभी दूसरों की तहकीर इंसान को अपनी हकीकत भुला देती है, और कभी ख्वाहिशात से मुसलसल समझौता इंसान को उस मकाम तक ले जाता है कि हक सामने हो मगर दिल उसे हक होने ही की वजह से नापसंद करे। लिहाजा हम अपने इस हल्के को इस सवाल पर खत्म करेंगे कि हम अपने दिल और जहन को किस चीज से भर रहे हैं, लघू से या उन हकायक से जो हमें फलाह की तरफ ले जाएं। क्योंकि जिस दिल में हर वक्त शोर हो वहां हक की आवाज सुनाई देना मुश्किल हो जाती है, और जिस दिल ने लघू से एराज करना सीख लिया वही दिल बड़ी हकीकतों को पहचानने के काबिल बनता है। प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान के आज के हल्के से तकनीकी मोमिन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं, और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम

0: रहमतुल्ला। हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। हमारी सेहत जो कि बहुत ही खूबसूरत हो, हर एक का ये ख्वाब भी होता है, मगर ये कि कौन सी ये छोटी छोटी बातें जो हैं हम अपना कर अपनी सेहत को बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम पानी की बात करेंगे और जिल्द को यानी हमारी स्किन को एंटी ऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। ये चाहे आपकी ठोस गज़ा की शक्ल में लें ये चाहें या फिर लिक्विड, दोनों सूरतों में जिल्द को हमारी नम रखता है, यानी पानी हमारी स्किन की कुदरती नमी को बरकरार रखता है और इसे बहुत सी जल्दी बीमारियों से महफूज रखता है। वक्त से पहले स्किन पर झुर्रियां पड़ना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसी तरह से जिल्द का जो टेक्सचर है वो भी पोर्स उसमें होते हैं और इन पोर्स को जितना ज़्यादा नम रखा जाए इसी तरह हमारी स्किन जो है वो मजबूत, शफाफ और सेहतमंद नज़र आती है। लिहाजा दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। इस मकदार में सादा पानी के साथ साथ ताज़ा फलों के रस और ग्रीन टी भी शामिल कर लीजिए। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिल्द को तरोताज़ा रखते हैं। इसके अलावा ये हमारे ब्लड से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें भी दूर करती है। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आमतौर पर तो ये समझा जाता है कि सर्दियों की ही गिज़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर मौसम में अब से जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें आप लीजिए। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो फैट्स पाए जाते हैं जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स जिन्हें कहा जाता है ओमेगा 3 और 6 की वाफर मकदार के बायस जो ड्राई फ्रूट्स हैं या खुश्क मेवा जाते हैं वो हमारी स्किन के जो कुदरती जो फैट्स हैं उनको बहाल करते हैं। लिहाजा रोज़ाना कुछ मकदार में आप वॉलनट्स, एलमंड्स, पिस्टेशियो या कोई भी जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है अपनी खुराक का एक हिस्सा बना लीजिए। बहुत ही अच्छी खूबसूरत स्किन के हसूल के लिए गजाई अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूध में मौजूद कुदरती प्रोटीन और कैल्शियम जिल्द की मजबूती में अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए रोज़ाना आप दूध जो है उसे भी अपनी गिज़ा में शामिल कर लीजिए। इससे जिल्द की चमक में इजाफा होगा। और ये अलावा जूसेस जो हैं वो तो आप ज़रूर लीजिए और जो सन ब्लॉक है उससे भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि स्किन की बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका ताल्लुक धूप से है। लिहाजा बाहर निकलने से 20 मिनट पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगा लीजिए और स्ट्रेस से दूर रखिए। स्ट्रेस चाहे जिस्मानी हो या जहनी हो, स्ट्रेस होता है। और फिर ये कि हमारी स्किन भी हमारा इसी का एक हिस्सा है और ज़िंदगी की चमक जब महसूस नहीं करते तो वो हमारी स्किन से साफ जाहिर हो जाती है। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा ऑयली कॉस्मेटिक्स होती हैं उनसे भी दूर रहिए। हेल्थ फॉर ऑल
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेफ आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।
2: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
3: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM to 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपका टैकी, नहीं ये थोड़ा सा क्लीशे लग रहा है, तो मैं जी दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। और टैक अपडेट में, आज की अपडेट में मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है, स्पेशली वो लोग जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं। आजकल वीडियो बनाना भी महंगा है और वीडियो एडिट कराना उससे भी थोड़ा सा एक लेवल महंगा हो जाता है, मगर अगर आप खुद को सिखाना चाहें तो बहुत आसान है। एक जगह बताता हूं जहां पे आप जा सकते हैं, नहीं वैसे नहीं मैप पे लगा के नहीं, एक वेबसाइट जहां पे आप जाएंगे और आपको पूरा का पूरा वीडियो एडिटर ऐसे ही मिल जाएगा एकदम फ्री, सो दैट यू कैन एडिट योर वीडियोस। और अगर एडिट करना नहीं भी आता है तो आप एटलीस्ट खुद को इस वेबसाइट के जरिए सिखा सकते हैं, एक्सट्रीमली इजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सुनिए वेबसाइट का नाम, videosoftdev.com। मैं एक बार स्पेल आउट कर देता हूं, सो VIDEO वीडियो, बिना स्पेस ये लिखना है आपको, सॉफ्ट SOFT, फिर बिना स्पेस ये लिखना है आपको DEV, डेवलपमेंट का डेव, तो videosoftdev.com। आप जब इसे ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो एडिटर आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। आई नो कि कुछ लोग अभी कैप कट और बहुत सारे और भी ऑप्शंस रखते हैं अपने पास, मगर दिस वन इज क्वाइट इजियर। इसकी ट्रिक्स भी आपको ये खुद ही सिखा देगा और आपको इसमें खुद को सिखाने के साथ साथ एडिटिंग करने में काफी आसानी होगी। आई एम प्रिटी श्योर ये जो है लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आप फोन में एडिटिंग कर रहे हैं तब तो इसे ना यूज करें, बिकॉज इट माइट टेक अ लिटिल टाइम। लेकिन अगर आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए एक बढ़िया वीडियो एडिटर चाहिए तो भाई इससे बढ़िया तो मैं आपको फ्री में बता नहीं सकता, ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अगला है genial.ly, genial.ly। अब ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको नजर आएगी जो अक्सर बहुत बहुत खर्चा करवाती है, और वो है इंटरैक्टिव वीडियोस। कभी कभार हमें बच्चों को सिखाने के लिए कुछ चाहिए होता है, हम उसके लिए टॉयज खरीदते हैं या इंटरैक्टिव वीडियोस को डाउनलोड करते हैं या उन्हें यूट्यूब पे दिखाते हैं। बट वंस यू गेट होल्ड ऑन टू दिस वेबसाइट, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कुछ भी प्रेजेंटेशन या बच्चों को दिखाना है या ऑफिस के लिए बनानी है या किसी भी चीज के लिए, कुछ फैंसी सा करना है किसी बर्थडे के लिए, आप इस वेबसाइट को यूज कीजिए एंड यू कैन मेक वो इंटरैक्टिव वीडियोस। बहुत फैंसी, बहुत कूल लगता है और फ्री में बन जाते हैं भाई, इससे बढ़िया चीज नहीं बता सकता मैं आपको। लेट मी रिपीट द नेम, इसका नाम है genial.ly, यूं करके समझ लीजिए इसका नाम और आपको मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो कोई भी अगर आपको हेल्प लगे तो बाद में पूछ लीजिएगा हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे FM107 कतर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी गुड रिव्यू ऑफ समथिंग रियली रियली गुड। हाँ तो जी, अंग्रेजी इधर की उधर हो गई लेकिन रिव्यू करने वाला हूँ, समझ गए होंगे। तो मैं आज रिव्यू करना चाहता हूँ नथिंग के हेडफोन्स के बारे में। नथिंग के हेडफोन्स अमेजिंग है भाई, मुझे कभी नहीं लगा था कि एप्पल के वो जो इतने ज्यादा महंगे उन्होंने हेडफोन्स निकाले उनको कोई टक्कर देने की सोचेगा या फिर ख्यालों में भी आएगा, क्योंकि अगर आपको अल्टरनेट आइडियाज आते तो आप सोचते हैं सोनी का ले लूंगा यार, नहीं तो मैं JBL का ले लूंगा यार, और बहुत सारे स्टूडियो हेडफोन जो होते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं लोग उनकी तरफ जाते हैं। मगर नथिंग जो कंपनी है उसने एक बीच का पाथ पकड़ा है और अपने हेडफोन्स लॉन्च किए हैं। अब दो चीजें हैं मेनली, एक होता है डिजाइन जिस पे फोकस जाता ही जाता है एंड नथिंग हैज बीन नोन फॉर इट। उनके डिजाइन चाहे वो फोन के हो, चाहे उनके एयरपॉड्स के हो, चाहे उनके हेडफोन्स के हो, सब टॉप नॉच है। अगर आपको कोई तीसरी कंपनी नजर आती है जो कि एंड्रॉयड और iOS के अलावा भी कोई ऑप्शन देती है तो या तो वो गूगल पिक्सल है या फिर नथिंग के प्रोडक्ट्स हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ है इतने टेक जायंट्स के बीच में खड़ा होना। तो हेडफोन्स बहुत क्रिस्प हैं, बहुत बढ़िया हैं। महंगे हेडफोन्स की जगह अगर आपको कूल दिखने वाले और नॉइस कैंसिलेशन के साथ वाले क्लियर क्वालिटी के साथ चाहिए तो गो फॉर इट। और काफी बजट में, मैं प्राइसिंग यहाँ पे नहीं बता सकता मगर आप अगर देखेंगे तो काफी जगहों पे अलग अलग प्राइसेस आपको मिल सकते हैं। अमेजोन पे इट्स ऑन अ डिफरेंट प्राइस और हो सकता है लोकली भी कतर में आपको इजीली मिल जाए। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेडफोन जो कि मिड रेंज में आ जाए और आपको अच्छा भी दिखे और एप्पल को टक्कर देनी है और लोग भी पूछें कि ये क्या है भाई, तो फिर आपको ये लेना चाहिए। एक्सलेंट चॉइस फॉर हेडफोन्स, और वो भी उस बजट में जो लगता है कि हाँ इस लायक तो है। मगर डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो हेडफोन आपको उस लेवल के नॉइस कैंसलेशन में सब कुछ देगा। थोड़ा सा साउंड लीक है मगर दैट इज फाइन, वो नेग्लिजिबल है। अब उसमें आप निट पिक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिस इज माय रिव्यू फॉर अ वेरी स्मॉल रिव्यू ऑफ द हेडफोन्स बाय नथिंग कंपनी। एंड भाई मैं इनकी तरफ झुकाव जा रहा है मेरा, मेरा तो फोन पे भी दिल आ गया क्योंकि रिसेंटली दे हैव प्लानिंग टू लॉन्च देयर थ्री नथिंग फोन 3, तो उस पर भी नजर बना के रखिएगा। मैं भी नजर बना के रखूंगा और फिर आपको उसका भी रिव्यू मिलेगा FM 107 पर। ये थी टेक अपडेट्स एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं? चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ? तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं.
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर. यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है. ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी. दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी.
0: स्कैम अलर्ट. फ्रॉड अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर से इस्तकबाल है दोस्तों. मेरा नाम है फजील और ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम से बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं. वेल, दोस्तों आजकल जिस तरह से स्कैम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको बेहद होशियार होने की जरूरत है. कई बार जो होशियार होते भी हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, जिनको एक्चुअली में पता होता है कि ये, यानी कि उनके पास जो मैसेज आया है या उनके कंप्यूटर पे जो पॉपअप्स आए हैं, वो स्कैम है, लेकिन फिर भी कई बार वो फंस जाते हैं. कई बार ओवर स्मार्टनेस में हमारे से गलती जो है वो हो जाती है. लेकिन इस नए जमाने के नए फ्रॉड में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. इवन कई लोगों को पता है कि कैसे इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं. और आज एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. एक बेहद गंभीर ऑनलाइन क्राइम है ये, जहां कोई अनजान शख्स आपकी परमिशन के बिना आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का इस्तेमाल करके खरीदारी यानी कि शॉपिंग करता है. और इस फ्रॉड से लोगों को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए इसके तरीके और बचाव के सॉल्यूशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा, ये फ्रॉड काम कैसे करता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं और फिर हम सॉल्यूशंस पर भी आएंगे. जो चोर होते हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने के लिए फिजिकल कार्ड की जरूरत उनको नहीं होती है. वो बगैर फिजिकल कार्ड के भी आपकी डिटेल्स क्रेडिट कार्ड की चुरा सकते हैं. वो अलग अलग तरीकों से आपका कार्ड या कहें आपका डेटा चुराते हैं. सबसे पहले है कार्ड स्कीमर्स. गैस पंप्स और ATMs पर लगाए गए हिडन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि स्कीमर्स के जरिए कार्ड स्वाइप करते हुए डेटा कॉपी हो जाता है. ये आपने बहुत पहले इस तरह की वीडियोस भी देखी होंगी कि आप जब किसी ATM में कार्ड डालते हैं, खास तौर पे ये कई अलग अलग मुल्कों में होता है कि जब आप कार्ड डालते हैं तो ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो हिडन होता है. वो सारी डिटेल नोटिस कर रहा होता है और वो इतना शार्प कैमरा होता है कि वो सारी डिटेल्स आपके कार्ड की नोट कर लेता है. इवन CVV भी वो नोट कर लेता है. नीचे भी कैमरा है, ऊपर भी कैमरा है, 16 डिजिट के जो नंबर है वो भी आपकी डिटेल्स जो है वो ले लेता है. और फिर जो आपने पिन डाला उससे भी उनको डेटा मिल जाता है. तो ऐसे में बहुत होशियार रहने की यहाँ पर भी जरूरत है. कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमने तो कहीं डिटेल्स दी ही नहीं, फिर मेरे साथ ये स्कैम कैसे हुआ. तो ये जो परेशानी है, ये छोटी छोटी इन्हीं चीजों को नोटिस ना करने पर जरूर आती है. डेटा ब्रीच भी होता है. बड़े स्टोर्स या कंपनीज के ऑनलाइन डेटाबेस हैक होने पर लाखों कस्टमर्स के कार्ड नंबर्स डार्क वेब पर लीक हो जाते हैं. मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन किसी बहुत ही लेजिट वेबसाइट से आपने शॉपिंग करी हो, लेकिन अगर वो वेबसाइट हैक कर ली हैकर्स ने, तो आपकी डिटेल्स लीक हो जाती है. फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स के जरिए आपसे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV मंगवाया जाता है और इससे भी लोग आसानी से फंस जाते हैं. लेकिन इसके सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इस पे नजर डालें तो हमारा काम आसान हो सकता है और हम किसी भी तरह के फ्रॉड से, कार्ड फ्रॉड से हम बच सकते हैं. सबसे पहले आप इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट को सेट करें अपने बैंक अकाउंट के जरिए. अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर इमीडिएट SMS और ईमेल नोटिफिकेशंस एक्टिवेट करें. हर एक छोटे बड़े ट्रांजैक्शन का अलर्ट आपके फोन पर तुरंत आना चाहिए, ताकि कोई भी अनजान एक्टिविटी आपसे छुपी ना रहे. सबसे पहला फर्ज आपका यही होना चाहिए. दूसरा, अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करें. हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड की ऐप खोलकर स्टेटमेंट चेक जरूर करें। अगर आपको कोई भी ऐसा चार्ज या पैसा कटना दिख रहा है जो आपने नहीं किया है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार जो स्कैमर्स होते हैं वो छोटा अमाउंट कट करते हैं और आपने इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट सेट नहीं किया होता और ये छोटे अमाउंट जो कट रहे होते हैं ये आपकी जेब से खाली होते रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट से खाली होते हैं। और हमेशा जब भी आप कहीं पर स्वाइप करें अपना कार्ड तो स्कैमर्स का ध्यान रखें। किसी भी लोकल एटीएम या गैस स्टेशन पर कार्ड लगाने से पहले स्लॉट को ध्यान से देखें। अगर स्लॉट ढीला लग रहा है या आसपास ऐसे कैमरे नहीं है जो हिडन है तो आप वहां पर आसानी से एटीएम अपना डाल सकते हैं। जब भी आपके साथ फ्रॉड हो इमीडिएटली एक्ट करें। जैसे ही आपको किसी अनरिकॉग्नाइज्ड चार्ज या फ्रॉड का पता चले तुरंत अपने बैंक को कॉल करें। बैंक से कहें कि आपका कार्ड ब्लॉक करें और उस ट्रांजैक्शन के खिलाफ डिस्प्यूट चार्ज क्लेम फाइल करें। ज्यादातर बैंक्स फ्रॉड ट्रांजैक्शंस का पैसा वापस रिफंड कर देते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो और आपने इमीडिएटली एक्शन लिया हो। और हमेशा वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल करें, सेफ ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट का ही यूज करें। अगर पॉसिबल हो तो बैंक्स की तरफ से मिलने वाले वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या टेम्पररी कार्ड नंबर्स का यूज करें जो सिर्फ एक बार एक ट्रांजैक्शन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट को सेटअप करें, अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करें, स्कीमर्स पर ध्यान रखें, इमीडिएटली एक्ट करें अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, और साथ ही आपको वर्चुअल कार्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फ्रॉड अवेयरनेस के, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम जानेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
3: ऑन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द लीडिंग विमेन टेनिस प्लेयर ड्यूरिंग हर टाइम, स्टेफी ग्राफ। या दोस्तों, विमेन्स टेनिस की दुनिया में अगर कंसिस्टेंसी, डोमिनेंस और एक्सीलेंस की बात की जाए तो एक नाम सबसे अलग नजर आता है, स्टेफी ग्राफ। एक ऐसी टेनिस चैंपियन जिन्होंने सिर्फ ग्रैंड स्लैम टाइटल्स नहीं जीते बल्कि दुनिया की नंबर वन रैंकिंग पर भी अपनी जबरदस्त हुक्मरानी साबित की। स्टेफी ग्राफ के नाम टेनिस हिस्ट्री में वर्ल्ड नंबर वन रहने का सबसे ज्यादा हफ्तों का रिकॉर्ड है। ये सुन लीजिए, दोबारा आप लोगों से मैं ये बता देता हूँ कि स्टेफी ग्राफ वॉज द ओनली प्लेयर जिनके नाम सबसे ज्यादा हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर वन रहने का एक रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन टेनिस स्टार ने अपने करियर के दौरान 377 हफ्ते दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी के तौर पर गुजरे। ऐसा मैसिव रिकॉर्ड, जी हाँ, 377 वीक्स एट वर्ल्ड नंबर वन, मुश्किल होता है आज के डेट में तो। हफ्ता क्या मतलब, मैं तो कहता हूँ कि 2-3 दिन में ही वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग जो है कोई ना कोई लेके चला जाता है, लेकिन 377 वीक्स ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं दोस्तों, बल्कि ग्राफ की कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ और कोर्ट पर लगातार एक्सीलेंस की कहानी है। सोचिए, एक एथलीट का दुनिया में नंबर वन बनना ही कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन नंबर वन पोजीशन को सिर्फ कुछ हफ्तों या चंद महीनों तक मेंटेन करना अलग बात है। और स्टेफी ग्राफ ने यह मकाम 377 हफ्तों तक संभाल कर रखा, यानी तकरीबन 7 साल और 3 महीने दुनिया की टॉप रैंक प्लेयर रहना। ग्राफ पहली मरतबा अगस्त 1987 में वर्ल्ड नंबर वन बनी। उस वक्त वो सिर्फ एक टैलेंटेड यंग प्लेयर नहीं रही थी, वो वर्ल्ड टेनिस की सबसे बड़ी फोर्स बन चुकी थी। उनकी स्पीड, पावरफुल फोरहैंड, कोर्ट कवरेज और एग्रेसिव स्टाइल ने ओपोनेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। ग्राफ की सबसे बड़ी खूबी उनकी वर्सेटिलिटी थी। वो सिर्फ एक सरफेस पर कामयाब नहीं थी, ग्रास हो, क्ले हो या हार्ड कोर्ट, ग्राफ ने मुख्तलिफ सरफेसेस पर अपनी क्वालिटी साबित की और इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में लंबी मुद्दत तक टॉप पर बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, स्टेफी ग्राफ की कहानी सिर्फ वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग तक महदूद नहीं, उनका ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड भी उनकी ग्रेटनेस का सबूत है। ग्राफ ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, चारों मेजर टूर्नामेंट्स में उन्होंने चैंपियनशिप ट्रॉफीज उठाई। लेकिन उनके करियर का सबसे हिस्टोरिक अचीवमेंट 1988 का सीजन था और उसी साल स्टेफी ग्राफ ने कैलेंडर गोल्डन स्लैम हासिल किया, यानी एक ही साल में उन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। टेनिस हिस्ट्री में यह अचीवमेंट आज भी बेमिसाल समझी जाती है। 1988 में ग्राफ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और फिर यूएस ओपन, और जब सोल ओलंपिक्स में उन्होंने वुमेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता तो उनका नाम टेनिस हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक खास मकाम पर लिखा गया। स्टेफी ग्राफ का 377 वीक वर्ल्ड नंबर वन रिकॉर्ड भी उन्हीं अचीवमेंट्स में से एक है। यह रिकॉर्ड हमें बताता है कि ग्रेटनेस सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतने का नाम नहीं, ग्रेटनेस का मतलब है सालों तक अपने स्पोर्ट के हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करना, प्रेशर के बावजूद टॉप पर टिके रहना और हर नए चैलेंज के सामने अपनी क्वालिटी साबित करना। स्टेफी ग्राफ ने ये सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने टेनिस कोर्ट पर सिर्फ ट्रॉफीज नहीं जीती, उन्होंने एक एरा को डिफाइन किया और जब भी टेनिस हिस्ट्री में डोमिनेंस, कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस की मिसाल दी जाएगी, स्टेफी ग्राफ का नाम जरूर याद किया जाएगा। 377 हफ्ते वर्ल्ड नंबर वन, एक नंबर जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, एक लेगेसी है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतर की सकाफत में मेहमान नवाजी को बहुत आला मकाम हासिल है. मेहमान को इज्जत देना, खुशी से मिलना और उससे अपनायत का एहसास दिलाना कतरी माशरे की खूबसूरती पहचान में से एक है. कतरी घर में मेहमान की आमद सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती बल्कि खुशी का मौका समझा जाता है. घर के अफराद मेहमान का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम करते हैं और उसे आराम से बैठने की जगह देते हैं. गुफ्तगू के दौरान खूबसूरत अल्फाज, नरमी और तवज्जो का इजहार मेहमान की कदर को जाहिर करता है. मेहमान नवाजी का सबसे मशहूर पहलू अरबिक कहवा और खजूर है. छोटे से प्याले में पेश किए जाने वाले कहवे का रिश्ता सिर्फ जायके से नहीं बल्कि रवाबित और अपनायत से भी है. मेहमान को कहवा पेश करना एक खामोश पैगाम होता है कि आप हमारे लिए मोहतरम हैं और आपकी आमद हमारे लिए खुशी का सबब है. कहवे के साथ खजूर रखने में भी खूबसूरत मायने छुपे हुए हैं. खजूर इस इलाके की जमीन और विरसे से जुड़ा हुआ है. इसकी मिठास और कहवे की खुशबू मेहमान की मुलाकात को यादगार बना देता है. मजलिस भी मेहमान नवाजी की एक अहम जगह है. यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खैरियत पूछते हैं और मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू करते हैं. मेहमान को मजलिस में बेहतर जगह देना, उसकी राहत का ख्याल रखना और उसे तवज्जो से सुनना अदब का हिस्सा समझा जाता है. कतरी मेहमान नवाजी में सिर्फ खाना या मशरूब पेश करना शामिल नहीं, असल खूबसूरती मेजबान के रवैये में होती है. अगर किसी मेहमान का वक्त कम हो तब भी प्यार से इस्तकबाल और चंद अच्छे अल्फाज मुलाकात को खूबसूरत बना देते हैं. पुराने जमाने के कतर में सफर अक्सर मुश्किल होता था. रेगिस्तानी रास्तों और समंदरी सफरों के दौरान मुसाफिर को पानी, खाना और आराम की जरूरत होती थी. इसलिए सफर करने वालों से अच्छा बर्ताव और मदद की रिवायत बहुत अहम थी. आज के कतर में सफर आसान है लेकिन दूसरों का ख्याल रखने का जज्बा आज भी सकाफत का हिस्सा है. मेहमान नवाजी घर से बाहर भी नजर आती है. किसी नए शख्स का इस्तकबाल करना, उसे जगह या रास्ता बताना या ज़रूरत के वक्त मदद की पेशकश करना अच्छे रवैये की मिसाल है. इसी वजह से कहवा, सलाम और मुस्कुराहट को लोगों के करीब लाने वाली चीज़ें कहा जाता है. दावत की रिवायत भी कतर की समाजी जिंदगी में अहम है. खानदान और दोस्त एक जगह जमा होते हैं, खाना शेयर करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं. ऐसी मुलाकातें रिश्तों को मजबूत करती हैं और बच्चों को भी मिलजुल कर रहने का सलीका सिखाती हैं. मेहमान नवाजी के साथ एहतराम और हुदूद का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है. हर मेहमान की ज़रूरियात, वक्त और राहत का लिहाज रखना बेहतरीन मेज़बानी की अलामत है. इसी तरह मेहमान का भी फ़र्ज़ होता है कि वो मेज़बान के वक्त घर के अदब और रिवायतों का एहतराम करें. नई नस्ल के लिए मेहमान नवाजी बहुत कीमती दर्स है. ये उन्हें सिखाती है कि अच्छे रवैये के लिए हमेशा किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. मुस्कुराहट, तवज्जो, शुक्रिया और नरमी जैसे छोटी छोटी बातें दिलों पर गहरा असर छोड़ सकती हैं. आज का कतर दुनिया भर से आने वाले लोगों का घर बन चुका है. मुख्तलिफ ज़बानें, रिवायात और तजुर्बे रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं. इस माहौल में कतरी मेहमान नवाजी का बेहतरीन इजहार ये है कि हर शख्स के साथ इज्जत और खुलूस से पेश आया जाए. तो दोस्तों, कतरी मेहमान नवाजी हमें यही पैगाम देती है कि इंसानी रابطہ मोहब्बत, एहतराम से मजबूत होता है. एक प्याला कहवा, एक खजूर या एक मुस्कुराहट कभी कभी दिल तक पहुँचने का सबसे खूबसूरत जरिया बन जाता है. कतर की रिवायत आज भी जिंदा है और आने वाली नस्लों तक इसी तरह पहुंचती रहेगी. तो लिस्टर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। आप सुन रहे हैं एक नया शो स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम अल्लाह ताला के बरगजीदा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों के खूबसूरत वाकयात को जानेंगे और उनसे अपने आज के लिए सबक हासिल करेंगे। हमारे दीन में अंबिया कराम के वाकयात सिर्फ किस्से या तारीखी वाकयात नहीं हैं, ये हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है। कुरान करीम में मुख्तलिफ अंबिया के हालात बयान किए गए हैं ताकि हम उनकी जिंदगियों से ईमान, सबर, शुक्र, सच्चाई, हिम्मत, आजी और अल्लाह पर भरोसा सीख सकें। हर नबी की जिंदगी में हमारे लिए कोई ना कोई खास पैगाम मौजूद है। किसी की जिंदगी हमें मुश्किल वक्त में सबर करना सिखाती है, किसी की जिंदगी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना, किसी की जिंदगी सच के लिए मजबूती से खड़े रहना और किसी की जिंदगी हमें ये बताती है कि आजमाइश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। इस शो में हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाकयात को आसान जबान में समझने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि ये भी देखेंगे कि इन वाकयात से हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियों का सामना करते हैं। बच्चों को पढ़ाई और मुस्तकबिल की फिक्र होती है, वालदेन को अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र होती है, नौजवान अपने फैसलों और मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं और बड़े लोग जिंदगी की मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में मसरूफ रहते हैं। ऐसे में अंबिया कराम की जिंदगी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: लीजिए साहब टाइम चेक में बज गए 1:30 यानी 1:30 बज रहे हैं और आ गए हैं हम दोनों।
4: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
5: एनर्जी आर
4: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
5: दिल से देसी।
6: दोस्तों सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम दोनों आ चुके हैं शो में जिसका नाम है एनर्जी आर, पूरे एक घंटे आपकी साथ रहने वाले हैं फुल ऑन एनर्जी के साथ। बहुत सारी बातें होंगी एंड आई एम श्योर आपका जो दिन है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ होगा और इंशाल्लाह आने वाला दिन भी, आई मीन जितना टाइम बचा है वो भी बहुत अच्छे से स्पेंड हो, ये हमारी दुआएं। तो हमारे पास क्योंकि आइडियली होते सिर्फ एक ही एक घंटे हैं और वो एक घंटा कहाँ निकल जाता है हमें भी समझ में नहीं आता। कई बार कल हम बहुत ही कंफ्यूजन का शिकार है कि अब हम तो बहुत कुछ करने वाले थे, बहुत कुछ बताने वाले थे, बट देन हमारे पास टाइम नहीं था। तो आज हमने सोचा है कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे जिससे कि हम उसे टाइमली एंड कर सके। एंड देन ऑफ कोर्स आज की हमारी सीधी गिनती सर्वर भाई लेकर।
3: क्या शेर सुनाया नाजिया आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही, बहुत ही जबरदस्त, क्या मतलब उठाया है। तो मुद्दा जो है उसको तो भी उठा लेते हैं। तो भाई कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और अभी तक आते आते ये जो दिन का वक्त है इसमें सुबह से जितने भी चेहरे देखने थे वो देख लिए, जितने नहीं देखने थे वो भी देख लिए और दिन जो है अच्छा और खूबसूरत हो गया। उम्मीद तो यही है। अब इंशाल्लाह आगे का भी जो बचा हुआ भाग है उसमें अब आप हमारे साथ अगर भाग लेंगे
6: तो
3: भाग यकीन जानिएगा दिल भी भाग लेगा बेहतरीन होके, बल्कि दिन नहीं दिल कहीं ना भाग ले, मुझे ऐसा लगता है।
6: लोग अगर भाग लेंगे तो सीधा भाग ही लेंगे
3: फिर। नहीं मतलब आप भाग, कहने का मकसद हमारा ये है कि आप हमारे साथ जुड़िए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और वो कुछ बहुत ही आसान से तरीके हैं नाजिया, कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ?
6: बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 666-22-107। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस ले पाते हैं। वहीं अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ओवर अ कॉल जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 443-443-77।
3: वाह क्या बेहतरीन शेर सुनाया एक और आपने नादिया, मजा आ गया।
6: अब एक शायरी और करने वाली हूँ मैं,
3: बस वो अभी रोके रखिए ताकि हम कुछ वेदर का हाल अहवाल जान लें। भाई जबरदस्त एकदम गर्मी जो है कम होती चली जा रही है।
7: वेदर का हाल 107 दिनाल।
3: और वो क्यों कम हो रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई अब जो मौसम है वो बेहतर होने वाला है और भी ज्यादा। जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया है कि सितंबर में क्या होता है, QMD ने हमें बहुत कुछ बताया इसके हवाले से। ये वो टाइम है जब ह्यूमिडिटी थोड़ा सा जोर मारती है और उसके बाद कहीं ना कहीं टाटा अलविदा कह के चली जाती है और फिर मौसम और भी ज्यादा बेहतरीन होने लगता है। फिलहाल इस वक्त 43 डिग्री दिख रहा है मुझे और नादिया पूछिए और क्या,
6: और फील कैसा होगा?
3: आए हाय हाय हाय, फील्स लाइक भी 44 है, मतलब जो 52 पे या 53 पे हो रहा था जो बिल्कुल अभी एक हफ्ते पहले की बात करें तो इट वाज 53, फील्स लाइक अभी 44, यानी 10 के करीब भाई डिग्री कम हो चुका है। तो वेदर बेहतरीन हो रहा है और दिन भी बेहतरीन हो रहा है।
6: अच्छा सर, जैसे नॉर्मल लोगों को तो 52-53 फील, और आपको कितना फील हो रहा होगा, जस्ट डबल कर ले।
3: मुझे हाँ नहीं उतना ही फील हो रहा है, एसी चलता रहे तो सब ठीक है, वरना उसके बाद तो जाहिर बात है क्योंकि हवाएं चल रही ना दिया 32 किलोमीटर पर आर के हिसाब से हवाएं चल रही है इस वक्त, 32 किलोमीटर शहर के अंदर, आप समझ रहे हैं। मतलब अगर आप बाहर जाएंगे कहीं ओपन में, यानी कहीं बीच एरिया में या किसी वाटर एक्टिविटीज के की जगहों पे या कह लीजिए कहीं ऑफ रोडिंग पे, तो आपको ये हवाएं और भी ज्यादा लगेंगी और इसका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम सबको ताकीद की गई है QMD की जानिब से भी कि भाई बहुत ज्यादा ख्याल करें जब कभी भी आप ऑफ रोडिंग के लिए हो या किसी बीच वाटर एक्टिविटीज में हो और आप बाहर जा रहे हैं, इवन हाईवेज पे बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, धूल वगैरह उड़ रही है और भी ज्यादा उड़ सकती है, है ना। अब नाजिया की तरह तो आप लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं अंदाजे से, आप देख के चलाते हैं। अब नाजिया की तो विंडचिल के सामने कुछ भी आ रहा हो, धूल आ रही हो, मिट्टी आ रही हो, बारिश आ रही हो।

0: इनको तो एक्सीलेटर पे पैर रखना, गाड़ी चल देती है आगे।
1: क्या आप उधर उधर के हाथ से साफ करके चलाते
0: हैं? देखिए हम हिसाब से चलाते हैं,
1: अपनी जबान से सफाई करते
0: हैं, हमें दिखता रहता है कि सामने क्या हो रहा है। अच्छा एक और खुशखबरी है भाई, ह्यूमिडिटी भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 19% पे है।
1: ओहो ये तो वाकई कम है,
0: ये तो भाई ह्यूमिडिटी ने भी बड़ा अच्छा शेयर बना दिया इस वक्त,
1: ये कमाल किया ह्यूमिडिटी ने वाकई, वरना 75, 73, 76, 80 तक तो वो मतलब ठीक ठाक वाली होती थी।
0: तो भाई मैसेजेस भी हैं और कॉल भी आना शुरू हो गई है, तो क्या कहती है नाजिया, पहले बात करें या ब्रेक लेके आज का पहला नगमा चला दें या मैसेज ले लें, जैसा आप कहें।
1: अब आप जैसा कहें, क्योंकि अभी कॉल
0: तो फिर कॉल देखिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये देखिए बिस्मिल्लाह हमारे नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मुद्दत साहब, कैसे हो? ठीक ठाक।
0: अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, आप कैसे हैं मुद्दत साहब, ये बताइए खैरियत से हैं?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिया बहन आप कैसे हो? ठीक हूँ
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे।
2: अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिया मैम आप सरवर मिर्ज़ा के ऊपर शिकायत करते हो, लेकिन कल आपने सरवर मिर्ज़ा को छेड़ा है।
0: देखिए योर ऑनर मिलोर्ड मेरे साथ क्या क्या हो रहा है
1: भाई, ये तो खुद छिड़े छिड़ाए बैठे रहते हैं, मैं क्या इनको।
2: नहीं नहीं देखो आपने जैसे शो स्टार्ट हो गया, आपने बोला कि 4 महीने को सारा मिजब को हम बर्दाश्त करेंगे, तो मेरे साथ तो आपको कुछ भी नहीं बोला, आपने शुरू किया।
1: देखिए भाई आधी बात सुनी है?
0: देखिए देखिए
1: आधा सुना, इन्होंने आके बोला जो मुझ पे गुजर रही है वो मैं बता नहीं सकती।
2: उसने बाद में बोला सारा मिर्ज़ा साहब ने बाद में बोला,
1: भाई पहले बोला है।
0: उन्होंने आधी बात सुनी तो यहाँ तक पहुँचे, तो जी पूरी बात सुन लेते तो फिर ये मेरी मेरी जियारत को आ रही होती है अगर पूरी बात सुन लेते।
1: नहीं अगर ये पूरी समझ लेते सुनना नहीं समझ लेते तो आपकी गर्दन।
2: मैं समझ गया सच बोल रहा है कि चिंगारी है ना लेडी है।
1: आपने लंच नहीं किया, क्या मसला है
0: भाई? वाह क्या बात
2: है,
0: ऐसी ही कॉल चाहिए थी हमें ऐसी ही कॉल चाहिए थी प्रोग्राम की शुरुआत में, जो आपने इस वक्त बना दी है।
1: अच्छा छोड़िए ये सब बातें, तो हमारा मुद्दा ही नहीं है, जो आज का मुद्दा है उस पे आ जाते हैं सीधे सीधे। आज हम जो है ना भाई, वैसे जो कहते हैं ना लोग औरतें आग लगाती, माशाल्लाह आपने जो है ना गलत साबित किया, माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: अजी वाह क्या बात है, क्या लगाई है
1: तो वही भी कह रही हूँ, आपने साबित करे नहीं।
0: दूर से आवाज आ रही है अभी, जरा दूर चले गए थोड़ा करीब आ जाइए आपकी। हाँ अभी
1: अच्छा आज का जो हमारा मुद्दा हम इन्हीं के साथ जो है छेड़ देते हैं। बिल्कुल
0: मैं उसको ऐसे पूछना चाहूंगा कि कभी आपने वीडियो गेम खेला है मुदस्सर भाई?
2: वीडियो गेम तो खेला है लेकिन बहुत पहले खेला था
0: जिंदगी में याद है?
2: जी याद है एक मासी थी वो कवे वाला
0: है,
2: कवे का गेम था, कवे का उस टाइम में
0: कौवे उड़ा रहे थे गेम में भी।
2: कौवा नहीं होता है
0: कौवा? हाँ नहीं हाँ, अरे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल समझ गया कौवा कैसा होता है।
1: आप तो खुद उड़ेंगे।
0: मैं बहुत पहले कौवों के साथ ही उठना बैठ रहा है मेरा आजकल अब मतलब उसमें कौवे वाला गेम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा यार। खैर ये शायद और पहले
1: लोमड़ी वाला खेल
0: और पहले की बात होगी शायद।
2: दूसरा गेम था, मेरा कजन है वो डॉक्टर है यहाँ से था, उसने वो शुरू किया था, फिर मैं भी उसके साथ खेलता था,
0: उनके साथ खेलते थे भाई। क्या बात है, तो ये हफ्ता ये जो 2-3 दिन है हमने सोचा जरा बच्चों के हवाले से भी, वालदेन अभी बच्चों में लगे हुए हैं, दूसरे हवाले से बात करें,
1: दोनों के हिसाब से
0: आजकल तो कंपटीशन, और हमारा कतर एक ऐसी जगह बन गया है जिसमें ई गेम्स में बहुत ज्यादा नाम होता चला जा रहा है,
1: लोग करियर बना रहे हैं अब तो। खैर वो वाला मसला नहीं रहा। अच्छा हमने इसको थोड़ा सा फनी करके वैसे पूछना चाहा है आपसे कि अगर आप जो है वो किसी भी वीडियो गेम का फीचर अपनी रियल लाइफ में ला सकें तो वो कौन सा फीचर होगा? मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ, ऑप्शंस भी दे देती हूँ आपके लिए। जैसे एक है ऑप्शन या एक फीचर होता है अनलिमिटेड लाइव्स, एक होता है उसमें फास्ट ट्रैवल, एक होता है जो बहुत ही कॉमन है सेव बटन या पॉज बटन। तो आप अगर इन चारों फीचर्स में या कोई और पांचवा छठा आपका फीचर जहन में आता है तो उन अगर फीचर्स में से एक फीचर आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं तो वो कौन सा फीचर?
0: मैं तो मारियो की तरह बोनस पे बोनस लेता रहता वाकई, यकीन जानिए और लाइफ बढ़ती रहती। काफी लोग रिलेट कर पाएंगे जो अभी अभी या थोड़े दिनों पहले जिन्होंने जुमैनजी देखी है तो वो काफी रिलेट कर पाएंगे इस सवाल से भी, अगर देखी है या हमें जो सुन रहे हैं तो। एनी हाउ यही है आज का मुद्दा, तो क्या कहते हैं मैडी भाई?
1: मुझे लगता है पॉज लीजिए आप।
2: मैं फास्ट लेता हूँ,
1: पॉज बटन ये सही रहेगा।
0: पौध लेके क्या करेंगे फिर?
1: रेक्टिफाई करेंगे चीज़ों,
0: अटके रह जाएंगे वहीं।
1: अरे देखेंगे, स्ट्रैटेजी वापस से बिल्ड करेंगे।
0: अच्छा,
1: एंड तक पहुंचने से पहले
0: इसके स्ट्रैटेजी। वैसे कोई वजह इसके पीछे आप बताना चाहते हो खास?
1: मत बताइएगा
0: मैडी भाई,
1: मत बोलिएगा, उनकी कॉल ही ड्रॉप हो गई।
0: करें मैं पॉज लूंगा और निकल लिया पॉज के, क्या भाई पॉज हो गया।
1: एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
0: वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा कैसे या कैसी?
3: मैंने दोनों को बोला है भाई।
0: नहीं, अगर कैसे कहा है तो मैं भी जवाब दूंगा, कैसी हैं आप तो ये जवाब देते हैं।
3: नहीं नहीं, मैंने कहा आप, मैंने दादा जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, इसका मतलब आप दोनों को पूछा है।
0: हाँ, नहीं नहीं, अब सही हो गया ना, मैं कैसे को मैंने कैसी सुन लिया असल में, तो
1: यही तो कह रहे आप सुन ज्यादा रहे।
0: कैसी तबीयत है शुभ भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मजे आ रहे हैं भाई,
0: माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से खाया पिया और अब आके आपके साथ बैठ गए, अब आगे भी इंशाल्लाह यही इरादा
1: है, फिर ये खाना पीना खाएंगे
0: इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हजम करा।
3: अब तो को-पायलट चेंज हो गए, सफर कैसा जा रहा है?
0: बहुत ही
1: बुरा। तो
0: नहीं नहीं, मैं यार मैं कैसे कैसी बातें कर रही है भाई, हमारी सीनियर है माशाल्लाह हमसे 13 बल्कि नहीं 16 साल।
1: अरे गलत बोला, कम से कम 60 साल,
0: 16 साल
1: 60 years।
0: नाजिया जो है
1: क्यों एहतराम में भूल जा रहे हैं?
0: हमसे सीनियर है।
1: आपने इतनी उल्टी की है कि उल्टी ही गिनती चल रही है।
0: अच्छा, उल्टी कर करके? अच्छा, ओहो, अल्लाह ही बहुत अच्छा सफर जा रहा है शुभ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सफर कैसे जा रहा है इस वक्त गाड़ी में?
3: हाँ, फिलहाल तो मैं सरकार में ही बैठा हूँ।
0: बच्चों को लेके वापस आ रहे हैं या कुछ सब्जी भाजी?
3: नहीं,
0: मैंने कहा बाजी बाजी, मैंने कहा सब्जी या बाजी।
3: आप समझ रहे हैं, ना बाजी है ना सब बच्चा है ना कोई, अभी फिलहाल अलोन हूँ एकदम 30 के साथ।
0: ओए ओए, कौन से पीस है? शाही टुकड़ा साथ में है, रसमलाई है, कौन से पीस?
3: अभी फिलहाल आइसक्रीम है।
0: अच्छा, चलिए ठीक है, ये भी अच्छा है।
1: ये मैं मेरे दिमाग में कहने वाले कट पीस है।
0: ठीक है
3: भाई, कभी कभी तो शांति वाले सीन मिलते हैं, मतलब जो मिलता है पता है यार आपको, पता है फिर भी आप
0: नहीं, मैं असल में मैं सीखने की भी कोशिश करता हूँ ना कि क्या ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और क्या सीख सकता हूँ।
1: मैंने आपको कितना समझाया, गाड़ी में बैठे रहिए, बैठे रहे बैठे, आपके वहाँ बैठे रहने से यहाँ पीस रहेगा।
0: नहीं, वो आप समझ नहीं रही हैं,
1: आप पीसते रहिए
0: नाजिया जी। पीसते तो मैं
1: आपको, मैं तो कह रहा हूँ पीसते रहिए
0: काफी है। ओके, तो क्या कहते हो शुभ भाई, वीडियो गेम में वो कौन सा फीचर है जो अपनी लाइफ में लेना चाहेंगे?
3: अनलिमिटेड लाइफ।
0: इसमें सुकून नहीं मिला? सब्जी भाजी बना बना के सुबह से रात तक किचन में गुजार रहे हो और फिर भी अनलिमिटेड चाह रहे हो?
3: इसीलिए तो अनलिमिटेड लाइफ चाहिए ना भाई, क्या ताकि अभी अभी जो सब कुछ, इतना सब कुछ मैंने अपनी जिंदगी में बखेड़ा खड़ा किया है, इस जिंदगी के बाद तो दूसरी जिंदगी अपने तरीके अपनी
0: चेंज करके जीऊंगा। अच्छा, मसला क्या है, इससे पहले भाभी का कॉल आया था, उन्होंने भी वही यही फीचर मांगा है कि हर बार
1: मैं भी पार्टनर बदल बदल के
0: पिसवाती ही रहूंगी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है।
1: भाई
0: कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा से बात कर लें शुरुआत में ही। आई
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खैरियत से, आप कैसे हैं और क्या नाम है आपका?
2: कम कम।
0: ये ऐसा लग रहा है कि
1: कम कम भाई
0: पोल्ट्री फार्म में आप कुछ मुर्गियों की आवाजें आ रही हैं, पुक पुक पुक पुक। क्या हो रहा है?
2: मैं एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा हूं।
0: नहीं तो ये आवाज, अच्छा क्या रेडियो खोल रखा है आपने? अच्छा फिर भी आवाजें आ रही है, कौन बोल
1: रहा है? आवाजें आपने बताई पुक पुक
0: कम कम भाई इज कमिंग, ज्यादा से ज्यादा ना हो इन अवर शो। भाई वाह वाह वाह, कल भी बात हुई थी कम कम भाई से, एंड कम कम भाई कल थोड़ा सैड भी थे ऑब्वियसली जो हो रहा है, बट बिल्कुल सैड होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं और नाजिया आते हैं ताकि आपका दिन जो है बेहतर बना सकें। कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला।

0: अरे तो कमकम कमकम भाई गेम वीडियो गेम खेला है लाइफ में? खेला ही होगा यार ऑब्वियसली।
1: एक बार खेला लेकिन एक बार स्टार्ट किया, एक महीना तक खेला, उसके बाद में लास्ट हो गया। अभी तक नहीं खेला, ऐसा कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था मेरे साथ।
0: ओए होए होए, तो पहले तो वही सुनेंगे हम, क्या होने वाला था?
1: मैं क्या हुआ, गेम वोम का उतना मैं खेलने का वो नहीं था। लॉकडाउन पे हम लोग इधर इंडस्ट्रियल एरिया में है तो सब लोग पबजी खेल रहे हैं, तो मैं भी डाउनलोड करके पबजी खेल खेल के एकदम उसमें आ गई। जैसे बच्चे लोग एकदम वो हो जाते हैं ना,
0: हो समझ गया मैं।
1: पबजी गेम खेल रहा हूँ, लास्ट टाइम में गोली लगा, ऐसा लगा कि वो गोली मेरे
0: साथ ही लगा। ओह माय गॉड, एक्चुअली मैंने इसीलिए जानना चाहा ये बात जो आपने
1: बंद कर दिया मैं।
0: हाँ, क्योंकि हम बॉयज जो हैं इतना ज्यादा रिलेट कर जाते हैं वीडियो गेम की लाइफ से अपनी लाइफ को, और काफी हादसात हुए ही हैं, इसीलिए भाई बहुत ज्यादा ख्याल की भी जरूरत है इस चीज में। एक जो इसका डार्क साइड है उससे बहुत ज्यादा ख्याल की जरूरत है, हमें यही बताना है सबको और यही कहना भी है सबको।
1: इतना क्रेज हो गया था वो गेम में, ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो गेम के अंदर मैं ही हूं।
0: बट यार ये आपने कमाल कर दिया कि आपने उसको छोड़ दिया, उसमें से आप निकल आए, ये एक बहुत जबरदस्त बात है।
1: उसी टाइम में मैं बंद कर दिया, उसी टाइम में डिलीट किया मोबाइल। रात में 2 बज रहा था, सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेले गेम खेल रहा हूँ। अभी एक गेम खेलू, एक गेम खेलू, चिकन डिनर आएगा, ये आएगा, ऐसे ऐसा करके 3 बज गया।
0: चलिए यार, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कमकम भाई, कि आपने अपने आप को परेशानी से ओवरकम किया और उससे निकल आए। तो ऐसा कभी भी किसी के साथ खुदा न खास्ता वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट हो भी तो इसी तरीके से आप भी देखिए जिस तरीके से कमकम भाई ने अपने आप को निकाला है। तो अगर जो भी हमें सुन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हादसात हुए हैं, जिंदगियाँ खो दी हैं लोगों ने, इसीलिए हमने आज का ये मुद्दा निकाला भी कि भाई इस चीज़ का ख्याल करें और वक्ता वक्ता इस चीज़ को हम याद दिलाते रहें बच्चों के हवाले से भी। यहाँ तक के वजारत दाखिला का भी यही कहना है कि वीडियो गेम वगैरह जब भी आप चुन रहे हो तो आप बच्चों की रहनुमाई करें, उसमें आप बताएं उनको कि कौन सा वीडियो गेम उन्हें खरीदना है, और उनके साथ आप बैठ के कम से कम देखें और खेलें भी थोड़ा सा, समझाने और दिखाने के लिए। तो दिस इज वेरी नेसेसरी। बहुत बढ़िया भाई कमकम भाई, ख्याल रखिए अपना। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
0: देखिए कितनी अच्छी बात पता चली, और अल्लाह ताला सबके साथ खैर आफियत का मामला करे भाई, बच्चों को, बल्कि बच्चों पे तो सही है भाई, अपने ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा,
2: आपको भी है ना। ध्यान दीजिए।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप लोग?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खैरियत से हैं।
0: और कौन है हमारे साथ?
2: आरिफ जी। आरिफ जी,
3: आज सरवर भाई को मैंने नहीं बोलने दिया था,
2: इनको आजकल ऊंचा सुनाई दे, सुनाई नहीं देता।
0: आप लोगों ने दुग्गल साहब के बारे में सुना होगा, वही परेशानियां मेरे साथ भी रहती
2: है। कल इनको दिख नहीं रहा था,
0: हर दूसरे दिन
3: ज्यादा दिन नहीं होना सरवर भाई को घर से आके, इसीलिए
2: अभी तो 2 ही दिन हुए हैं सरवर भाई इस शो में, एक दिन इन्हें दिख नहीं रहा था, कल आज सुनाई नहीं दे रहा।
0: ठीक है भाई, कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। आरिफ भाई,
2: इन्हें समझ में नहीं आया ये सब।
0: आरिफ भाई क्या कहते
3: हैं, कि आप अपना बॉडी लेकर आ गए हो, पर
0: आए हैं दिल में वहीं छोड़ आए हो अपना। मैं जब ही कहूँ यार कि धड़कन क्यों नहीं है मेरे सीने में, क्या बात कर रहे
2: हो, पत्थर रखते हैं आप,
0: मुझे वापस जाना पड़ेगा।
3: धड़कन भी आ जाएगी सरवर भाई, किसी दिन आओ बैठ के बिरयानी खाएंगे।
0: आए हाय, क्या शेर सुनाया भाई, वाह वाह वाह।
2: तो जो सीने में इनका पत्थर है वो भी पड़ पड़ा,
0: उसमें भी जाल आ गई बिरयानी। वाह वाह वाह। तो भाई क्या कहते हैं आरिफ भाई, अपनी जिंदगी में वो कौन सा फीचर डालना चाहेंगे आप वीडियो गेम का, जिससे आपको फायदा भी हो और मजा भी आए और सुकून भी मिले?
3: जिंदगी
0: बनी हुई है मगर अब इसमें कोई ऐसा फीचर मिल जाए आपने जो आप इन सारी चीजों पे काबू पाना चाहें, अगर
3: काबू जिंदगी जैसे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, पर उसमें से मैं कुछ नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो एक काल्पनिक है। और जो जिंदगी एक रियलिटी है, मतलब ये सच्चाई है और वो तो एक काल्पनिक है ना।
2: नेक्स्ट लेवल भी नहीं चाहेंगे लाइफ में?
3: नेक्स्ट लेवल नहीं नहीं चाहेंगे, बस जो है
0: बोनस भी नहीं चाहेंगे,
3: मतलब खुद से बिल्ड करना।

0: वो वाले सिक्के भी नहीं जाएंगे जो मिलते हैं, कम से कम उसी में ही कलेक्ट कर ले आदमी, वैसे तो कर नहीं पा रहे हम।
1: अनलॉक भी नहीं करना चाहेंगे
0: आरिफ भाई, उसमें ही सिक्के यार
1: नहीं है, वो लालची आपके। हाँ वो कह रहे मैं सर्वर भाई आपकी तरह लालची नहीं हूँ,
0: समझ गया
1: मैं ये सारी चीजों में नहीं फंसता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, हैट्स ऑफ।
0: क्या बात है यार
1: इस बात के लिए कि आपको लोगों ने फंसाना चाहा, हम दोनों ने भी आपको अटेम्प्ट किया, बट आप अपनी जगह एकदम मजबूत रहे कि नहीं, नो इज नो।
2: मैं कल के लिए सोचता भी नहीं उतना, क्यों
0: इस चक्कर में जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत आपके सामने आ गई, अब आपने जो है बिरयानी के साथ दो चार चीजें और भी खिलवानी पड़ेंगी, क्योंकि आपने सही जवाब दिया।
2: कोई मसला नहीं है सर भाई, मैंने आपको कितना बार बोला है मैं आपके लिए पॉकेट खाली कर सकते हैं, उसके लिए
0: आए आए आए। चलिए तो फिर मैं वो कैश ही ले लूंगा, बिरयानी कोरमा छोड़ो जो कैश
1: लालची
0: वो ही ले लिया जाएगा, ताकि दूसरी भी
2: चीज अपने ऑफिस से उठा लो, मेरा
0: वो प्राइस नहीं अभी तक नहीं, मेरे हिस्से भाई वो मेरे हिस्से में नहीं है, वो किसके हिस्से में आपने मालूम है।
1: ये सही का हिसाब का कैश उधर से उठा लो, बिरयानी इधर से उठा लो,
0: बात कहीं और चली गई, अब मजा नहीं आ रहा भाई। हो गया अरे भाई अल्लाह हाफिज।
1: बात आप पे पहुंची,
2: आपने बोला कैश है ये तो मैं उधर से कैश उठा लो।
0: चलो फिर बिरयानी और खाने पे ही इसको
1: फिर कभी
0: बात करते हैं।
2: अब बिरयानी पे आ गए
1: नहीं, अब ये पुलाव पे आए, ख्याली वाले पे, बिरयानी भी छोड़ दी।
2: गेम के हवाले से एक बात था कि मैं भी गेम खेलता हूँ, मोबाइल गेमिंग करता हूँ थोड़ा बहुत।
1: अच्छा,
2: पर हाँ उसको लिमिट में, क्यों मैंने बीच में छोड़ा भी था दो तीन साल के लिए,
1: सही।
2: अभी टाइम मिलता है तो थोड़ा कभी कभार खेल लेता हूँ,
1: सही।
2: स्ट्रेस भी कम होता है,
1: बहुत ज्यादा एडिक्शन नहीं होना चाहिए।
0: यार मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है इस वक्त, अब बातों में मैं आपको बताऊं कि मैंने इस वक्त तीन गेम अपने मोबाइल में रखे हुए हैं, इस वक्त आज ही एक मैंने डाउनलोड किया, नाम तो मैं नहीं बताना चाहता, मगर उससे क्या हो रहा है कि मैंने ये नोटिस किया कि मेरा जो सोशल मीडिया पे वक्त गुजरता था अननेसेसरी स्क्रॉलिंग दैट रील्स एंड ऑल, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। और जो इस वक्त मेरा वीकली जो उन्होंने बना के दिया ना, वो आता है पूरा ग्राफ, उसके अंदर जबरदस्त चेंज आया।
1: लर्निंग वीडियोस या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस,
0: वो तो नाजिया दूसरी तरफ बात जा रही है, वो तो दूसरी तरफ बात चली जाएगी।
1: अगर कुछ अच्छा ही सीखना ही एक मोटिव है तो देन यू गो फॉर कंक्रीट सीखना, जो एक सॉलिड सीखने वाली बात होती है,
0: वो तो लाइफ का एक दूसरा
1: अननेसेसरी रील्स देखने के बजाय आप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस
0: बिल्कुल सीख सकते हैं।
1: मैं कहूंगी इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आजकल लोग डालते हैं,
0: मगर अब एडिक्शन है और आदमी नहीं जा पा रहा उस तरफ जिस तरफ आप भेज रही हैं, तो उससे बचने के लिए आदमी क्या करे, तो एटलीस्ट
1: बट देखो ये एडिक्शन भी, आई डोंट नो कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, बट टू मी इट्स लाइक दिस इज एडिक्शन, और ये एडिक्शन का इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ट्रू
0: एक से निकले दूसरी तरफ,
1: इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
0: सही।
2: इस बात से मैं एग्री करूंगा, वो भी एडिक्शन हो जाता है।
0: हां बिल्कुल, एक से निकले दूसरी तरफ है, ऐसा भी
1: मतलब हम एक बेटर चॉइस की तरफ जाएं तब तो अच्छा भी लगे,
0: सही।
1: ठीक है कि आप उस चॉइस से आप उससे निकले, बट
2: आप बोल रहे हैं कि जो वीडियो देखने के लिए इंफॉर्मेटिव या कुछ सीखने के लिए, उसमें आदमी दिल दिलचस्पी नहीं दिखा पाता है।
1: नहीं नहीं, यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कुछ आपको लिंक्स भेजूं, इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, इतने इंफॉर्मेटिव हैं, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री है या वैसे हिस्ट्री जानना चाहते हैं, साइंस है या और कोई आपका मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल लिटरेसी है, शॉर्ट क्रिस्प एंड वेरी इंटरेस्टिंग,
0: बिल्कुल है,
1: मजा आएगा। और वो वाकई अगर आपका एडिक्शन बन जाता है तो क्या ही बात है, आपको इन्फॉर्मेशन बढ़ रही
2: है। वीडियो तो मैं 15-20 मिनट का भी देखता हूं, ध्रुव राठी का चैनल था,
1: ध्रुव राठी का देखिए कितने अच्छे वीडियोस होते, दे आर ऑल आर लाइक आई ओपनर्स, कितने अच्छे, और ऐसे बहुत सारे मैं भी देखती हूँ, और मुझे लगता है कि ये देखो कितने अच्छे। एक टाइम वंस अपॉन अ टाइम मैं जो थी, मैं आई एम लाइक ट्रूली ब्लाइंड अबाउट फैशन एंड ऑल, अभी उनका जो वीडियो देखा, इट वाज अ ट्रू आई ओपनर फॉर मी। आपने देखा ही होगा फैशन के ऊपर, हाँ देखिए कितना अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ऐसा शौक है देखने के लिए, देखिए थोड़ा बहुत तो हर आदमी एंटरटेनमेंट देखने ही चाहता है, इतना कोई इतना इन्फॉर्मेशन सुबह शाम देखता है तो वो उसको याद भी नहीं रहेंगे, थक भी जाएगा ब्रेन। ठीक है आप एंटरटेन कीजिए, लेकिन एडिक्टिव होना इज डिफरेंट।
0: क्या बात है भाई, चलिए साहब इसी नोट के साथ यही बात लेते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू सो मच।
2: फोन रखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ओके
0: ठीक है, चलिए ओके आरिफ भाई, बाय
1: बाय।
0: तो भाई अब कॉल नहीं लेंगे, बस मैसेज, क्योंकि मैसेज भी बहुत सारे हैं नादिया,
1: सर उसके बाद
0: पहला गाना भी तो चलाना है,
1: हम चलाएंगे चलाएंगे, पहले एक और कॉलर के साथ एक और ले लेते हैं, फिर इसे कंक्लूड भी काइंड ऑफ कर देंगे। हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू दोनों को।
0: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह
1: बरकातहू। माफ कीजिएगा आपने नाम बताया, हम सुन नहीं पाए। वापस से बताएंगे?
3: मैंने नाम बताया नहीं।
1: अच्छा बताया नहीं, तो प्लीज नाम बताइए।
3: शफीक,
1: शफीक जी हैं। ओके, आप वही शफीक हैं जो कभी कभी मॉर्निंग में भी जुड़ते थे?
3: हाँ हाँ हाँ, मैं, मेरी आपसे पिछली बार बात हुई तो आप अकेले थे।
1: हाँ,
3: मेरी बात हुई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। सो बताइए कैसी जा रही है आपकी आफ्टरनून? लंच किया आपने? नहीं,
3: आफ्टरनून नहीं, नहीं, मैं अभी ऑफिस से आया। ऑफिस से आकर मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, उनकी अच्छा। इवनिंग शिफ्ट है।
1: अच्छा,
3: तो
1: अच्छा,
3: मैं वापस घर जा रहा हूँ, अब जाके खाना वाना खाऊंगा।
0: अच्छा, क्या बना है आज शफीक भाई?
1: अब जाके
3: आज बना है मटन पुलाव।
0: क्या बनवाया भाई, जरा लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, नंबर आपको बताइए क्या है उस पे, एड्रेस भी लिख दिएगा। चलिए कोई बात, इतना आप इंसिस्ट कर रहे हैं,
1: नहीं कर रहे हैं
0: आप, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो एड्रेस भी लिख दिएगा, ठीक है?
3: नहीं नहीं, मैं रियली लेकर आ जाऊंगा, आप मुझे बस बताइए। हाँ बोलिए, मैं लेकर आ जाता हूँ।
1: ना बोल दीजिए आप जल्दी से।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शफीक भाई कैसा, इन पे पैसा ही पैसा। तो शफीक भाई क्या कहते हैं, वीडियो गेम के हवाले से कौन सा ऐसा फीचर है जिंदगी में जो बनाना चाहते हैं?
3: नहीं नहीं, मुझे क्वेश्चन पता नहीं है, कॉलर जब एंड हो रहा है।
0: वीडियो गेम खेलते हैं आप? वीडियो गेम खेलते हैं या खेला था लाइफ में?
3: बचपन में खेला था,
0: बचपन में खेला था। तो आज जो जिंदगी वीडियो गेम बनी हुई है हमारी, उसको हवाले, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या
1: कोई भी फीचर ऐसा जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहें तो वो कौन सा होगा? जैसे हमने कुछ ऑप्शंस दिए थे, अनलिमिटेड लाइव्स, फास्ट ट्रैवल, सेव बटन, पॉज बटन, बोनस, या फिर कोई और नेक्स्ट लेवल, या फिर आपके जहन में कुछ और है फीचर जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आ जाए तो अच्छा है?
3: गेम्स के तालुक से है ना, वीडियो गेम्स,
1: वीडियो गेम्स के फीचर्स की बात।
3: वीडियो गेम्स तो अभी एडिक्शन बन गया है, मैं आपको क्या बताऊं मैं।
1: हाँ ये तो है, आप भी खेलते हैं? आर यू आल्सो एडिक्टेड?
3: नहीं नहीं नहीं, मैं गेम्स नहीं खेल पाता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता, और अभी इंटरेस्ट भी नहीं आता। मतलब वो जो बचपन में खेलते थे, रोड रैश, वुल्फ रेडी, तो उसमें तीन तीन चार चार घंटा बैठते थे हम लोग और टाइम पता नहीं चलता था, और अभी तो नहीं खेल सकते। मगर मेरे जो घर के जो मेंबर्स हैं, बच्चे लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अंदर इतना क्रेज है यार, मैं हम लोग बोल बोल बोल के थक, बट देन वो एडिक्शन उनका छूटता नहीं है। और बहुत सारे गेम्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से बच्चों ने अपनी लाइफ गवाई, और मतलब आप देखते हो न्यूज में, डेंजरस भी है वो।
0: बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही जबरदस्त।
1: और ये जान के खुशी कि आप जो है वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव नहीं है, दूर ही दूर
0: हैं और दूसरों को समझाते भी रहे, और अगर कोई इसमें है भी बच्चे वगैरह भी, तो उनका ख्याल भी रखें
1: और थोड़ा सा गुड चेक भी रखें अपने बच्चों पे,
0: निगरानी करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और बात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह हाफिज़।
0: जब तलक ना दिया आपके लिए खास खास अरिजीत और अकाशा। भाई कहते हैं कि FM 107 की जबरदस्त जोड़ी, भाई अगर मैं आप दोनों को 24 घंटे भी सुनता रहूं, ना तो मुझे पता है कि मैं, मेरा जी ही नहीं अटकेगा या उत, उत,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 2:04।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: जी एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, सर्वर और नासिया हम दोनों आपके साथ हैं। और क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ यहाँ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून।
3: गुड आफ्टरनून।
1: वालेकुम अस्सलाम। ये तो रईस भाई आवाज है, मैं पहचान के एकदम।
3: अरे भैया, ये
4: भैया कहाँ से आवाज निकाल निकाल के लाते हैं, ये तो बताइए। अलमारी में कितनी आवाजें हैं आपके पास? कभी पंजाबी में, कभी बिहारी में, कभी आप दूसरी, ये कहाँ से लाते हैं?
3: भैया ना वेरीफाई करोगे ना तो हम गारंटी को वो बना देंगे।
4: अच्छा, आज भी बिल्कुल अलग आवाज निकाल के लाए थे, एकदम एकदम
1: जान लिया। लेकिन
3: हम रवि किशन का डायलॉग वहां मार देंगे।
1: नहीं नहीं, डायलॉग से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेप करने पड़ेंगे।
4: रवि किशन वाले,
1: वो वाले।
3: अभी हाल का डायलॉग थोड़ा सुन ले, रवि किशन का मजा आ जाएगा आपको।
4: अच्छा, सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
3: अरे भैया वो अब वो नहीं सुनो, वो पॉलिटिकल बात है।
4: अजय रेंद्र रईस भाई, वाह वाह वाह, रईस भाई क्या शेर सुनाया, वाह वाह वाह।
1: क्या मैंने सुनाया
4: ही
3: नहीं, हम ही को बोलोगे बस बस बस बस
4: भाई। वाह वाह रईस भाई वाह। कैसे
1: जब एन की ट्रिक होती है, जब किसी को सुनना नहीं होता, वाह वाह वाह वाह करते रहते हैं, वाह वाह वाह में बाय बाय हो गया।
3: हाल का वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, उन्हीं के लोग, और वो उनका जो डायलॉग है थोड़ा सा सुन लो, मजा आ जाएगा।
4: चलिए देखेंगे, हम जरूर सुनेंगे। तो रईस भाई ये बताइए, वीडियो गेम के हवाले से आज बातचीत हो रही है, क्या कहते हैं? वीडियो गेम खेला तो होगा ही आपने, खैर माशाल्लाह से आपने।
3: नो आइडिया नहीं, हम इतने झमेले में नहीं पड़ते हैं, हम बड़े सादे सूदे बंदे हैं भाई।
4: हमने तो फिल्म देख ली रईस साहब के चक्कर में, अम्मी जान ने कह भी दी चार पांच बातें, हमने सुन भी ली।
3: मूवी के बारे में अगर करोगे तो हम मतलब वहाँ उसमें तो भाई टैलेंट थे।
1: अच्छा, एक अच्छा सवाल आपसे पूछते हैं, अगर आपको जिंदगी में चांस मिले, कुछ ऑप्शन आपको दिए जाए, नया चांस जिंदगी को वापस से शुरू करने का, अपनी जिंदगी को पॉज करने का, जो कुछ हो चुका है उसे सेव करने का, या फिर अनलिमिटेड लाइफ जीने का, कौन से ऑप्शन को आप पिक करेंगे?
3: भैया हम अपने ऑप्शन को बचपन वाले एकदम चले जाएंगे, छोटे बच्चे वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, वही लाइफ सबसे बेटर है।
1: रीस्टार्ट,
4: रीस्टार्ट में भी तो मुश्किल है, एंटीवायरस डालना है, दूसरी तीसरी चीजें डालनी है, वो
1: नहीं। न्यू चांस, न्यू चांस,
3: अम्मा बाबा कहने वाला वो नहीं, बस थोड़ा सा 2-4-5 साल के उम्र का वाला, उसमें जो कि स्कूल पे जाते थे, अम्मी से आके रोते थे ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना वो बनाना। हाँ, अम्मी बहाने मना, जाके धूप में पेट खोल के खड़े रहते थे, बाद में बोलते थे अम्मी चेक करो मेरा पेट गर्म है, लगता है मुझे मेरे पेट में बुखार है।
1: अरे ये तो सर्वर आप भी करते थे ना?
4: क्या ये ला दिया यार, क्या बात, कैसे कैसे बहाने होते थे।
1: अरे ये सर लेके खड़े हो जाते थे, मेरे देखो सर पे बुखार है,
4: भी नाम रख दिया सर्वर।
1: सर्वर
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
4: क्या बात है। रीस्टार्ट पे जाना चाहते हैं रईस भाई, एक्चुअली में रीस्टार्ट बटन दबाना
1: या फिर न्यू चांस भी कह सकते हैं बटन
4: है।
3: हाँ, आपके उसको 10 महीने ट्यूनिंग किया, असल में मैं थोड़ा चला गया था बाहर गाड़ी खड़ा करके, तो अभी आया। अच्छा। मैं तो ओन लगा,
4: तो गाड़ी के अंदर बैठा करिए, एसी चला के बाहर क्यों खड़े हो जाते हैं? गाड़ी में तो बैठने के लिए सीट भी है।
3: गाड़ी में बैठे एसी चला के, पंखा चला के बैठे, ऐसे कहाँ
1: खड़े नहीं हो सकते ना।
4: अरे पंखा भी लगाया हुआ आपने गाड़ी में? पेडिस्टल
3: बड़ा हाईवी
4: गाड़ी है, लिटल लिटल रखा है लंबा लंबा, उसका जो पोल है उस तरफ है, पंखा अपनी तरफ रखते हैं। चलिए मेरे इस भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार आपकी बातें और अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
3: गेम वाला नहीं है
4: गेम, आज वीडियो गेम ही हो रहा है, लाइव गेम कर रही है, तो हमने सोचा कि आज जरा बात ही कर ले।
3: अभी गेम के बारे में थोड़ा ज्ञान वन दो, हम सुनेंगे, अब सुन रहे हैं, अब और लोगों को पका दो, बहुत लंबी हो गई।
4: क्या बात है भाई, क्या बात,
1: थैंक यू,
4: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रईस भाई,
1: शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़
4: मोहम्मद नवाज़िश, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
1: एक हमारे साथ और
4: सर्वर
1: भाई, एक
4: कॉलर
1: जुड़ रहे हैं,
4: एक मैसेज, अल्लाह अल्लाह अल्लाह हाफिज नादी, अल्लाह हाफिज। तो भाई यहाँ पर अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो सर आप? मौसम तुषार माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं पर्ल कतर से कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मगर यार साउंड हल्की आ रही है, क्या बात है, वो मजेदारी नहीं है
5: सच में।
4: हाँ वाकई
5: भाई नेटवर्क का मसला होगा सर्वर भाई, रुको मैं एंट्री कर।
1: हवा बहुत चल रही है, ठंडी लग रही है, और मैंने कभी भी ऑनलाइन सर गेम्स नहीं खेले, मैं

0: ना उसमें भी पार्टिसिपेट करे गवर्नमेंट के थ्रू सही तरीके से, तो उसमें भी मैडम जी बहुत बड़े बड़े इनाम मिलते हैं।
1: बहुत बड़े बड़े इनाम है भाई, बहुत बड़े बड़े।
2: ई गेमिंग तो है ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और बहुत पैसे वाली इंडस्ट्री, बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन एक एडिक्शन हो जाए और इस लेवल पे एडिक्शन हो जाए कि आप अपनी लाइफ को हार्म करने लग जाएं, दैट्स नॉट फेयर। मतलब कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कहती कि नॉट दैट दिस वीडियो गेम, कोई भी गेम या कोई भी एक्टिविटी जो आपको अल्टीमेटली नुकसान पहुँचा रही है, तो वो एक थिन लाइन है, उसे समझना, उसे क्रॉस ना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम चाहेंगे
0: ना, चक्कर पता क्या है, देखिए जो एडिक्शन है ना,
2: हाँ,
0: वो वीडियो गेम का तो छोड़िए मैडम, अगर चाय का भी ज्यादा एडिक्शन है वो भी हार्मफुल है।
2: मैं कह रही हूँ किसी भी चीज का जो आपको नुकसान पहुंचाए या पहुंचा रही है तो वो गलत है। अभी तो हम आज खैर इस वीडियो गेम को ही डिस्कस कर रहे हैं, वैसे भी कोई भी आदत, कोई भी चीज, कोई भी बात बस कोशिश पता है क्या है कि कभी हम ना अंधी रेस में दौड़ रहे होते हैं पैसे कमाने की, और उस पैसे कमाने की अंधी रेस में हम अपनी हेल्थ को भी दांव पे लगाते हैं। कितने सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हेल्थ को दांव पे लगाकर रेसलर्स या प्लेयर्स जो हैं वो गेम खेलते या करते हैं, तो उसमें कितना नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
2: बस ये हल्का सा इशारा हमारा है समझाने का कि प्लीज आपकी लाइफ बहुत कीमती है, उसको किसी भी तरह से स्टेक पे मत रखिए।
1: सही
0: मैडम, बस जब रेस पैसे की लगी हो ना, बंदे को दिखता हो भी लास्ट लाइन के बाद पैसा ही पैसा है, कहीं ना कहीं तो वो चीज इफेक्ट कर देती है बंदे के दिमाग पे।
1: नहीं, ये मैडम बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, पैसों की बात कर रहे हैं आप, ये आप मैडम को समझाने की जरूरत ही नहीं है।
2: नहीं, मैं तो पैसों को फलांग के उधर चली जाती
1: हूं। नहीं, मैं समझ रहा हूं।
2: उस तरह बैठ जाती हूं।
1: मैं समझ रहा हूं। गाबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं आज भाई? भल की आ रही है आज गाबा भाई, जो की बात है
0: आवाज पता नहीं सर्वर भाई, ये नेटवर्क का इशू।
1: नहीं आवाज नहीं, वाइब ही हल्की आ रही है, कुछ थक गए हैं ज्यादा।
0: अच्छा, वाइब हल्की आ रही है,
1: या तो थके हुए हैं कुछ ज्यादा दिन।
2: मुझे लगा आप कह रहे हैं वाइफ कल आ रही है।
1: वाइफ कल आ रही है, अच्छा ऐसा भी है क्या?
0: अच्छा सर्वर जी और नाजिया जी, मेरी कॉल के बाद जब मैं कॉल कट करूंगा आज मेरी,
1: नहीं यार मैं
0: अरे बात तो सुन लो सर्वर भाई,
1: नहीं सीरियस बात है कोई
2: जो भी बिल्कुल है।
1: अच्छा
2: जो
1: नहीं भी तो मैं सीरियस हो जाता हूँ, वरना मैं मजाक करता
0: हूँ। नहीं आपने कुछ बोलना था, आप पहले बोल लीजिए सर्वर भाई।
1: नहीं
2: अरे
1: नहीं,
2: ये तो फिर आपका चांस नहीं है।
1: मैं तो मजाक
2: कर
1: रहा था, मैंने कहा सीरियस बात है तो मैं सीरियस हो जाता हूँ। जी फरमाइए।
0: अच्छा जी, अच्छा आज ना मेरी बहन आयदा जावेद बाजवा जी का बर्थडे है।
1: अरे तो ये सीरियस बात कहाँ है यार, ये तो अच्छी बात है खुश होने वाली।
0: भाई तो आप मेरी कॉल के बाद थोड़ा अच्छे से विश कर देना।
1: आयदा जावेद बाजवा यानी जावेद भाई
2: और जावेद बाजवा जी,
0: बाजवा जी की बेटी।
1: बेटी, ओके ओके ओके ओके ओके, ये तो अच्छी बात आपने बताई भाई। और बिल्कुल जावेद साहब और आयदा को, आयदा बताया ना,
2: जावेद साहब की बेटी आयदा का आज बर्थडे है। जावेद साहब को,
1: आयदा को और तमाम फैमिली को गाबा भाई के जरिए से एफएम 107 की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: पांच बार, फाइव टाइम्स रिपीट करिए आप इसे।
1: अभी हम वो भी करते हैं, एक नगमा भी सुना देते हैं बर्थडे।
2: चलिए थैंक यू इस बात को शेयर करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: सर्वर भाई जी, नाजिया जी कॉल के बाद थोड़ा विश कर देना।
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: ओके जी, मैं कॉल कट करता हूँ।
1: ओके ओके ओके।

0: अच्छा मुझे मिल ही नहीं रहा यार वो है।
1: तो चलिए हम जो है अपनी पूरी टीम की तरफ से विश करना चाहेंगे जावेद भाई की बेटी आयदा को अ वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्सेलेंट बर्थडे टुडे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप जो है वो खुश रहें, कामयाब रहें और हंसती मुस्कुराती रहें।

0: मेरी आहटों के रहे।
1: आए, आए, आए, आए, आए। और आवाज भी ऐसी गूंज रही है पीछे, ऐसा लग रहा है मेरे दिल में से आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। इतनी आवाज गूंज रही है, इको कर रही, कहां बैठे, किसी हॉल वॉल में बैठे, चाय ली, अकेले मुशायरा कर रहे हैं और सुन रहे हैं, स्टेज पे जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं, वो कह रहा है।
0: नाजिया बहन अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ सरवर भाई। तो सलाम का भी वो जवाब नहीं दे रहे और बस सिर्फ बातें कर रहे
1: हैं।
2: वो मुशायरे में बैठे, वही महफिल दिमाग में उनके चल रही है।
1: चलिए अब तो बता दिए, हैं कहाँ आप? ऑफिस हैं, घर पहुँचे?
2: मुशायरे में
1: अलग तो
0: मैं अभी ब्रेक टाइम है और मैं वो रश से वो जो उधर से बहुत ज्यादा है,
1: बाहर मत जाइए,
0: हवा बहुत ज्यादा है,
1: बाहर मत जाइएगा, बहुत तेज है अभी, बहुत प्यारी आवाज आ रही है, जबरदस्त, एक नंबर।
0: अच्छा जी, बस सरवर भाई मैं तो सुन रहा था अभी, मेरा ख्याल में पिछले आधे घंटे से सुन रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: पहले तो मैं नहीं सुना था, मुझे मालूम भी नहीं था, टाइम भी नहीं मालूम कि तकरीबन आधा घंटे भी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम हुआ।
1: अच्छा,
2: बस इतने ही देर पहले शुरू भी हुआ
1: सुनते।
0: अच्छा, दो बजे मैंने ऑन किया।
1: अच्छा,
0: तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आप दोनों की आवाज सुन के। वो कहते हैं ना कि आपकी बातें तो सुन के दिल को सुकून मिलता है, इसलिए कि आप खाने की बातें करते हो ना, तो वो जो भूख मिट गई थी वो फिर शुरू हो गई दोबारा।
1: वक्त पे शुरू हो गई, 11 बजे खा लिया था, अब 1:30 बजे फिर खाएंगे इंशाल्लाह ताला, मतलब
2: और ये 4 बजे फिर आएंगे यही बातें करने, फिर आप कुछ खाएंगे।
1: चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया।
2: और सरवर की बातों में मत हंसिए।
0: सर नहीं, मैं हंसता नहीं हूँ, मुझे रोना आता है, इसलिए कि सरवर भाई हमेशा खाने की बातें करते, कभी ये नहीं कहते कि मैं तो डाइटिंग भी करूं। नहीं,
1: कभी ये नहीं कहते कि खादिम भाई कभी बुला लो,
2: ये कभी नहीं कहते। सही कहा, बिल्कुल हमेशा,
0: कभी भी नहीं
2: झूठे भी नहीं कहते।
0: हम इधर से कतर छोड़ के जाएंगे फिर भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई आ जाओ आखिरी दिन हमारे साथ खाओ।
2: सवाल ही नहीं उठता भाई, सवाल ही नहीं उठता।
1: और वो जो इतने अच्छे अच्छे खाने बना के, जो 4-5 तरीके की कलरफुल हंडिया जो आप हमें भेजते हैं डेली व्हाट्सएप पे, वो कौन बनाता है और कौन खाता है, उसमें हम थोड़ी शामिल है?
0: वो जो आप बीच में बना के खिला के वो दूसरों को, तो हमें कभी बुलाया आपने?
1: अच्छा, हम जल्दी से बता दीजिए,
2: पॉज बटन रखिए
1: जल्दी से। हाँ, ये बता दीजिए कि वीडियो गेम का ऐसा कौन सा फीचर है जो अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं खादिम भाई?
0: मैंने कभी जिंदगी में गेम खेला भी नहीं है, न मोबाइल में है मेरा। मैं वो वाहिद इंसान हूँ दुनिया का जो न मोबाइल में रखते हैं और न लैपटॉप में रखते हैं।
2: अच्छी बात है, ये तो प्राउडली
0: जिंदगी गेम के लिए नहीं है, जिंदगी गेम के लिए नहीं, और अभी हमारी उम्र जो है ये गेम के लिए बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल, गेम तो हो चुका, अब
0: तो हो चुका,
1: अब तो रिजल्ट का टाइम
2: है,
0: रिजल्ट भी मिल चुका है, रिजल्ट भी मिल चुका
2: है,
0: अभी रिजल्ट को देख के सर पकड़ के बैठे हुए।
1: नहीं यार, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और आप कामयाब तो है ही हैं, ये तो हमारी बात हो गई। खैर खत्म भाई, बहुत बढ़िया साहब,
2: सर्वर मेरे साथ तो कह रहे हैं मुझे न्यू चांस मिल जाएगा और नई अपॉर्चुनिटी।
0: नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मैं मिलियन बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, और ये वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि गुजरा हुआ वक्त बहुत अच्छा होता और ये अच्छा नहीं है, ये उससे बहुत अच्छा है, काफी मैं कहता हूँ कि
1: बेशक
0: 200% अच्छा है,
1: बेशक जो भी वक्त आ रहा है वो अच्छा ही है, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला हमारे साथ अच्छा ही करते हैं,
0: इसलिए कि उस टाइम हम बच्चे थे और अभी हमारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या बात है,
0: ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि उस वो जिंदगी तो जी रहे लेकिन वो सिर्फ अपने लिए जी रहे, बच्चे भी नहीं है कोई, यानी वो भी नहीं, बहरहाल वो नहीं।
1: वाह,
0: आप हंसो मत सरवर भाई,
1: क्या शेर सुनाया खादिम भाई, वाह, बच्चों के नाम पे मुझे खुशी मिल गई, बस क्या बताऊं।
2: ये तो मुशायरे की महफिल से बाहर ही नहीं हूं।
0: नाजिया बहन, ये जब भी शेर पढ़ते और वो जो कहते हैं ना बाद में जब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: अरे ये तो इनका तकिया कलाम है, आपको नहीं पता।
1: अच्छा?
2: इनके दोस्त भी इनसे ऐसे ही बात करना शुरू था, ओए होए होए आ गए
1: बलिए भाई, क्या बात।
0: हमारी भी आदत, ये सुन सुन के तो मेरी भी आदत हो गई, मैं भी बोलता हूँ ओए होए होए होए, तो

0: मुझे देखते हैं, वो जो बंदा होता है वो मुझे देखते कि क्या हुआ।
1: चलिए जाते जाते सुन लिए, एक नाजिया के लिए शेर कहा है मैंने।
2: नहीं नहीं हम नहीं सुनने को तैयार।
1: आदम भाई
2: नहीं नहीं अर्ज मत कीजिएगा।
0: बिल्कुल
1: कॉल काटने से पहले अब मैं सुना की मानूंगा, मैं तड़का कटवा लूंगा।
0: चलो सुनाओ,
2: आज मान लिया पक्के शायर हैं।
1: तो साहब कह रहे हैं कि शायर कह रहा है कि बना रहा हूँ मैं फहरिस्त छोटे लोगों की, बना रहा हूँ मैं फहरिस्त छोटे लोगों की, मलाल ये है कि नाम बड़ों का आ रहा है। मुझे पता था आप मांगेंगे, चलिए भेज देता हूँ।
0: मुझे भेज नहीं है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अरे ये मत इनकी शायरी कलेक्ट कीजिए, ये खुद ही उधर से मांग के लाते
0: हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है, मैं भी दूसरों की शायरी चुरा चुरा के इधर ही शेयर करता हूँ, हम खुद शायर नहीं है।
1: वाह,
0: लेकिन लेकिन अगर सरोवर भाई किसी महफिल में बैठ गए ना और ये बोलोगे ओए होए होए, शायद वो शायर भी भागेंगे।
2: अरे इन्हें हर महफिल में ओए होए के लिए बुलाया जा, पैसे दीजिए।
1: मैं थोड़े कम पैसे लेता हूँ, हाँ ले लेता
2: हूँ, फ्री में नहीं
1: काम ये भी कर देता हूँ, छोड़ता
0: हूँ। क्या बात है, आप सिर्फ लेते हैं,
1: हाँ बिल्कुल। भाई देखिए, दिल जब तक मानता नहीं किसी बात को करने से, तो फिर कैसे उसके ऊपर हम इत्मीनान करें। खादिम भाई बस ये हो जाती है बात, और कुछ
2: दिल को मना के अब घर में बैठाइए। चलिए
1: बहुत शुक्रिया
0: नाज़िया बहन और सरोवर भाई, दोनों के साथ बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन टाइम भी
1: अब हमारा अल्लाह हाफिज करने का भी टाइम हो रहा है। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, थैंक
0: यू। खुश रखे, सलाम सारे तमाम सुनने वालों को, और बहुत अच्छा लगे। लेकिन ये शेर याद रखे, अभी मुझे भेज दे, इंतजार में हूँ।
1: भेजता हूँ
0: बहुत शुक्रिया।
1: नाजी अब कुछ मैसेजेस जो है वो ले लेते हैं
2: जल्दी से,
1: और क्योंकि वक्त ये मोबाइल को क्या हो गया भाई,
2: और हमारे पास बैक टू बैक कॉल्स तो आ ही रही हैं, बट आई डोंट नो।
1: ओके शहजादा भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ एफएम 107। तौफीक भाई हैं यहाँ पर, कुछ इन्होंने हमें खाली बर्तन से भेज दिए, नहीं इसके अंदर लस्सी वस्सी बना रहे हैं, और कुछ कढ़ाई वढ़ाई आपके लिए भेजी है, खासम खास सुना दिया, तो जाते वक्त आप इसको खाती भी जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सरवर एंड नाजिया, तौफीक अलवाकरा से कहते हैं। ओके बढ़ते हैं आगे, अस्सलाम वालेकुम नाजिया और सरवर मिर्जा, कैसे हो, ठीक ठाक हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: कौन सा टॉपिक में आप लोग बात कर रहे हैं प्लीज बता दीजिए हमें, तो अभी रिव्यू ऑन कर दूं। उस्मान और ओराकज़ई अब तो निकल गया,
2: हाँ अब हमारा टाइम ही एकदम,
1: अब हमारा टाइम हो गया। सर मैडम आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून,
2: एमबीबी
1: यहाँ पर यूसुफ भाई आ गए। वीडियो गेम मैं खेलता नहीं हूँ, तो बटन कौन से होते हैं मालूम नहीं, आपने बताया तो मैं कहूंगा कि पॉज वाला, बस थोड़ा पॉज लेके आराम करना चाहूंगा, जिंदगी की मसरूफियत में से जाने क्यों आपने लिए वक्त बिताया ही नहीं, अपने लिए वक्त। यूसुफ भाई है ये।
2: ओके
1: बैकग्राउंड में जो चल रहा है वही लगा दो, कहते हैं पता नहीं कहाँ लगाने के लिए कह रहे हैं, कौन
2: गाना
1: है
2: सुना,
1: गाना के लिए कह रहे हैं। आई एम इकराम फ्रॉम पाकिस्तान फैसलाबाद, गुड आफ्टरनून चॉकलेट भाई हैं सर्वर आइसक्रीम वाले एंड क्वीन मैम, और उसके सामने एक तितली बनाई हुई है मगर मुंह काला उस तितली का। होप यू आर डूइंग वेल, गेम्स खेलो या ना खेलो पता नहीं लोग हर वक्त किसको गेम डालने में क्यों लगे रहते हैं, अच्छा मतलब गेम में क्यों फंसाने में लगे रहते हैं, इकराम कहते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप दोनों, सब ठीक है? मैम थोड़ा लेट हो गया, दिलबर भाई, ओह दिलबर लेट हो गए, कोई बात नहीं, कॉल मी सरवर भाई इंशाल्लाह टुमारो, रेहान है हमारे साथ
2: इंशाल्लाह।
1: बस एक मिनट और लूंगा नाजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया मैम सरोवर भाई, कैसे हैं आप दोनों, गुड इवनिंग, नाइस शो, हमारी जिंदगी ऐसी है गेम खेल रही है, अब कौन सा गेम बाकी रह गया, मुमताज अहमद कहते हैं। बताइए कौन सा रह गया डॉक्टर। ओके हैप्पी बर्थडे वजवा सर, आपकी लाडली बेटी को विश कर रहे हैं, तसल्ली है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बेचैनी है कि ये वक्त गुजरता जा रहा है। आरिफ अंसारी हमारे साथ। ओके एफएम 107 की शान सर्वर एंड नाजिया, मोहम्मद खलील हमारे साथ, अरे आप शान तो आप हैं भाई। नसीम भाई कहते हैं मेरे भी मैसेज पढ़िए, अच्छा मैं नहीं पढ़ा क्या? ओके हम भी फोन लगाए बैठे थे, उठा लेते तो क्या होता, बात ही तो करनी थी, पैसा थोड़ी ही मांगना था।
2: अरे ये तो, अरे इनकी कॉल कैसे हमने मिस की है, वाकई बहुत ही अच्छे इंसान है, बड़ा मजा आता है।
1: मैंने बिल्कुल

0: आपका मैसेज शेयर कर दिया है। अच्छा कुछ और भी है,
1: जी है। तुम
0: नहीं, यूसुफ भाई ने फिर कुछ भेजा है, कहते हैं वीडियो गेम में मैं खेलता। अच्छा ये तो हमने कर दिया, ऑलरेडी पढ़ दिया। एनी हाउ
1: सच अ कंफ्यूज्ड पर्सन आई हैव सीन इन माय लाइफ।
0: अस्सलाम वालेकुम आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए।
1: तो आपने तो अपनी लाइफ में बताया नहीं कौन सा बटन लेते
0: यार। मैं विश के शायद रीस्टार्ट,
1: मुझे क्या लगा कि व्हाई डोंट वी गो फॉर अ सेव बटन। सेव बटन इसलिए नहीं कि हमने जो गलतियां की हैं उसको ठीक कर ले, बट इसलिए कि हमने उन गलतियों से जो सीखा है उसे आगे अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर लें। क्योंकि हर स्ट्रगल, हर चैलेंज, हर सेटबैक हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और हम ज्यादातर जो है वो पॉजिटिव होते ही नहीं है, देख पाते ही नहीं इन चीजों को। और शायद ये कहीं ना कहीं सेव बटन जो है हमें मौका देगा कि हमने उन सिचुएशंस में, उन हालात में जो था वो हिम्मत नहीं हारी। और जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही कामयाब होते हैं। असल कामयाबी आपकी मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि वो जो रूट आपने अपनाया है, जो प्रोसेस से आप गुजरे हैं,
0: आपको ढाबे मिलते हैं, पराठा, दाल मखनी,
1: आप तो होटल पे रुक गए,
0: जाते जाते जाते जाते जो आप खाते पीते
1: जर्नी को कंप्लीट करते हैं
0: प्रिंस खान हमारे साथ,
1: वो एक्चुअल में कामयाब।
0: सुमी, सुमी आ गई हमारे साथ, कहती है बहुत फेवरेट। ओ माई गॉड सुमी आप लेट हो गई, इंशाल्लाह ताला कल 1:30 बजे तशरीफ ले आइएगा। लिबास देख कर गरीब हमें ना समझें, हमारे गम भी ठहरे जायदाद से, ओ तेरी जायदाद से ज्यादा है। नाजी आपके लिए मुदस्सर मंगज भाई ने शेर पढ़ा है, तो जायदाद जितनी है।
1: मैं कल भी लेकर आऊंगी सर, मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ ऐसी चार्ज करने लाऊंगी।
0: टाइम क्या है पूछते हैं नसीम भाई, तो नाजी बता दी कल कितने बजे।
1: टाइम जो है 1:30 से हमारा शो स्टार्ट होता है और लास्ट करता है 2:30 तक। आइडियली हमारे पास एक घंटा है,
0: कितना लंबा टाइम बता दिया नादिया ने, तो बता पांच छह घंटे हमारे पास।
1: नहीं तो वही तो मैं बता रही हूँ, एक ही घंटा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा जल्दी हमारे साथ जुड़े, जिससे हम आपके साथ जुड़ सके, आपसे बात कर सके,
0: जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर लिया करें।
1: हम चाहते तो
0: नहीं
1: ज्यादा लोगों से बात करनी है।
0: तो चलिए भाई,
1: जाते जाते दोस्तों बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में अपने फेलियर्स को छुपाओ मत, उनसे डरो मत, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, फिर ना आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत होगी ना चांस की जरूरत होगी। जो है जैसा है उसमें हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत है।
0: अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। सुनते और देखते रहिए FM 107
1: दिल से देसी।

अस्सलाम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द लीडिंग विमेन टेनिस प्लेयर ड्यूरिंग हर टाइम, स्टेफी ग्राफ।

या दोस्तों, विमेंस टेनिस की दुनिया में अगर कंसिस्टेंसी, डोमिनेंस और एक्सीलेंस की बात की जाए तो एक नाम सबसे अलग नजर आता है, स्टेफी ग्राफ। एक ऐसी टेनिस चैंपियन जिन्होंने सिर्फ ग्रैंड स्लैम टाइटल्स नहीं जीते बल्कि दुनिया की नंबर वन रैंकिंग पर भी अपनी जबरदस्त हुक्मरानी साबित की। स्टेफी ग्राफ के नाम टेनिस हिस्ट्री में वर्ल्ड नंबर वन रहने का सबसे ज्यादा हफ्तों का रिकॉर्ड है। ये सुन लीजिए, दोबारा आप लोगों से मैं ये बता देता हूँ कि स्टेफी ग्राफ वॉज द ओनली प्लेयर जिनके नाम सबसे ज्यादा हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर वन रहने का एक रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन टेनिस स्टार ने अपने करियर के दौरान 377 हफ्ते दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी के तौर पर गुजरे। ऐसा मैसिव रिकॉर्ड, जी हाँ, 377 वीक्स एट वर्ल्ड नंबर वन, मुश्किल होता है आज के डेट में तो। हफ्ता क्या मतलब, मैं तो कहता हूँ कि 2-3 दिन में ही वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग जो है कोई ना कोई लेके चला जाता है, लेकिन 377 वीक्स ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं दोस्तों, बल्कि ग्राफ की कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ और कोर्ट पर लगातार एक्सीलेंस की कहानी है। सोचिए, एक एथलीट का दुनिया में नंबर वन बनना ही कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन नंबर वन पोजीशन को सिर्फ कुछ हफ्तों या चंद महीनों तक मेंटेन करना अलग बात है। और स्टेफी ग्राफ ने यह मकाम 377 हफ्तों तक संभाल कर रखा, यानी तकरीबन 7 साल और 3 महीने दुनिया की टॉप रैंक प्लेयर रहना। ग्राफ पहली मरतबा अगस्त 1987 में वर्ल्ड नंबर वन बनी। उस वक्त वो सिर्फ एक टैलेंटेड यंग प्लेयर नहीं रही थी, वो वर्ल्ड टेनिस की सबसे बड़ी फोर्स बन चुकी थी। उनकी स्पीड, पावरफुल फोरहैंड, कोर्ट कवरेज और एग्रेसिव स्टाइल ने ओपोनेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। ग्राफ की सबसे बड़ी खूबी उनकी वर्सेटिलिटी थी। वो सिर्फ एक सरफेस पर कामयाब नहीं थी, ग्रास हो, क्ले हो या हार्ड कोर्ट, ग्राफ ने मुख्तलिफ सरफेसेस पर अपनी क्वालिटी साबित की और इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में लंबी मुद्दत तक टॉप पर बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, स्टेफी ग्राफ की कहानी सिर्फ वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग तक महदूद नहीं, उनका ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड भी उनकी ग्रेटनेस का सबूत है। ग्राफ ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, चारों मेजर टूर्नामेंट्स में उन्होंने चैंपियनशिप ट्रॉफीज उठाई। लेकिन उनके करियर का सबसे हिस्टोरिक अचीवमेंट 1988 का सीजन था और उसी साल स्टेफी ग्राफ ने कैलेंडर गोल्डन स्लैम हासिल किया, यानी एक ही साल में उन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। टेनिस हिस्ट्री में ये अचीवमेंट आज भी बेमिसाल समझी जाती है। 1988 में ग्राफ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और फिर यूएस ओपन, और जब सोल ओलंपिक्स में उन्होंने वुमेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता तो उनका नाम टेनिस हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक खास मकाम पर लिखा गया। स्टेफी ग्राफ का 377 वीक वर्ल्ड नंबर वन रिकॉर्ड भी उन्हीं अचीवमेंट्स में से एक है। यह रिकॉर्ड हमें बताता है कि ग्रेटनेस सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतने का नाम नहीं, ग्रेटनेस का मतलब है सालों तक अपने स्पोर्ट के हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करना, प्रेशर के बावजूद टॉप पर टिके रहना और हर नए चैलेंज के सामने अपनी क्वालिटी साबित करना। स्टेफी ग्राफ ने ये सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने टेनिस कोर्ट पर सिर्फ ट्रॉफीज नहीं जीती, उन्होंने एक एरा को डिफाइन किया और जब भी टेनिस हिस्ट्री में डोमिनेंस, कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस की मिसाल दी जाएगी, स्टेफी ग्राफ का नाम जरूर याद किया जाएगा। 377 हफ्ते वर्ल्ड नंबर वन, एक नंबर जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, एक लेगेसी है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपका टैकी, नहीं ये थोड़ा सा क्लीशे लग रहा है, तो मैं जी दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। और टैक अपडेट में, आज के अपडेट में मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है, स्पेशली वो लोग जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं। आजकल वीडियो बनाना भी महंगा है और वीडियो एडिट कराना उससे भी थोड़ा सा एक लेवल महंगा हो जाता है, मगर अगर आप खुद को सिखाना चाहें तो बहुत आसान है। एक जगह बताता हूं जहां पे आप जा सकते हैं, नहीं वैसे नहीं मैप पे लगा के नहीं, एक वेबसाइट जहां पे आप जाएंगे और आपको पूरा का पूरा वीडियो एडिटर ऐसे ही मिल जाएगा एकदम फ्री, सो दैट यू कैन एडिट योर वीडियोस। और अगर एडिट करना नहीं भी आता है तो आप एटलीस्ट खुद को इस वेबसाइट के जरिए सिखा सकते हैं, एक्सट्रीमली इजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सुनिए वेबसाइट का नाम, videosoftdev.com। मैं एक बार स्पेल आउट कर देता हूं, सो VIDEO वीडियो, बिना स्पेस लिखना है आपको, सॉफ्ट SOFT, फिर बिना स्पेस लिखना है आपको DEV, डेवलपमेंट का डेव, तो videosoftdev.com। आप जब इसे ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो एडिटर आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। आई नो कि कुछ लोग अभी कैपकट और बहुत सारे और भी ऑप्शंस रखते हैं अपने पास, मगर दिस वन इज क्वाइट इजियर। इसकी ट्रिक्स भी आपको ये खुद ही सिखा देगा और आपको इसमें खुद को सिखाने के साथ साथ एडिटिंग करने में काफी आसानी होगी। आई एम प्रिटी श्योर ये जो है लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आप फोन में एडिटिंग कर रहे हैं तब तो इसे ना यूज करें, बिकॉज इट माइट टेक अ लिटिल टाइम। लेकिन अगर आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए एक बढ़िया वीडियो एडिटर चाहिए तो भाई इससे बढ़िया तो मैं आपको फ्री में बता नहीं सकता, ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगला है genial.ly, genial.ly। अब ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको नजर आएगी जो अक्सर बहुत बहुत खर्चा करवाती है, और वो है इंटरैक्टिव वीडियोस। कभी कभार हमें बच्चों को सिखाने के लिए कुछ चाहिए होता है, हम उसके लिए टॉयज खरीदते हैं या इंटरैक्टिव वीडियोस को डाउनलोड करते हैं या उन्हें यूट्यूब पर दिखाते हैं। बट वंस यू गेट होल्ड ऑन टू दिस वेबसाइट, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कुछ भी प्रेजेंटेशन या बच्चों को दिखाना है या ऑफिस के लिए बनानी है या किसी भी चीज के लिए, कुछ फैंसी सा करना है किसी बर्थडे के लिए, आप इस वेबसाइट को यूज कीजिए एंड यू कैन मेक वो इंटरैक्टिव वीडियोस। बहुत फैंसी, बहुत कूल लगता है और फ्री में बन जाते हैं भाई, इससे बढ़िया चीज नहीं बता सकता मैं आपको। लेट मी रिपीट द नेम, इसका नाम है genial.ly, यूं करके समझ लीजिए इसका नाम और आपको मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो कोई भी अगर आपको हेल्प लगे तो बाद में पूछ लीजिएगा हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे FM 107 Qatar। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी गुड रिव्यू ऑफ समथिंग रियली रियली गुड। हाँ तो जी, अंग्रेजी इधर के उधर हो गई लेकिन रिव्यू करने वाला हूँ, समझ गए होंगे। तो मैं आज रिव्यू करना चाहता हूँ नथिंग के हेडफोन्स के बारे में। नथिंग के हेडफोन्स अमेजिंग है भाई, मुझे कभी नहीं लगा था कि एप्पल के वो जो इतने ज्यादा

0: हम महंगे उन्होंने हेडफोन्स निकाले, उनको कोई टक्कर देने की सोचेगा या फिर ख्यालों में भी आएगा? क्योंकि अगर आपको अल्टरनेट आइडियाज आते हैं तो आप सोचते हैं सोनी का ले लूंगा यार, नहीं तो मैं JBL का ले लूंगा यार, और बहुत सारे स्टूडियो हेडफोन्स जो होते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं लोग उनकी तरफ जाते हैं। मगर नथिंग जो कंपनी है उसने एक बीच का पाथ पकड़ा है और अपने हेडफोन्स लॉन्च किए हैं। अब दो चीजें मेनली, एक होता है डिजाइन जिस पे फोकस जाता ही जाता है, एंड नथिंग हैज बीन नोन फॉर इट। उनके डिजाइन चाहे वो फोन के हो, चाहे उनके एयरपॉड्स के हो, चाहे उनके हेडफोन्स के हो, सब टॉप नॉच है। अगर आपको कोई तीसरी कंपनी नजर आती है जो कि एंड्रॉयड और iOS के अलावा भी कोई ऑप्शन देती है, तो या तो वो गूगल पिक्सल है या फिर नथिंग के प्रोडक्ट्स हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ है इतने टेक जायंट्स के बीच में खड़ा होना। तो हेडफोन्स बहुत क्रिस्प हैं, बहुत बढ़िया हैं। महंगे हेडफोन्स की जगह अगर आपको कूल दिखने वाले और नॉइस कैंसिलेशन के साथ वाले क्लियर क्वालिटी के साथ चाहिए तो गो फॉर इट। और काफी बजट में, मैं प्राइसिंग यहाँ पे नहीं बता सकता, मगर आप अगर देखेंगे तो काफी जगहों पे अलग अलग प्राइसेस आपको मिल सकते हैं। अमेजोन पे इट्स ऑन अ डिफरेंट प्राइस, और हो सकता है लोकली भी कतर में आपको इजीली मिल जाए। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेडफोन जो कि मिड रेंज में आ जाए और आपको अच्छा भी दिखे और एप्पल को टक्कर देनी है और लोग भी पूछें कि ये क्या है भाई, तो फिर आपको ये लेना चाहिए। एक्सलेंट चॉइस फॉर हेडफोन्स, और वो भी उस बजट में जो लगता है कि हाँ इस लायक तो है। मगर आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो हेडफोन आपको उस लेवल के नॉइस कैंसिलेशन में सब कुछ देगा। थोड़ा सा साउंड लीक है मगर दैट इज फाइन, वो नेग्लिजिबल है। अब उसमें आप नेट पिक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिस इज माय रिव्यू फॉर अ वेरी स्मॉल रिव्यू ऑफ द हेडफोन्स बाय नथिंग कंपनी। एंड भाई मैं इनकी तरफ झुकाव जा रहा है मेरा तो फोन पे भी दिल आ गया, क्योंकि रिसेंटली दे हैव प्लानिंग टू लॉन्च देयर थ्री Nothing Phone 3, तो उस पर भी नजर बना के रखिएगा। मैं भी नजर बना के रखूंगा, फिर आपको उसका भी रिव्यू मिलेगा FM 107 पर। ये थी टेक अपडेट्स, एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
2: चले तो कट ही जाएगा सफर,
1: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।
6: स्कैम अलर्ट, फ्रॉड अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर से इस्तकबाल है दोस्तों। मेरा नाम है फजील और ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम से बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं। वेल दोस्तों, आजकल जिस तरह से स्कैम बढ़ रहे हैं ऐसे में आपको बेहद होशियार होने की जरूरत है। कई बार जो होशियार होते भी हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, जिनको एक्चुअली में पता होता है कि ये, यानी कि उनके पास जो मैसेज आया है या उनके कंप्यूटर पे जो पॉपअप्स आए हैं वो स्कैम है, लेकिन फिर भी कई बार वो फंस जाते हैं। कई बार ओवर स्मार्टनेस में हमारे से गलती जो है वो हो जाती है। लेकिन इस नए जमाने के नए फ्रॉड में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इवन कई लोगों को पता है कि कैसे इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं। और आज एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। एक बेहद गंभीर ऑनलाइन क्राइम है ये, जहां कोई अनजान शख्स आपकी परमिशन के बिना आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का इस्तेमाल करके खरीदारी यानी कि शॉपिंग करता है, और इस फ्रॉड से लोगों को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इसके तरीके और बचाव के सॉल्यूशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये फ्रॉड काम कैसे करता है सबसे पहले ये जान लेते हैं, और फिर हम सॉल्यूशंस पर भी आएंगे। जो चोर होते हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने के लिए फिजिकल कार्ड की जरूरत उनको नहीं होती है। वो बगैर फिजिकल कार्ड के भी आपकी डिटेल्स क्रेडिट कार्ड की चुरा सकते हैं। वो अलग अलग तरीकों से आपका कार्ड या कहें आपका डेटा चुराते हैं। सबसे पहले है कार्ड स्कीमर्स। गैस पंप्स

और एटीएम्स पर लगाए गए हिडन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि स्किमर्स के जरिए कार्ड स्वाइप करते हुए डेटा कॉपी हो जाता है। ये आपने बहुत पहले इस तरह की वीडियोस भी देखी होंगी कि आप जब किसी एटीएम में कार्ड डालते हैं, खास तौर पे ये कई अलग अलग मुल्कों में होता है कि जब आप कार्ड डालते हैं तो ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो हिडन होता है, वो सारी डिटेल नोटिस कर रहा होता है और वो इतना शार्प कैमरा होता है कि वो सारी डिटेल्स आपके कार्ड की नोट कर लेता है, इवन CVV भी वो नोट कर लेता है। नीचे भी कैमरा है, ऊपर भी कैमरा है, 16 डिजिट के जो नंबर है वो भी आपकी डिटेल्स जो है वो ले लेता है, और फिर जो आपने पिन डाला उससे भी उनको डेटा मिल जाता है। तो ऐसे में बहुत होशियार रहने की यहाँ पर भी जरूरत है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमने तो कहीं डिटेल्स दी ही नहीं, फिर मेरे साथ ये स्कैम कैसे हुआ। तो ये जो परेशानी है ये छोटी छोटी इन्हीं चीजों को नोटिस ना करने पर जरूर आती है। डेटा ब्रीच भी होता है, बड़े स्टोर्स या कंपनीज के ऑनलाइन डेटाबेस हैक होने पर लाखों कस्टमर्स के कार्ड नंबर्स डार्क वेब पर लीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन किसी बहुत ही लेजिट वेबसाइट से आपने शॉपिंग करी हो, लेकिन अगर वो वेबसाइट हैक कर ली हैकर्स ने तो आपकी डिटेल्स लीक हो जाती है। फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स के जरिए आपसे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV मंगवाया जाता है और इससे भी लोग आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इस पे नजर डालें तो हमारा काम आसान हो सकता है और हम किसी भी तरह के फ्रॉड से, कार्ड फ्रॉड से हम बच सकते हैं। सबसे पहले आप इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट को सेट करें अपने बैंक अकाउंट के जरिए। अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर इमीडिएट SMS और ईमेल नोटिफिकेशंस एक्टिवेट करें। हर एक छोटे बड़े ट्रांजैक्शन का अलर्ट आपके फोन पर तुरंत आना चाहिए ताकि कोई भी अनजान एक्टिविटी आपसे छुपी ना रहे। सबसे पहला फर्ज आपका यही होना चाहिए। दूसरा, अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करें। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड की ऐप खोलकर स्टेटमेंट चेक जरूर करें। अगर आपको कोई भी ऐसा चार्ज या पैसा कटना दिख रहा है जो आपने नहीं किया है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार जो स्कैमर्स होते हैं वो छोटा अमाउंट कट करते हैं और आपने इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट सेट नहीं किया होता और ये छोटे अमाउंट जो कट रहे होते हैं ये आपकी जेब से खाली होते रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट से खाली होते हैं। और हमेशा जब भी आप कहीं पर स्वाइप करें अपना कार्ड तो स्किमर्स का ध्यान रखें। किसी भी लोकल एटीएम या गैस स्टेशन पर कार्ड लगाने से पहले स्लॉट को ध्यान से देखें। अगर स्लॉट ढीला लग रहा है या आसपास ऐसे कैमरे नहीं है जो हिडन है तो आप वहां पर आसानी से एटीएम अपना डाल सकते हैं। जब भी आपके साथ फ्रॉड हो इमीडिएटली एक्ट करें। जैसे ही आपको किसी अनरिकॉग्नाइज्ड चार्ज या फ्रॉड का पता चले तुरंत अपने बैंक को कॉल करें। बैंक से कहें कि आपका कार्ड ब्लॉक करें और उस ट्रांजैक्शन के खिलाफ डिस्प्यूट चार्ज क्लेम फाइल करें। ज्यादातर बैंक्स फ्रॉड ट्रांजैक्शंस का पैसा वापस रिफंड कर देते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो और आपने इमीडिएटली एक्शन लिया हो। और हमेशा वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल करें, सेफ ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट का ही यूज करें। अगर पॉसिबल हो तो बैंक्स की तरफ से मिलने वाले वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या टेम्परेरी कार्ड नंबर्स का यूज करें जो सिर्फ एक बार एक ट्रांजैक्शन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट को सेटअप करें, अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करें, स्कीमर्स पर ध्यान रखें, इमीडिएटली एक्ट करें अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, और साथ ही आपको वर्चुअल कार्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फ्रॉड अवेयरनेस के, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम जानेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग. वेयर शुड योर मनी गो, ये सोचना है. बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एकदम अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. सेविंग का मतलब है पैसा सिक्योर रखना, और इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसा ग्रो करना. अगर आप 1,000 कतरी रियाल बैंक अकाउंट में रखते हैं तो वो सेविंग है, और अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है या बिजनेस में लगाते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है. सेविंग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो बेस्ट है, जैसे इमरजेंसी फंड हो, वेकेशंस है, नई गाड़ी है, एजुकेशन फीस है. लेकिन हाँ, ये सेविंग्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नहीं अच्छे होते. लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स ही हैं. फिर चाहे आपका रिटायरमेंट हो, चाहे वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे चिल्ड्रंस एजुकेशन हो, चाहे प्रॉपर्टी परचेज हो, ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टमेंट से पूरी होती हैं. चलिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हर महीने 1,000 कतरी रियाल आप सेव कर रहे हैं, 10 साल तक आपने सेव किए टोटल अमाउंट अगर देखे जाए तो 1 to 0 यानी 1,20,000 कतरी रियाल. अब दूसरी तरफ आपके दोस्त ने 1,000 कतरी रियाल मंथली इन्वेस्ट किए, जहां उसे एवरेज रिटर्न मिला 8%. अब 10 साल के बाद उसके पास अमाउंट आपसे ज्यादा है, आपके पास है 1,20,000 जो आपने सेविंग से बचाए, और उसने इन्वेस्ट किया तो उसके पास 10 साल के बाद अमाउंट है 1,80,000. यहाँ कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक काम करता है. दोस्तों, कंपाउंड ग्रोथ मतलब प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट मिलना. यही तो एल्बर्ट ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का एक पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट कहा था. एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले इमरजेंसी सेविंग्स बनाई जाए और उसके बाद मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए जाए. जैसे

आपको भारी पड़ जाती है और ये मिस्टेक लोग करते हैं कि लोग ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड किया मार्केट ऐसा है ये बड़ी ही डेंजरस अप्रोच है दोस्तों हमेशा अपना फाइनेंशियल गोल खुद डिफाइन कीजिए अगर गोल 2 साल का है तो सेविंग ज्यादा सूटेबल है और अगर आपका गोल 15 साल का है तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बेहतर ऑप्शन है एक छोटा सा फॉर्मूला ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं देन सेविंग इज अ गुड ऑप्शन और अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है देन गो फॉर इन्वेस्टमेंट स्मार्ट लोग दोनों करते हैं सेविंग सिक्योरिटी देती है और इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ तो दोनों में गुड बैलेंस क्रिएट करना आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है बस फिलहाल के लिए तो मैं तो यही कहूंगी आपसे कि दोनों में गुड बैलेंस क्रिएट करें और लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती और मिलती हैं उन्हें ग्रैब करें चलिए दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में मेहमान नवाजी को बहुत आला मकाम हासिल है। मेहमान को इज्जत देना, खुशी से मिलना और उसे अपनायत का एहसास दिलाना कतरी माशरे की खूबसूरती पहचान में से एक है। कतरी घर में मेहमान की आमद सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती बल्कि खुशी का मौका समझा जाता है। घर के अफराद मेहमान का मुस्कुराहट के साथ खैर मुकदम करते हैं और उसे आराम से बैठने की जगह देते हैं। गुफ्तगू के दौरान खूबसूरत अल्फाज, नरमी और तवज्जो का इजहार मेहमान की कदर को जाहिर करता है

0: मेहमान नवाजी का सबसे मशहूर पहलू अरबिक कहवा और खजूर है। छोटे से प्याले में पेश किए जाने वाले कहवे का रिश्ता सिर्फ जायके से नहीं बल्कि रवाबित और अपनाइत से भी है। मेहमान को कहवा पेश करना एक खामोश पैगाम होता है कि आप हमारे लिए मोहतरम हैं और आपकी आमद हमारे लिए खुशी का सबब है। कहवे के साथ खजूर रखने में भी खूबसूरत मायने छुपे हुए हैं। खजूर इस इलाके की जमीन और विरसे से जुड़ा हुआ है। इसकी मिठास और कहवे की खुशबू मेहमान की मुलाकात को यादगार बना देता है। मजलिस भी मेहमान नवाजी की एक अहम जगह है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खैरियत पूछते हैं और मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू करते हैं। मेहमान को मजलिस में बेहतर जगह देना, उसकी राहत का ख्याल रखना और उसे तवज्जो से सुनना अदब का हिस्सा समझा जाता है। कदरी मेहमान नवाजी में सिर्फ खाना या मशरूब पेश करना शामिल नहीं, असल खूबसूरती मेजबान के रवैये में होती है। अगर किसी मेहमान का वक्त कम हो तब भी प्यार से इस्तकबाल और चंद अच्छे अल्फाज मुलाकात को खूबसूरत बना देते हैं। पुराने जमाने के कतर में सफर अक्सर मुश्किल होता था। रेगिस्तानी रास्तों और समंदरी सफरों के दौरान मुसाफिर को पानी, खाना और आराम की जरूरत होती थी, इसलिए सफर करने वालों से अच्छा बर्ताव और मदद की रिवायत बहुत अहम थी। आज के कतर में सफर आसान है, लेकिन दूसरों का ख्याल रखने का जज्बा आज भी सकाफत का हिस्सा है। मेहमान नवाजी घर से बाहर भी नजर आती है। किसी नए शख्स का इस्तकबाल करना, उसे जगह या रास्ता बताना या जरूरत के वक्त मदद की पेशकश करना अच्छे रवैये की मिसाल है। इसी वजह से कहवा, सलाम और मुस्कुराहट को लोगों के करीब लाने वाली चीजें कहा जाता है। दावत की रिवायत भी कतर की समाजी जिंदगी में अहम है। खानदान और दोस्त एक जगह जमा होते हैं, खाना शेयर करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। ऐसी मुलाकातें रिश्तों को मजबूत करती हैं और बच्चों को भी मिलजुल कर रहने का सलीका सिखाती हैं। मेहमान नवाजी के साथ एहतराम और हुदूद का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। हर मेहमान की ज़रूरियात, वक्त और राहत का लिहाज रखना बेहतरीन मेज़बानी की अलामत है। इसी तरह मेहमान का भी फ़र्ज़ होता है कि वो मेज़बान के वक्त घर के अदब और रिवायतों का एहतराम करे। नई नस्ल के लिए मेहमान नवाजी एक बहुत कीमती दर्स है कि उन्हें सिखाती है कि अच्छे रवैये के लिए हमेशा किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मुस्कुराहट, तवज्जो, शुक्रिया और नरमी जैसे छोटी छोटी बातें दिलों पर गहरा असर छोड़ सकती हैं। आज का कतर दुनिया भर से आने वाले लोगों का घर बन चुका है। मुख्तलिफ ज़बानें, रिवायात और तजुर्बे रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। इस माहौल में कतरी मेहमान नवाजी का बेहतरीन इजहार ये है कि हर शख्स के साथ इज्जत और खुलूस से पेश आया जाए। तो दोस्तों, कतरी मेहमान नवाजी हमें यही पैगाम देती है कि इंसानी रابطہ मोहब्बत एहतराम से मजबूत होता है। एक प्याला कहवा, एक खजूर या एक मुस्कुराहट कभी कभी दिल तक पहुंचने का सबसे खूबसूरत जरिया बन जाता है। कतर की रिवायत आज भी जिंदा है और आने वाली नस्लों तक इसी तरह पहुंचती रहेगी। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: Game Changer Season 2
4: Qatar ka sabse zyada suna jane wala radio station
5: FM 107 FM

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। अमीन कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो सामने किराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है कि उनके लिए हम रहमत और मग़फ़रत की दुआ करते रहें, सेहत व आफ़ियत की दुआ करें, और मग़फ़रत के हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी सारे ऐसी दुआएं आई हैं क़ुरान में जहां मुख्तलिफ क़िस्सों में मुख्तलिफ तरीक़े से वालिदैन के लिए बिलख़ुसूस दुआ का ज़िक्र है। तो सामने किराम, इस दुआ का जो तरबियती पहलू है, इस पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कुरान ने इंसान को उसकी तफूलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था, वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो यहाँ हर एक के लिए बचपन की याद दहानी है ताकि हम अपने बड़ों के साथ सही मामला करें। जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए, उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए, तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है, ख़ुसूसन उनके बुढ़ापे के ज़माने में इसकी अहमियत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, हुस्न सलूक करना, तो ये दुआ हमें कई कीमती सबक देते हैं। इसमें वालिदैन की खिदमत की बात आई है, कुरान ने बराह रास्त दुआ के ज़रिए उनकी अजमत को उजागर किया। इसी तरह औलाद के फ़र्ज़ के हवाले से भी यहाँ बताया गया कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दी, ऐसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। इसी तरह रहमत की दुआ, ये सबसे बड़ी खिदमत है। वालिदैन के हुकूक सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद भी उनके लिए दुआ करना और ये उनका हक है, लाजमी तौर पर हम उनके लिए दुआ करें, और रहमत की दुआ ये तो सबसे बड़ी खिदमत हम इसे कह सकते हैं। मज़ीद इस दुआ में आजिज़ी और शुक्रगुज़ारी का एक पैगाम है, चूँकि ये दुआ इंसान के दिल में वालिदैन की क़ुरबानियों को याद दिलाकर शुक्र और आजिज़ी का जो जज्बा इसे पैदा करती है, مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد

0: शाम के 4:01, यानी इट्स टाइम फॉर
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
0: क्या बात है हमारी देसी ऑडियंस. वेरी वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम. आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो द रिक्वेस्ट शो. तो जनाब क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, कैसा गुजरा अब तक का आपका दिन. हाँ, सारी खोज खबर मुझे चाहिए है. सो 666-22-107 इज आर नंबर, इसके जरिए हमारी बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है. वैसे जनाब आज ना बड़ी धक धक वाइब्स है हमारे शो पर. क्यों? क्योंकि आज हमारे द रिक्वेस्ट शो की टाइम मशीन ना हमें उस जगह पे ले जाने वाली है जहां हमें बड़ा अच्छा लगता है. यस, तो आज वेंसडे है और हम 2026 के ट्रेंडी चार्ट्स मतलब सुनते हैं, उसे छोड़ेंगे नहीं, बट आज के लिए थोड़ा सा उनको टाटा बाय बाय करेंगे क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं खांज की स्वैग में, रहमान की रूहानी मेलोडीज में एंड शंकर एहसान लॉय की हाई एनर्जी बीट्स में. हाँ, तो क्या होने वाला है आज, देखो जंग होने वाली है हमारे सारे लिसनर्स के बीच की 90s के गाने बजेंगे या 2000s के. तो थीम तो यही होने वाली है बॉस. फिर चाहे आप वॉकमैन के साथ बचपन आपने गुजारा हो या वो कहते हैं ना पहले आईपॉड जो आते थे उसके टाइम पर आप काफ़ी बड़े हुए हैं एंड यू रियली लव्ड इट, और फिर ये फिल्में जैसे DDLJ है या फिर कभी खुशी कभी गम है, रंगीला है, रॉक स्टार है, उफ. अगर हम 90s से 2000 के सफ़र की बात करें तो फिल्में भी उमदा थी और गाने तो बस ऐसे थे कि जब भी कोई भी गाना आप प्ले कर लो आपका दिल धड़क ही जाता है. तो जनाब आज द रिक्वेस्ट शो पर 90s एंड 2000s के हिट गानों की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. वो गाने जो आपको किसी ना किसी खास चीज़ की याद दिलाते हैं, वो गाने जो हर चीज़ पहली बार जो आपने लाइफ में की थी और सुनकर आपको वो मोमेंट्स याद आते हैं. यस, आप अपनी छोटी छोटी स्टोरीज भी हमसे शेयर कर सकते हैं विद द सॉन्ग डेडिकेशन. किसी को खास को अगर आपको ये गाना सुनाना है देन ऑल्सो आप हमें मैसेज करें 666-22-107 पर, 666-22-107 पर. और ये जब म्यूजिकल पीस हम सुनते हैं ना, स्पेशली इस तबले का, तो हमें याद आ जाता है कि ये गाना कौन सा है. एक टाइम पर हर एक पार्टी की ये एंथम था, इट्स द टाइम टू डिस्को, कल हो ना हो फिल्म का बेहतरीन सा साउंड ट्रैक. ये हमारे शो की पहली डेडिकेशन है जो आपके नाम है. तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: तो यस माय देसी ऑडियंस, कैसा लगा आपको हमारे द रिक्वेस्ट शो का पहला गाना? इट्स द टाइम टू डिस्को। वेलकम वेलकम वेलकम, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता एंड आई कैन सी ऑन माय व्हाट्सएप स्क्रीन, बाप रे मतलब एक से बढ़कर एक मैसेजेस की रिक्वेस्ट यू बज हो रही है जूम जूम जूम करके। वेल, कौन सा गाना आज प्ले होने वाला है ये तो चूज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको अपनी रिक्वेस्ट जरूर हम तक पहुंचानी है 666-22-107 पर, या चाहे तो आप हमें फोन में मिला सकते हैं 4434377 पर और बता सकते हैं कि देखो अमिता ये वाला जो गाना है ना 90s का या 2000 के एरा का, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, क्यों है वो आप बता सकते हो, या किसी खास को डेडिकेट करना है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वेल, अब हम जो गाना प्ले करने वाले हैं दैट इज साधना सरगम एंड उदित नारायण की आवाज़ में, ये वो गाना है जो आई शुड से इट्स अ लव एंथम, और हमें इसकी रिक्वेस्ट आई है, शैलेश ने कहा है कि अमिता ये गाना प्लीज़ आप प्ले कर दो क्योंकि ये मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाता है। क्यों? कहते हैं कि हर एक परफॉर्मेंस में ना शुरुआती तौर पर हमारी टीचर हमसे इसी गाने में परफॉर्म कराती थी। वेल, गाना ही ऐसा है, चाहे फिर आप इसे गाएं या गुनगुनाएं या फिर इस पर परफॉर्मेंस दें, ये गाना जब भी प्ले होता है तो दिल की बीट्स एकदम ज़ोरों से बढ़ जाती है कि नहीं? और दूसरा गाना उफ़, सोनू निगम एंड अलका याग्निक की आवाज का ग्रेट कॉम्बिनेशन है भाई।
2: देखा तुमको जब से,
1: वेल गेस तो कर लिया होगा आपने,
2: देखा तुमको
1: कौन से गाना है ये, फुल कॉम्प्लीमेंटिंग सॉन्ग है। हाँ बॉस,
2: तुमसे कोई अच्छा।
1: तो मोहम्मद ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है अपने दोस्त अनवर के लिए और कहते हैं कि अमिता ये गाना तो प्ले कर ही दो क्योंकि हमारा कॉलेज का फेवरेट सॉन्ग है। सो ऑल राइट, द रिक्वेस्ट शो पर एक से बढ़कर एक रिक्वेस्ट आना शुरू हो चुकी है। आप क्या कर रहे हैं, आप भी रिक्वेस्ट करो ना। सो 666-22-107

7666221107 is our number. बेशक अपनी वन लाइन स्टोरीज आप हमसे शेयर कर सकते हैं विथ योर सॉन्ग डेडिकेशन. और आज की थीम है भाई 90s and 2000s के मेलोडियस ट्रैक्स आपकी राहों में.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबीइंग की।
4: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी

0: लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से डीसी।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से डीसी।
2: Yes, and now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। शो का नाम है द रिक्वेस्ट शो, जो कि अपना आपका यूं कहें तो पर्सनल म्यूजिकल शो है। और आपकी प्लेलिस्ट जब यहाँ बजती है और आप में से कई लोग सेम प्लेलिस्ट पसंद करते हैं, यू रियली वांट टू लिसन कि भाई ये गाने हमें फुल वॉल्यूम पे सुनने का मौका मिल जाए, कितना अच्छा लगता है ना। वैसे जितना अच्छा आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि आपके पसंद के गाने आपकी स्टोरीज के साथ हम यहाँ प्ले करें। तो आज की थीम क्या भाई, आज है 90s एंड 2000s। तो देखते हैं आज कितने 90s के गाने बजते हैं और कितने 2000 के यानी कि 2000s के। भला भी अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम रुख करते हैं, बड़ी हॉन्टेड सी रिक्वेस्ट लग रही है ये। आफताब यासीन एंड मोहम्मद यूसुफ खान की चॉइस है ये, कौन सा गाना है? ओहो, ये धुन सुन के तो वो ऊटी की वादियां, रास फिल्म का हॉन्टेड नजारा, वो सब याद आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, आपके प्यार में इज द सॉन्ग जो कि मैं आपको सुनाऊंगी। और उसके बाद ये जो अगली रिक्वेस्ट आई है जनाब, ये तो वाकई में थोड़ा सा ना फुट टैपिंग नंबर है, और आप जहां कहीं भी होंगे अपने आप ही थोड़ा सा तो झूम जाएंगे। ये म्यूजिक सुन के बताओ समझ में आ रहा है कौन सा गाना है, सोचो सोचो। वेल, शैलेश एंड आसिफ की रिक्वेस्ट है और मोहरा फिल्म का ये गाना है। एंड लिटरली इस फिल्म में ना पहले दिव्या भारती एंड ऐश्वर्या राय को कंसिडर किया जा रहा था, बट देन बाजी मारी किसने, रवीना टंडन ने। सुनाऊंगी ये दोनों गाने पूरे आपको सुनने का मौका मिलेगा, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ। एक भी गाना ऐसा नहीं होगा जो ट्यून आउट आपको करने देगा, बल्कि आप फुल वॉल्यूम पर एंटायर प्लेलिस्ट को एंजॉय करने वाले हैं। और मैं कहूंगी कि आपकी अगर दिल की कोई ख्वाहिश है, कोई गाना है, कोई स्टोरी है जो 90s और 2000s के ज़माने की है, तो बता दो ना 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने फेवरेट डेडिकेशंस हम तक पहुंचाओ। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: क्या बात है जनाब, मतलब द रिक्वेस्ट शो की बिल्कुल वाइब ही बदल दिए आपने। वेलकम है आप सभी का, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और क्या कमाल के गाने रिक्वेस्ट कर रहे हो यार, मतलब कहाँ कहाँ दिमाग कहाँ जा रहा है। हाँ, आई सो लव्ड इट। मतलब मुझे अभी तक, मैंने जब ये सारे गाने प्ले किए, आई स्वेयर ऑन कि अभी मैं यहाँ स्टूडियो में जो वॉल्यूम का बटन है ना, पूरा फुल पे चला के गाने एंजॉय कर रही हूँ। आई एम सो सो हैप्पी राइट नाउ, और मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि आपकी चॉइसेस, उफ, आई सो लव इट। वेल, 90s और 2000s की थीम है, और मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स ना बिल्कुल सही बैलेंस बना के चल रहे हैं। और अभी जो मुझे अगली रिक्वेस्ट आई है, दैट इज़ मोहम्मद अशफाक की रिक्वेस्ट है, और वो सुनना चाहते हैं आइए 90s के ज़माने की ना ब्लॉकबस्टर फिल्म है साजन, उसका गाना है। अंतु शायर है इस पर्टिकुलर गाने में। जब स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा होता है ना, तो माधुरी दीक्षित, मतलब स्पेशली वो जो धुआं नहीं छोड़ते हैं, हाँ, इतनी आंखों में उनके आंसू आ रहे थे, बट समहाउ शी मैनेज्ड एंड परफॉर्म्ड सो ब्यूटीफुली। सो यस, तू शायर है ये गाना, बस कुछ ही देर में आएगा मोहम्मद अशफाक की रिक्वेस्ट पर। और जिन्हें भी साजन फिल्म बहुत पसंद आई है, भाई देखो वॉल्यूम बढ़ा लेना। और अगला गाना कसूर फिल्म का है, काफी रोमांटिक है, और इसकी रिक्वेस्ट की है अब्दुल कादर साहब ने। आपने बताया नहीं किसकी याद आ रही है आपको। Well, आपके गानों की स्टोरीज डेफिनेटली आप हमसे शेयर कर सकते हैं, एंड जिस तरह से आप गाने डेडिकेट कर रहे हैं, आई फील दैट हर एक गाने के पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी छुपी है। Well, ये फिल्म जो कसूर है, इसमें पहले सुष्मिता सेन को साइन किया जा रहा था, बट देन शी ऑप्टेड आउट, एंड उसके बाद लीजा रे की एंट्री हुई। वाओ, क्या गॉर्जियस लगी है। तो यस, ये दोनों ही गाने तू शायर है और कितनी बेचैन होकर, ये दोनों गाने आपके डेडिकेशन द रिक्वेस्ट शो पर हम आगे प्ले करने वाले हैं। और हमारे लिसनर्स से मैं कहूंगी, भाई जो भी 90s और 2000s के बहुत बड़े वाले फैन है ना, सो 666-22107 इज आर नंबर, उस पर मैसेज करें अपनी रिक्वेस्टेड गानों की। स्टे ट्यून FM 107 पर दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: यस नाउ वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। वेल द रिक्वेस्ट शो पर भाई सच में मजा आ गया, क्या गाने आप चुन के लगा रहे हैं। मतलब ये ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस मेरा दिल हर मोमेंट जो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ ना, दिल खुश होते जा रहा है, बाग बाग हो रहा है। वेल अगली रिक्वेस्ट है जुबैद, इनका नाम बड़ा यूनिक सा है, जुबैद हुसैन की, और कह रहे हैं कि अमिता ये गाना प्लीज प्ले कर दो। वैसे इसी गाने की रिक्वेस्ट हुसैन साहब ने, अख्तर साहब ने भी की है, एंड द सॉन्ग इज, ये गिटार का पीस सुनते ही हमें कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज आ जाती है। वाह क्या बात है। सिर्फ तुम फिल्म का ये गाना, एंड स्पेशली वो वक्त जब लेटर्स लिखे जाते थे, यस अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि आपकी राहों में आएगा आपके रिक्वेस्ट पर। और अगला गाना तो उफ, आई शुड से कि 90s के जमाने का दिल है भाई, लता मंगेशकर जी और उदित नारायण की आवाज़ का ग्रेट कॉम्बिनेशन, दिल तो पागल है फिल्म का टाइटल ट्रैक। एंड जब ये गाना प्ले होता है तो कहते ना कि जिंदगी की हर वो पहली खूबसूरत चीज़ हमें याद आ जाती है कि नहीं। हाँ तो ये दोनों ही गाने पूरे पूरे आगे प्ले होने वाले हैं, और उसके बाद क्विज टाइम आएगा जहाँ पर एक गाना मैं बीच से आपके लिए प्ले करूँगी और उसको आपको पहचानना है, और अगर आप पहचानने में हुए कामयाब तो वो गाना पूरा पूरा आप अर्न कर लेंगे, यानी कि वो मैं डेडिकेट करूंगी आपको। लेकिन अभी के लिए 90s के दौर के लेटर्स की खुशबू को हम लेते हैं इस गाने के जरिए। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: सो यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वेलकम वेलकम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और वक्त ऐसे भागे जा रहा है कि मुझे लग रहा है न जाने कितने गाने मैं आपके लिए इस वक्त प्ले कर दूं, लेकिन अभी ये टाइम है
0: क्विज टाइम।
1: हाँ, तो क्विज टाइम पे क्या करेंगे, एक गाना बीच से आपके लिए हम प्ले करेंगे, उस गाने को

आपको पहचानना है, मतलब गाने का नाम क्या है वो आपको पहचान कर लिख कर हमें बताना है आपके नाम के साथ 6622107 पर 6622107 एंड देन ये गाना मैं पूरा पूरा प्ले करूंगी. अगर आपने सही पहचाना हो जाएगा ये गाना सिर्फ आपके नाम. कमॉन सोचिए जल्दी जल्दी बताइए ये गाना कौन सा है 6622107 पर अपने नाम के साथ. एंड अभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी रिक्वेस्ट आ गई है भाई. ये रिक्वेस्ट है वजाहत खान की, कहते हैं कि ये गाना प्लीज प्ले कर दो अमिता, मुझे मतलब बहुत जोर से सुनना है. अच्छा तो ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपने रेडियो सेट्स का, एंजॉय द सॉन्ग सोनू निगम की आवाज में. एंड लिटरली इस गाने में आप ना सोनू निगम की आवाज में इतने सारे वेरिएशन सुनेंगे, क्योंकि वो ना स्टूडियो में खड़े होकर सिंपली नहीं गा रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, कूद रहे थे. एंड दिस इज हाउ वी गॉट दिस सॉन्ग, ये दिल दीवाना. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: एग्जैक्टली exactly. दिल दीवाना नहीं होगा तो जिंदगी में वो कहते हैं ना जिंदगी जीने का मजा कैसे आएगा.
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
0: Yes, now, welcome once again, FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं हम अपने शो द रिक्वेस्ट शो के. और क्विज टाइम पर मैंने एक गाना आपको बीच से सुनाया था. और कहा था कि जल्दी से गैस करके बताओ आखिर ये गाना कौन सा है. तो हमारे लिसनर्स ने सही गैस कर लिया है. जिन्होंने सबसे पहले हमें सही सही बताया कि इस गाने का नाम क्या है वो है मुदस्सिर, सैयद, आयशा, आसिफ एंड देन कौन है हमारे साथ मोहम्मद है. नाम देखो लिखा करो. शहजादा सलीम ने हमें सही जवाब दिया है. सैफ ने हमें सही जवाब दिया है. इन शख्स का नाम हमारे सामने नहीं है. हैदर अली ने हमें सही जवाब दिया है. रिजवान ने हमें सही जवाब दिया है. तो भाई ज़ोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए. क्या बात है, क्विज टाइम को आपने जीता. और भी अभी हमारे लिसनर्स नॉन स्टॉप लिखते जा रहे हैं कि अमिता ये वाला गाना है. तो चलो ठीक है, ये वाला गाना कौन सा है. ये है जब वी मेट फिल्म का मौजा ही मौजा, जो कि आपकी ए फॉर अमिता आपके नाम डेडिकेट करके जा रही है. और हाँ, कल फिर से शाम 4 बजे द रिक्वेस्ट शो पर अपनी रिक्वेस्ट लेकर आ जाना. कल की थीम क्या होगी वो तो कल ही पता चलेगी. बट अभी के लिए क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए FM 107 के. ठीक है, और जाते जाते ये कहना तो बनता है हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. देखो ये गाना एकदम आराम से नहीं सुन सकते, तो रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ. एंजॉय करो मिका सिंह को. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ही फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश। तो आइए मिलकर बात करते हैं उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा हैं। एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिस्कशन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता। सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया ओनली ऑन FM 107। फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूँ नाजिया FM 107 से and welcome to this show called Family Matters. Family Matters. दोस्तों, आज के इस शो का ये पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं घर में बच्चों के साथ आपके बीच के उस ट्रस्ट की। आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को हर बात बता देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स और अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं। कुछ बच्चे गलती करके फौरन कन्फेस कर लेते हैं, वहीं कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं और बात घुमाते हैं। इस फर्क की बुनियाद अक्सर सिर्फ और सिर्फ एक चीज से होती है और वो है ट्रस्ट। जी हाँ, ट्रस्ट कहने को सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन यह रिश्तों को मजबूत बनाने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका और फाउंडेशन है। अगर ट्रस्ट है तो कम्युनिकेशन भी है, अगर ट्रस्ट है तो रिस्पेक्ट भी है, अगर ट्रस्ट है तो इमोशनल कनेक्शन भी है, और अगर ट्रस्ट नहीं तो शायद रिश्तों में डिस्टेंस आ जाता है। मेन ट्रस्ट को अगर हम समझें तो ये टू वे ब्रिज है, एक पुल जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है। और जब ये ब्रिज मजबूत हो तो दोनों तरफ से लोग आराम से एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब ये ब्रिज कमजोर हो जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस पैदा होने लगते हैं। आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रस्ट की, क्योंकि ट्रस्ट हर रिश्ते की बुनियाद है और फैमिली के स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तो सख्त बुनियाद अगर किसी चीज पर रखी जा सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट। साइकोलॉजी ट्रस्ट के बारे में क्या कहती है और हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह से ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये आज के इस एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम और आप ये जान लेते हैं कि ट्रस्ट है क्या। अक्सर लोग समझते हैं कि ट्रस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सच बोलना या सच मान लेना है, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रस्ट उस फीलिंग का नाम है जहां इंसान खुद को इमोशनली सेफ महसूस करता है। बच्चे के लिए ट्रस्ट का मतलब है मैं अपनी मम्मा या अपने अब्बा को सब कुछ बता सकता हूँ, मैं गलती करूँ तो वो मेरी बात सुने, वो मुझे जज करने से पहले मुझे समझें, चाहे वो मुझसे नाराज हो लेकिन फिर भी मुझे प्यार करते हैं। ट्रस्ट एक दिन में बिल्ड नहीं होता, ये रोज के छोटे छोटे मोमेंट से बनता है। एक प्रॉमिस पूरा करना, बच्चे की बात गौर से सुनना, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना, उस पर यकीन करना, ये सब ट्रस्ट के ब्लॉक्स हैं जो मिलकर एक मजबूत ब्रिज बनाते हैं। देखिए, मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक ने कहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो और बच्चों का ब्रेन तब जाके अच्छे से डेवलप होता है जब वो अपने आप को एक सेफ एनवायरनमेंट में महसूस करते हैं। एरिक ने बहुत सारी ह्यूमन डेवलपमेंट्स पे रिसर्च पेश की है। आपके मुताबिक बच्चे की जिंदगी का पहला लेसन ट्रस्ट होना चाहिए। जब एक बेबी रोता है और उसकी माँ या केयर गिवर उसको कंफर्ट करता है, उसको फीड करता है या प्यार से होल्ड करता है, तो बेबी के दिमाग एक इम्पॉर्टेंट मैसेज रिसीव करता है, ये दुनिया सेफ है। और फिर धीरे धीरे एक मैसेज डेवलप होता है, लोग मेरी केयर करते हैं। इसी तरह ट्रस्ट की फाउंडेशन बचपन से ही बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बचपन को परफेक्ट पेरेंटिंग चाहिए। परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगी, बट एक अच्छी पेरेंटिंग चाहिए उन्हें, बल्कि यूं कहें एक कंसिस्टेंट पेरेंटिंग चाहिए। पेरेंटिंग जो हर वक्त परफेक्ट ना भी हो लेकिन 100% रिलायबल हो। जो कभी बच्चा गलती करे तो आप उसकी गलती को नहीं, उसको समझें। देखिए, हर पेरेंट वैसे तो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात सुने, लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चा डर से बात मान रहा है या वाकई ट्रस्ट

उसकी वजह से बात मान रहा है। ज्यादातर घरों में देखा जाता है कि हम बच्चों को बात मनवाते हैं डरा के धमका के। दोनों में बड़ा फर्क है। डर बड़ा ही टेम्परेरी है जबकि ट्रस्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट के डर से बात मानता है तो शायद वो आपके सामने ठीक बिहेव करे लेकिन बाहर पता नहीं कैसा बिहेव करे। लेकिन जैसे ही आपसे दूर होगा वो अपनी मर्जी करेगा। लेकिन अगर रिश्ता ट्रस्ट पर बना हो तो बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी गाइडेंस को वैल्यू देगा। वो बात इसलिए सुनेगा क्योंकि वो यकीन होता है उसका कि आप उसके लिए बेस्ट चाहते हैं और ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ट्रस्ट एक टू वे ब्रिज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई पेरेंट्स हमने देखा है कहते हैं जब मेरा बच्चा ट्रस्ट डिजर्व करेगा तब मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। बड़ी अजीब सी लाइन है लेकिन असल में ट्रस्ट ऐसा काम नहीं करता। ट्रस्ट हमेशा टू वे होता है। अगर हम बच्चे पर छोटी छोटी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे तो वो भी हम पर इमोशनल ट्रस्ट कैसे करेगा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जूस गिरा देता है, पेरेंट्स फौरन कहते हैं तुमने फिर जानबूझकर ये कर दिया। बच्चा सोचता है मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता, मैं कहूंगा कि मैंने जानबूझ के नहीं किया कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ पेरेंट्स ये कहें ओह गलती से तुमसे ये हो गया चलो आओ मिलकर क्लीन करते हैं, तो पता है बच्चा कैसा महसूस करता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे जज नहीं करते, वो मुझे समझते हैं और ये फीलिंग उससे ट्रस्ट डेवलप करवाती है। सोचिए एक 8 साल का बच्चा गलती से घर में कोई फ्लावर पॉट है तोड़ देता है, उसके दिल में डर होता है कि उसे तो डांट पड़ेगी। अब पेरेंट शायद चिल्लाना शुरू कर दे, तुमसे कभी कोई काम ठीक से नहीं होता, तुम हमेशा ये सब करते हो। तो फोकस उस टूटे हुए फ्लावर पॉट से हटकर फियर पर आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स कहें पहले ये बताओ तुम ठीक हो, तुम्हें तो चोट नहीं लगी, तो बच्चा इमोशनल सेफ्टी और सेफ एनवायरमेंट महसूस करता है और उसे खुद एहसास होता है कि गलती के बाद भी कोई ऐसा है जो उसका हाथ थाम रहा है। देखिए फ्लावर पॉट की रिप्लेसमेंट तो हो सकती है लेकिन हम फ्यूचर में ज्यादा केयरफुल इस बात के लिए रहें कि हमारा बच्चा उसका जो छोटा सा दिल है वो ना टूटे, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट वाकई मुश्किल है। दोनों सिचुएशंस में एक मैसेज जो है वो बच्चे तक पहुंचता है, ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट कनेक्शन में और कई बार रिस्पेक्ट में और कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ट्रस्ट जो है वो एक बैंक अकाउंट है। मैं ट्रस्ट को अक्सर ये लाइन कह के जो है वो कंपेयर करती हूँ, हर पॉजिटिव इंटरेक्शन एक डिपॉजिट है। जब आप प्रॉमिस पूरा करते हैं, बच्चे की बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो ट्रस्ट अकाउंट में डिपॉजिट होता है। जब आप प्रॉमिस तोड़ देते हैं, पब्लिकली एम्बैरेस करते हैं, हर बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो विड्रॉल होता है। जी हाँ, परफेक्ट पेरेंट वैसे तो कोई भी नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सक्सेसफुल रिलेशनशिप में डिपॉजिट्स विड्रॉल से ज्यादा होते हैं। वहीं पर चलिए अब बात करते हैं कि इस ट्रस्ट को बच्चों के बीच या फैमिली के बीच कैसे डेवलप किया जाए। और सबसे आसान तरीके जो हैं वो 5 में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला तरीका है सुनना सीखें। कई दफा बच्चों को एडवाइस नहीं सिर्फ लिसनिंग चाहिए होती है। अगर बच्चा कहे आज स्कूल में किसी ने मेरे साथ मुझे परेशान किया या गेम नहीं खेला, तो फौरन सलूशन देने की बजाय कहे या सुने कि अच्छा मुझे बताओ फिर क्या हुआ। जब बच्चे को ये लगता है कि माँ बाप ध्यान से गौर से उसकी बात सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए बच्चे के अंदर नेचुरली ट्रस्ट डेवलप होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रोमिसेस पूरे करना। बच्चे प्रॉमिसेस बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर आपने कहा कि इस वीकेंड पे हम पार्क जाएंगे तुम ये काम कर लो, तो फिर अपने प्रॉमिस को फुलफिल कीजिए। कोशिश करें कि जरूर जाएं, क्योंकि आपने शायद आई गई कर दी बात, लेकिन बच्चे के दिल में ये बात बैठ जाती है कि उसके पेरेंट्स अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं करते। इससे ट्रस्ट डगमगाता है। छोटे छोटे ब्रोकन प्रॉमिसेस ट्रस्ट को अफेक्ट करते हैं। बच्चे देखते हैं कि आप जो कहते हैं वो नहीं करते, इसलिए कोशिश करें कि जो कहें वो पूरा करें।

0: या तो फिर कहे नहीं। एक और बड़ी चीज जो पेरेंट्स जो है अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बीइंग अ पेरेंट हमारे जहन में ये होता है कि हम तो बड़े हैं, अपनी गलती मानेंगे तो बच्चे के सामने छोटे साबित नहीं हो जाएंगे। नहीं, कई बार पेरेंट्स समझते हैं कि माफी मांगने से उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपने गुस्से में कुछ ज्यादा कह दिया है तो कहिए, जाइए और कहिए कि सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इससे बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी दोनों सीखता है और ट्रस्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं बच्चे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दे, ये चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बच्चा चाहता है कि उसकी फीलिंग्स को समझा जाए, वैलिडेट किया जाए। चाहे बच्चा गुस्सा हो, उदास हो, डिसअपॉइंटेड हो या खुश हो, आप उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। जैसे, मुझे समझ आ रहा है कि तुम अपसेट हो, मैं देख सकती हूँ कि तुम दुखी हो। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्रस्ट को बड़ा मजबूत कर देते हैं। बच्चा महसूस करता है कि वो बिना कहे भी समझा जा रहा है। उसके पेरेंट्स को हर बात उसे कहने की जरूरत नहीं है, माँ बाप उसकी परेशानी, दुख तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। एक और चीज, पांचवी और इम्पोर्टेंट, आप उसके साथ वक्त गुजारे। सिर्फ चीजें दे देना, उसकी ख्वाहिश पूरी कर देना, ये गुड पेरेंटिंग की निशानी नहीं है। उसके साथ वक्त गुजारना, जबकि आज की लाइफ हम सब की बहुत ज्यादा बिजी लाइफ है। आज के दौर में बच्चों को प्यार का मतलब होता है गिफ्ट्स दे दो, लेकिन उनके प्यार का मतलब है अटेंशन दो। 10 मिनट की डिस्ट्रैक्शन, फ्री कन्वर्सेशन ट्रस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ट्रस्ट को कुछ चीजें लाइफ में डैमेज भी करती हैं। कुछ चीजें हैं जो ट्रस्ट को पूरी तरह से मुतासर करती हैं, जिनमें आपके ब्रोकन प्रॉमिसेस हैं, आपका लगातार बच्चे को क्रिटिसाइज करना है, आपका लगातार बच्चे को पब्लिकली एम्बैरस करना है, बच्चे की बात कंप्लीट किए बगैर अपनी बात शुरू कर देना, बच्चों को बच्चों के साथ कंपेयर करना, या हर वक्त आपका जजिंग एटीट्यूड। जब बच्चा महसूस करता है कि उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, तो वो धीरे धीरे अपने इमोशंस अंदर रखना शुरू करता है, आपसे बात ही नहीं शेयर करता। यहाँ एक और पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, वो है फियर और रिस्पेक्ट। इसमें बड़ा फर्क है, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई लोग फियर को रिस्पेक्ट समझ लेते हैं, डर के मारे मैं ऐसा कर रही हूँ। ये एक्चुअल में रिस्पेक्ट नहीं है। फियर और रिस्पेक्ट दो अलग चीजें हैं। फियर कहता है मैं पनिशमेंट से बचना चाहती हूँ, और रिस्पेक्ट कहती है मैं इस इंसान को वैल्यू करती हूँ। हमारे गोल ये नहीं होने चाहिए कि बच्चा हमसे डरे, हमारा गोल ये होना चाहिए कि बच्चा हम पर ट्रस्ट करे फिर रिस्पेक्ट करे। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बच्चा स्कूल की नोटबुक खो देता है, वो बहुत परेशान होता है। उसे लगता है कि अब तो स्कूल में भी डांट पड़ेगी और घर जाकर डबल डांट पड़ेगी, लेकिन किसी तरह से हिम्मत जुटा के वो अपने फादर को ये बात बता देता है। अब फादर थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, बेटा नोटबुक खो जाना प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने सच बोला। उस वक्त फादर ने सिर्फ नोटबुक का मसला सॉल्व नहीं किया, उन्होंने ऑनेस्टी को रिवॉर्ड दिया, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया, और ये लेसन उस बच्चे के साथ जिंदगी भर रहता है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आती है कि ट्रस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे बात समझ में आती है कि गलती जो हुई सो हुई, ऑनेस्टी ज्यादा अप्रिशिएट मेरे घर में की जाती है। एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे छोटे एक्शन से बिल्ड होता है। एक मुस्कुराहट से, एक प्रॉमिस पूरा करने से, एक सिंसियर अपॉलोजी से, एक अच्छा लिसनर बनके, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने बच्चे को ये महसूस करवा के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ गलती पर भी। जब बच्चा हम पर ट्रस्ट करता है तो वो सिर्फ हमारी बात नहीं सुनता, बल्कि अपनी जिंदगी के सफर में भी हमें अपना गाइड मानता है। और शायद पेरेंटिंग की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। देखिए, पेरेंटिंग जो है आज के दौर में और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। आज के जमाने में पेरेंट्स बच्चों को बेस्ट स्कूल देते हैं, बेस्ट कपड़े देते हैं, बेस्ट एक्टिविटीज देते हैं, लेकिन एक चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है इमोशनल सिक्योरिटी। और इमोशनल सिक्योरिटी ये शायद ट्रस्ट से आती है। एक बच्चा जब दुनिया में आता है उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो हर चीज अपने पेरेंट्स और अपने केयर गिवर्स के थ्रू सीखता है। वो देख रहा होता है क्या ये दुनिया सेफ है, क्या मेरी बात सुनी जाती है, क्या मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, और इन सवालों के जवाब ट्रस्ट क्रिएट करता है। जब बच्चा स्कूल में एक प्रॉब्लम फेस करता है, किसी फ्रेंड से झगड़ा होता है, बुलिंग होती है, एंग्जाइटी होती है या कोई और आइडेंटिटी इश्यूज आते हैं, तो सबसे पहली जगह जहाँ से उसे सपोर्ट मिलना चाहिए वो होना चाहिए घर। लेकिन अगर घर वालों के पास वक्त नहीं है या घर वाले उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते तो वो अकेला महसूस करता है और कई बार यह अकेलापन घर कर जाता है और फिर शायद बच्चे की जिस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हर बिहेवियर के पीछे एक मैसेज है। साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे अक्सर अपने बिहेवियर्स के जरिए ही कम्युनिकेट करते हैं। कभी कभी जो बच्चा गुस्सा कर रहा है वो असल में गुस्से में नहीं है, वो हर्ट होता है। जो बच्चा जिद कर रहा है असल में वो जिद्दी नहीं है, उसे अटेंशन चाहिए होता है। जो बच्चा चुप हो गया है वो वाकई में चुप नहीं है, शायद वो डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा है। इसीलिए ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब है बच्चे की बात सुनना, बाकी उसकी बात की गहराई को समझना। मिसाल के तौर पे आपका बेटा घर आता है, बैग फेंक कर रूम में चला जाता है, आप पूछ सकती हैं कि बेटे कोई बात हुई है, ना कि ये कोई तरीका है बैग फेंकने का। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो कई बार हर्टिंग होते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट और अटैचमेंट ये दोनों चलते हैं हैंड इन हैंड। साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, शायद आपने सुन रखी हो, सिक्योर अटैचमेंट, यानी वो इमोशनल बॉन्ड जो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान डेवलप होता है। सिक्योर अटैचमेंट का मतलब है मुझे पता है कि जब मुझे जरूरत होगी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होंगे। ये अटैचमेंट बच्चों को जिंदगी भर बेनिफिट देता है। रिसर्चर्स हैं जो कहते हैं कि बच्चों का अटैचमेंट सिक्योर होता है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, वो हेल्दी फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, उनमें एंजाइटी कम होती है, वो प्रॉब्लम्स को बेहतर हैंडल करते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा डेवलप होती है। ये ट्रस्ट सिर्फ आज का इशू नहीं, ये फ्यूचर पर्सनैलिटी का हिस्सा भी है। एक पेरेंटिंग का गोल्डन रूल है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, यानी पहले रिलेशनशिप फिर लेसन। अक्सर हम इसका उल्टा करते हैं, जैसे ही बच्चे कोई गलती करते हैं हम फौरन करेक्शन मोड में चले जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब बच्चा इमोशनली अपसेट हो तो उस वक्त दिमाग लर्निंग मोड में नहीं होता, उस वक्त उसे कनेक्शन चाहिए। अगर उस वक्त कनेक्शन बना लिया तो आप कामयाब हैं, और नहीं बनाया तो मसला है। अगर एक बच्चा टेस्ट में फेल हो गया, उस वक्त अगर पेरेंट कहे कि मैं तुमसे मैंने कहा था ज्यादा पढ़ो और तुमने नहीं पढ़ा, तो बच्चा अपना कनेक्शन टूटा महसूस करता है। लेकिन अगर पेरेंट्स कहें कि मुझे पता है कि तुमने मेहनत बहुत की, चलो अगली बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं, इससे बच्चा बेहतर परफॉर्म करता है। वही ट्रस्ट और ऑनेस्टी का भी रिश्ता है। कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा झूठ बोलता है, लेकिन सवाल ये है कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है? हर बच्चा बदतमीजी या बैड कैरेक्टर की निशानी तो नहीं है? कभी कभी झूठ फियर की वजह से होता है। अगर बच्चा सोचता है कि सच बोलने से सिर्फ डांट मिलेगी, इंसल्ट होगी, पनिशमेंट होगी, तो वो खुद ब खुद झूठ की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अगर सच बोलने पर उसे रिस्पेक्ट किया जाए, गाइडेंस मिले, उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया जाए, तो इससे बच्चा सच बोलता है, खास तौर पर डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी सच बोलने की हिम्मत रखता है। देखिए, टीनेजर्स में आजकल ट्रस्ट का सबसे ज्यादा मसला सामने आता है। जब बच्चा टीनेजर बनता है तो ट्रस्ट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। टीन ईयर्स में बच्चों की दुनिया बदल रही होती है, नए दोस्त, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी इशू। इस एज में बच्चे को पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इसी एज में पेरेंट्स और बच्चों के बीच सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी देखा जाता है। क्या वजह है इसकी? वैसे तो कई दफा पेरेंट्स कंट्रोल को ट्रस्ट समझ लेते हैं। हर वक्त चेक करना, हर वक्त शक करना, हर वक्त इंटरोगेट करना, और रिजल्ट बच्चा और ज्यादा सीक्रेटिव हो जाता है। हेल्दी पेरेंटिंग का बैलेंस ये है कि ट्रस्ट विद सम बाउंड्रीज, यानी मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गाइड भी हूँ। ये अप्रोच टीनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाती है। एक और चीज की बात करूंगी और वो है द मिरर इफेक्ट। बच्चे हमारी बातें कम और हमारा बिहेवियर ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा ट्रस्टवर्दी हो तो हमें पहले खुद ट्रस्टवर्दी बनना होगा। अगर हम सच बोलने की इम्पोर्टेंस बताते हैं लेकिन फोन पर किसी से झूठ कह रहे हैं तो बच्चा ये माइन्यूटली बहुत ही आराम से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं लेकिन घर में डिसरिस्पेक्ट से बात हो रही है तो बच्चा ये देख रहा है। चिल्ड्रन आर मिरर्स, वो वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो रोज देखते हैं। ट्रस्ट सिखाएं कम, दिखाएं ज्यादा। वहीं आजकल कई पेरेंट्स परफेक्शन के प्रेशर में हैं, परफेक्ट स्कूल, परफेक्ट ग्रेड, परफेक्ट एक्टिविटीज, परफेक्ट स्केड्यूल, लेकिन बच्चे परफेक्शन नहीं ढूंढते, वो इमोशनल सेफ्टी चाहते हैं। उन्हें ऐसे पेरेंट्स चाहिए जो उनकी बात समझने की कोशिश करें, जो उनकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दें, जो हर वक्त उन्हें जज ना करें, जो उनके फेलियर्स में भी साथ खड़े हों। जब बच्चा जानता है कि मैं फेल होऊंगा और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होंगे तो इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे उन पर भरोसा करें, अपनी बात शेयर करें, अपनी जिंदगी के मुश्किल लम्हे सब कुछ शेयर करें। लेकिन भरोसा ये एक दिन में पैदा नहीं होता, ये एक रिश्ता है जो मोहब्बत से, सच्चाई से, सब्र से और लगातार मेहनत से तैयार होता है। जब बच्चे अपने वालदैन पर भरोसा करते हैं तो उनकी जहनी सेहत बहुत अच्छी होती है, उनमें खुद एतमादी, आगे बढ़ने का हौसला, हिम्मत सब कुछ बढ़ जाता है। आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया है, पेयर्स का प्रेशर है और दूसरे रिसोर्सेज हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऐसे में पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट वाला रिश्ता अपने बच्चों के साथ बनाएं। अब इस ट्रस्ट को, भरोसे को क्यों बनाना बहुत ज़रूरी है, इस पर तो हमने बात की, लेकिन कैसे बनाया जाए इस पर भी बात करना ज़रूरी है। भरोसा सिर्फ इतना नहीं कि बच्चा अपने माँ बाप से अपनी बात मनवा ले, असल भरोसा ये है कि बच्चा ये महसूस करे कि मेरे वालदैन मुझे समझते हैं, मैं गलती करूं फिर भी वो मुझे सुनते हैं, मैं मेरी बात की अहमियत है, मेरा मजाक उन्हें परेशान नहीं करता, मेरी मोहब्बत बिना किसी शिकवे शिकायत की है। जब बच्चे इन फीलिंग्स के साथ बढ़ते हैं तो उनका रिश्ता पेरेंट्स के साथ और गहरा और मजबूत हो जाता है। अब वालदैन ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनके बच्चे उनके साथ वो रवैया अख्तियार करें जो वो चाहते हैं। अक्सर वालदैन बच्चों की पूरी बात सुने बगैर ही उन्हें मशवरा दे देते हैं। इससे बच्चा महसूस करता है कि उसकी बात की कदर नहीं हुई। और जब बच्चा कोई भी बात शेयर करे तो एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि आंखों में आंखें डालकर बात सुने, मोबाइल एक तरफ रख दें, बीच में बच्चे को टोके नहीं, बीच में कोई सवालात ना करें। सुनना मोहब्बत की सबसे बड़ी जुबान है। बच्चे वालदैन की हर बात को बहुत गहराई से देखते हैं। अगर आप कोई वादा करें और उसे पूरा ना करें तो ये ट्रस्ट को कमजोर कर देता है। अगर आप कहते हैं कि वीकेंड में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा और फिर आप नहीं खिलाते हैं तो इससे आपका भरोसा या बच्चे का आप पे भरोसा कम होगा। देखिए, गलती हम सब करते हैं, हर बच्चा गलती करता है। अगर बच्चा डर के मारे सच छुपाने लगे तो समझ लीजिए कि आपके बीच और बच्चे के बीच ट्रस्ट नहीं है। जब बच्चा गलती करे उससे को कंट्रोल करे, पूरी बात जाने, समझे, उसे समझाएं, मोहब्बत के साथ रहनुमाई दें। ये रवैया बच्चों को जो है वो ये सिखाता है कि पेरेंट्स उनके दुश्मन नहीं, उनके रहनुमा है। और एक चीज जिस पर मैंने बात की और मैं वापस से उसे दोहराना चाहूंगी वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से दी जानी चाहिए। हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि बच्चे तो छोटे हैं, इन्हें तो डांट दो, फटकार दो या कुछ भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, रिस्पेक्ट देने से बच्चा रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट की वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, आपसे मुखातिब हों, शुक्रिया कहें, प्लीज कहें, इन छोटी छोटी बातों से दिल में बड़ा घर बनता है और ऐसा घर जो काफी मजबूत होता है। कभी भी अपने बच्चों को किसी भी दूसरे के साथ कंपेयर ना कीजिए। हर बच्चा अपने आप में बहुत ही यूनिक है, उसकी अपनी सलाहियतें हैं जिसे आपको पहचानना है। उसे दूसरों से कंपेयर करने की बजाय उसकी तरक्की की या छोटे छोटे अचीवमेंट्स की तारीफ करें, सेलिब्रेट करें। बच्चों को खुद फैसला करने दें, हर छोटी बात बड़ी बात उसमें आप अपने फैसलों को उन पर थोपे नहीं। इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उन्हें आप चॉइसेस दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन फैसला आखिर में बच्चे ही करें। मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। आज के पेरेंट्स जो है बहुत ही रिलक्टेंट हो जाते हैं जब मोहब्बत का इजहार करने की बात आती है। मैं तो कहूंगी भर के इजहार करें, उन्हें गले लगाएं, तारीफ करें, उनकी हौसला अफजाई करते रहें। ये आपके अच्छे वर्ड्स बच्चे के दिल में उम्र भर के लिए यादें पैदा कर देता है। अपने घर में गलती माफ करने का कल्चर आम कीजिए। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, हम सब से गलतियां होती हैं, गलत फैसले हम करते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को माफ करने में हिचकिचाते हैं या किसी और को माफ करने में हिचकिचाते हैं तो ऐसे में आप ट्रस्ट बना नहीं पाएंगे, शायद खो देंगे। भरोसा मजबूत करने के लिए रोज कम अज कम 15 मिनट बच्चे के साथ वक्त गुजारें। चाहे आप कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट निकालना, बैठना, उससे बात करना एक बहुत ही लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है। हर रोज एक पॉजिटिव बात, उसकी मेहनत या अच्छी आदत की तारीफ, सवालात पूछें, आज का दिन कैसा रहा, आज तुमने क्या सीखा। बच्चे को सीक्रेट सेफ जोन बताएं, बताएं कि कौन सी बात उसे शेयर करनी है और कौन सी बात सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही शेयर करनी है। घर में एक जार रख दीजिए, जब बच्चा सच बोले या जिम्मेदारी का सबूत दे तो उसमें एक चिट डाल दें। महीने के आखिर में उसकी तारीफ करें। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक लड़के की कहानी, अमीन। अमीन 10 साल का बच्चा था, बहुत समझदार और बहुत ही ज्यादा हसमुख। उसके अब्बू जो थे वो एक बहुत ही मसरूफ फादर थे, वो रोज सुबह जल्दी काम पर जाते और देर रात घर आते। अमीन अक्सर चाहता था कि उसके फादर उसके साथ खेले, उसकी बातें सुने, उसके स्कूल के किस्से सुने, लेकिन अब्बा हमेशा बिजी और ये कहते कि आज नहीं बेटा कल, और शायद ये कल कभी आया ही नहीं। एक दिन स्कूल से अमीन कब यूनिवर्सिटी चला गया पता ही नहीं चला। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी जा चुका था, मुल्क छोड़ चुका था, उनके वालिद ने बकायदा उसके कमरे का जायजा लिया, शायद उनका कल आ गया था। यूं कहें कि अब उनके पास उस तरह की मसरूफियत नहीं थी। उन्होंने देखा कि उस बच्चे ने हर दिन हर कॉल हर मिनट का हिसाब रखा था। आज मैंने अपने अब्बा से 4 बार पूछा, हम खेल सकते हैं क्या, हम बाहर जा सकते हैं क्या, और चारों बार मेरे अब्बा का जवाब था, आज बिजी हूँ कल। मैं इस कल के इंतजार में कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला, और कब मैं उनसे इतनी दूर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब वो मुझसे बात करके कहते हैं मैं कब आऊंगा, और मेरा जवाब है कल। ये वो कल है जो कभी आया ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि हम एज अ पेरेंट जो हैं वो अपने बच्चों के साथ उस कल का इंतजार करते रहें जो आए नहीं। कल को आज में तब्दील कीजिए। कोशिश कीजिए कि जिस चीज का आप कल के ऊपर टाल रहे हैं, जिस बात को आप कल के ऊपर टाल रहे हैं, उसे आज और अभी पूरा करें। इससे बच्चे के अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस नजर आता है, और आप यकीन माने जब वालदेन बच्चों के बीच एक ट्रस्ट होता है तो बच्चे सच बोलते हैं, वो मुश्किल हालात में भी सही रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। डिप्रेशन, हम कहते हैं ना आज बच्चों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, यकीन मानिए जब उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम अपने पेरेंट्स से, अपने घर से मिलता है तो डिप्रेशन और तन्हाई के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। घर का माहौल भी सुकून का रहता है और दिल का माहौल भी सुकून का। मैं कहूंगी कि ट्रस्ट एक ऐसे तोहफे की तरह है जो वालदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं और जिसकी कीमत पैसों में कभी भी लगाई नहीं जा सकती। बस दोस्तों, अब जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि बच्चे फूलों की तरह होते हैं, अगर उन्हें मोहब्बत, तवज्जो और भरोसा मिल जाए तो वो खूबसूरती से खिलते हैं, लेकिन अगर उनके दिल में खौफ, नाउम्मीदी, बेएतमादी भर दी जाए तो उनकी जो सलाहियतें हैं वो दब जाती हैं। याद रखिए, बच्चे आपकी डांट को भूल सकते हैं, आपके तोहफे भी भूल सकते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें किस तरह महसूस करवाया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी के हर मोड़ पर भरोसा करे तो उसकी बात सुने, उसकी कदर करे, उसे मोहब्बत का एहसास दे और हर सूरत में उसका साथ दे। आज जो भरोसा आप अपने बच्चे के दिल में बो रहे हैं, कल वही भरोसा उसकी कामयाबी, उसकी खुशी, उसकी मजबूत किरदार की बुनियाद बनेगा। मोहब्बत से बनाया गया भरोसा सिर्फ बचपन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक रोशनी बन जाती है। जब बच्चों को यकीन हो कि मेरे वालदैन मेरा सहारा है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है, तो वो दुनिया के हर चैलेंज का मुकाबला हिम्मत और एतमाद के साथ करते हैं, है ना। मैं तो यही कहूँगी कि भरोसा बच्चों को दी गई वो कीमती दौलत है जो उन्हें सिर्फ आज महफूज नहीं बनाती बल्कि कल की हर मुश्किल राह पर चलने की हिम्मत देती है, यकीन और कामयाबी के साथ बढ़ने की सलाहियत देती है। जब वालदैन दिल जीत लेते हैं तो बच्चे उनकी दुनिया जीतने का हौसला रखते हैं। बस मुख्तसर यही कहना चाहूंगी कि बच्चों पर भरोसा कीजिए, फिर देखिए वो खुद पर भरोसा करना कैसे सीख जाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं, ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
4: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: तुम वैसे भी तुम अपनी गाड़ी जब चलाते हो इधर उधर मत देखा करो, तुम किसी की फिक्र मत करो। एक तो आजकल लोग गाड़ी चलाते हैं बौड़मों की तरह चलाते हैं, उनको किसी की फिक्र नहीं है। वो बस ये देखते हैं उनको घर पहुंचना, ये नहीं देखते हैं कि जिंदा पहुंचना है या किसी और को जिंदा पहुंचाना है। तुम अपनी गाड़ी आराम से चलाया करो। वैसे भी अभी शाम का वक्त हो रहा है, सब जल्दबाजी में घर की तरफ जाते हैं, 6:02 हो गया।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हल्लू हल्लू एक्सेलरेट किया करो यार, ऐसी तुम्हारी गाड़ी बहुत तेज भागती। हेलो, आवाज आवाज आ रही है? हेलो, सलाम वालेकुम। अरे ऑन है, ऑन है, सब सब। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो अनप्लग्ड इवनिंग और 6:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, अभी से लेकर 7 तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। और ये शो जहां पर एक टॉपिक होता है और टॉपिक के साथ साथ होती है मज़ेदार ख़त की बातें, आपका अपना ख़त। भाई कल का जो एक भाई ने ख़त लिखा था, मुझे नाम नहीं याद है कौन शख्स था, उसने दो लफ्ज़ों में जो डियर डैश वट एवर लिखा, फिर उसके बाद जो लिखा है लानत है। भाई मैं 6 लोगों को अब तब से बता चुका हूँ क्या क्या लोगों के ख़त होते हैं यार, क्रिएटिव तो हैं आप। मैं बहुत देर तक हंसा, मैं घर जाके रात में, कई बार ऐसा होता ना कि आपकी आँख खुलती है फिर आपको 6 पहले की बात याद आती है। कल रात को 12 मैं हंसा, मेरे बगल में जो बैठे थे, अरे क्या हो गया भैया, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज़ का सेटअप ही ऐसा होता है कि उसी वक्त की उसी वक्त हंसी आती है, फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो वो जो बात थी ना कि लानत है भाई यार, मज़ा आ गया था। मैं अभी मेरे को कल ये कांड जो भी किसी ने किया, मेरे को नाम नहीं याद है, जिस भाई ने भी किया एक बार फिर से मैसेज कर देना, लेकिन अभी भी मैं सोच सोच के हंसता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और आज भी ऐसी कुछ उम्मीद है होगा कि आपके तो वैसे भी रिप्लाई बड़े खतरनाक होते हैं बाबा। तो 6:04 हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवाल पर आते हैं हल्लू हाथ से, और सवाल क्या है आज का, क्योंकि सवाल पे ही तो पूरा शो है और फिर आपके खत।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: तो क्या होता है यार, देखो हर शख्स ना अपने अलग सोच के अकॉर्डिंग चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भैया घर पहुंचना है।

ऑफिस से निकलने के बाद छोटे से छोटा रास्ता बताओ मेरे को घर पहुंचना है। उनको ये मतलब नहीं है कि अरे वो सिग्नल पड़ेगा, सिग्नल पर रुकना पड़ेगा। उनको ये पता कि अरे हाँ यार 4 किलोमीटर का सफर है या 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफर है, हपक दो बस, सिग्नल पड़े कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों का भैया 15 किलोमीटर है हम चला लेंगे, सिग्नल चाहिए ही नहीं या फिर सिग्नल एकदम कम हो। और कतर इतनी खूबसूरत जगह है कि भाई आपके अपने घर के 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे मेरे खुद के घर के 3 अलग रास्ते, एक है कॉर्निश से होके जाता है, एक वेस्ट बे से होके जाता है ना, और एकदम मतलब वेस्ट बे के बीचों बीच से होके जाता है, और एक जो है मेरे ऑफिस की एकदम बगल से रोड जाती है जिसमें मुश्किल से 3 सिग्नल पड़ते हैं। लेकिन अब इसमें केस है, केस यह है कि जो वेस्ट बे की तरफ से जाता है उसमें तो चलो आपको सिग्नल मिलते हैं, बट वो सिग्नल मोस्टली खुले होते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगता, और वो शॉर्ट रूट भी है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई मेरे को लॉन्ग रूट, तो शुरुआत में मैं लॉन्ग रूट लेता था जो ऑफिस के एग्जैक्ट बगल से शुरू होता था। तो ऐसा होता ना कि कुछ दुश्मन चाहे कि अरे फजील का पीछा करो, तो पीछा कर भी नहीं पाएंगे। वो ये सोचे कि फजील का खात्मा करना है किधर से करें, वो कर ही नहीं पाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि किधर रुकना है। भाई फजील किस दिन किधर से चले या पता ही नहीं। तो वो बेचारे परेशान ही हो जाएंगे। तो आज का सवाल इसी पर है कि कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट रूट लेते हैं, सिग्नल होता है चलेगा, कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग रूट लेते हैं, लंबा सफर कर लेंगे वो ठीक है लेकिन अपने को सिग्नल नहीं चाहिए, और वो लॉन्ग रूट जल्दी पहुंच भी जाते हैं, घर भी कभी कभार जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आप किस किस्म के शख्स हैं और आपका रीजन क्या होता है जब आप लॉन्ग रूट या शॉर्ट रूट घर के लिए लेते हैं या ऑफिस के लिए लेते हैं, तो ये आपको बताना है। नंबर है 666-22-107, 666-22-107। मेरा तो ये मानना है कि भाई साहब जितना छोटा रूट हो उतना बेहतर है, बस बशर्ते सिग्नल थोड़े जल्दी खुलते हो। क्योंकि मेरा एक दोस्त है आफ्ताब, नहीं अल्ताफ, सॉरी इतने ज़्यादा अल्ताफ और आफ्ताब है ना, तो अल्ताफ भाई जो है हमारे, वो उनका आखिरी जो घर के करीब वाला सिग्नल है वो बहुत देर परेशान करता है, तो वो डरते हैं, कहते हैं अरे भाई वो 10 बजे के बाद बहुत लंबा टाइम लगाता है और खुलता है सिर्फ 10 सेकंड के लिए। तो होते ना कुछ सिग्नल बहुत ज़्यादा लेट तक खुलते, जैसे DECC के सामने वाला एक सिग्नल है वो 10 बजे तक तो लंबा खुला रहता है, जैसे ही 11 बजती है, 10 से 11 के बीच में शायद निकाल से टाइमिंग चेंज होती है उसकी, भाई साहब ऐसी सेटिंग है कि वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए खुलेगा, और चाहे बाएं आप जाने वाले हो चाहे सीधे जाने वाले हो एक साथ बंद होता है, लेकिन 10 से पहले बाएं वाला पहले बंद होगा और सीधा जाने वाला थोड़ा लेट, तो ऐसी सेटिंग है। लेकिन आप कौन से वाले शख्स हैं, छोटा रूट लेने वाले या बड़ा रूट लेने वाले, ये बताइए। नंबर है 666-22-107। हल्के हाथ से अब जरा आ जाते हैं सवालों पर और सवालों के जवाब पर। फिर ये मैसेज किस भाई का है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या हाल चाल, कैसर भाई क्या लिखते हैं, डायलिंग मेला, अच्छा कैसर भाई कुछ और बात ले लिया उन्होंने, कुछ और लिखा, ये कोडिंग ट्रैफिक, हाँ नसीम साहब ने लिखा कोडिंग ट्रैफिक, ये होता है मेरे साथ तो बहुत ही बार, कई बार मैं 11 बजे घर जा रहा होता तो पता चला लेट हो गए, बेगम अलग गुस्सा कर रही है। सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, मुझे तो शॉर्टकट रास्ता पसंद आता है, लॉन्ग रास्ता पसंद नहीं आता, शॉर्टकट में जो मजा है लॉन्ग में नहीं, साबिर भाई का कहना है। अच्छा ये बात भी मैंने कई लोगों में देखी है, उनको ये है कि रुक रुक के चलेंगे ना, जल्दी किस बात की है, घर जब जाते हैं तब, लेकिन ऑफिस जाते हो भैया चलो चलो चलो चलो चलो, इतनी हड़बड़ी होती है कि उनसे रुका नहीं जाता है। उसके अलावा एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, नो नीड सिग्नल क्योंकि सिग्नल 6000 ओवर स्पीड 500। अरे भाई ये तो आगे की सोच है, क्या बात है शेख इरफान साहब। देखो ये कैलकुलेशन है, एक मर्द ना जिंदगी में कैलकुलेशन करके ही चलता है, छोटे सी छोटी बात हो कोई बड़ी से बड़ी चीज हो उसको अगर सामान भी लेना है तो वह कैलकुलेशन करके लेता है कि ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के सामने ही क्या कहते हैं फलाना हाइपरमार्केट है, वहां से जाके सामान ले आएंगे। वो ऐसा नहीं करता कि घर में आराम करना, अरे यार सामान लेके आना, चलो भैया सामान लाए, नहीं वो आगे की कैलकुलेशन करता है, आज आलू खत्म हो रहा है 2 आलू बचे हैं, आज ही ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के सामने हाइपर मार्केट है, वहां से आलू लेके घर, प्याज भी खत्म हो रहा है क्या, प्याज भी देख लो जरा। फिर बेगम से पूछा था, अरे सुनो आज मैं हाइपर मार्केट जाऊंगा बताओ क्या क्या खत्म हो रहा है, कैलकुलेशन करके चलता है। वैसे ही शेख इरफान साहब है, बहुत ही उम्दा। अच्छा ये जो जल्दबाजी में होते हैं ना, सिग्नल अगर पार कर गए तो 6000 का चपत तो है उसमें, लेकिन अगर जल्दी दे दिया तो वो 3000 का भी है, अगर 1 महीने के अंदर दे दिया ऐसा कुछ है, वो खैर डिपेंड भी करता है कि स्कीम कैसी वाली चल रही है। बट मुझे उन लोगों पर बहुत मज़ा आता है

0: जो शहर में 80 की स्पीड वाली लिमिट पे 100 भगाते हैं, आपको पीछे डिपर दे रहे हैं खूब कि के हटाओ हटाओ हटाओ, और उनको जाना भी एकदम एग्जैक्ट लेफ्ट से ही है, ये नहीं कि वो दाएं बाएं से, नहीं उनको जाना भी उधर ही से, अगर आप सेकंड लेन में है ना तो उनको उधर ही से जाना, सेकंड लेन से ही जाना, खूब डिपर मारेंगे और फिर जाके रेड लाइट पर रुक जाते हैं और हम पीछे से 80 की स्पीड से धीमे से निकलते हैं और उनके बगल खड़ा करते हैं, तो मैं उनसे पूछ भी लेता हूँ, हाँ भाई हाँ घर पहुंच गए है, अरे वाह भाई वाह, तुम तो यार ड्राइवर तो तुम हो भाई है,
1: बेटे बेटे पहुंच कर दी, अरे वाह शेर हुआ, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।
0: हाँ भाई जैसे ये बोल रहा है ना, बीच में और भी कुछ लाइनें इसने बोली थी वो यहाँ लगा नहीं सकते, मेरा मन तो वही कहता है, रे बेटे भगाएंगे ऐसा 100 की स्पीड से जैसे इनको चांद तलक जाना है। अगले सिग्नल पे ही रुके हुए मिलते हैं और ये नजर नहीं मिलाते भाई साहब, ये राइट लेफ्ट देख के नजर भी नहीं मिलाते, भागते तो ऐसे कि अरे किबड़ी किबड़ी किबड़ी किबड़ी। ओके आगे बढ़ते हुए ये मैसेज किस भाई का है, इसको पढ़ना नहीं भाई नाराज मोहम्मद भाई ने कहा, अच्छा हुआ तुमने कह दिया मेरा भाई, सही किया एकदम हमजा, अरे यार ये वाला मैसेज डिलीट, ए भाई ये सब मत लिखा करो मोहम्मद भाई, डिलीट करना पड़ेगा। हमजा लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, सफर चाहिए लंबा, सफर चाहे लंबा हो लेकिन तकलीफ वाला ना हो। ओ इसमें दो बातें कर दी भाई ने, एक कार वाला सफर वो भी कह दिया और एक मोहब्बत वाला सफर वो भी कह दिया, ले बैठे तुम भी हैवी ड्राइवर निकले बाबा। ये हमजा भाई के पास दिल तो है ये पता चल गया मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बड़ा रूट टेंशन फ्री, पेट्रोल भी सस्ता, आराम से एक्सप्रेसवे पकड़ के ट्रैफिक बाईपास करके निकल जाओ। ये तनवीर भाई की बात बिल्कुल सही है, शुरुआती वक्त में मैं यही करता था कि ट्रैफिक का झंझट पालना ही नहीं है, एक ट्रैफिक पड़ता है, अच्छा जो मेरे ऑफिस से निकलने के बाद जो पहला ही ट्रैफिक पड़ता है ना वो बहुत लंबे वक्त के लिए खुला रहता है क्योंकि वो हाईवे पकड़ने से पहले आखिरी सिग्नल है और फिर लुसेल की तरफ बढ़ते चले जाओ, फर्राटा मार दो गाड़ी का, कहीं सिग्नल नहीं मिलेगा, तो मैं उधर ही से होते हुए जाता था, बड़ा ही ज़बरदस्त था, लेकिन अब उधर से नहीं आते, कभी कभार होता ना यार स्लो लाइफ जीने का कभी कभार मन होता, तो अपन 6 सिग्नल वाले रास्ते से जाते हैं। बाकी लिखा है ऊपर से सिग्नल कोई अलग दुनिया में खोए रहता है, ग्रीन होते साथ कुछ लोगों के अरे यार ऐसे ऐसे लफ्ज लिख देते हो तुम लोग ना, मैं पढ़ दूँ ना तो एक कोड़े वाला आदमी मेरा गला ना दबा दे, वो कोड़े का इस्तेमाल भी नहीं करेगा, वो कोड़े का इस्तेमाल मेरा गला दबाने के लिए करेगा, अरे रुक नहीं सकता था ऐसे लफ्ज पढ़ने के लिए पहले। खैर ग्रीन होते के साथ कुछ लोग के वायर कनेक्ट हो जाता है हॉर्न का, ग्रीन होते साथ पीपा करते तनवीर भाई की मतलब वो जिनके अंदर भरा हुआ होता है ना वो ऐसी ऐसे लफ्ज निकलते हैं, उनके ऐसे एक्सप्रेशन निकलते हैं, भरे पड़े हुए हैं भाई। फिर एक और मैसेज यूसुफ भाई का, हैप्पी वेंसडे इवनिंग, हैप्पी वेंसडे इवनिंग, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। नसीम भाई कहते हैं एक बार चेक करके कितना आता है, एक बार चेक करके कितना आता है, ये क्या लैंग्वेज है भाई मेरे को नहीं समझ में आया। डिलीट कर दिया मोहम्मद भाई ने, कोई बात नहीं है मोहम्मद, मैं खुद भी डिलीट कर देता। ओके हमजा भाई ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। हाँ ये तो मैं देखो हमजा भाई, मैं कहाँ कहता हूँ यार 50 साल वाला आदमी जो है 30 साल के बराबरी करेगा, मैं मानता हूँ तुम 50 के हो भाई।

गाना प्ले कर दिया तो फजील का जो है पीठ सुजाना भाई। लेकिन अब तो भैया को कोई मौका दूंगा नहीं और अब कोई मौका मिलेगा नहीं, वजह नहीं है ना यहाँ पर। फिलहाल 6:13 हमारे स्टूडियो की घड़ी में गाने की तरफ बढ़ते हैं। अनप्लग्ड ये शो और अनप्लग्ड एक गाना एक मुलाकात बाई जुबिन नौटियाल, ये गाना सुनते हैं FM 107 पे। बाकी आप जवाब दे सकते हैं, नंबर है 6662107। सवाल सिंपल सा है, सवाल ये है कि आप घर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए शॉर्ट छोटा रास्ता लेते हैं सिग्नल के साथ वाला, या फिर लॉन्ग रूट लेते हैं बगैर सिग्नल के, आप कौन सा प्रेफर करते हैं ये बताइए। 6662211007 पे

0: फलक शब्बीर की आवाज में गाना सुना आपने, साजना अनप्लग्ड वर्जन, ये गाना एफएम 107 पे।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: हां जी, दिल से देसी एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। ये शो दी, मैं कहने वाला था रिक्वेस्ट शो, आदत से ही मजबूर, अनप्लग्ड इवनिंग ये शो। 6:26 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और सवाल ये था कि आप घर जाने से पहले क्या सोचते कि यार लॉन्ग रूट लेंगे आज या शॉर्ट रूट। आमतौर पे आपके घर का दो चार अलग अलग जगह से ऐसा रास्ता होगा घर पहुंचने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए, बट एक सोच होती है कि जल्दी पहुंचना है तो अलग रूट लेंगे, है ना, आराम से पहुंचना है, कोई जल्दी है नहीं तो लॉन्ग रूट ले लेंगे, चलेगा। लेकिन कई बार शॉर्ट रूट लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग शॉर्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि सिग्नल्स होते हैं। तो आप कौन सा रूट चॉइस करते हैं जब आपके पास वक्त होता है, तो कौन सा रूट लेते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट विद सिग्नल या फिर एक बार में भाई हाईवे दाब दो? क्योंकि एक संदीप भाई हैं, उनने जो कहा यार वो बहुत ही अजब कह दिया है। मतलब संदीप ने नहीं कहा है, कहा तो किसी और ने, लेकिन इस तरह के लोग

चलते हैं। मिनहाज भाई का कहना है कि वैसे आम तौर पे मैं जो है शॉर्ट रूट लेता हूँ अपना जो घर है, अगर अपने घर जाना है या ऑफिस जाना है कोई मसला नहीं है, सिग्नल होगा भी तो चलेगा। लेकिन इनके कोई दोस्त हैं संदीप, वो अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन संदीप हमेशा लॉन्ग रूट लेते हैं। कहते हैं पता नहीं क्यों डी रिंग रोड से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो किसी भी जगह पे हो वो डी रिंग रोड से ही जाते थे। मैं ये कौन सी बात है भाई, डी रिंग रोड इतना क्या मोहब्बत है, कोई मुझे बताएगा कि डी, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता है उधर डी रिंग रोड, मैं मेरा भी वही वाला है, मैं हाईवे पकड़ता हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादातर काम जो होते हैं हमेशा मोस्टली हाईवे के हाईवे होते हैं, कभी दोहा एक्सप्रेस वे, कभी लुसैल वाला पकड़ लिया, कभी कोई और पकड़ ले, तो आमतौर पर मैं हाईवे से जाता हूँ क्योंकि मेरे को आसान भी लगता है और मेरे ज़्यादातर काम उधर ही चलते हैं। किसी भाई को अगर पता है कि डी रिंग रोड पे कोई स्पेसिफिक फायदा है कि वहाँ की रेड लाइट को क्रॉस करो भैया 100 रियाल का आता ही ऐसा अगर ऐसा है तो फिर बताओ, वैसे तो ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा, 6000 का बहुत लंबा वाला है, ठीक है दूर रहना। बाकी संदीप भाई का अलग शौक था, डी रिंग रोड से पता नहीं क्या मोहब्बत थी। वैसे अगर आप, अगर मैं ये तब मान सकता हूँ संदीप भाई जवान हो जिनकी उम्र 21-22 हो संदीप की और डी रिंग रोड में उनका कोई रहता हो, है ना, किसी के घर के सामने से निकल रहा हूँ तो ये होता है भाई। 21 साल का लड़का हमारी तरफ भी यही करता था, कोई दोस्त होता है ना, है ना, मतलब हमारा अपना दोस्त, तो ऐसे जाना है कहीं और लेकिन जाएंगे उसी रास्ते से, तो अपनी अपनी वजाहत होती है। अब बाकी मिनहाज भाई बताएंगे कि वो 21 के थे कि 50 के, अपने अपने तरीके हैं लोगों के, लेकिन ठीक है डी रिंग रोड से हो गया कोई मोहब्बत। आगे बढ़ते हैं और इन्होंने लिखा है मिनहाज भाई ने, सॉरी फॉर द वॉइस मैसेज, एक्चुअली फील नहीं आता मैसेज में, अच्छा लिखते हुए वॉइस मैसेज को ऑन ईयर करें इफ पॉसिबल। नहीं भाई, कोड़े वाला आदमी बैठा है, कोड़े वाला आदमी कहता है कि अच्छा इन्होंने कहा जी रिंग रोड, डी नहीं जी रिंग रोड, ओके सॉरी भाई, सुनने में और याद करने में कोई मसला हो गया क्योंकि और भी मैसेज है, सॉरी। बाकी कोड़े वाला आदमी बैठा है भाई, अपन नहीं पढ़ सकते, माजरत। फिर उसके बाद हमजा भाई ने कहा अरे 50 के नहीं है 29 के हैं हम, ठीक है मान लिया भाई आपसे 1 साल बड़ा हूँ इज्जत से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बहरीन से हूँ और सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। अरे ये जुल्फ़िकार वो हैं जो MP वाले जुल्फ़िकार मोहम्मद दिलशाद, लॉन्ग रूट विदाउट सिग्नल, पीक आवर्स में सिग्नल इज रिस्की। हाँ यार पीक आवर में भाई दो लोगों से मुझे बहुत आफत होती है, एक वो जो शहर में चलाते हैं 100 की स्पीड पे और उनको लगता है आगे निकल के घर पहुंच ही जाना है और फिर सिग्नल पे वो पहुंच के रुक जाते हैं और मैं बगल से रुकता हूँ, फिर मैं तो उनको डायरेक्ट बड़ी बड़ी आंखें करके देखता हूँ और फिर पूछ भी लेता हूँ हल्की से सर हिला के, पहुंच गए घर, अरे वाह बड़ी जल्दी पहुंच गए 100 की स्पीड, अरे वाह भाई आप तो माइकल सुमाकर हैं मैं उनकी तरफ देख के कभी कभार हंस भी देता हूँ एक बार तो हंसा था भाई, गुस्सा भी हो गया था आदमी, लेकिन ठीक है। जुल्फ़िकार साहब इस्तकबाल आपका कतर में। यूसुफ भाई कहते हैं फजील मैं छोटा रूट लेता हूँ वो भी विदाउट सिग्नल वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑफिस घर से 5 मिनट का रास्ता, क्या बात है यार 5 मिनट का रास्ता है, इतने में तो आपकी कार गर्म भी नहीं हो पाती होगी जितने में आप पहुंच जाते, 5 मिनट वाह। नो सिग्नल का 2 रीज़न है, अच्छा मतलब नो नीड सिग्नल इनको ज़रूरत नहीं है, ओवर स्पीड का 500 है इरफान ने लिखा था, सिग्नल का 2 रीज़न है, टाइम सेव, पेट्रोल भी सेव होता है क्योंकि जब आप सिग्नल पे रुकते हो तो किसी का टाइम चलता है पेट्रोल के, तो दोनों में वेस्ट हुआ, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कम्पेयर टू मनी। इरफान भाई की कैलकुलेशन अभी भी आ रही सामने, आफ्टर द वर्क किसको घर देर से जाने का शौक है, ऑब्वियसली जल्दी वाला ही रूट लेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं। हाँ जल्दी वाला रूट देखो दो अलग तरीके हैं, एक है शॉर्ट रूट है लेकिन उसमें ट्रैफिक सिग्नल इतना ज़्यादा है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो लोग लॉन्ग रूट ले लेते हैं, बस ये फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि पूछा जाए कि असल में लोगों का चॉइस क्या है। रेहान साहब का अपना ये मैसेज। फिर अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, मैं बहुत अच्छा हूँ आपकी दुआ है। अब्दुल समद लिखते हैं फजील भाई अगर बीवी अच्छी हो ना तो शॉर्ट रूट भी बहुत दूर लगता है और और फिर उसके बाद इन्होंने कहा अगर समझदार हो तो फिर आपको लंबा रूट लेने में भी लगता है कि अरे जल्दी पहुंच गए समझ भाई, दिस इज नॉट डन यार, गलत बात है, मतलब बात तो सही है लेकिन गलत बात है यार, समझे नहीं समझे, मतलब आपकी बात सही है लेकिन यहां बात करना गलत है बहुत तेज है भैया, लेकिन
कुछ तो बात है यार, इस बात में भी कुछ बात, क्या बात है, क्या बात है। ओके फिर उसके बाद उबैद भाई का मैसेज है, ये हाल है लॉन्ग ट्रैफिक का। अच्छा उबैद भाई कोई मसला नहीं है, टाइम बहुत होगा ना आपके पास, जिनके पास टाइम है वो कर सकते हैं, उनका क्या है कि लॉन्ग रूट पकड़ लो शॉर्ट रूट पकड़ लो कोई मसला ही नहीं है। बाकी फिर नसीम भाई का मैसेज है, आपका कौन सा काम चलता है भाई? मेरा कौन सा काम, मेरा कोई काम नहीं चलता, बस कभी कभार कोई काम होता है दोस्तों यारों में, कहीं जाना होता है तो। फिर एक और ये मैसेज है अरबाज खान का, कहते हैं सर मुझे पर्सनली तो रश बहुत पसंद होता है। तो उबैद भाई ने एक तस्वीर भेजी, उबैद भाई बता दिए किस रूट पे हैं, अरबाज भाई को भेजना है, कह रहे हैं मुझे पर्सनली रश बहुत पसंद है, जो रास्ता सबसे ज्यादा पर्वत है कहाँ वो जगह मौत मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाईवे बैठक होता है सर, ये सिग्नल हो जाता है इसकी वजह से तो हाईवे अच्छा। देखिए ये वाले लैंग्वेज में अभी मैं संपूर्ण मुकम्मल कंप्लीट नहीं हो पाया हूँ, ये वाली लैंग्वेज में टाइम लगेगा, थोड़ा इससे अच्छा तो बोल ही दिया होता। लिखा है मेरी 22 साल उम्र है और मैं पाकिस्तान ये सब कुछ करता था, एक रात जैसे दिन में 10 बार गुजरती थी। अभी भी थोड़ा दूर ही निकल गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इट्स नावेद, कैसे हो फजील भाई? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। अबू हमूर भी बिजी एरिया है ओनली फॉर स्कूल टाइम। हाँ जब स्कूल होता है भाई मेरे को डर लग जाता है, कोई अगर किसी के घर जाना है किसी काम के लिए जाना है, अगर स्कूल का रास्ता है और दिन का वक्त है, दिल धुड़धुड़ धुड़धुड़ करता है भाई, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। खैर फिर रेहान साहब कहते हैं हम तो बस ऐप ओपन करके लोकेशन खोल देते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जिधर से सही होता है उधर से ही ले जाता है, ऐप की मर्जी जिधर से सही उधर से ले जाता है। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, आई विल गो विथ लॉन्ग रूट बिकॉज आई कैन स्लीप स्लाइटली, नो इशू, आई हेट ट्रैफिक। हैं रास्ते में सो सकते हो? अच्छा मतलब आप कार चलाते नहीं है तो फिर तो आपको मतलब ही नहीं है, आप लॉन्ग ले शॉर्ट ले आपका तो बराबर ही है, मकसूद साहब का ये कहना है। आप लॉन्ग रूट लेकर भी क्या करेंगे या शॉर्ट भी लेकर क्या करेंगे, अगर सो भी गए अगर चलाते हुए तो आप तो लॉन्ग रूट के लिए सो रहे हैं। फिर आए फजील भाई सिग्नल पे रुक के आपको मैसेज कर लेते हैं, घर तो जाना है। ले भाई ये देखो जरा। अरे लोगों का अपना अपना शौक है भाई साहब, मैसेज करने का भी तरीका होता है, किसी दिन इस पर भी एक सवाल करना पड़ेगा। हसन साहब बड़े मिजाज, रंगीन मिजाज है, बस और कुछ नहीं है। मैसेज कर लेते हैं ठीक है। फिर उसके बाद हमजा भाई कहते हैं आज इतने मज़े की हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हाँ यार कल भी और आज भी हवा चल रही, हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कतर में जिया जा सकता है बगैर एसी के, जिस दिन ना चले हवा फिर तो भाई साहब ऐसी चिंगारती हुई खुशबू आती अपने बदन से। ये बताया नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:35 और आज सवाल किया था कि आप आमतौर पे घर जाने के लिए लॉन्ग रूट लेते हैं या शॉर्ट रूट लेते हैं, छोटा रास्ता लेते हैं, छोटा रास्ता सिग्नल के साथ या फिर बड़ा रास्ता बगैर सिग्नल के, घर जल्दी पहुंचना है, आपका क्या फैसला होता है? लेकिन घर पहुंचने पर एक सिग्नल तो पड़ता ही होगा, कोई एक सिग्नल तो पड़ता ही होगा, लेकिन उस सिग्नल के लिए एक खत अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे जो जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, एक सिग्नल, और अगर सिग्नल समझ सकता आपकी बात तो आप क्या लिखते, एक खत उस सिग्नल को जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो लिखें। डियर, जैसे कल कई भाई लोग थे जिनको बताया भी नहीं पाया था मैं डियर लिखना है, उसके बाद भी भाइयों ने डियर लिखा था, पिछला वाला शो याद था उनको, तो डियर लिखने के बाद डियर सिग्नल, फिर आप अपनी जबान में उस सिग्नल को कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ा लिहाज रखते हुए, कल वाले मैसेज लानत है वाले नहीं चलेंगे ठीक है। नंबर है 666-22-107। फिलहाल अरमान मलिक की आवाज में बोल दो ना जरा ये गाना सुनिए, एंजॉय करिए, अनप्लग्ड ये गाना फसील के साथ, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
1: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
0: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
3: Absolute cinema.
4: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं. पर reviews, वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं. और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry. भरोसेमंद review देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर
5: Review of the Week.
4: Rolling. हर थर्सडे रात 9 बजे से आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
6: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

चाहत ककड़ और सौरभ मिश्रा की आवाज में और सिग्नल आए तो दिल बेचैन हो जाता है। आला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप। 6:47 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आप आम तौर पे कौन सा रूट लेते हैं। आप रूट लेते हैं लॉन्ग वाला, यानी कि अपने घर को पहुंचने के लिए लंबा रास्ता बगैर सिग्नल के, या छोटा रास्ता रहेगा चलेगा बट सिग्नल ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे। वेल, अभी तक अगर देखा गया है तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि यार सिग्नल के साथ छोटा रास्ता मेरे को पसंद है। बट सब लोगों का ऐसा कहना नहीं है, कुछ लोग अलग भी सोचते हैं। बाकी सलाम है एक भाई का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं आप? और नाम गलत लिख दिया है रैना। फिर ये मैसेज है, एक ख़त लिखता सिग्नल को और उसमें सिर्फ पूरे में यही लिखता, प्लीज़ ग्रीन रहना भाई, मैं आ रहा हूँ। हाँ यार, ये ऐसा हो पाता तो कितना सही होता। नहीं, वैसे ऐसा होता भी है जब बड़े अथॉरिटीज़ के लोग, हाई कॉन्वॉय जो होते हैं ना, अगर वो एक रूट से जा रहे हो तो उनको बाकायदा ग्रीन कर दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो डिजिटल की दुनिया में ये ख़त ही तो है ना, कि आपने मैसेज कर दिया कि फला वाला रूट है और इस रूट से जो है ये कॉन्वॉय जा रहा है, तो आपको ये हमेशा ग्रीन रखना है और उसे रास्ता रोक दिया जाता है। जो इंटरसेक्शन होते हैं, बाकी जो रूट होता है उनको रेड कर दिया जाता है और एक पूरा रूट खोल दिया जाता है। ये होता भी है, लेकिन अगर ऐसा आम जनता के लिए हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन यार यहाँ पर तो ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं लिखता। गनी साहब क्या लिखते हैं? सलाम अलैकुम फजील भाई, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ फजील भाई। लिमोजिन वालों को बोलो थोड़ा स्पीड में चलाओ गाड़ी, यार 20 स्पीड में जाते हैं। रिक्वेस्ट कर लो जब कस्टमर नहीं होते हैं लोगों के पास, कम से कम 40 में तो जाया करो। यार आमतौर पर तो मुझे जाते हुए दिखते हैं, बस अगर शिकायत है तो इतनी है कि जो फास्ट लेन है ना, प्योर लेफ्ट लेन, उसमें मत चलो और कोई भी मत चले। मतलब ऐसा नहीं कि वो लिमोजिन वाले, कई बार ना वो 60 में, एक तो लोग इंजॉय करने निकले, भाई तुम इंजॉय करने निकले हो, हमारा इंजॉयमेंट काहे खराब कर रहे हो, दाएं बाएं हो जाओ जरा। अरे सेकंड लाइन थर्ड, या एक तो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे, तो आप सेकंड वाली लाइन पे चलो ना, 60 की स्पीड पे चल लो, 100 की लाइन है यार, वो प्योर लेफ्ट पे एकदम आराम से हल्लू हल्लू चल रहे हैं। इनको लग रहा है बोटिंग करने आए, पैडल मार रहा है पीछे वाला, वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, हम हल्लू हल्लू चलेंगे। भाई मेरा कसम से मन करता है कि मेरे पास ट्रक होती है ऐसे में, और ट्रक वो वाली ट्रक नहीं जिसका हॉर्न होता है, ऐसा वाला नहीं, जिसका हॉर्न हो ऐसा के हटो। ये वाला होता ना भाई, मतलब अंदर से एकदम रूह कांप जाए, ऐसे वाले हॉर्न लगवाने का मन करता है। वो तो डीबी के चक्कर में रह जाता हूं मैं, डीवी नहीं डीबी, ठीक है। लेकिन हाँ गनी भाई की बात सुन लो भाई, जितने भी लिमोजिन वाले हैं यार, प्लीज 20 की रफ्तार में मत चलो, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मुझे तो कभी नहीं दिखा कि 20 की रफ्तार में चलते हो, बशर्ते अगर वो कोई ऐसे एरिया है जहां पर लिमिट है स्पीड की। फजील भाई इन्होंने क्या लिखा है, समझ गया, तो फिर लंबाई लेना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फजील भाई? अगर अच्छा, ये तो पहला वाला मैसेज है। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि यहाँ पर आप लोगों को सुनते हैं ना, फिर घर जाने को कहाँ दिल चाहता है। ओ अच्छा, हम लोगों को सुनते हैं। यार तुम ऐसे पटिया लेते हो फिर तुम, यार ऐसे मत कहा करो भाई कि आप लोगों को सुनना है, तो गलत बात है यार। मतलब ऐसा फिर ना चेहरा ब्लश करने लगता है, घर जाओ तो फिर वाइफ पूछती कि अरे बड़े चमक रहे हो आज, तुम क्या बात है? कमाल करते हो यार, मैसेज कर देते अब्दुल समद भाई, फिर दिल गदगद हो जाता है ये। बाकी आगे लिखा है, फिर दिल चाहता है, फिर तो दिल चाहता है कहीं पर भी रोड पर गाड़ी लगा दो और आपका प्रोग्राम सुनते रहो, बहुत मजा आता है। आप लोगों का, आप लोगों को इसका क्रेडिट जाता भाई। अब्दुल समद भाई, कभी मिल गए ना रास्ते में, चिकन बिरयानी से तो मेरा भरोसा उठ चुका है, एक जगह मैंने खा ली है भाई, मैं तुमको बड़े की बिरयानी खिलवाऊंगा, मटन की बिरयानी भाई मेरी तरफ से, दिल खुश कर देता। खुदा करे आपके अकाउंट में खूब सारा क्रेडिट हो, अरे उधार वाला नहीं, मतलब पैसे क्रेडिट होने वाला क्रेडिट। अल्लाह आपको खूब पैसों से नवाजे। बाकी आगे बढ़ते हैं हल्के हाथ से। फिर ये मैसेज है, अच्छा मिनहास साहब ने खत लिखा है और लंबा खत है। डियर सिग्नल, आपसे गुजारिश है कि सुबह सुबह गुस्से में लाल सुर्ख ना हुआ करें। एक और बात जो हमेशा मुझे सताती है कि मुझसे आपकी क्या रंजिश है कि जब भी मैं आपके पास पहुंचता हूं तो आप रेड हो जाते हैं। 90% तो ऐसा ही होता है,
योर बिलव्ड मोटरिस्ट मिन्हाज। क्या बात है यार, ऐसा खूबसूरत खत अगर कोई लिख दे। तो एक अभी हाल ही में वीडियो आई थी कि फलाना किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और सिग्नल पिघल गया। ऐसे खत में तो सही में यार सिग्नल पिघल जाएगा यार। उसके अलावा ये सच में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है दुख सा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको दूर से दिख गया सिग्नल ग्रीन है, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, सिग्नल कहता है देख जैसे ही पास आएगा मैं तुरंत रेड हो जाऊंगा, देखियो अभी। लेकिन कुछ ड्राइवर इनसे भी ज्यादा चलाक होते हैं, वो येलो पर भी निकाल लेते हैं। मुंह चढ़ाने का मौका मिल जाए भाई मैं तो चढ़ा दूं भाई सिग्नल को। फिर मोहम्मद भाई ने लिखा है, डियर सिग्नल, जैसे ही मैं आपके करीब पहुंचता हूं आप बंद हो जाते हो, तो आपके लिए मेरी जुबान से अमिताभ बच्चन की वॉइस में वो डायलॉग। मोहम्मद भाई भरोसा था आप पे। अरे यार ये मत करो यार, मैं कभी फ्लो में पड़ जाऊंगा ना, तो एक कोड़े वाला आदमी जो है जब तक निशान ना पड़ जाए तब तक मारता रहेगा। सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। वंस आई एम गोइंग आई से कुलजा सिमसिम दैट सिग्नल इज टर्न्ड ग्रीन, आई एम हैप्पी एंड एंजॉय। ये भी हो रहा है क्या मार्केट में? मैंने भी ट्राई करना है फिर तो। आज मैं अब एक तो ये भी है ना कि अगर मैं कार के अंदर बैठ के ये सब बोलूं और दूसरे कार में कोई बैठा हो और मुझे देख रहा हो, कहेगा पागल है क्या जो गाड़ी चला रहा। तो ठीक है, फिर उसके बाद एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। अगर कोई फास्ट लेन में कोई स्लो चल रहा है तो मैं तो उसके ऊपर हॉर्न रख देता हूँ कि भाग यहाँ से, बिल्कुल सटा देता हूँ कार। देखिए जिनके जिगरों में जिगर है ना भाई, जस खान साहब यही कर सकते हैं, मतलब ऐसे तो टेल गेटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ लेकिन अगर बहुत लंबे वक्त से अगर वो उसी लेन में है तो एक छोटा सा हॉर्न तो हो सकता है, बाकी आमतौर पर तो हट जाते हैं लोग। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया आपने इवनिंग टाइम ले लिया इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। अच्छा इनको भी बिरयानी तो नहीं खानी है? हो सकता है कभी क्या फजील भाई दूसरे से बिरयानी का वादा कर दिया है, मेरे को भी बताओ। फिर ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो हमेशा जो है वही रूट पकड़ता हूँ जिसमें गाड़ी रुके ना, यानी लॉन्ग रूट सही है उसमें गाड़ी रुकती नहीं है। जुल्फ़िकार साहब का ये कहना जो बहरीन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही रूट लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अगर कोई टारगेट कर रहा हो, आप किस रूट से जाएंगे वो टारगेट को पता ही नहीं है। जैसे मेरे घर जाने के लिए तीन रूट है भाई, मैं किस रूट पे किस दिन चला जाऊंगा मुझे खुद भी नहीं पता है, मूड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा रूट पकड़ूंगा। अगर एक दुश्मन दो रास्ता भी ब्लॉक करे तो तीसरे से निकल गए लो, पता ही नहीं चला। दुश्मन भी कंफ्यूज कह रहे हैं भैया पजील को पकड़े कैसे। बाकी जाहिद भाई ने लिखा है, डियर सिग्नल, अगर तुम मोबाइल के मैसेज होते तो मैं तुमको ब्लॉक कर देता। अरे वाह यार क्या बात है। ये इस पर तो कहना पड़ेगा क्या बात है, खतरनाक लोग है भाई साहब। फिर अबीर ने लिखा है, बड़े छोटे लफ्जों में कहते हैं, डियर सिग्नल सामने से हट जा, वो इंतजार कर रही है। इंतजार कर रहे हैं, ठीक है भाई, देख रहे हो नई नई शादी में क्या होता है। ओके आमिर कहते हैं, डियर सिग्नल कस्टमर को जल्दी है, चिल्ला रहा है। अरे ये सब भी होता है क्या? कभी कभार होता होगा। लेकिन सबसे जो बढ़िया मैसेज मुझे वलीद भाई का लिखा है, बहुत सही लिखा है, डियर सिग्नल, जिंदगी में सारे सिग्नल रेड हैं, तुम तो ग्रीन रहा करो। डियर सिग्नल, जिंदगी में सारे सिग्नल रेड हैं, ये सिग्नल की बात नहीं हो रही है, ये एक्चुअली जिंदगी की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, तुम तो ग्रीन रहा करो। वलीद भाई ने एकदम जेंजी वाला मार दिया है लाइन है। खत लिख दिया, ऐसे खत से तो मुझे प्यार है, और ये खत भेजते रहा करिए, ये खत आपके आते रहने चाहिए FM 107 के WhatsApp नंबर 666-22-107 पे। जब जब मैं सवाल करूं तो ये खत आते रहने चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आपको न्यूज़ बुलेटिन सुनने को मिलेगा FM 107 पे। कतर की और दुनिया की तमाम खबरों से आप होंगे मुतल्लिक। फिलहाल फजील के साथ थे आप, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे FM 107 पे एक नए खत के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दिल से देसी।

मिस्र के सदर अब्दुल फतह सीसी ने आज मिस्र के दौरे पर आए चीन के सदर शी जिनपिंग से काहिरा में मुलाकात के दौरान इलाकाई कशीदगी कम करने और खलीजी ममालिक की सलामती के तहफ्फुज के लिए कोशिशें तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन आलमी फोरम्स और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई व आलमी मामलों पर मिस्र के साथ राबता और तआवुन मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सामिन, खबरों के इस मरहले में एक मरतबा फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत आज काबीना का हफ्तवार इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें काबीना ने ईरानी हमलों की मजम्मत, क्लाउड कंप्यूटिंग और मुसाबकती कवानीन के मुसवद्दों की मंजूरी का ऐलान किया। रियासत कतर और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान आज तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं और दो तरफा तआवुन को मजीद फ़रोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर ने आबने हुरमत से गुजरने वाले सऊदी तेल बरदार जहाज सदर को ईरान की जानिब से निशाना बनाने और उसके अमले के अरकान की हलाकत पर शदीद

0: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
1: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
2: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीन एवरी संडे एंड थर्सडे एट 1 PM लाइव ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सरवर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सरवर। विद RJ सरवर।
3: साइबर क्राइम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम से निपटने के लिए गल्फ स्ट्रेटेजी की तश्कील के उन्वान से दोहा में एक वर्कशॉप का आगाज किया गया। वजारत दाखिला की मेजबानी में मुनक्किद इस वर्कशॉप का इंतजाम कॉपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ के जनरल सेक्रेटरेट ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स या UNODC के तावन से किया। वर्कशॉप में GCC ममालिक के नुमाइंदों के अलावा साइबर क्राइम के मैदान के मुतअद्दिद माहिरीन और मुतखस्सिसीन ने शिरकत की। इफ्तिताही इजलास में डायरेक्टर जनरल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मेजर जनरल मोहम्मद इब्राहिम अल जुफैरी, GCC जनरल सेक्रेटरेट के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर सिक्योरिटी अफेयर्स ब्रिगेडियर हमद अजलान अल उतैबी और UNODC रीजनल ऑफिस फॉर GCC कंट्रीज के गल्फ रीजन के रीजनल रिप्रेजेंटेटिव जज हेतम फुआद अली ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक जराइम के मुकाबले में गल्फ ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी तावुन और हम आहंगी को मजबूत बनाना, इस शोबे में मुश्तरका कोशिशों को फरोग देने और उभरते हुए साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए GCC की सलाहियतों को बेहतर बनाना है, जो तेजी से तब्दील होती टेक्नोलॉजी के तनाजुर में इलाकाई साइबर सिक्योरिटी निजाम को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होगा। 3 रोजा जारी रहने वाली इस वर्कशॉप में साइबर क्राइम के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, साइबर क्राइम से निमटने के लिए GCC के मुश्तरका फ्रेमवर्क की तश्कील और उसकी तरक्की, साइबर तहकीकात के निजाम को बेहतर बनाने और सरहदी सतह पर डिजिटल शवाहिद के तबादले के मैकेनिज्म को मजबूत बनाने जैसे मौजूदात पर बातचीत की गई। समीन, दूसरों की प्राइवेसी और हकूक का एहतराम करना हर फर्द की जिम्मेदारी है। किसी शख्स की रजामंदी के बगैर प्राइवेट जगहों पर उसकी तस्वीर या वीडियो बनाना कानूनन ममनू है। इसी तरह अवामी मकामात पर भी किसी की तस्वीर इस नीयत से लेना या शेयर करना कि उसकी तोहीन या बदनामी हो, जुर्म के जुम्र में आता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान भी एहतियात जरूरी है। किसी की तस्वीर, वीडियो या जाती मालूमात बिना इजाजत पब्लिश करना न सिर्फ प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है बल्कि कानूनी कार्रवाई का सबब भी बन सकता है। टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करें, दूसरों की हुरमत और प्राइवेसी का ख्याल रखें और कवानीन की पाबंदी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वजारत दाखला का कहना है कि प्राइवेसी का तहफ्फुज़ एक बुनियादी हक है। आपका इखलाकी और कानूनी फर्ज है कि दूसरों की जाती जिंदगी का एहतराम करें और किसी की भी तस्वीर या वीडियो को रिकॉर्ड या शेयर करने से पहले मुतालिका शख्स की रजामंदी हासिल करें। वजारत दाखला के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन खलीफा बिन हत्ताब अल काबी ने रियासत कतर में कुवैत के सफीर अहमद अब्दुर्रहमान अल शरीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी के मैदानों में तआवुन पर गुफ्तगु की गई और इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों का जायजा लिया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सामईन, आग से बचाव के लिए एग्जॉस्ट फैंस की बाकायदा सफाई और देखभाल नहायत जरूरी है। किचन या दूसरी दीगर जगहों का एग्जॉस्ट फैन पर वक्त के साथ गर्दो गुबार और

0: रोशनाई जमा हो जाती है, जो उसकी कारकर्दगी को मुतासिर करने के साथ साथ आग लगने के खतरे में भी इजाफा कर सकती है। इसलिए एग्जॉस्ट फैन की सफाई को नजरअंदाज ना करें और उनकी बाकायदा मेंटेनेंस यकीनी बनाएं। जो एग्जॉस्ट फैंस मुद्दत तक साफ नहीं किए जाते, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और गर्म होकर आग लगने का सबब बन सकते हैं। इसके साथ ये भी यकीनी बनाएं कि सफाई से पहले हमेशा बिजली का कनेक्शन ऑफ करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। इसके अलावा एग्जॉस्ट फैंस की बाकायदा जांच और सर्विसिंग किसी माहिर टेक्नीशियन से करवाना जरूरी है ताकि वो महफूज और बेहतर अंदाज में काम करते रहें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखिए, मामूली सी एहतियात भी बड़ा नुकसान रोक सकती है। बाकायदा सफाई और मेंटेनेंस ना सिर्फ एग्जॉस्ट फैन की उम्र बढ़ाती है बल्कि घर, दफ्तर या तिजारती मकाम को आग से मुमकिन खतरों से भी महफूज रखती है। वजारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन खलफ बिन हत्ताब अलकाबी ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यूएस अटर्नी हिज एक्सीलेंसी जेनियन फेरिस पीरो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर गौर-ओ-खौज करने के अलावा दो तरफा सिक्योरिटी के मैदानों में तआवुन के पहलुओं का जायजा लेने के साथ साथ इन्हें मजीद मजबूत और तरक्की देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। सामईन, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना एक संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है जो सड़क इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद की जानो सलामती के लिए खतरा बन सकती है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 94 के मुताबिक ऐसी खिलाफ वर्जी पर मुलजिम को कम से कम 1 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद और 10,000 कतरी रियाल से 50,000 कतरी रियाल तक का जुर्माना या इन दोनों में से किसी एक सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। वजारत दाखिला का कहना है कि आइए हम सब ट्रैफिक कानून और हिदायत पर अमल करने का अहद करें और सड़कों को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। समझदारी से काम लीजिए और महफूज ड्राइविंग कीजिए। दोहा में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट कोर्स का अख्तिताम कर दिया गया है, जिसमें वजारत दाखिला के कई अहलकारों के साथ ब्रदर मुल्क सीरियन अरब रिपब्लिक की वजारत दाखिला के अफसरान ने भी शिरकत की। कोर्स के दौरान सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के बुनियादी तसव्वुर, सिक्योरिटी खतरों की निशानदेही, उनकी जांच, तजजिए और उनसे निमटने के मुअस्सर तरीकों पर तफसीली ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का मकसद शिरका की पेशावराना सलाहियतों को फरोग देना, उनकी तैयारी को मजीद बेहतर बनाना और सिक्योरिटी परफॉर्मेंस की कारकर्दगी में इजाफा करना था। कोर्स के अख्तिताम पर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ब्रिगेडियर राशिद मोहम्मद अल हाजरी ने शिरका में सनदें तकसीम की और कोर्स में उनकी फ़ाल शिरकत को सराहा। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी ने अपने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रेंच रिपब्लिक के मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर लॉरेंट नूनिस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के मैदानों में दो तरफा तआवुन और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों का जायजा लिया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सामईन, टैक्सी, लिमोजीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस चलाने के लिए हर गाड़ी की कैटेगरी के मुताबिक मुकर्रर पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना जरूरी है। ट्रैफिक लॉ नंबर 19 ऑफ 2007 के आर्टिकल 30, 31 और 32 के मुताबिक दरकार पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर टैक्सी, लिमोजीन, बस या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून की पाबंदी न सिर्फ आपको खिलाफ वर्जियों से बचाती है बल्कि सड़कों पर अमन और ट्रैफिक सलामती को भी फरोग देती है। कानून पर अमल करें और महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाएं। सामईन, टैक्सी, लिमोजीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस चलाने के लिए हर व्हीकल कैटेगरी के मुताबिक मुनासिब पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना जरूरी है। ये लाइसेंस मुकर्रर शुदा शराइत और कानूनी कारकर्दगी के मुताबिक जारी किया जाता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: इलाज सिर्फ दवा नहीं
1: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई
0: मिथ्स की खोल प्रैक्टिकल टिप्स हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे
1: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ
2: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: यानी आप लोगों के पास पहुंचने से पहले पहले हमें क्या करना है. तो उसके बाद जो आप इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वो रूट कैनाल कराई है और इसी तरह से अगर वो चोट लग जाए उसमें तो फिर क्या हम कर सकते हैं उसमें. बाजू का तो उस पर जो क्राउन लगा होता है वो भी टूट जाता है या फिर बहुत मुश्किल आ जाती है.
1: जैसे आपने क्राउन की बात की और अगर आपने पहले ही कोई प्रोसेसेस लगवाई हुई हैं जो कि क्राउन है ब्रेज है कुछ भी हो सकते हैं तो अगर वो निकल गया तो आप अगर वो जिस व्हाटएवर कंडीशन में वो आपके पास है आपने उसको संभाल के रखना है.
0: अच्छा
1: जी. किसी कंडीशन में ऐसे होता है कि वही जो आपका क्राउन या ब्रिज बना हुआ है वो दोबारा भी लग सकता है अगर वो बहुत ज्यादा टूटा नहीं है. ठीक है.
0: अच्छा,
1: तो उसकी उसकी फिटिंग चेक करते हैं अगर फिटिंग सब कुछ नॉर्मल हो क्योंकि अक्सर औकात जिस तरह की उसका शेप होती है क्राउन वैसे ही बाहर निकल आता है तो उसको हम दोबारा से लगा सकते हैं. इसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया कि कोई पार्ट या कॉर्नर टूट गया वो हम फिलिंग से ठीक कर सकते हैं. सारा जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्रैक्चर है किस टाइप की इंजरी हुई है किस टाइप का ट्रॉमा है दांत के साथ.
0: अच्छा।
1: अगर ऊपर वाले पार्ट में है तो फिलिंग से ठीक हो जाएगा और अगर उसकी कुछ डीप लेयर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है जैसे दांत के अंदर डेंटिन होता है और जो उसकी नर्व सप्लाई होती है उसको हम पल्प कहते हैं
0: जी.
1: तो अगर जो है वो ट्रॉमा आपके पल्प तक पहुँच गया तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें काफ़ी हद तक रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ जाती है. वो भी दांत की कंडीशन पर डिपेंड करता है क्योंकि जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो बाज़ औक़ात दांतों के सिलसिले में ऐसा होता है कि स्टार्ट में ऐसा पेन उस तरह से नहीं होता
0: जी.
1: लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ हफ्तों के बाद जो है वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है. इसमें
0: अच्छा।
1: कलर चेंजेस भी आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोग होते हैं उनको सेंसिटिविटी भी होती है ठंडा गर्म स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा लगना तो ये कुछ दिनों के बाद जो अपने सिम्टम्स हैं वो शो करता है.
0: इसमें डॉक्टर साहब आपने कलर चेंज की बात की तो क्या वो जो ब्लैक सा हो जाता है
1: ठीक? जी जी बिल्कुल.
0: या और कोई
1: बिल्कुल बिल्कुल जैसे कोई इंजरी हुई तो उसके बाद जो उसका कलर चेंज होता है इसका मतलब है कि उसकी जो नर्व और ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं.
0: अच्छा
1: जी. तो बाजू का जो है वो दांत वाइट से पहले हल्का सा पिंक कलर का होता है और उसके बाद फिर वो ग्रे और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. तो इसका मतलब है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है जो उस पल्प होता है वो इन्वॉल्व हो चुका है उसमें चेंजेस आ रही हैं. वो नेक्रोसिस हो सकती है जो कि शो करता है कि दांत जो है वो ऑलमोस्ट डेड है. तो ऐसी कंडीशंस में आपने कभी भी घर में खुद से ट्रीटमेंट नहीं करने आपने डॉक्टर के पास जाना है. वो उनको अच्छी तरह क्लिनिकल असेस करेंगे और हमेशा एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है. एक्सरे में चीज़ क्लियर होती है कि नीचे आया जो रूट है उसके सराउंडिंग्स उसकी कंडीशन कैसी है. ये एज पे भी डिपेंड करता है. अगर फॉर एग्जांपल अडल्ट एज है तो उसमें हम क्योंकि नीचे वाले दांत आ चुके होते हैं जो परमानेंट दांत होते हैं तो फिर उसको हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चों में उसका ट्रीटमेंट होता है ना
0: जी.
1: क्योंकि वो मिल्की टीथ होते हैं और नीचे जो है परमानेंट दांत आ रहे होते हैं तो उनका थोड़ा सा सेपरेट ट्रीटमेंट होता है.
0: तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि कोई भी ट्रामा है और ज़्यादा हो गया है या उसमें पूरा जो उसका टीथ है वो इन्वॉल्व है दांत तो उसमें रूट कैनाल करनी ज़रूरी होती है ट्रामा में या
1: नहीं? नहीं देखिए ये काफ़ी लोगों की मिथ बनी हुई है कि कोई भी ट्रॉमा हो या कुछ भी हो तो वो या तो दांत या बिल्कुल वो या तो वो रूट कैनाल करवाएंगे या वो ये समझते हैं कि अब दांत को निकालना पड़ेगा
0: जी.
1: इससे मैंने पहले कहा कि अगर दांत किसी ट्रॉमा में वो बाहर भी निकल आता अपने सॉकेट से तो बाज़ औक़ात वो जो दांत है वही अपनी अगर हम दोबारा लगा दिया जाए अगर वो जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी क्लिनिक पहुंच जाए
0: बिल्कुल
1: लेट ना करे और उसने रूट को जो है जड़ है उसकी उसको साफ ही रखा हो उससे ना क्लीन किया हो तो बाज़ औक़ात जो है वही दांत दोबारा रीम्प्लांट कर दिया जाता है. ठीक है. और इसके अलावा कभी इंजरी में दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ टाइम के बाद उसको स्प्लीन कर दिया जाता है वो अपनी जो ग्रिप है पकड़ है वो दोबारा से पकड़ लेता है तो वो डिफरेंट उसमें सिनेरियो आ जाता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें रूट कैनाल की जाए. जैसे मैंने कहा कि जो अगर बच्चों के दांत हैं जो मिल्की टीथ होते हैं उनमें अगर इस तरह का कोई इशू हो जाए अगर दांत बाहर निकलाए तो मिल्की जो दांत है जो डिसीडियस टीथ जिसे हम कहते हैं वो हम कभी भी वापस दोबारा नहीं लगाएंगे. ये जो दोबारा लगाने वाली बात है ये सिर्फ अडल्ट पेशेंट में होगी जो परमानेंट दांत होता है. दूध का दांत हम कभी भी दोबारा नहीं लगाते क्योंकि नीचे जो है वो एक परमानेंट दांत आ रहा होता है. ठीक है. तो हम उसमें कभी भी वो नहीं लगाते इसलिए बच्चों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स का.
0: ठीक है. ये डॉक्टर साहब आपने कहा कि वो जब दांत से लगाते हैं उसी सॉकेट में और वो ऐसे ही जैसे इम्प्लांट हो जाता है
1: जी.
0: तो क्या वो रूट समेत बाहर आ जाता है कि रूट्स

0: है वो अंदर ही होती
1: ये है। ये ट्रॉमा पे डिपेंड करता है।
0: अच्छा,
1: बाजू का आधी रूट अंदर ही रह जाती है, बाकी बाहर आ जाता है, उस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो परमानेंट दांत है तो वो फिर हम रूट को निकाल के तो वो इम्प्लांट जो एक सेपरेट ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: इन केस अगर कोई परमानेंट टूथ जो है वो पूरा निकला है तो उसको हम एज इट इज सॉकेट के अंदर दोबारा लगाते हैं, उसको रीइम्प्लांट किया जाता है। कई बाजुकात में जो टेम्परेरी स्प्लिंट होते हैं वो पहना दिया जाता है पेशेंट को, ताकि जो दांत अपनी जगह पे है वो उसी जगह पे कुछ अरसा रहे, ताकि अगर उसकी नेचुरली ग्रिप बन सकती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर उसको तारों के साथ कभी लगा दिया जाता है ताकि टाइम के साथ उसको असेस किया जाता है।
0: ठीक, अभी ये तो आपने बता दिया कि बच्चों में जैसे कि बहुत ज़्यादा एक पैनिक भी हो जाते हैं पेरेंट्स के दांत निकल गया है, और अगर मिल्की टीथ आपने कहा कि मिल्क टीथ में तो वो अगर हैं तो फिर आप नहीं उसको कर
1: जी बिल्कुल जी। अगर मिल्की टीथ हैं और उनमें कोई ट्रॉमा हुआ है वो दांत निकल आए तो फिर हम ऐसा है कि उसको दोबारा से वो
0: लगाते नहीं
1: है, इम्प्लांट नहीं करते, क्योंकि नीचे जो हमारा नेचुरल टूथ आ रहा होता है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। अगर हम वो लगाएंगे नीचे इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी जो नीचे वाला दांत है उसको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जो मिल्की टीथ होता है उसने वैसे भी टाइम के साथ निकल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एज क्या है बच्चे की, जब वो ट्रॉमा हुआ है उसके जो नीचे दांत आ रहा है उसकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है।
0: अच्छा।
1: ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, और इसके लिए जो है वो पेरेंट्स को बच्चों को क्लिनिक लाना पड़ेगा, घर से ये खुद से वो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ एक्सरसाइज करने पड़ते हैं उस पर ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि नीचे कितनी डेवलपमेंट हुई है, जो नीचे परमानेंट दांत था, और कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, तो ये क्लिनिकल सारा एग्जामिन किया जाता है।
0: ठीक है, इसमें ये सारी जो चीज़ें इसमें यही कि उसमें एक्सरे कराना और ये जो है मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें बाज़ का ऐसा होता है कि खुद से ही जो टीथ है बगैर किसी चोट के, ट्रामा भी नहीं है, फिर भी वो दांत गिर जाते हैं, जैसे कुछ एजिस पे जैसे आपने कहा डिपेंड करता है, तो वो क्या किस तरह से?
1: देखिए, वो जो नेचुरली है वो डिफरेंट उस पर आ जाती हैं कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जांपल उनके मसूड़े कमज़ोर हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं, अगर कोई दांत उस तरह से साफ नहीं करता तो सबसे पहले पेरियोडोंटाइटिस होता है, जो मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे मसूड़े हैं वो बेसिकली एक कवर है हड्डी का, हड्डी के अंदर हमारा दांत है, तो जैसे हम क्लीन नहीं करेंगे वहाँ पे फूड पार्टिकल्स आएंगे, ऐसा ऐसा जो हमारी पकड़ है उस दांत की वो कम होने लग जाती है। तो जिसको भी मसूड़ों का मसला हो, गम्स का मसला हो, तो उनकी जो ग्रिप जैसे कम होगी तो वो दांत खुद से बाहर आ जाते हैं। ये मोस्टली उन एजेस में होता है, खासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या उन्हें कोई भी मेडिकल रीज़न हो, इशू हो, तो उनमें जो है दांत ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाते हैं, विद एज भी ये चीज़ जो है वो सामने आती है।
0: ठीक, तो इसमें भी फिर आप उसमें इम्प्लांट करते हैं या किस तरह से, जैसे पेशेंट आपके पास आए तो कोई एग्जांपल हमें दीजिए कि किस तरह के जो पेशेंट हैं वो इस तरह के जो ट्रामा हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं?
1: ज़रूर, सबसे पहले जो डेंटल ट्रीटमेंट है ये पेशेंट्स की एज
0: जी
1: ठीक है और उसकी जो लिविंग हैबिट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस के, ठीक है, और सबसे जो मेन है वो जो उसके मुंह के अंदर बोन है वो उसकी कंडीशन कैसी है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हेल्दी है, बाय एनी चांस उसका दांत जो है वो निकलना पड़ गया, अगर हमने उस पर इम्प्लांट करना है तो एक तो उसको मेडिकल कोई इशू नहीं होना चाहिए, सबसे जो आइडियल सिनेरियो होता है, और एक अच्छी वहाँ पे जो बोन है उसका मौजूद होना ज़रूरी है। जब वो होता है तो वहाँ पे हम इम्प्लांट कर सकते हैं। इम्प्लांट के लिए डिफरेंट टाइमलाइन होती है, कम से कम जब हम स्टार्ट करते हैं दांत निकालने के बाद एक इम्प्लांट जो स्क्रू होता है वो हम हड्डी के अंदर रखते हैं, उसके बाद 2 से 3 महीने उसका वेट करते हैं, जब तक उसकी पकड़ बन जाती है तो उसके बाद ऊपर उसका जो कवर होता है वो हम लगा देते हैं। तो ये तकरीबन 3 से 6 माह का टाइम होता है, लेकिन ये हम ट्रॉमा के अंदर काउंट नहीं करेंगे। इन केस फॉर एग्जांपल अगर कोई हादसा होता है और दांत जो है बिल्कुल 2 हिस्सों में हो जाता है, या दांत गिर के निकल जाता है और वो मिलता नहीं है या वो दोबारा लग नहीं सकता, फिर उस सिनेरियो में हम इम्प्लांट करते हैं, या कोई भी फिक्स ब्रिज कर सकते हैं, जो भी पेशेंट की टाइप होती है उस पर डिपेंड करता है।
0: अच्छा, ठीक। और ये जो ख़ासतौर पर जैसे आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया तो उसमें बहुत सारे जैसे गम्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इन्फेक्शन है वो हो जाती है, तो ये भी एक वैसे तो हो जाती है मगर ये कि एमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक।
1: ये तो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं से आपका दांत निकला है किसी जगह से और आप वहां पे नहीं लगाते तो टाइम के साथ क्या होता है जो आपकी जो बोन होती है हड्डी होती है वो रिजॉल्व होने लग जाती है वो नीचे की तरफ जाने लग जाती है जिसकी वजह से जो आपके बाकी दांत है वो भी इफेक्ट करते हैं जो क्योंकि वहां पे जो स्पेस बनती है वो बाकी दांतों में भी स्प्रेड कर जाती है।
0: ठीक सब और कोई वजूहत हो सकती हूँ जैसे कि हम बात करते हैं कि क्या क्या कौन कौन से जो हैं वो या रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आप हमें बता सकते हैं।
1: जी रिस्क फैक्टर खास तौर पे अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो जो हमारे चिल्ड्रंस आ जाते हैं जो कि बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा देखभाल उनकी करनी है क्योंकि वो जब खास तौर पे स्कूल में होते हैं या वो वैसे प्ले ग्राउंड में जब खेल रहे होते हैं तो कोई भी किसी भी इंजरी की वजह से उनके दांतों को नुकसान हो सकता है तो एक तो उनको थोड़ी सी एहतियात भी बतानी है साथ साथ इंस्ट्रक्शन देनी है और उनका जो खास तौर पे टोटलर्स हैं उनको आपने 24/7 जो वो देख के रखना है क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए भी पेरेंट्स आगे पीछे होते हैं तो वो कभी बेड से या कहीं से भी गिर सकते हैं तो उनको वो ये चोट लग सकती है और मोस्टली जो है ये इंजरीज जो हैं ये बच्चों में ही ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जो टीनएजर्स हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स इंजरी होती है और इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी जो फॉर एग्जांपल विद एज जो है वो कभी हो जाए उनसे गिरना हो जाए तो वो भी दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है या इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है ऐसा और उसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा सीवियर इंजरीज होती हैं जिसमें आपका लिप इन्वॉल्व हो सकता है जी कोई भी टिश्यू जो है वो इंजरी हो सकती है उसकी।
0: डॉक्टर जैसे कि ये ब्रेसिस लगाए जाते हैं वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस में हो जाती हैं वो उस पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या उसकी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है या क्या है या तो अक्सर जो ब्रैकेट्स हैं जैसे हमने पहले भी आपसे बात की थी कि वो टूट भी जाती हैं कभी वो बिल्कुल शार्प एजेस हो जाते हैं तो वो
1: जी ब्रेसिस में भी ऐसे इमरजेंसी हो सकती है जैसे आपने खुद बताया कि कोई ब्रैकेट टूट गया है या कोई वायर ब्रेक हो गया किसी भी रीज़न की वजह से क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डाइट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने बहुत एहतियाती खाना खाना है तो इन केस वो अगर उसको इग्नोर करें और फास्ट फूड खाए बर्गर या कोई भी इस तरह की सख्त चीज़ तो ब्रैकेट या वायर टूटने से शार्प एज जो होता है वो आपको लिप पे या टंग पे या चीक पे लग सकता है तो जितना प्रोलोंग होगा वहाँ पे वो ज़्यादा वहाँ पे मसला करेगा इसलिए जैसे ही आपको ऐसा कोई सिनेरियो सामने आए तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएं।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: इसमें डॉक्टर साहब जनरल हम बात करें, अगर जैसे कि कोई चोट लगी है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स या अलामत हो सकती हैं, कि स्वेलिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई या कुछ और क्या क्या हो सकता है?
1: इसके अलावा जो सबसे मेन है वो ठंडा गर्म लगता है,
0: सेंसिटिविटी
1: स्टार्ट हो जाती है
0: जी, ठीक।
1: इसके अलावा जो है पेन बहुत ज्यादा होता है।
0: अच्छा,
1: फ्रैक्चर की कुछ अलामत ऐसे भी होती हैं कि अगर कोई चीज़ वहाँ से कोई इंसान खाता है तो वहाँ पे अगर उसको पेन हो रही है, इट मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई ट्रबल है जिसको डायग्नोज क्लिनिक जाके करवाना पड़ेगा। और इन केस अगर कोई फ्रैक्चर है तो उस केस में हमें फिर दांत को निकालना पड़ जाता है। और अगर कोई ऐसा फ्रैक्चर हो जो कि रिस्टोरेबल हो सकता हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ एडहेसिव होते हैं वो हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राउन टूटता है, किसी का दांत का कोई भी हिस्सा टूटता है, उस हिस्से को जैसे मैंने पहले भी इसकी वजाहत की कि उसको संभाल के रखना चाहिए। कई दफा होता है कि वो जो दांत का हिस्सा होता है वो हम दोबारा से लगा सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट आपको वहाँ से करवाना नहीं पड़ता। इनकेस अगर आपका वो पार्ट वहाँ से टूट जाता है और बहुत ही मिनिमल फ्रैक्चर हुआ है या ट्रॉमा हुआ है तो वो हम कंपोजिट फिलिंग होती है वो भी हम कर सकते हैं। और अगर ज्यादा कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी है तो वो आ जाके फिर रूट कैनाल करनी पड़ती है, इन केस अगर जो ट्रॉमा है वो बहुत ज्यादा डीप है।
0: ठीक ठीक। इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा कि उसमें फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, ये जो हमारा दांत है उसके अंदर फ्रैक्चर होगा, या जैसे जाहिर है सॉकेट है, बोन है तो वो भी एक बोन है तो खुदा नखास्ता वहाँ पर भी
1: जी, ये जो ट्रॉमा है ना ये उसकी डिपेंड करते हैं कि कितनी ये फोर्स के साथ हुआ है, ट्रॉमा की टाइप क्या है। कई कई ट्रॉमा में आपका जो पूरे मुंह की हड्डी है वो टूट जाती है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं बाज़ूकात बहुत ज्यादा वो खतरनाक किस्म के होते हैं जिसमें आपका जो जबड़ा है वो टूट सकता है, यहाँ पे जो हड्डी होती है जो हम TMJ कहते हैं वो डिसलोकेट हो सकती है, इवन आपकी जो बाइट है वो बंद करना मुतासिर हो जाती है। कई कई ट्रॉमा में तो आपके जो वो हड्डी जैसे मैंने बोला यहाँ पे लॉक हो जाती है, आप मुंह नहीं खोल सकते
0: जी।
1: तो ये बहुत ज्यादा सवेर इंजरीज हो जाती हैं। और इस केस में जो आपका ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है उसको दिखाना आपने लाजमी है।
0: ठीक ठीक। और ये कि वो तो अगर इमरजेंसी में गए हैं तो वो खुद ही रेफर कर देते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, वो टाइप ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है। और जैसे ये मैंने जो चीजें बताई हैं ये जो हमारे सुनने वाले ये घबराना चाहें कि ये बहुत ज्यादा सवेर है, लेकिन ये होता है खासतौर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स में कोई बहुत सवेर इंजरी हो जाती है तो ये चीजें होती हैं, ये जो आपके दांत हैं वो बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं, खाली एक नहीं मल्टीपल टीथ, डिपेंड करता है कैसी आपको इंजरी हुई है। तो इस केस में वो जो है रेफर कर देते हैं कि आप जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है आप उसको जाके एक दफ़ा दिखा दें, क्योंकि वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सवेर केसेस में होता है जिसमें अक्सर आपके जो जॉज हैं जो उनकी सर्जरीज करनी पड़ती है, जब आप मुंह ज़्यादा ना खोल सकें या आपकी जो TMJ है यहाँ पे जो हड्डी है वो ज़्यादा अफेक्ट हुई है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं।
0: ठीक ठीक। इसमें लोग सब बाज बच्चे बाजू का ऐसे होता है कि उनके जो मिल्क टीथ हैं वो शेड नहीं हो रहे होते ज़्यादा, तो क्या ये कभी कहीं चोट लगी होती है उस वजह से वो अंदर को प्रेस हो जाते हैं, या और क्या वजह हो सकती है?
1: अच्छा, ये डिपेंड करता है उनकी हिस्ट्री पे, अगर उन्हें कोई ऐसा कभी चोट लगी हो या कहीं पे टक्कर हो सकती है, लगी हो सिर्फ उस जगह पे और सिर्फ उसी जगह पे दांत जो है वो निकल नहीं रहे अपने टाइम पे, बाकी जो दांत है वो अपने टाइम पे निकल भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो फिर उसको हम चेक करवाया जा सकता है। अदरवाइज जो आपने बात की दांत निकलने का और आने का, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, कुछ बच्चों में इसकी डिलेड इरप्शन होती है, कुछ बच्चे जो है उनमें दांत जल्दी गिर जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं, और कुछ में जो है वो लेट गिरते भी हैं और लेट आते भी हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये जो है थोड़ा सा वेरी करता रहता है।
0: इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस का ये समझा जाता है शायद बच्चे कहीं गिरे हैं और वो जो प्रेशर से वो जो टीथ हैं वो अंदर ही हो गए हैं और बाहर नहीं निकल रहे।
1: बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हर वक्त बच्चे तो आपके सामने नहीं रहते, इस तरह का कभी भी कोई डाउट हो तो आप एक दफ़ा जाके क्लिनिकल असेसमेंट करवा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा उस तरह से कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बच्चों के दांत जो है आज कल जो मैं देख रहा हूँ आजकल थोड़ा सा लेट ही आ रहे हैं कि शायद हमारी डाइट ऐसी है बिल्कुल ये उन ये वो वाले फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है कभी जो है दांतों की डेवलपमेंट है वो लेट होती है। तो यूसी जो है
0: वैसे नॉर्मली जो है आपके पास है, हम तो ये समझते हैं या सारे ही कैचा इनकी फैमिली में जुदा थे हैं इस एज में आए हैं तो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो
1: ये हेरिडिटी
0: है जी, तो ऐसा भी है या फिर जैसे आपने कहा कि डाइट्री
1: जी जी बिल्कुल ऐसा भी होता
0: भी
1: है हेरिडिटी फैक्टर भी होता है अगर बिल्कुल
0: कुछ बिल्कुल 5 मंथ्स में भी मतलब आते हैं
1: एक्चुअली इसमें एक और टर्म होती है न्यू नेटल टीथ
0: जी
1: फॉर एग्जांपल बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो उसके मुंह में तब भी दांत होता है तो ये डिफरेंट कंडीशन होती है लेकिन मोस्टली जो है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर जो है वो दांत आना स्टार्ट होते हैं
0: ठीक है
1: जो आइडली है और वरना अगर कोई कुछ सिनेरियोस में ऐसा भी होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक या दो दांत होते हैं तो वो एक डिफरेंट केस आ रहता है लेकिन ऐसा जिस तरह से कोई भी परेशानी या टेंशन लेने वाली बात नहीं होती
0: जी।
1: अगर एक साल तक भी दांत नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है आप थोड़ा सा वेट कर लेकिन अगर 2 साल तक नहीं आ रहा फिर आप जाके चेक करवा लें क्योंकि अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि लेट हो रहा है तो फिर आपको असेसमेंट जरूरी है आपने बिल्कुल 1 से 1.5 साल तक या 2 साल तक वेट करे नहीं आता तो फिर आपने लाजमी चेक करवाना है और अगर आ जाए तो वेल एंड गुड
0: जी डॉक्टर साहब अपने डाइट की बात की कि मतलब डाइट जो है वो भी डिपेंड करता है थोड़ा सा मैं बताइएगा क्योंकि हमारे लिसनर्स जो हैं माएँ उसमें शामिल हैं कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के जैसे 6 मंथ्स का हो गया है और उसकी डाइट में मतलब डाइटरी क्या क्या हेल्पफुल डाइट हो सकती है
1: जी बिल्कुल आपने बहुत अहम सवाल किया इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है बच्चों के दांतों की हमने हिफाजत करनी है और वो सबसे पहले तो पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी आती है क्योंकि जो बच्चे उनमें फीडर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा आदत होती है और आजकल जो है वो ज़्यादा ट्रेंड ये है कि बल्कि शुरू से चलता आ रहा है कि फीडर्स के अंदर जो हम शुगर ऐड करते हैं एक वो ऐड करते हैं इसके अलावा जो बच्चे हैं वो रात को फीडर पीते पीते सो जाते हैं और जो वो फीडर है वो उनके मुँह के अंदर रहता है इसका मतलब है जितनी देर वो मुंह के अंदर रहेगा वो शुगर जो है वो सारा एक्सपोज होता रहेगा दांतों के साथ और वो जितना देर एक्सपोज होता रहेगा दांतों के साथ उसका कॉन्टेक्ट रहेगा वो उतने ही दांतों को खराब करेंगे जिसे हम बोटल बेबीज कैरी कहते हैं ठीक है बेबी बोटल कैरीज जो है ये बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है बच्चों में जो कि फीडर लेके सो जाते हैं और उनके दांतों पे वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होने लग जाते हैं तो जितना एक्सपोजर होगा मीठे के साथ उतना जल्दी ही आपके दांत खराब होंगे और कोशिश करें कि कोई भी मोटिवेशन दे के बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रशिंग की आदत डालें ब्रशिंग शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि किस टाइम से ब्रशिंग हमें स्टार्ट करनी है
0: उससे पहले एक और क्वेश्चन है जैसे आपने कहा कि जो उसमें शुगर भी ऐड करते हैं पेरेंट्स तो फार्मूला मिल्क अगर दे रहे हैं तो क्या उसमें भी यूज करते हैं
1: जी शुगर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज में ही होते हैं तो कोशिश करें कि जैसे ही बच्चा अपना जो डाइट है जो उसका लंच बनता है ब्रेकफास्ट जो भी बनता है जब पूरा हो जाए फीडर कंप्लीट हो जाए आप उसके मुंह से निकाल लें रात को सोने से पहले अगर आपने दिया उसको जब भी आप फीड कर रहे हैं उसको जैसे ही कंप्लीट होता है आप निकाल के रख लें ठीक है ये आपने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हैबिट बनाएंगे वो डिवेलप होती रहेगी
0: ठीक इसमें पूछना चाहूंगी जाहिर है माएं सुन रही हैं और जो कि कोई भी मिल्क दूध फार्मूला है तो उसमें भी ऐड कर दी जाती है एक्स्ट्रा जो शुगर है तो क्या बच्चों के लिए ये नुकसानदेह तो आपने कहा कि उसके टीथ प्रॉब्लम है मगर क्या ये ज़रूरी है कि ऐड की जाए मतलब उसमें जो पेरेंट्स हैं या कोई नुकसान क्या हो सकता है हाँ ये पूछना ये चाह रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल की जाती है शुगर तो क्या वो बच्चे की हेल्थ के लिए या उसके दांतों के लिए तो ऑलरेडी आपने बता दिया मगर क्या ये ज़रूरी है
1: देखिए जो बच्चों की आदत है वो हम जैसे ही वो डेवलप करते रहेंगे वो वैसे बन जाएगी अगर हम स्टार्ट से ही शुगर ऐड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में तो उनको उस चीज़ का टेस्ट पता ही नहीं चलेगा और वो यूज टू नहीं होंगे तो कोशिश की जाए कि विदाउट जो है वो हम शुगर खासतौर पे मिल्क दें और इसके अलावा जितनी देर तक हो सकता है क्योंकि जैसे उनका एक्सपोजर मीठे के साथ होता है चॉकलेट्स के साथ या डिफरेंट चीज़ों के साथ तो वो उनको फिर उस चीज़ की आदत लग जाती है लेकिन कोशिश ये की जाए कि स्टार्ट में बिल्कुल कोई भी स्वीटनर ऐड ना किया जाए कोई भी शुगर किसी भी फॉर्म में हो वो अपना ऐड करें और वो बच्चा जो है उसी आदत में डल जाएगा
0: जी और बिल्कुल आप जो कहा जा रहा है कि 1 साल तक बच्चे को सॉल्ट भी नहीं दें और शुगर जो है वो एक्स्ट्रा मतलब वो भी नहीं दें नेचुरल जो फ्रूट्स में है या कुछ है वो तो ठीक है ऐसा ही है
1: जी बिल्कुल नेचुरल चीज़ें जितनी दी जाएँ वो दांतों के लिए अच्छा है तो और जितना मीठे से कम एक्सपोज करवाया जाए वो भी उसके लिए बेहतर है क्वांटिटी की मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्वांटिटी जो है वो आप जितनी मर्जी रख लें जो एक्सपोजर टाइम है वो कम होना चाहिए फॉर एग्जांपल एक ही अगर आप मैं एग्जांपल देता हूँ जो चॉकलेट है अगर आप एक टाइम में बच्चे को खिला देंगे वो इतना नुकसानदेह नहीं है कि अगर वो एक ही चॉकलेट बार बार हाफ ऑफ करके दी जाए फॉर एग्जांपल वही जो चीज़

0: है वो तीन चार दफा डिफरेंट टाइम में देते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर एक ही टाइम पे मीठा कंज्यूम कर लिया जाए।
1: ठीक डॉक्टर साहब, इसी से एक और बात, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो फ्लेवर्ड कोई भी जूसेस हैं, फ्लेवर्ड ही होते हैं जो बाहर से जो मिलते जी हैं, तो वो कितने किस हद तक जो है बच्चों को देने चाहिए?
0: जो सीजनल फ्रूट होता है, सीजनल फ्रूट होता है वो जो फ्रेश होता है वो ही हमेशा देना चाहिए। जितने भी जूसेस होते हैं जो हमारे ग्रोसरी स्टोर में पड़े होते हैं ये इतने फायदेमंद नहीं होते हैं। ठीक है, ये बच्चे जो हैं वो जितनी बुरी चीज़ होती है वो उतने इसके शौकीन हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि जो आप घर में खुद से दे सकते हैं उससे अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। आप फ्रेश फ्रूट लेके आए जो भी सीजनल होता है उसका बच्चों को आदि बनाए कि वो ले सकें। उसके अगर वो जूस पीते हैं तो जूस वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप उसको बाइट्स में डिफरेंट शेप्स में बना के अब तो मिल जाते हैं ताकि उनको वो उतना अट्रैक्ट करे और वो खा सकें।
1: ठीक ठीक जी सर जी, बहुत अहम जो सवाल था आपकी तरफ से भी ज़ाहिर है सबके जहनों में होता है, ख़ासतौर पर जो माएँ हैं वो सुन रही हैं कि किस तरह से हमें करना है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा हमें आसान सा जो तरीका है वो बता दिया है। तो यही बात कि जो इजी एक वे है कि जूस है, मैंगो जूस बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि क्योंकि मीठा होता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, और उसमें हमें नहीं पता कि मैंगो शामिल है या नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खुद अगर हम बनाएं किसी भी उसमें वे में मिल्क शेक में या जूस भी बनाया जा सकता है तो वो हमें बच्चे को देना है क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो सबसे अहम है। जी डॉक्टर साहब, अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं और अगर ट्रीट ना किया जाए या इग्नोर कर दिया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?
0: सबसे पहले तो स्केली स्टार्ट होती है, दांत को कीड़ा लगना। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे शायद वो हमारा जो सवाल है वो मिक्स हो गया, वो पूछना शायद अंदर हो गया कि दांत को जो ब्रशिंग है वो हमने कब से स्टार्ट करनी है।
1: जी जी,
0: वो तो अभी अगर कोई सुनने वाला हो तो उसके वो वेट कर रहा हो इसके जवाब का। तो ये है कि जब भी बच्चों के मुंह के अंदर दांत आना स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक भी दांत आ जाता है तो हमने ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है। आपने वेट नहीं करना 6 मंथ्स का, 1 ईयर का या 2 ईयर का कि और मजीद दांत है या बच्चा जो है वो खुद से स्टार्ट करे, ऐसा नहीं है। एक भी दांत आता है ऊपर नीचे कहीं भी तो आपने उसको ब्रशिंग स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है
1: जी।
0: अब जैसे आपने कहा कि क्या इसका सबसे पहले स्टार्ट होता है तो केरी दांत को जो कीड़ा लगना है वो स्टार्ट हो जाता है।
1: ठीक है,
0: क्योंकि अगर मीठा लगता है और उसको हम क्लीन नहीं करते तो ऐसा ऐसा वो दांत को बुढ़ना स्टार्ट कर देगा, वो ऊपर से स्टार्ट करेगा वो अंदर डीप चला जाएगा। और सबसे पहले जो वो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं ठंडा गर्म के, सबसे पहले आपको जो ठंडा गर्म के सिम्टम्स आएंगे और इसके अलावा अगर वो डीप जाता जाए और अगर आप ब्रशिंग हैबिट्स नहीं रख रहे तो वो फिर पेन में डेवलप हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट भी जो है वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। अगर केरीज हैं और वो बहुत ही सुपरफिशियल है तो हम वो फिलिंग से ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज उसके डिफरेंट फिर ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं।
1: ठीक, ये बच्चों में हो सकता है। इसमें डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि एक भी अगर दांत जो है वो आ जाता है तो ब्रशिंग स्टार्ट, तो शुरू में तो बिल्कुल छोटे, बहुत ही छोटे से दांत होते हैं, तो फिर क्या करें हम?
0: देखें वो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, पेरेंट्स भी एग्री करेंगे कि बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं करवाने देता। ठीक है, तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टॉयज की शेप में ब्रशिंग आते हैं, ऐसे आपने सॉफ्ट ब्रश लेके तो आप उसको यूज करें। आजकल तो वो छोटे से ब्रशेज आते हैं जो आप अपने फिंगर पे लगा सकते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं जो कि नॉन कंप्लायंट होते हैं आप उनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उनको टॉयज की शेप में जो ब्रशेज होते हैं वो दिखा के ताकि वो अट्रैक्ट करें और उसको खुद से पसंद करें करना। तो आप डिफरेंट आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो भी सूटेबल लगती है बच्चों में, तो ये पेरेंट्स वो खुद कोई ना कोई वो नया तरीका अपना लेते हैं।
1: ठीक ठीक, इसमें कोई पेस्ट वगैरह का टूथपेस्ट वो भी स्पेशल कोई होती है बच्चों के लिए या
0: बच्चों में फ्लेवर्ड टूथपेस्ट आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं जी। बच्चों में जो एक्सेसिव जिसमें फ्लोराइड होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे फ्लोराइड की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो हम बच्चों में नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे जो वो स्पिट नहीं कर पाते तो वो जो जब फ्लोराइड फॉलो करेंगे क्योंकि उनके परमानेंट दांत अभी बन रहे हैं तो वो फिर उनको अफेक्ट करेंगे और वो फ्लोरोसिस हो सकता है जिसमें फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। तो जो वाइट स्पॉट्स कभी आपने देखे होंगे कुछ लोगों में होते हैं, तो वो उसकी वजह से होता है जो ज्यादा फ्लोराइड कंटेंट होता है
1: जी। तो सब कुछ बच्चों में जैसे के जो दांत हैं जैसे ग्रे नहीं है मिल्ट्री थी हैं मगर उसमें स्पॉट्स होते हैं ग्रेश कुछ इस तरह से, क्या कोई डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं
0: जी? बिल्कुल, कैल्शियम की डिफरेंट विटामिंस की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने फ्लोराइड का बताया जो कि चौकी वाइट अपीयरेंस आ जाती है, ये जब बेबी डेवलप हो रहा होता है अगर फ्लोराइड कंटेंट किसी भी डाइट या किसी भी वजह से ज्यादा हो जाए तो उससे भी इफेक्ट होता है ये चीज।
1: ठीक, और फिर उसमें वेट करते हैं कि जो है मिल्टी जो है वो गिर जाए या फिर आप कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि उस जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का पानी कैसा है।
1: अच्छा।
0: पानी पे बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है क्योंकि अक्सर का जो है पानी में फ्लोराइड कंटेंट काफी ज्यादा होता है तो फिर वो ये चीज कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाती है। अगर जैसे ही पानी चेंज हो जाए तो अगर बच्चा है वो परमानेंट टीथ बन रहे हैं तो वो ठीक आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपका जो मिल्की टीथ है उसमें ये स्पॉट्स आ रहे हैं तो आपके परमानेंट दांत में भी है, वो डिफरेंट हो सकते हैं।
1: ठीक ठीक, और परमानेंट टीथ जो है अक्सर वो पेरेंट्स जो हैं वो भी थोड़ा डिले कर देते हैं अगर पहले हैं कि बाद में ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट टीथ टेढ़े आ रहे हैं या कोई भी कंडीशन हो सकती है डिफरेंट आपको लग रहा है तो सारे दांतों को निकलने का आपने वेट नहीं करना क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है जिससे हम दांत सीधे करते हैं वो एज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जितना आप उसको अर्ली ट्रीट करवाएंगे उसके जो ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू लेट स्टेज में, क्योंकि अगर आप टीनेज गुजर जाए तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले जैसे उतने नहीं रहते। तो एज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप किस टाइम पे चेक करवाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए एक मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जैसे ही परमानेंट दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं एक आप रेगुलर जो चेकअप है ऑर्थोडोंटिस्ट को वो लाजमी करवाएं ताकि दांत को असेस किया जाए कि वो जो बच्चा है उसके कैसे आ रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेस है उसको स्पेस मेंटेन करनी है हमने या कोई टेढ़ा है उसको अर्ली ट्रीट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है।
1: ठीक ठीक बिल्कुल, इसमें डॉक्टर साहब अगर हम बिल्कुल ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें देखनी भी है और देख रहे भी होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं खासतौर पर पेरेंट्स जो हैं बच्चों में ही ज़्यादातर इस तरह के ट्रामा और वो चीज़ें जो हैं हो सकती हैं, इसमें लग सब कुछ रूल्स आपने हमें पहले भी एक बताए थे कि ब्रशिंग के क्या रूल्स हैं और स्पेशली बच्चों में पूछना चाहूँगी कि कितनी देर के बाद या कितने टाइमिंग्स, आमतौर पर तो टाइमिंग्स की भी बात होती है तो क्या बच्चों में भी कोई ऐसी है स्पेसिफिकली कि कितनी देर तक आपने ब्रश करना है?
0: देखिए सबसे पहले तो मेन ये चीज़ है कि हम कितनी दफ़ा ब्रश किया जाए
1: जी,
0: कम से कम जो है वो दिन में दो दफ़ा होनी चाहिए ब्रशिंग।
1: ठीक है, ये हम आम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं।
0: ये एडल्ट्स की भी बात है और आप मतलब टोडलर्स को छोड़ के जो चिल्ड्रन छोटे हैं जो के बात सुन सकते हैं और जो के कर सकते हैं उनके लिए भी
1: ठीक है।
0: आइडली दो टाइम ब्रशिंग होनी चाहिए, एक दफ़ा रात सोने से पहले और सुबह क्रैम कर सकते हैं नाश्ते से पहले भी नाश्ते के बाद, इसमें थोड़ी सी वो आ जाती है अपनी अपनी चॉइस, लेकिन एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को सोने से पहले लाजमी करना है।
1: आमतौर पर डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप नाश्ता करने के बाद जो है फिर वो ब्रश करें तो ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है।
0: बिल्कुल, ये डिबेट अभी तक चल रही है लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप ब्रश करें वो बेशक नाश्ते से पहले करें या बाद में, लेकिन आप लाजमी करें। ठीक है,
1: ठीक है।
0: जैसे मैंने बताया आइडली दो दफ़ा होना चाहिए, रात को जब ब्रश कर लिया लेकिन उसके बाद कुछ खाना नहीं है। कुछ लोगों की ये रूटीन होती है कि वो स्नैक्स जो है वो रात को लाजमी लेते हैं, ठीक है, और ब्रश वो पहले कर चुके होते हैं, इसलिए जब आप ब्रशिंग कर लें तो उसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। यस, पानी पी सकते हैं लेकिन कोई भी आप जूस कोई भी स्नैक अगर लें तो उसके बाद दोबारा फिर ब्रशिंग करें।
1: अच्छा।
0: सोने से पहले आपने ब्रशिंग लाजमी करनी है लेकिन उसके बाद कुछ खाना नहीं है क्योंकि
1: जी कुछ लोगों में हैबिट होती है कि सोते हुए वो जो है मिल्क दूध है वो कंज्यूम करते हैं मतलब ज्यादा, तो ये याद है जो इसमें भी ब्रश फिर दोबारा लाजमी करें।
0: बच्चों में तो ये थोड़ा
1: सा बच्चों में नहीं आम एडल्ट्स की बात है, बच्चों में तो मेरा
0: अगर देखें वो
1: अवॉइड करना जरा मुश्किल।
0: बिल्कुल ऐसी है, एडल्ट्स में भी होता है लेकिन वो अच्छी तरह रिंस कर लें कुल्ली कर लें तो अच्छी बात है, और अगर कुछ स्वीट है या कुछ ऐसा लिया तो उसके बाद ब्रशिंग लाजमी कर लें क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं करते तो उसका जो एक्सपोजर है वो पूरी रात वो दांत के साथ लगा रहेगा तो उसके रिजल्ट्स फिर उसके अकॉर्डिंग ही होंगे।
1: ठीक है बिल्कुल, और इसमें जो है हम अगर जैसे आपसे पूछना चाहें कि ये तमाम जो इमरजेंसीज हैं उसे हम

0: अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं। वैसे तो हम खुद भी गेस कर सकते हैं कि इन इमरजेंसी से कैसे बच रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहेंगे।
1: नहीं, जरूर। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज जिसको आप लगता है कि काफी अग्रेसिव चीज है, उसमें आप स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं। दांतों की जो प्रोटेक्शन होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अगर आप यूज कर लें तो एक तो आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनमें ज्यादा ये देखा जाता है, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो आपको 24/7 नजर रखनी ही पड़ेगी।
0: ठीक।
1: इसके अलावा जो थोड़े से बड़े हैं उनको आप समझाना पड़ेगा कि किसी भी चीज के साथ आपने कोई शार्प चीज है या जहाँ पे आपकी टक्कर हो सकती है वहां से आपने बच के रहना है। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाते हुए जो हमारी स्टील की अक्सर स्पून होता है, चम्मच होता है, अगर हम तेजी में खा रहे हैं अगर वो भी कभी जोर से लग जाए तो उससे भी दांत का जो है वो हिस्सा टूट सकता है। तो इंजरीज किसी भी किस्म की हो सकती हैं।
0: ठीक ठीक। और जैसे कि वो शार्प है, जैसे ब्रेसिस हैं या कुछ, उनका खास ख्याल जो है वो रखना है। जी डॉक्टर, इसमें कोई जैसे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मैं आपसे पहले ही पूछेंगे, क्या हो सकती हैं खुदा ना खास्ता? कोई अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो क्या वो हमारे दूसरे जिस्म पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल। अगर नीचे हमारा परमानेंट दांत आ रहा है और जो ट्रॉमा हुआ है वो मिल्की टीथ पे हुआ है और इन्फेक्शन वहाँ पे आ गया है, तो वो नीचे वाले दांत को 100% अफेक्ट करेगा। वो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करेगा, उसको निक्रोस कर सकता है, उसको वहाँ से जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अफेक्ट कर सकता है। इसलिए असेस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मिल्की टीथ पे इंजरी हुई है और वो उसका ऑलमोस्ट गिरने का टाइम हो गया हुआ है, तो अक्सर औकात वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती। तो ये एज और टाइम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
0: ठीक ठीक। इस तरह से आप जो सुन रहे हैं कि ये सारा जो है टाइम बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट है कि किस वक्त अगर चोट लगी है तो फौरन कैसे पहुँचना है, और स्पेशली जो सॉकेट वाली डॉक्टर साहब ने बात की वो बहुत अहम है कि हम अपने उसी टीथ को जो कि निकल चुका है उसे वापस उसी जगह पर जो है वो लगवा सकते हैं। और ये तो फिर डेंटिस्ट जो है इनका, डॉक्टर साहब जैसे जो हमारे बिल्कुल फ्रंट लाइन पर होते हैं, उन्हीं का काम है कि वो वापस वही खूबसूरत सा जो दांत है उसे हमें दे सकें। ये डॉक्टर साहब इसमें जो हाइजीनिक जो रूल्स होते हैं उस पर भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
1: जी बिल्कुल। ये इनकी जो जैसे आपने बात की दांतों की मजबूती, उसकी हाइजीन के साथ ही इफेक्ट करती है। जितना जो हमारा बोन स्ट्रॉन्ग होगी दांत, उसके अंदर सॉकेट जो है वो उतना ही उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। और अगर फॉर एग्जांपल कोई माइनर ट्रॉमा हो जाता है, कहीं पे टक्कर भी लग जाती है, अगर हमारे दांत मजबूत होंगे तो हम ट्रॉमा से बच सकते हैं। इन केस अगर हमारे दांतों की जो कंडीशन ही बहुत बुरी है, वो ऑलरेडी जो है वो बस वहाँ पे दांतों के साथ वो हड्डी के अंदर अड़े हुए हैं और वो हल्का से भी कोई इंजरी होती है, कोई टक्कर होती है, कोई भी चीज लगती है, तो वो गिर सकते हैं या हिल सकते हैं। तो दांतों का मजबूत होना, उनकी हाइजीन साफ होना, अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा डाइट का भी पूछना चाहूंगी आपसे कि कौन सी ऐसी डाइट है कि वो हेल्पफुल होती है कि कुछ बहुत दांत जो हमारे स्ट्रांग हो जाएं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है जैसे हम बोन्स की बात करते हैं कि ये डाइट लें या इस तरह से, तो इसमें भी कुछ ऐसा है?
1: जी बिल्कुल। डाइट तो हमारी ओवरऑल बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ना, क्योंकि हम डाइट अच्छी होगी तो हम अच्छा विदाउट जो है वो हॉस्पिटल और ये क्लिनिक्स के चक्कर से बच जाएंगे। इसमें आप एक तो सीजनल फ्रूट जो होते हैं, फ्रेश फ्रूट होते हैं, वो कोशिश करें उनको ले सकें। इसके अलावा कैल्शियम हो गए, विटामिन, ये आप किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ये आपको रेगुलर लेने चाहिए। इसके अलावा जो है आप ब्रशिंग जो है वो रेगुलर रखें, इससे आपका जो मेन चीज़ है वो दांतों को जो स्ट्रॉन्ग बनाती है वो आपकी ब्रशिंग है। जितना आप इसको साफ रखेंगे उतना ही आपका दांत स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और ये लॉन्ग टर्म चलेगा, अगर नहीं तो सबसे पहले आपके दांत अफेक्ट होंगे।
0: जी डॉक्टर, आपने कैल्शियम की बात की तो इसमें कैल्शियम एक तो सप्लीमेंट है और दूसरी ये कि कैल्शियम डाइट से वो पता ही है सबको कि मिल्क जो है वो, मगर कुछ और सोर्सेज जो हैं वो भी आपसे जरूर पूछना चाहूंगी और क्या क्या हो सकती हैं जैसे बच्चों को देने के लिए, क्योंकि ये मुश्किल है।
1: जी जी बिल्कुल। अब तो डिफरेंट सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि जो नेचुरल चीज है हम उसी से कंज्यूम कर सकें। सप्लीमेंट्स और ये चीजें तो ये बहुत सेकेंडरी चीज आ जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम नेचुरल चीज नहीं खा रहे या खासतौर पर जो बच्चे हैं वो

0: फ्रूट या खाना तो बिल्कुल उनकी कोशिश होती है कि वो छोड़ दिया जाए और बाकी जितने भी स्नैक्स और डिफरेंट चीजें जो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, चॉकलेट्स हो के या मतलब जिसका फायदा नहीं होता वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, तो उन केसेस में जो डिफरेंट अब तो जेलीज की फॉर्म में विटामिंस आ जाते हैं जो कि बच्चे आराम से इजीली खा सकते हैं, अब वो दे सकते हैं, विटामिन सिरप दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स जो कि अब तो स्वीट्स होते हैं उनके अंदर तो इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, वो उनको इस तरह से बहुत ज़्यादा वो तंग नहीं करते, तो इस तरह की चीज़ें आप लाजमी करें इनकेस, हर तरह से आप स्ट्रेटजी बनाएं। अगर बच्चा चीज़ें कुछ नहीं खा रहा या फ्रूट्स नहीं ले रहा, हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहा, तो आप उसको चेंज करके डिफरेंट काइंड्स में आप उसको दे सकते हैं।
1: ठीक, आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम दोबारा सुन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल में और हर चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है, मगर आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल ट्रामा होता है डेंटल और दांत जो हैं वो
0: मैसेज
1: आया हो सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक डेंटल ट्रामा था, तो मैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक मैसेज दूंगा कि एक तो आपने कोशिश करनी है हिफाजत करें, और इन केस अगर खुदा ना खासा अगर ऐसा कोई इशू होता है, किसी इंजरी को फेस करना पड़ जाता है, तो आपने दांत को संभाल के रखना है उसको, और इसके अलावा उसको साफ करना है सलाइन के साथ और ठंडे दूध के साथ, या अपने मुंह के अंदर जो स्लाइव है उसके अंदर आपने रखना है। और तीसरी चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपने टाइमिंग की, वो आपने 20 से 30 मिनट के अंदर अपने डेंटिस्ट के पास जाना है या कोई भी इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक है आपने वहाँ से रिजू करना है, उसको डिले नहीं करना कि आप उसको छोड़ दें या कोई भी चीज़ हो। इसके अलावा अगर आपको स्टार्ट में सिम्टम्स नहीं शो करें फिर भी आप एक दो दिन के वक्फे के बाद एग्जामिन जाके करवाएं, वो उस केस में कि अगर दांत मुंह के बाहर नहीं निकला, इन केस अगर निकलता है तो फिर आपको उसी टाइम जाके चेक करवाना है।
1: ठीक, और बिल्कुल जो है आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और इमरजेंसी में
0: बिल्कुल
1: जरूर जाना है जो भी आपके पास इमरजेंसी है।
0: जी बिल्कुल, जैसे दांत अगर मुंह से निकलता है तो अब वो एक इमरजेंसी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें इसलिए क्योंकि जो आपका अपना दांत है वो भी दोबारा लग सकता है, ये सारा आपकी वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है।
1: जी ठीक, आपने सुना कि बहुत ही डिटेल में डॉक्टर ने बताया कि अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसे किस तरह से हैंडल करना है, और इसके साथ ही अपने दांतों की हिफाजत बहुत करनी है आपको, मगर इसके साथ ही हम प्रोग्राम हेल्थ गाइड से इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ रहे डॉक्टर मोहम्मद रेहाब खान जो कि डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, और फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: FM 107
4: दिल से देसी।
5: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है, यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया

रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूं सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग. वेयर शुड योर मनी गो, ये सोचना है. बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एकदम अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. सेविंग का मतलब है पैसा सिक्योर रखना, और इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसा ग्रो करना. अगर आप 1,000 कतरी रियाल बैंक अकाउंट में रखते हैं तो वो सेविंग है, पर अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है या बिजनेस में लगाते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है. सेविंग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो बेस्ट है, जैसे इमरजेंसी फंड हो, वेकेशंस है, नई गाड़ी है, एजुकेशन फीस है. लेकिन हाँ, ये सेविंग्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नहीं अच्छे होते. लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स ही हैं, फिर चाहे आपका रिटायरमेंट हो, चाहे वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे चिल्ड्रंस एजुकेशन हो, चाहे प्रॉपर्टी परचेज हो, ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टमेंट से पूरी होती हैं. चलिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हर महीने 1,000 कतरी रियाल आप सेव कर रहे हैं, 10 साल तक आपने सेव किए टोटल

देखे जाए तो 120 यानी 1,20,000 कतरियाल। अब दूसरी तरफ आपके दोस्त ने 1,000 कतरियाल मंथली इन्वेस्ट किए, जहां उसे एवरेज रिटर्न मिला 8%। अब 10 साल के बाद उसके पास अमाउंट आपसे ज्यादा है, आपके पास है 1,20,000 जो आपने सेविंग से बचाए, और उसने इन्वेस्ट किया तो उसके पास 10 साल के बाद अमाउंट है 1,80,000। यहाँ कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक काम करता है।

फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट कहा था। एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले इमरजेंसी सेविंग्स बनाई जाए और उसके बाद मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए जाए। जैसे अगर आपकी मंथली इनकम है 15,000 कतरियाल, सेविंग्स है 1,500 कतरियाल, तो इन्वेस्टमेंट्स 1,000 कतरियाल। देखिए, आजकल इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है। पहले थोड़ा सा मुश्किल आती थी लेकिन अब नहीं है। अब आप म्यूचुअल फंड्स लीजिए, ETFs लीजिए, स्टॉक मार्केट्स लीजिए, रियल एस्टेट फंड्स लीजिए या रिटायरमेंट प्लान्स हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास नॉलेज जरूर होनी चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं रिस्क के साथ आता है और एक कॉमन मिस्टेक कई बार लोगों को भारी पड़ जाती है। और ये मिस्टेक लोग करते हैं कि लोग ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड किया, मार्केट ऐसा है, ये बड़ी ही डेंजरस अप्रोच है। दोस्तों, हमेशा अपना फाइनेंशियल गोल खुद डिफाइन कीजिए। अगर गोल 2 साल का है तो सेविंग ज्यादा सूटेबल है, और अगर आपका गोल 15 साल का है तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। एक छोटा सा फॉर्मूला ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं देन सेविंग इज अ गुड ऑप्शन, और अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है देन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट लोग दोनों करते हैं, सेविंग सिक्योरिटी देती है और इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ, तो दोनों में गुड बैलेंस क्रिएट करना आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है। बस फिलहाल के लिए तो मैं तो यही कहूंगी आपसे कि दोनों में गुड बैलेंस क्रिएट करें और लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती और मिलती हैं उन्हें ग्रैब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपका टैकी, नहीं ये थोड़ा सा क्लीशे लग रहा है, तो मैं जी दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। और टैक अपडेट में, आज की अपडेट में मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है, स्पेशली वो लोग जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं। आजकल वीडियो बनाना भी महंगा है और वीडियो एडिट कराना उससे भी थोड़ा सा एक लेवल महंगा हो जाता है, मगर अगर आप खुद को सिखाना चाहें तो बहुत आसान है। एक जगह बताता हूं जहां पे आप जा सकते हैं, नहीं वैसे नहीं मैप पे लगा के नहीं, एक वेबसाइट जहां पे आप जाएंगे और आपको पूरा का पूरा वीडियो एडिटर ऐसे ही मिल जाएगा एकदम फ्री, सो दैट यू कैन एडिट योर वीडियोस। और अगर एडिट करना नहीं भी आता है तो आप एटलीस्ट खुद को इस वेबसाइट के जरिए सिखा सकते हैं, एक्सट्रीमली इजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सुनिए वेबसाइट का नाम, videosoftdev.com। मैं एक बार स्पेल आउट कर देता हूं, सो VIDEO वीडियो, बिना स्पेस लिखना है आपको, सॉफ्ट SOFT, फिर बिना स्पेस लिखना है आपको DEV, डेवलपमेंट का डेव, तो videosoftdev.com। आप जब इसे ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो एडिटर आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। आई नो कि कुछ लोग अभी कैप कट और बहुत सारे और भी ऑप्शंस रखते हैं अपने पास, मगर दिस वन इज क्वाइट इजियर। इसकी ट्रिक्स भी आपको ये खुद ही सिखा देगा और आपको इसमें खुद को सिखाने के साथ साथ एडिटिंग करने में काफी आसानी होगी। आई एम प्रिटी श्योर ये जो है लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आप फोन में एडिटिंग कर रहे हैं तब तो इसे ना यूज करें, बिकॉज इट माइट टेक अ लिटिल टाइम। लेकिन अगर आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए एक बढ़िया वीडियो एडिटर चाहिए तो भाई इससे बढ़िया तो मैं आपको फ्री में बता नहीं सकता, ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अगला है genial.ly, genial.ly। अब ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको नजर आएगी जो अक्सर बहुत बहुत खर्चा करवाती है, और वो है इंटरैक्टिव वीडियोस। कभी कभार हमें बच्चों को सिखाने के लिए कुछ चाहिए होता है, हम उसके लिए टॉयज खरीदते हैं या इंटरैक्टिव वीडियोस को डाउनलोड करते हैं या उन्हें यूट्यूब पर दिखाते हैं। बट वंस यू गेट होल्ड ऑन टू दिस वेबसाइट, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कुछ भी प्रेजेंटेशन या बच्चों को दिखाना है या ऑफिसेज के लिए बनानी है या किसी भी चीज के लिए, कुछ फैंसी सा करना है किसी बर्थडे के लिए, आप इस वेबसाइट को यूज कीजिए एंड यू कैन मेक वो इंटरैक्टिव वीडियोस। बहुत फैंसी, बहुत कूल लगता है और फ्री में बन जाते हैं भाई, इससे बढ़िया चीज नहीं बता सकता मैं आपको। लेट मी रिपीट द नेम, इसका नाम है genial.ly, यूं करके समझ लीजिए इसका नाम और आपको मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो कोई भी अगर आपको हेल्प लगे तो बाद में पूछ लीजिएगा हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे FM 107 कतर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी गुड रिव्यू ऑफ समथिंग रियली रियली गुड। हाँ तो जी, अंग्रेजी इधर के उधर हो गई लेकिन रिव्यू करने वाला हूँ, समझ गए होंगे। तो मैं आज रिव्यू करना चाहता हूँ नथिंग के हेडफोन्स के बारे में। नथिंग के हेडफोन्स अमेजिंग है भाई, मुझे कभी नहीं लगा था कि एप्पल के वो जो इतने ज्यादा महंगे उन्होंने हेडफोन्स निकाले उनको कोई टक्कर देने की सोचेगा या फिर ख्यालों में भी आएगा, क्योंकि अगर आपको अल्टरनेट आइडियाज आते तो आप सोचते हैं सोनी का ले लूंगा यार, नहीं तो मैं JBL का ले लूंगा यार, और बहुत सारे स्टूडियो हेडफोन्स जो होते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं लोग उनकी तरफ जाते हैं। मगर नथिंग जो कंपनी है उसने एक बीच का पाथ पकड़ा है और अपने हेडफोन्स लॉन्च किए हैं। अब दो चीजें मेनली, एक होता है डिजाइन जिस पे फोकस जाता ही जाता है एंड नथिंग हैज बीन नोन फॉर इट। उनके डिजाइन चाहे वो फोन के हो, चाहे उनके एयरपॉड्स के हो, चाहे उनके हेडफोन्स के हो, सब टॉप नॉच है।

0: कोई तीसरी कंपनी नजर आती है जो कि एंड्रॉयड और iOS के अलावा भी कोई ऑप्शन देती है, तो या तो वो गूगल पिक्सल है या फिर नथिंग के प्रोडक्ट्स हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ है इतने टेक जायंट्स के बीच में खड़ा होना। तो हेडफोन्स बहुत क्रिस्प हैं, बहुत बढ़िया हैं। महंगे हेडफोन्स की जगह अगर आपको कूल दिखने वाले और नॉइस कैंसिलेशन के साथ वाले क्लियर क्वालिटी के साथ चाहिए तो गो फॉर इट। और काफी बजट में मैं प्राइसिंग यहाँ पे नहीं बता सकता, मगर आप अगर देखेंगे तो काफी जगहों पे अलग अलग प्राइसेस आपको मिल सकते हैं। अमेजोन पे इट्स ऑन अ डिफरेंट प्राइस और हो सकता है लोकली भी कतर में आपको इजीली मिल जाए। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेडफोन जो कि मिड रेंज में आ जाए और आपको अच्छा भी दिखे और एप्पल को टक्कर देनी है और लोग भी पूछें कि ये क्या है भाई, तो फिर आपको ये लेना चाहिए। एक्सलेंट चॉइस फॉर हेडफोन्स और वो भी उस बजट में जो लगता है कि हाँ इस लायक तो है। मगर आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो हेडफोन आपको उस लेवल के नॉइस कैंसिलेशन में सबको देगा। थोड़ा सा साउंड लीक है मगर दैट इज फाइन, वो नेग्लिजिबल है। अब उसमें आप नेट पिक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिस इज माय रिव्यू फॉर अ वेरी स्मॉल रिव्यू ऑफ द हेडफोन्स बाय नथिंग कंपनी। एंड भाई मैं इनकी तरफ झुकाव जा रहा है मेरा तो फोन पे भी दिल आ गया क्योंकि रिसेंटली दे हैव प्लानिंग टू लॉन्च देयर थ्री नथिंग फोन 3, तो उस पर भी नजर बना के रखिएगा। मैं भी नजर बना के रखूंगा और फिर आपको उसका भी रिव्यू मिलेगा FM 107 पर। ये थी टेक अपडेट्स एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशन्स का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
4: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक

कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है। कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

एटीएम में कार्ड डालते हैं, खास तौर पे ये कई अलग अलग मुल्कों में होता है कि जब आप कार्ड डालते हैं तो ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो हिडन होता है, वो सारी डिटेल नोटिस कर रहा होता है और वो इतना शार्प कैमरा होता है कि वो सारी डिटेल्स आपके कार्ड की नोट कर लेता है, इवन CVV भी वो नोट कर लेता है, नीचे भी कैमरा है ऊपर भी कैमरा है, 16 डिजिट के जो नंबर है वो भी आपकी डिटेल्स जो है वो ले लेता है, और फिर जो आपने पिन डाला उससे भी उनको डेटा मिल जाता है। तो ऐसे में बहुत होशियार रहने की यहाँ पर भी जरूरत है, कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमने तो कहीं डिटेल्स दी ही नहीं, फिर मेरे साथ ये स्कैम कैसे हुआ। तो ये जो परेशानी है ये छोटी छोटी इन्हीं चीजों को नोटिस ना करने पर जरूर आती है। डेटा ब्रीच भी होता है, बड़े स्टोर्स या कंपनीज के ऑनलाइन डेटाबेस हैक होने पर लाखों कस्टमर्स के कार्ड नंबर्स डार्क वेब पर लीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन किसी बहुत ही लेजिट वेबसाइट से आपने शॉपिंग करी हो, लेकिन अगर वो वेबसाइट हैक कर ली हैकर्स ने तो आपकी डिटेल्स लीक हो जाती है। फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स के जरिए आपसे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV मंगवाया जाता है और इससे भी लोग आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इस पे नजर डालें तो हमारा काम आसान हो सकता है और हम किसी भी तरह के फ्रॉड से, कार्ड फ्रॉड से हम बच सकते हैं। सबसे पहले आप इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट को सेट करें अपने बैंक अकाउंट के जरिए। अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर इमीडिएट SMS और ईमेल नोटिफिकेशंस एक्टिवेट करें। हर एक छोटे बड़े ट्रांजैक्शन का अलर्ट आपके फोन पर तुरंत आना चाहिए ताकि कोई भी अनजान एक्टिविटी आपसे छुपी ना रहे। सबसे पहला फर्ज आपका यही होना चाहिए। दूसरा, अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करें। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड की ऐप खोलकर स्टेटमेंट चेक जरूर करें। अगर आपको कोई भी ऐसा चार्ज या पैसा कटना दिख रहा है जो आपने नहीं किया है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार जो स्कैमर्स होते हैं वो छोटा अमाउंट कट करते हैं और आपने इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट सेट नहीं किया होता और ये छोटे अमाउंट जो कट रहे होते हैं ये आपकी जेब से खाली होते रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट से खाली होते हैं। और हमेशा जब भी आप कहीं पर स्वाइप करें अपना कार्ड तो स्कैमर्स का ध्यान रखें। किसी भी लोकल ATM या गैस स्टेशन पर कार्ड लगाने से पहले स्लॉट को ध्यान से देखें। अगर स्लॉट ढीला लग रहा है या आसपास ऐसे कैमरे नहीं है जो हिडन है तो आप वहां पर आसानी से ATM अपना डाल सकते हैं। जब भी आपके साथ फ्रॉड हो इमीडिएटली एक्ट करें। जैसे ही आपको किसी अनरिकॉग्नाइज्ड चार्ज या फ्रॉड का पता चले तुरंत अपने बैंक को कॉल करें। बैंक से कहें कि आपका कार्ड ब्लॉक करें और उस ट्रांजैक्शन के खिलाफ डिस्प्यूट चार्ज क्लेम फाइल करें। ज्यादातर बैंक्स फ्रॉड ट्रांजैक्शंस का पैसा वापस रिफंड कर देते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो और आपने इमीडिएटली एक्शन लिया हो। और हमेशा वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल करें, सेफ ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट का ही यूज करें। अगर पॉसिबल हो तो बैंक्स की तरफ से मिलने वाले वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या टेम्परेरी कार्ड नंबर्स का यूज करें जो सिर्फ एक बार एक ट्रांजैक्शन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। इंस्टेंट टेक्स्ट अलर्ट को सेटअप करें, अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करें, स्कीमर्स पर ध्यान रखें, इमीडिएटली एक्ट करें अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, और साथ ही आपको वर्चुअल कार्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फ्रॉड अवेयरनेस के, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम जानेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट। वेट।

0: बचने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तत्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: सामिने किराम, उम्मत इस्लाम को एतदाल पसंद कहा गया है, यानी उम्मत मुस्लिमा को एतदाल पसंद बनाया गया और लोगों के लिए उसकी रहनुमाई ता क़ियामत है, मगर हमने अपनी जहालत और हमाकत से इस एतदाल पसंदी को ज़ाय कर दिया है। अब इरशाद खुदावंदी है, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا

0: दिल से देसी।
1: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। देसी
2: क्रिकेट हो
3: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स 4 रन।
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
5: Maximum music, maximum fun.
6: On FM 107, Dil Se Desi.

0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान। एक नया शो लेके आपके लिए हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है इस्लामिक मॉडर्न लाइफ। और ये शो क्यों जरूरी है, चले समझते हैं। इसी से बदलती हुई इस दुनिया में जहाँ जदीद जिंदगी की रफ्तार इंसान को लम्हा भर के लिए भी ठहरने नहीं देती, वहाँ यकीनन एक सवाल जो है वो बार बार हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। हम अपने घरों को, अपनी नस्लों को और अपने बच्चों के किरदार को किस तरह महफूज रखें, कैसे हम जदीद तकाजों के साथ चलते हुए अपनी इस्लामिकता, अपनी ख़ानदानी रिवायत और वो इखलाकी बुनियादें बचा सकते हैं जो एक मजबूत माशरे की असल जड़ें होती हैं। इस्लाम हमें रहनुमाई देता है और जदीद ज़माना हमें नए चैलेंजेस देता है। यही वो मकाम है जहाँ पैदा होता है खूबसूरत इम्तिज़ाज, इस्लामिकता प्लस जदीद दुनिया के तकाजे। और इसी इम्तिज़ाज को समझने, सीखने और रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करने के लिए आप सुन रहे हैं आज का शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ विद आरजे महवेश खान। ये प्रोग्राम उन वालदेन के लिए है जो अपने बच्चों को ना सिर्फ कामयाब बल्कि खुश अखलाक, मजबूत, मुतवाजन और बाशऊर इंसान बनाना चाहते हैं। उन ख़ानदानों के लिए है जो अपनी घरेलू ज़िंदगी में मोहब्बत, बर्दाश्त और हिकमत के उसूलों को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और उन नौजवानों के लिए भी है जो आने वाले कल के मेमार हैं। आज का दौर सिर्फ माशी और तालीमी मुकाबले का नहीं है, ये किरदार के इम्तिहान का दौर भी है। हमारी नस्लें ऐसे माहौल में पल रही हैं जहाँ स्क्रीन्स तरबियत से ज़्यादा तवज्जो मांगती हैं, तवज्जो हटाने वाली चीज़ें तालीम से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हैं, जज्बात जड़ टूट जाते हैं, ताल्लुकात कमज़ोर होते जा रहे हैं और बच्चे अपनी असल ज़रूरत समझने के लिए तरस रहे हैं। हम अक्सर बच्चों के रवैये को शरारत कह के नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि हर रवैये के पीछे एक कहानी होती है, एक वजह होती है, एक खामोश पैगाम होता है। और इस पैगाम को समझना ही असल तरबियत भी है। इसलिए ये शो आपको लेके जाएगा जदीद पेरेंटिंग के चैलेंजेस से लेकर इस्लामी तरबियत की हिकमत तक। या हम बात करेंगे कि आजकल के जो दौर के तकाजे हैं वो कैसे पूरे हों, साथ में अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो ये इमोशनल क्यों हो जाते हैं, गुस्सा, ज़िद, खामोशी या चिड़चिड़ाहट के पीछे क्या वजह होती है। और फिर अगर हम वालदेन के हवाले से बात करें तो हम भी यकीनन सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं। और फिर ख़ानदान घरों को कैसे मजबूत बनाता है, इसके साथ ही किरदार साजी के इस्लामी उसूल आज के ज़माने में कैसे लागू होते हैं, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में किस तरह से हमें काम करना है बच्चों के जहनों पर, और वो छोटी छोटी आदात जिनसे बड़े बड़े अखलाकी मौत से जन्म लेते हैं। इस्लाम बाहसियत दीन हमें सिर्फ नमाज या इबादत की हिदायत नहीं देता, बल्कि पूरा फैमिली सिस्टम, एक अखलाकी ढांचा और एक समाजी अदाबनामा देता है जो इंसान की शख्सियत को अंदर से मजबूत करता है। ये शो यकीनन इस बात पर रोशनी डालेगा कि इस्लामी तालीमात जदीद वालदेन के लिए कितनी सादा, मौसर और अमली रहनुमाई फरहम करती है। आप जानेंगे प्यार से तरबियत सिखाने के असूल क्या है, बच्चे को पॉजिटिव अंदाज में कैसे समझाया जाए, घर का माहौल शख्सियत साजी में कैसे किरदार अदा करता है और वालदैन का रवैया बच्चे के दिमाग की वायरिंग को कैसे मुतासिर करता है, हुदूद और मोहब्बत का तवाज़ुन कैसे कायम होता है। हम जदीद रिसर्च के मुताबिक देखेंगे, माहिरीन नफ्सियात की जो बातें हैं उनको समझेंगे और इस्लाम के सुनहरे उसूलों से भी फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं तो तरबियत का सफ़र आसान, बाबरकत और मौसर बन जाता है। ये शो सिर्फ मालूमात का मजमू नहीं होगा, ये एहसास है, आवाज़ है, ये मोहब्बत की वो रोशनी है जो हर घर में मौजूद होनी चाहिए। हर एपिसोड में आप सुनेंगे कुछ हकीकी कहानियाँ, अमली मिसालें, वो मसाइल जो हर घर में होते हैं और उनके आसान, मुस्बत और इस्लामी हल। हम बात करेंगे वालदैन की थकन के बारे में, बच्चों के छोटे दिलों की बड़ी उलझनों के बारे में, घर के अंदर ताउन, खुश अखलाकी और बाहमी एहतराम के बारे में। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करें, बल्कि ये भी है कि आप खुद भी एक बेहतर इंसान, बेहतर वालदैन और बेहतर ख़ानदान का हिस्सा बन सकें। तो आइए अपने दिल को नरम कीजिए, अपने जहन को खोलिए और हमारे साथ निकलिए एक ऐसे सफ़र पर जिसमें ना सिर्फ इल्म है बल्कि सुकून भी, जिसमें मसले भी हैं और साथ में उनके हल भी, जिसमें आज की दुनिया की हकीकत भी है और इस्लाम की रोशनी भी। ये है इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मावश। तो चलिए आज के एपिसोड का आगाज करते हैं। आज के एपिसोड का आगाज एक ऐसे एहसास से करना चाहती हूँ जो हम में से हर शख्स किसी ना किसी दर्जे महसूस करता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसे लफ्ज़ों में ढाल पाते हैं। यह एहसास है रूहानी दूरी का, वो दूरी जो आहिस्ता आहिस्ता दिल पर बोझ बनने लगती है, जो नमाजों को मामूली बना देती है, जो दुआओं को धुंधला कर देती है और जो इंसान को अपने ही अंदर एक नामालूम खला में लेकर चली जाती है। हम सब जानते हैं कि जदीद दुनिया कितनी तेज़ चल रही है, हम सुबह से रात तक भागते रहते हैं, काम, ड्यूटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेक्नोलॉजी की शोरश, सोशल मीडिया की बेकरारी और इन सब के दरमियान कहीं हम अपना रूहानी कनेक्शन खो बैठते हैं। हमारी ज़िंदगी रफ्तार पकड़ जाती है मगर हमारा दिल आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाता है। हम जिस्मानी तौर पे मसरूफ हैं मगर रूहानी लिहाज से खाली होते जा रहे हैं। और आज का अहम सवाल यही है, क्या हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो रुकती नहीं? अल्लाह से अपना ताल्लुक हम बरकरार रख सकते हैं? ये सवाल सिर्फ एक लम्हे की सोच नहीं है, यह आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी है और सबसे बड़ी ज़रूरत भी। इस्लामिक मॉडर्न लाइफ प्रोग्राम में हम यह हकीकत तस्लीम करते हैं कि हर इंसान अपने रब से जुड़ना चाहता है। दिल चाहता है कि नमाज में वो खुशु मिले जो कभी कभी बचपन में महसूस होता था। दिल चाहता है कि सजदा आंखें नम कर दे। दिल चाहता है कि दुआ दिल की गहराइयों में उतरे। दिल चाहता है कि अल्लाह की याद हमारी जिंदगियों का मरकज बन जाए, मगर फिर दुनिया खींच लेती है, काम खींच लेते हैं, सोचे उलझा देती हैं और यूं इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही दिल की धड़कन से दूर होता जाता है। हमारा मॉडर्न तर्ज जिंदगी एक अजीब दौर में बदल चुका है, खास तौर पे शहरी जिंदगी में लोग जितना कमाते हैं उतना ज्यादा खो देते हैं, जितना आगे जाते हैं उतना ज्यादा उनकी रूह पीछे रह जाती है। ये शो आज के एपिसोड इसी खला को पूर करने के लिए है। हम आज सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि अपने दिलों के जख्मों को भी देखेंगे, अपनी रूह को फिजा भी फराहम करने की कोशिश करेंगे। हमारी दुनिया में हर चीज की रफ्तार बढ़ गई है। इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, काम के मुतालबात और रिश्तों का दबाव, इन सब ने मिलकर इंसान को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां उसके पास रुककर सोचने का वक्त ही नहीं रहा। पहले लोग नमाज के लिए वक्त निकालते थे, अब लोग नमाज के दौरान भी फोन चेक करते हैं। पहले दुआएं सुकून देती थी, अब दुआओं के लिए भी जहन में कोई जगह नहीं बची। पहले लोग अजान की आवाज सुनते ही काम छोड़ देते थे, आज अजान सुनकर भी कानों में हैंड फ्री लगा रहता है। चेहरे पे कोई तासुर नहीं आता, दिल की धड़कन में कोई तब्दीली नहीं होती। ये रूहानी दूरी एक दिन में पैदा नहीं होती, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खामोशी से हमारे दिलों में घर कर जाती है और हमें खबर भी नहीं होती कि हम अपने रब से कितने फासले पर आ गए हैं। इंसान जब हाईली कनेक्टेड हो जाए एप्स, स्क्रीन्स, नोटिफिकेशंस, तो वो अपने अंदर की आवाज से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब अंदर की आवाज दब जाती है तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाली आवाज भी कम सुनाई देने लगती है। इसलिए आज के प्रोग्राम का एक बुनियादी सवाल है, क्या हम वाकई अल्लाह से जुड़े रह सकते हैं एक ऐसी दुनिया में जो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती? क्या ये मुमकिन है कि हम दौड़ती भागती जिंदगी में भी जिक्र जिंदा रख सकें, मसरूफियतों के बावजूद दिल को अल्लाह से वाबस्ता रख सकें? वालदैन होते हुए, शौहर या बीवी होते हुए, मुलाजमत करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, नमाज को टूटना दें, स्क्रीन्स में घिरी दुनिया में अपने बच्चों को रूहानी बुनियादें सिखा सकें, क्या हम इस दुनिया के हंगामों में भी अंदरूनी सुकून पा सकते हैं जिसे कुरान कहता है इत्मीनान? ये सब सवाल सिर्फ बातें नहीं, ये वो दिल की आवाज है जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, बस दब चुकी है, खामोश हो चुकी है, या शायद जवाब की तलाश में भटक रही है। आज हम तीन बड़े कनेक्शंस को एक साथ समझेंगे। सबसे पहले तो रब से ताल्लुक, फिर खुद से ताल्लुक, फिर खानदान से ताल्लुक। इसलिए कि रूहानी दूरी कभी अकेले नहीं आती, इंसान के किरदार, मिजाज, सोच, रिश्तों और जज्बात सबको मुतासिर करती है। जब दिल अल्लाह से दूर होता है ना, तो घरों में बेसुकूनी पड़ती है, बच्चों के रवैये बिगड़ने लगते हैं, वालदेन का सब्र कम हो जाता है, गुस्सा जल्दी आने लगता है और जिंदगी बेमकसद महसूस होने लगती है। आज का इंसान सब कुछ रखता है अपने पास सिवाय सुकून के, सब कुछ संभाल लेता है सिवाय दिल के, और यही हमारा असल मौजू है। इस्लाम ने हमें दुनिया छोड़ने का नहीं कहा, बल्कि दुनिया में रहकर अल्लाह की रजा जीने का कहा है। जिंदगी और इस्लामी रूहानियत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, वो तो एक दूसरे की तकमील है। इस्लामी उसूल ऐसे हैं कि वो हर वक्त में, हर दौर में फिट हो जाते हैं, हर इंसान के लिए काबिल अमल होते हैं, और जदीद तरीन ज़माने में भी दिल को वो सुकून देते हैं जो किसी गैजेट, किसी ऐप, किसी लग्जरी या फिर किसी अचीवमेंट पे नहीं मिल सकता। इस्लाम इंसान से परफेक्ट बनने का मुतालबा करता ही नहीं, वो इंसान से अल्लाह को याद रखने का मुतालबा करता है, और यही वो चीज़ है जो हमारी आज की मॉडर्न लाइफ में कहीं खो गई है। हम याद करना छोड़ देते हैं और यूं खुद को खो बैठते हैं। कुरान कहता है बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये सुकून कोई नजरियाती बात नहीं है, ये दिल की गहराइयों तक उतरने वाली कैफियत है, वो कैफियत जो इंसान को दुनिया की भाग दौड़ में भी मजबूत रखती है।
0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को,

ये हमेशा छोटे कदम से शुरू होती है और इसी सोच के साथ हम अगली किस्त की तरफ बढ़ेंगे। आप नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे एक निहायत अहम और अमली मौजू। हम बात करेंगे वर्क लाइफ वर्शिप यानी काम साथी जिंदगी और इबादत के दरमियान तवाजुन। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह रोजगार, घरेलू जिम्मेदारियाँ और इबादत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक दूसरे के मावन बन सकते हैं, कैसे काम को इबादत में बदला जा सकता है और कैसे इबादत हमारी पेशावराना और ज़ाती ज़िंदगी में बरकत ला सकती है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि काम की वजह से इबादत पीछे रह जाती है या इबादत के शौक में दुनियावी जिम्मेदारियाँ पोश रखने लगती हैं, तो अगली किस्त आपके लिए बहुत ख़ास है। हम इसमें यकीनन आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे इस्लामी रहनुमाई और सादा आदतों के ज़रिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस लाइफ कैसी होती है। ऐसी जिंदगी जिसमें दिल में इत्मीनान हो, काम बा मकसद हो और इबादत जिंदगी से जुड़ी हुई हो। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अपनी याद में साबित कदम रखे, हमारी मसरूफियत में बरकत दे और हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए। हम आज के एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई बसीरत और अमली रहनुमाई के साथ। अपनी आरजे माहौश को दीजिए इजाजत, सुनते रहें FM 107 तुलसी देसी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।

Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे

हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

निशानियां लेकर आते रहे, मगर उन्होंने कहा क्या इंसान हमें हिदायत देंगे। इस तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। तब अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया, और अल्लाह तो है ही बेनियाज और अपनी जात में आप

जानता है और खूब बाखबर है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और अगर नबी के मुकाबले में तुमने जत्थाबंदी की तो जान रखो कि अल्लाह उसका मौला है, और उसके बाद जिब्रील और तमाम सालेह अहले ईमान और सब मलाइका उसके साथ ही और मददगार हैं। बाइद नहीं कि अगर नबी तुम सब बीवियों को तलाक दे दे तो अल्लाह उसे ऐसी बीवियां तुम्हारे बदले में अता फरमा दे जो तुमसे बेहतर हों, सच्ची मुसलमान, बा ईमान, इताद गुजार, तौबा गुजार, इबादत गुजार और रोजेदार, खा शौहर दीदा हों या बाकिरा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो आयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर निहायत तुंद खू और सख्त गीर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। उस वक्त कहा जाएगा कि ऐ काफिरो, आज माजरतें पेश न करो, तुम्हें तो वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे।